मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। आज दिन है शनिवार, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की नौवीं तिथि, तदनुसार 30 मई सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:55 हो रहे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की ये पहली सभा।

सुबह की पावन बेला और चिड़ियों की चहचहाहट के साथ आइए करते हैं दिन की शुरुआत। तो नमस्कार, लखनऊ में आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत करता है आकाशवाणी लखनऊ।

मीडियम वेव 401.61 मीटर पर इस वक्त आप सुन रही हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। देश और दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए आइए रुख करते हैं आकाशवाणी दिल्ली की ओर, जहां से अब से बस थोड़ी ही देर बाद यानी 6 बजे से रिले किया जाएगा हिंदी समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के तरीकों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार सीमा सुरक्षा बल को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार कर रही है। श्री शाह ने कल गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर दो नई सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद ये बात कही। श्री शाह ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरह से बदलने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने एक चतुर्भुजीय सुरक्षा ग्रिड की स्थापना की घोषणा की है।
1: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी।

0: ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
1: गृह मंत्री ने ड्रोन, रडार, निगरानी टावर, अत्याधुनिक तकनीक और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती से एक मजबूत सुरक्षा तंत्र के निर्माण का विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इसके स्थापना के बाद कोई भी देश की सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकेगा। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी होगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग लाइंग की यह पहली भारत यात्रा होगी। गया में म्यांमा के राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। राष्ट्रपति यू मिन आंग आज शाम नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात करेंगे। म्यांमा के राष्ट्रपति की कल म्यांमा भारत व्यापार मंच में भाग लेने की संभावना है। म्यांमा के राष्ट्रपति सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के उत्साहवर्धक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि कल तिरुवनंतपुरम में सेमीकंडक्टर स्टार्टअप नेत्रा सेमी ने देश का पहला एआई सिस्टम ऑन चिप नेत्रा A2000 विकसित किया है, जो उन्नत 12 नैनोमीटर नोड तकनीक पर आधारित है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत अनुदान जारी करने और उसके उपयोग के बारे में व्यापक समीक्षा बैठक की। बैठक में समग्र शिक्षा अभियान के तीसरे चरण को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और परिणामोन्मुख बनाने पर विशेष बल दिया गया। श्री प्रधान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस वर्ष से समग्र शिक्षा अभियान पीएम पोषण, पीएम श्री और अन्य प्रमुख योजनाओं के समन्वय से एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे स्कूली शिक्षा प्रणाली में बेहतर समन्वय और प्रभाव सुनिश्चित होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायालय की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। और खेलों में IPL क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में खेले गए दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। फाइनल में गुजरात टाइटंस का मुकाबला कल अहमदाबाद में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर इस वक्त आप सुन रही हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। तो श्रोताओं, खेती और किसानी से जुड़ी जानकारियों के लिए आइए चलते हैं हमारे अगले कार्यक्रम की ओर। तो प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि चर्चा, जिसमें आज जायद में हरी खाद उत्पादन विषय पर जानकारी दे रहे हैं

0: चर्चा, जिसमें आज जायद में हरी खाद उत्पादन विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर नागेंद्र सिंह रघुवंशी।
1: प्रभात। जैसे जैसे हमारी खेती आधुनिक हो रही है, वैसे वैसे कुछ नई समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं। मसलन, फसल उत्पादन में धान गेहूं आधारित फसल चक्र बहुतायत से लोग अपनाते हैं और अपनाते रहे हैं। रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग इसमें जितनी बड़ी मात्रा में शुरू हो गया है अब पहले की अपेक्षा, उसका मूल कारण यह है कि पहले जो सूक्ष्म पोषक तत्व या जीवांश हमारी मिट्टी में हुआ करते थे, वह धीरे धीरे इन रसायनों के प्रयोग के कारण खत्म होते चले जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में आवश्यकता वही पुरानी बनती है कि खाद की आपूर्ति के लिए हमें गोबर की खाद या फिर हरी खाद का प्रयोग करने की स्थिति उत्पन्न करनी होगी। ढांचा हरी खाद के रूप में बहुत पहले से उगाया जा रहा है और आज और ज्यादा प्रासंगिक हो गया है। कारण यह है कि जो भी रसायन हम प्रयोग कर रहे हैं, उनके कुप्रभाव को समाप्त करने, फसल को सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से ही नहीं, बल्कि आगे आने वाली फसल के लिए भूमि की दशा को सुधार करने में यह बहुत बड़ा सहयोग देता है। इसलिए ढांचा की हरी खाद जरूर आप अपनाएं। प्रति हेक्टेयर 60 से 80 किलोग्राम नाइट्रोजन यह उपलब्ध करा देता है। ढांचे के हरे पौधे में लगभग आप मान के चलिए कि आधा प्रतिशत से लेकर 0.8% तक नाइट्रोजन, 0.8% फॉस्फोरस और 0.6% के आसपास पोटाश पाया जाता है। भूमि की भौतिक, रासायनिक, जैविक स्थिति में तो सुधार होता ही होता है। ढांचा में कैल्शियम की मात्रा अधिक होने से सोडियम लवण हटाकर भूमि की क्षारीयता कम करती है। सूक्ष्म जीवों की सक्रियता बढ़ जाएगी और भूमि संरक्षण में इससे सहायता मिलेगी। भूमि ओम भूमि की तैयारी करनी होगी इसके उत्पादन के लिए, कोई खास बात नहीं होती है, लेकिन एक सामान्य तरीका यही है कि ढांचा की खेती विविध जलवायु दशाओं में लगभग सभी भूमियों में चिकनी, बालू, रेतीली, कम या अधिक पीएच वाली भूमि में आसानी से की जा सकती है। लेकिन बढ़वार की दृष्टि से बलुई दोमट से दोमट भूमि सर्वोत्तम होती है। क्षारीयता के प्रति प्रतिरोधी होने के कारण इसे 9.5 से 10 पीएच पर भी उगाया जा सकता है। बुआई से पूर्व भूमि को पलेवा कर लेना बेहतर माना गया है। बुआई का जो समय है इसका, धान की रोपाई से 45 दिन का। तो जब भी आप लक्ष्य बनाए हैं धान की अपनी रोपाई का, उससे 45 दिन पहले इसकी बुआई करें, यानी ढांचा बोएं खेत में। बीज की मात्रा 40 किलोग्राम लीजिएगा, अगर ऊसर भूमि है तो उसमें 60 किलोग्राम। बीज शोधन भी कर लेंगे तो अच्छी स्थिति होगी। बीज को रात भर पानी में भिगोना भी एक बेहतर स्थिति पैदा करता है। बीज छिटक कर सुबह या फिर शाम को बोएं, जब भी एक सामान्य सी स्थिति बने। हाँ, पौधों की बढ़वार के लिए उपयुक्त नमी आवश्यक है, इसलिए वर्षा शुरू होने के पूर्व 1 या 2 सिंचाई की आवश्यकता अमूमन पड़ ही जाती है। सामान्यतः अच्छी भूमियों में उर्वरकों की आवश्यकता नहीं पड़ती, परंतु बहुत कमजोर भूमि में बुआई के 15 से 20 दिन बाद प्रति हेक्टेयर 20 से 30 किलोग्राम यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करने से अच्छी खासी वृद्धि हो जाती है और यही वृद्धि हमें हरी खाद प्राप्त करने में सहयोग करती है। फसल को मिट्टी में पलटना भी आवश्यक होता है। जब फसल 45 से 50 दिन की हो जाती है अमूमन, तब पलटने वाले हल से इसे पलट दिया जाता है। यदि धान की रोपाई करना हो तो इसके 3 से 4 दिन पूर्व पाटा लगाकर फसल को गिराएं और मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करके भूमि में 15 सेंटीमीटर गहराई में दबा दें, 15 सेंटीमीटर पानी भर दें। यदि धान की फसल न भी लेना हो तो भी हरी खाद बनाने के लिए ढांचा की बुआई करके उसे जमीन में संरक्षित कर सकते हैं। धान के खेत में ढांचा की हरी खाद प्रयोग करने पर प्रति हेक्टेयर 60 किलोग्राम नाइट्रोजन की बचत हो जाएगी। अब आप इस स्थिति में समझ सकते हैं कि कितनी यूरिया की बचत आप कर पाएंगे। इसलिए हम पुनः आपसे यही कहेंगे कि इसकी स्थिति परिस्थिति को देखते हुए यह जरूरी है कि भूमि की उर्वरता बढ़ाने तथा भौतिक, रासायनिक एवं जैविक स्थिति में सुधार के लिए जब हरे तथा बिना सड़े पौधों के किसी भाग या संपूर्ण पौधे को खेत में पलटकर सड़ा दिया जाता है तो इसे हरी खाद देना ही कहते हैं। हरी खाद के लिए कई फसलों का तो प्रयोग करते ही आप, ढांचा के अतिरिक्त सनई का भी प्रयोग कर सकते हैं, यह भी बेहतर होती है। वैसे जो जायद में मूंग या उड़द बोई गई है उसको भी आप खेत में पलटकर हरी खाद बना सकते हैं।
0: जायद में हरी खाद उत्पादन, इस विषय पर खेती किसानी कार्यक्रम के अंतर्गत अभी हमें जानकारी दे रहे थे डॉक्टर नागेंद्र सिंह रघुवंशी। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब समाप्त।

0: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। और श्रोताओं, अब प्रस्तुत है सुविचार। आज का सुविचार है धर्म की शरण।
1: धर्म को परिभाषित करना कठिन कार्य है। इसको समझना समुद्र में अनाड़ी की भांति तलहटी में पहुंचने जैसा है। विश्व इसी लघु शब्द के कारण नाव की तरह टकमगा रहा है। इसका अर्थ यह हुआ कि धर्म एक शक्तिपुंज है। इस ढाई अक्षर के अर्थ में मानवता उलझ गई है। तभी तो अधर्म सभी जगह शीर्ष में दिखता है। अन्याय अत्याचार का बोलबाला, भ्रष्टाचार शिष्टाचार का गुरु बनने का प्रयास कर रहा है। मानवता कोने में सिसक रही है और दानवता उच्च पदों पर झूठा आमोद बना रही है। मैं एक दिन एक संत के श्री चरणों के पास ही बैठा था। दोनों शांत थे। गंदा नाला गंगा में मिलने का प्रयास करता है, तभी श्रीमुख खुला। ईश्वर न्याय नहीं करता, इतना कहकर भी चुप हो गए। मन को एक झटका सा लगा। प्राण ने चेतना से पूछा, जिनकी सभी वासनाएं शांत हैं, आत्मा आत्मा में रमण कर रही है, आनंद सागर जिनको ओत प्रोत किए है, जिनकी ये वाणी कि ईश्वर न्याय नहीं करता, काफी समय तक संत महाराज मौन रहे। मेरा मन उत्तर सुनने को आतुर था। मैं पुनः सोच में डूब गया। चतुर्दिश अन्याय का राज्य है। मानवता दानवता की गुलाम बनी हुई है। शिक्षा ने विद्या का स्थान ले लिया है। परमार्थ पुस्तकों में बंद है, जिसको धीरे धीरे दीमक खाकर समाप्त कर रही है। ऐसे में भगवान की तरफ ही तो न्याय की आशा है। मेरे मन की अकुलाहट को पढ़कर उनकी वाणी खुली। ईश्वर न्याय नहीं दया करता है। अगर वो न्याय करे तो हमें दंड ही देगा। अपराधी को न्यायाधीश दंड ही देता है, ना कि पुरस्कार। जीव रात दिन अपराध ही करता है, परंतु परमात्मा दया बरसाकर उसका उद्धार ही करता है। धर्म धारणा का विषय है। धर्म वाह आडंबर और प्रदर्शन की स्थिति नहीं है। मन बुद्धि चिंता अहंकार के कारण शरीर की यात्रा में सारथी बनकर धर्म सर्वोच्च सत्ता अथवा आनंद सत्ता में विलय कराकर स्वयं विलीन हो जाता है, वही धर्म है। वास्तविक रूप में धर्म बाहर तभी दर्शित होता है जब अंदर से उसकी झांकी बाहर झलकने लगे। सद्गुणी और पवित्रता का अंकुरण अंतःकरण में फूटने लगे, तभी धर्म दया प्रेम कर्तव्य भावना में समाहित होकर दूसरों को सुख संतुष्टि की अनुभूति कराता है। वस्तुतः धर्म उन्माद का यही कारण प्रतीत होता है कि धर्म का प्रवेश अंदर नहीं हो पाता। बाहर मात्र उसका स्वांग सा प्रतीत होता है। अंतःकरण में सत्य का नहीं बल्कि मोह और लोभ का राज्य रहता है। यही व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन में उथल पुथल का मुख्य कारण है। धर्म में सृजन है, विनाश नहीं। धर्म में दया है, क्रूरता नहीं। धर्म में शांति है, अशांति नहीं। धर्म में क्षमा है, पशुता नहीं। धर्म धारणा की प्रथम शिक्षा परिवार से ही मिलती है। धर्म की अंतःकरण की यात्रा सद्गुरु के चरणों में बैठकर प्रारंभ की जाती है। जीव जहाँ से आया है वहाँ पहुँचा देने वाली सत्ता का नाम गुरु है। जीव परमात्मा का पुत्र है। शिष्य इन्हीं सद्गुरु के चरणों को पकड़कर बैठ जाता है, तभी धर्म का रहस्य खुलना शुरू हो जाता है। यही चरण कमल तीनों शरीरों पंचकोशों की यात्रा कराते हुए सच्चिदानंद के सागर में विलय करा देते हैं। फिर न धर्म का पता रहता है, न धारण करने वाले का। केवल एक तत्व शेष रहता है, वो है आनंद। हिंदू मंदिर में दीपक, मुस्लिम मस्जिद में अगरबत्ती, ईसाई गिरजाघर में मोमबत्ती और पारसी अग्नि जला करके ईश्वर की आराधना करते हैं। भाव यह है कि सभी एक परम तत्व की साधना में रत हैं। इसका अर्थ यह है कि परमात्मा ज्योति स्वरूप, प्रकाश स्वरूप और चैतन्य स्वरूप हैं। आइए ऐसे धर्म की शरण में चलें। धर्मम शरणम गच्छामि।
0: राकेश खरे के स्वर में धर्म की शरण, ये था आज का सुविचार। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रही हैं आकाशवाणी लखनऊ। सुबह की 6:15 हुए हैं।

हे माँ, हम अज्ञानियों को आपकी अपार ममता का अभी तक कोई ज्ञान ही नहीं था। हम तो यूं ही प्रेम और ममता की खोज में भटकते रहे हैं। अब तो मेरी यही लगन है कि अपनी माता की भक्ति में लीन हो जाऊं, उनकी ममता को पालूं।

प्रभु श्री कृष्ण जिनको मीरा मन ही मन अपना पति मान चुकी हैं, उनके जीवन में प्रभु के सिवा और कोई नहीं। हर समय उन्हीं की पूजा करती, उन्हीं की आस्था में अपना समय व्यतीत करती मीरा प्रभु के मनमोहक रूप का गुणगान करते हुए कुछ यूं अपनी बात उनसे कहती हैं कि हे प्रभु, चाहे सारा संसार मेरा साथ छोड़ दे, परंतु आप मेरा साथ मत छोड़ना। आपके सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है।

हे प्रभु, हमारा जीवन तो बहते पानी के समान है। अगर रास्ते में किसी को शीतलता दे पाएं तो हमारा सौभाग्य होगा। आइए अपने जीवन को जनहित के काम में लगा दें, क्योंकि जो समय व्यर्थ चला जाता है वो तो कभी वापस लौट कर नहीं आता ना।

हे भोलेनाथ, आपकी महिमा अपरंपार है, आपकी माया अपरंपार है, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं। हे प्रभु, आपको अपने मन मंदिर में बसाकर पूजा करना है।

माता वैष्णवी की ममता हम सभी भक्तों पर है। माता की ममतामयी छाया में आकर हमारे सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। तो आइए जपते हैं माता का पावन नाम और दूर करें अपने सारे कष्ट।

हम सभी पर ईश्वर की कृपा यूं ही बनी रहे और हम सभी का दिन सकारात्मक ऊर्जा से भरा हो, इसी शुभेच्छा के साथ आज का भक्तिमय कार्यक्रम आराधना यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। तो श्रोताओं, अब प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस से आज का संगीतमय पाठ।

माता कैकेयी की कठोरता तथा कुटिलता की भर्त्सना करके भी भरत के हृदय में सुलगती आग शांत नहीं हुई। उधर क्रोधाग्नि में जलते शत्रुघ्न के सामने मंथरा जो आई तो उन्होंने एक लात जमा कर उसकी कुबड़ फोड़ डाली और झूठी पकड़कर उसे घसीटने लगे थे कि स्वभाव से दयालु भरत ने छुड़ाकर उसके प्राणों की रक्षा की। भरत और शत्रुघ्न माता कौशल्या के समक्ष उपस्थित हैं। दिवंगत पिता तथा वनवासी राम लक्ष्मण और सीता को देखने के लिए बिलखते भरत को माता कौशल्या धीर गंभीर भाव से सांत्वना दे रही हैं। पिता के वचन की रक्षा के लिए राम ने राजसी वस्त्राभूषण त्याग कर वलकल धारण किया। ऐसा करते उन्हें न तो विषाद हुआ और न ही हर्ष। मन में न आसक्ति थी न क्रोध। सबके संतोष के लिए जब वे वन को चले तो सीता भी उनके पीछे चल पड़ी। अग्रज के वनगमन का समाचार सुनकर

0: ए हरिहरन और वाणी जयराम की स्वरों में ये था आज का रामचरितमानस का संगीतमय प्रसंग। संगीत संयोजन सतीश भाटिया का था।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। सुबह के 6:55 होने को हैं। अब से बस थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से रिले संस्कृत समाचार।
3: भारती

0: श्रोताओं, हमारी दिनचर्या और हमारी रोज़मर्रा की इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना कितना ज़रूरी है, ये रोज़ हम आपको बताते हैं हमारे स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत। और आज के इस कार्यक्रम में नीना सोनकर हमें बताने जा रही हैं स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक अनार के बारे में। आइए सुनते हैं।
1: श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं नीना सोनकर और स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूं। श्रोताओं, हमारा आज का विषय है एक ऐसा फल जिसे न केवल अपने खूबसूरत रंग और अनोखे स्वाद के लिए जाना जाता है बल्कि इसके स्वास्थ्य लाभ भी इसे खास बनाते हैं। ये है अनार। अनार को अक्सर फलों का रत्न कहा जाता है और ये नाम इसके पोषण और गुणों की वजह से ही मिला है। इसके छोटे छोटे लाल दाने न केवल खाने में स्वादिष्ट होते हैं बल्कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अनमोल हैं। अनार का सेवन भारत में प्राचीन काल से ही औषधीय गुणों के लिए किया जाता रहा है। ये आयुर्वेद में एक ऐसी औषधि मानी जाती है जो खून बढ़ाने और शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में मदद करती है। अनार में मौजूद आयरन खून की कमी को दूर करने का सबसे सरल और प्राकृतिक उपाय है। ये हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाता है और एनीमिया जैसी समस्याओं को दूर करता है। खास तौर पर महिलाओं और बच्चों के लिए अनार बेहद फायदेमंद है। पाचन तंत्र के लिए भी अनार बहुत उपयोगी है। इसमें मौजूद फाइबर पाचन को बेहतर बनाता है और कब्ज जैसी समस्याओं को दूर करता है। अनार का रस पेट की जलन को शांत करता है और गैस्ट्रिक समस्याओं से राहत दिलाता है। जिन लोगों को पाचन संबंधी समस्याएं होती हैं उनके लिए अनार एक वरदान की तरह है। अनार का एक और बड़ा लाभ है इसकी इम्यूनिटी को मजबूत करने की क्षमता। इसमें विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स प्रचुर मात्रा में होते हैं जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। अनार का नियमित सेवन सर्दी, खांसी और फ्लू जैसी बीमारियों से बचाव करता है। ये शरीर को विषाक्त पदार्थों से मुक्त करता है और कोशिकाओं को स्वस्थ बनाए रखता है। अनार का दिल के स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ये रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करता है और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को संतुलित बनाए रखता है। इसमें मौजूद पॉलीफेनॉल्स और फ्लेवोनॉइड्स दिल की मांसपेशियों को मजबूत करते हैं और हृदय को स्वस्थ रखते हैं। दिल के दौरे और स्ट्रोक के खतरे को कम करने के लिए अनार का सेवन एक बेहतरीन विकल्प है। त्वचा के लिए अनार किसी जादू से कम नहीं है। ये त्वचा को नमी और पोषण प्रदान करता है। अनार का रस त्वचा को साफ और चमकदार बनाता है। ये झुर्रियों को कम करता है और उम्र बढ़ने के लक्षणों को धीमा

0: हालांकि अनार का सेवन संतुलित मात्रा में करना चाहिए। अत्यधिक मात्रा में इसका सेवन कुछ लोगों को पेट में भारीपन महसूस करा सकता है, लेकिन सही मात्रा में इसका उपयोग आपके शरीर के लिए अनगिनत लाभ प्रदान कर सकता है। श्रोताओं, अनार केवल एक फल नहीं है, ये प्रकृति का एक अनमोल तोहफा है। इसके छोटे छोटे दाने सेहत, स्वाद और ताजगी का संगम है। इसे अपने दैनिक आहार का हिस्सा बनाएं और इसके गुणकारी लाभों का आनंद उठाइए। कल फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नीना सोनकर को दीजिए अनुमति। सभी को नमस्कार।
1: स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक अनार, इसके बारे में स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत अभी हमें जानकारी दे रही थी नीना सोनकर। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र, धड़कन देश की। और श्रोताओं, अब आइए डालते हैं एक नजर आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों पर। संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आप सुन सकते हैं रात्रि 10 बजे से, और रात्रि 9:30 का समय रहेगा राष्ट्रीय पत्रिका कार्यक्रम युवा भारती का। ये दोनों ही कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। न्यूज बुलेटिन विश्व दर्पण का अनुप्रसारण

हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। न्यूज बुलेटिन विश्व दर्पण का अनुप्रसारण समय रहेगा सुबह 10:10 का। जिले की हलचल आप सुन सकते हैं सुबह 9:15 से। इसमें आज आप सुनेंगे संत कबीर नगर और झांसी जिलों की हलचल। सुबह 9:30 का वक्त होगा उर्दू कार्यक्रम का। आज की पेशकश होगी आकाशवाणी लखनऊ के मरकज से, जिसमें आज उर्दू अदब में जदीद अफसाना निगारी गुफ्तगु होगी और आज के मेहमान होंगे अतिया बी और समुनदेशिती होगी सैयद मोहम्मद उमेर की। आज सुबह नमस्कार लखनऊ का ये खास प्रोग्राम हम लेकर हाजिर होंगे सुबह 7:31 से। विश्व आलू दिवस, इस विषय पर विविधा प्रोग्राम में सुबह 7:10 से आपके साथ होंगी सीमा शाही। विज्ञान और किसान, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे दोपहर 2:30 से, जिसमें आज आप सुनेंगे सनई ढेंचा की उन्नत खेती, इस विषय पर डॉक्टर देवेश पाठक की भेंट वार्ता, भेंट करता होंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। लोकगीतों के लोकमाधुरी कार्यक्रम में आज दोपहर 2:40 से आज आप आनंद लेंगे सीमा वर्मा एवं डॉक्टर विजय लक्ष्मी के युगल स्वरों में गाए अवधी लोकगीतों का। और इसी कार्यक्रम में कार्यक्रम लोकरंग के अंतर्गत सुबह 9:50 पर आप सुनेंगे इन्हीं लोक गायिकाओं को। खेल युवा तरंग, युवा साथियों का ये दैनिक कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 5:10 से, जिसमें आज की बात क्रम के अंतर्गत आज चर्चा होगी विश्व आलू दिवस पर।

नई उड़ान कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा शाम 5:45 का, जिसमें आज विकास समाचार के साथ साथ विमर्श क्रम में आज आशीष जानकारी देंगे व्यवसाय योजना के लिए लक्ष्य निर्धारण उद्यमी अनुभव इस विषय पर। लोक आयतन ये कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 6:30 से, जिसमें आज चर्चा होगी बिजली की बचत और बढ़त के बारे में, साथ ही साथ विश्व आलू दिवस के ऊपर भी चर्चा होगी इसी कार्यक्रम में।

कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, फरमाइशी फिल्मी गीतों पर आधारित ये फोन इन कार्यक्रम हम लेकर हाजिर होंगे दिन में 11 बजे से शाम 6:50 पर। खेती किसानी कार्यक्रम के अंतर्गत आज हमारे किसान भाई सुनेंगे गन्ने की फसल में समन्वित कीट प्रबंधन विषय पर डॉक्टर सुजीत प्रताप सिंह की भेंट वार्ता, और इस विषय पर आपसे भेंट करेंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। साथ ही प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के बारे में चर्चा भी होगी हमारे इसी कार्यक्रम में। शाम अवध में फिल्मी गीतों का लुत्फ आप उठाएंगे 7:43 से। रात्रि 8:10 से कार्यक्रम सुगम संगीत के अंतर्गत आज आप आनंद लेंगे स्वाति रिजवी की गाई गजलों का। तो ये थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। श्रोताओं नमस्कार। लखनऊ के इस खास सेगमेंट में अब पेश है विविधा। नमस्कार। लखनऊ के इस खास सेगमेंट में आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन, आभार। विविधा ये खास प्रोग्राम लेकर आज हाजिर हूँ मैं सीमा शाही। तो दोस्तों आज हम

0: एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे दैनिक जीवन, हमारे भोजन, हमारे किसानों और हमारी खाद्य सुरक्षा से गहराई से जुड़ा हुआ है। विषय है विश्व आलू दिवस।
1: ना तुम हो यार आलू,

0: दोस्तों, हर वर्ष 30 मई को विश्व आलू दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है लोगों को आलू जैसी महत्वपूर्ण खाद्य फसल के महत्व, उसके पोषण मूल्य और कृषि क्षेत्र में उसके योगदान के प्रति जागरूक करना है।
1: तुम हो यार आलू, ना हम है यार गोभी।
0: दिखने में एकदम साधारण सा आलू वास्तव में मानव जीवन के लिए अत्यंत ही उपयोगी फसल है। दुनिया के लगभग हर देश में इसका उपयोग किसी न किसी रूप में किया ही जाता है। जी हाँ, भारत में तो आलू लगभग हर रसोई का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। चाहे सब्जी हो, पराठा हो, चाट हो, पकौड़ी हो या फिर कोई अन्य व्यंजन, आलू हर स्वाद में आसानी से घुल मिल जाता है।
2: आलू की भाजी, बैंगन का भर

आलू सिर्फ स्वाद ही नहीं बढ़ाता बल्कि शरीर को आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, पोटेशियम, विटामिन सी और कई आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं और यही कारण है कि इसे एक पौष्टिक और उपयोगी खाद्य पदार्थ माना जाता है। दोस्तों, आलू को गरीबों का मित्र भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये कम लागत में अधिक पोषण देने वाली फसल है। जी हाँ, ये आसानी से उपलब्ध हो जाने वाली फसल है और हर वर्ग के लोग इसे अपने भोजन में शामिल करते हैं। यही वजह है कि दुनिया भर में इसकी मांग लगातार बढ़ती जा रही है और आलू हर रसोई घर में मिल ही जाता है।

और दोस्तों आपको बता दें कि भारत विश्व के सबसे बड़े आलू उत्पादक देशों में से एक माना जाता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और पंजाब जैसे राज्यों में बड़े स्तर पर इसकी खेती की जाती है। ये फसल केवल भोजन का साधन ही नहीं बल्कि लाखों किसानों की आजीविका का आधार भी है। आज के समय में जब दुनिया खाद्य संकट, महंगाई और पोषण संबंधी चुनौतियों का सामना कर रही है, तब आलू जैसी फसलें लोगों को सस्ता और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यही कारण है कि कृषि वैज्ञानिक भी आलू उत्पादन को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। दोस्तों हमें ये समझना चाहिए कि खेतों में पैदा होने वाला हर अन्न किसानों के लिए मेहनत और प्रकृति के आशीर्वाद का परिणाम होता है। जब हम भोजन की बर्बादी करते हैं तब हम केवल अन्न ही नहीं बल्कि किसानों की मेहनत और प्रकृति के संसाधनों का भी अनादर करते हैं। आज आधुनिक जीवन शैली में लोग फास्ट फूड और बाहरी खान पान की ओर अधिक आकर्षित हो रहे हैं, लेकिन फिर भी आलू अपनी लोकप्रियता बनाए हुए है। उन खान पान का भी हिस्सा है आलू जो हम बाहर खाते हैं या फिर अपने घर में बनाते हैं। छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर वर्ग के लोगों के भोजन में आलू किसी न किसी रूप में अवश्य शामिल रहता है। ये उसकी उपयोगिता और महत्व को दर्शाता है।

आलू जैसी फसलें केवल भोजन ही नहीं देती बल्कि समाज की खाद्य सुरक्षा को भी मजबूत बनाती है। दोस्तों, हमें अपने किसानों का सम्मान करना चाहिए और कृषि के महत्व को समझना चाहिए। यदि किसान समृद्ध होंगे तभी देश मजबूत और आत्मनिर्भर बनेगा। साथ ही हमें पौष्टिक भोजन अपनाने और भोजन की बर्बादी रोकने का भी संकल्प लेना चाहिए। अंत में बस चलते चलते इतना ही कहना चाहूंगी कि अन्न केवल भोजन नहीं बल्कि जीवन का आधार है और किसान केवल अन्नदाता नहीं बल्कि राष्ट्र की समृद्धि के सच्चे निर्माता हैं। आइए हम सभी कृषि किसानों और पौष्टिक भोजन के महत्व को समझें और स्वस्थ और जागरूक समाज के निर्माण में अपना योगदान दें। इसी प्रेरणादायक विचार के साथ आज के कार्यक्रम विविधा से सीमा शाही को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे नमस्कार लखनऊ का ये खास प्रोग्राम विविधा। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। अब से बस थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे गोरखपुर केंद्र से रिले प्रादेशिक समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: चलिए सुबह का पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
1: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर।
0: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
0: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
1: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
0: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मऊ में 392 करोड़ रुपए से अधिक की 114 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, गांवों के विकास से साकार होगा विकसित भारत का सपना। 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए

0: टीईटी पास करना अनिवार्य। सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला, शिक्षकों के लिए टीईटी पास करने की समय सीमा एक वर्ष और बढ़ी। कल दो पालियों में आयोजित की जाएगी बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा। 72 जिलों में बनाए गए 1000 से अधिक परीक्षा केंद्र। हाईटेक कमांड कंट्रोल रूम से होगी परीक्षा केंद्र की निगरानी। और प्रदेश में आंधी तूफान से जनजीवन प्रभावित, मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के कई हिस्सों में तेज हवाओं के बीच बारिश और बिजली गिरने की जारी की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल मऊ में 392 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 114 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अच्छी सरकार विकास लेकर आती है। यह विकास बिना भेदभाव नागरिकों के जीवन स्तर को उठाने का माध्यम होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में देश की बागडोर सौंपी तो सभी ने 12 वर्ष में बदलते भारत को देखा। श्री योगी ने बताया कि प्रदेश में 10 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत व मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मऊ से विभिन्न शहरों की कनेक्टिविटी बेहतर हो गई है।
1: मऊ जनपद फिर से एक नई विकास की यात्रा में आगे बढ़ा है।
2: इस विकास यात्रा के 100 यात्री आपके सामने हैं।
1: कोई सोचता था कि गोरखपुर से वाराणसी का मार्ग 4 लेन का होगा? कोई सोचता था कि मऊ से लखनऊ की दूरी अब मात्र 3 घंटे की हो जाएगी? तो यहाँ आपके लिए प्रदेश की राजधानी इतनी नजदीक हो गई, गोरखपुर नजदीक हो गया, काशी नजदीक हो गया, प्रयागराज की दूरी घट गई, इतनी अच्छी कनेक्टिविटी।
0: मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक, चाबी, लैपटॉप, स्वीकृति पत्र आदि देकर सम्मानित किया। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने मऊ के ताजोपुर में ग्रामीण सैनिक हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान दिए गए पंच प्रण का भी उल्लेख किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना गांवों के विकास से ही साकार होगा।
3: गांव स्वावलंबी होंगे तो आत्मनिर्भरता की इकाई हम गठित कर पाएंगे। ग्रामीण आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को आगे बढ़ने के सामयिक प्रयास है और यही तो प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के सामने कहा था, विकसित भारत की संकल्पना। भारत विकसित होगा तब जब प्रदेश विकसित होगा, प्रदेश विकसित होगा तब जब जनपद विकसित होगा, और जनपद विकसित तब होगा जब गाँव विकसित होंगे।
0: सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने कल कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। उन्होंने कहा कि जमानत आवेदनों पर आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। पीठ ने कहा कि जमानत या सजा निलंबन का आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद जेल अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी पास करना अनिवार्य होगा। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने टीईटी को लेकर दायर पुनर्विचार याचिकाओं को कल खारिज करते हुए कहा कि टीईटी केवल औपचारिक परीक्षा नहीं बल्कि प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में टीईटी पास करने की समय सीमा को 2 वर्ष से बढ़ाकर अब 3 वर्ष कर दिया है। अब शिक्षकों को 31 अगस्त 2028 तक टीईटी पास करना होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायालय की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के 2 सप्ताह में होगी। उधर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पेपर लीक की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। डीडी न्यूज को दिए एक विशेष साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनर्परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के संपन्न की जाएगी।
4: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने री नीट की घोषणा किया है, री नीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो।

0: ये अभी हमारा दायित्व है, इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। BEd संयुक्त प्रवेश परीक्षा कल दो पालियों में आयोजित होगी। पहली पाली सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर बाद 2 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। परीक्षा के लिए प्रदेश के 72 जिलों में 1011 केंद्र बनाए गए हैं, जहां करीब 4.5 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा और निगरानी के विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। BEd संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आयोजन करने वाले बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मुकेश पांडे के अनुसार, परीक्षा को पूरी शुचिता और पारदर्शिता के साथ संपन्न कराने के लिए हाईटेक कमांड कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों को पर्याप्त बीज उपलब्ध कराने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया गया है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने उर्वरक वितरण में पारदर्शिता, कालाबाजारी की रोकथाम तथा किसानों को उचित आपूर्ति सुनिश्चित करने पर बल दिया। कृषि मंत्री ने बताया कि देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 376 करोड़ टन से अधिक हो गया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और ऊर्जा बचाने की अपील की।
2: सरकार सभी घरों तक LPG सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें।
1: इस बीच पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक ओपेश कुमार शर्मा ने बताया है कि 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ वाणिज्यिक पोत निसोस कोरोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल गया है। प्रदेश में बीते गुरुवार की रात से मौसम में आए परिवर्तन से जनजीवन प्रभावित हुआ है। तेज आंधी तूफान, बारिश और आकाशीय बिजली से कई जिलों में जनधन की हानि हुई है। कल शाम आगरा में आंधी और तेज बारिश के चलते एक महिला सहित 2 लोगों की मौत हो गई और कुछ अन्य लोग घायल हो गए, जबकि गुरुवार देर रात शिवालिक पहाड़ियों में हुई तेज बारिश के बाद अचानक आए पानी के बहाव से सहारनपुर के सिद्धपीठ माता शाकंभरी देवी क्षेत्र में कई वाहन बह गए। हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए शाकंभरी देवी मंदिर प्रबंधन ने कल तक मंदिर में दर्शन पूरी तरह बंद कर दिए हैं। आंधी पानी से हुए नुकसान को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारियों को तत्काल फील्ड में जाकर सर्वे और राहत राशि शीघ्र जारी करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने, अनावश्यक यात्रा से बचने और प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में आज और कल तेज हवाओं के बीच बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मऊ में 392 करोड़ रुपए से अधिक की 114 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, गांवों के विकास से साकार होगा विकसित भारत का सपना। 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए TET पास करना अनिवार्य। सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला, शिक्षकों के लिए TET पास करने की समय सीमा 1 वर्ष और बढ़ी। कल 2 पालियों में आयोजित की जाएगी BEd संयुक्त प्रवेश परीक्षा। 72 जिलों में बनाए गए 1,000 से अधिक परीक्षा केंद्र। हाईटेक कमांड कंट्रोल रूम से होगी परीक्षा केंद्र की निगरानी। और प्रदेश में आंधी तूफान से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के कई हिस्सों में तेज हवाओं के बीच बारिश और बिजली गिरने की जारी की चेतावनी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से

0: थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
2: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
3: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। सुबह के 7:31 हुए हैं। अब से बस थोड़ी देर में हम लेकर हाजिर होंगे ज्ञान, मनोरंजन और महत्वपूर्ण जानकारियों से भरा कार्यक्रम आज सुबह।

0: आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण आप सुन रहे हैं हमारी केंद्र से, और ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं न्यूज़ ऑन AIR ऐप और DTH के माध्यम से भी। और आज सुबह कार्यक्रम हम लेकर हाजिर होते हैं हर मंगलवार और शनिवार सुबह 7:31 से। तो आइए शुरू करते हैं नमस्कार लखनऊ का ये खास प्रोग्राम आज सुबह। नमस्कार श्रोताओं, नई सुबह की सुनहरी किरणों और ताजी उम्मीदों के साथ आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का विशेष कार्यक्रम आज सुबह। और आज इस कार्यक्रम को लेकर हाजिर हूँ मैं सीमा शाही।
1: जी हाँ, और आपके साथ मैं भी हूँ लवी सिन्हा। स्वीकार करें हम दोनों का
0: नमस्कार,
1: और साथ ही हम आपका स्वागत करते हैं आपके उस कार्यक्रम में जिसे हम कहते हैं आज सुबह। तो समय हो चुका है सीमा, और जब समय हो चुका होता है तो हम अपने काम को आगे बढ़ाते हैं, और काम के आगे बढ़ने के साथ ही हमारे जो उद्देश्य होता है हमारे काम का उसको भी बताते हैं, और कैसे हम शुरुआत करते हैं आइए जानते हैं कार्यक्रम में।
0: बिल्कुल, देखिए लवी, हर नया दिन अपने साथ कुछ नया सीखने, जानने और समझने का अवसर लेकर आती है ना, और इसी उद्देश्य के साथ अगले कुछ समय तक हम रहेंगे आपके साथ, बात करेंगे विशेष दिवसों की, इतिहास की, रोचक घटनाओं की, मौसम के हाल की, और साथ ही सुनेंगे आपके पसंद के प्यारे प्यारे गीत।
1: जी, तो अब प्यारा सा गीत आप कह रही हैं, तो हमें लगता है कि पहले सुविचार हो जाए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो आइए सकारात्मक सोच और मीठी सी मुस्कान के साथ शुरुआत करते हैं आज की सुहानी प्रस्तुति की, और शुरुआत करते हैं एक सुविचार से। तो आज का सुविचार है, अन्य का सम्मान और किसान का आदर एक समृद्ध समाज की पहचान है। वास्तव में देखिए ना लवी, हमारे जीवन का आधार अन्न ही तो है ना, और अन्नदाता किसान हमारे समाज की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है ना।
1: जी बिल्कुल, और सिर्फ यही नहीं, हमें इसका आधार ये भी समझना है कि जो अन्न उगाया जाता है उस धरती माता की कोख से निकला हुआ जो अन्न है वो कितना कीमती होता है, और उस पर परिश्रम करने वाला जो हमारा कृषक है वो भी बहुत ही मेहनत करता है। तो हर एक अन्न के महत्ता को समझना चाहिए, और साथ ही उसकी कीमत को न सिर्फ समझना चाहिए बल्कि सम्मान भी देना चाहिए, यानी कि अन्न की बर्बादी ना होने पाए इसका खास ख्याल रखना चाहिए।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, देखिए हमें भोजन की महत्ता को तो समझना ही चाहिए, उसकी बर्बादी से भी बिल्कुल बचना चाहिए, है ना।
1: जी,
0: तो चलिए कार्यक्रम तो शुरू हो चुका है लवी, तो मैं सोच रही हूँ कि अपने श्रोताओं को एक गीत से, मधुर गीत से उनका मन मोह ले।
1: जी बिल्कुल, क्योंकि मुझे भी बहुत

0: जी हाँ, ये जो फिल्म है, मुझे कुछ तुमसे है कहना इस गीत के लिए, जो फिल्म है ये है हद कर दी आपने, और ये एक काफ़ी लोकप्रिय गीत है सन 2000 में आई फिल्म का, जो कि आनंद राज आनंद ने इसको संगीतबद्ध किया और रुद्र नारायण और विभा शर्मा ने अपनी आवाज़ दी।
1: बिल्कुल, अभी हमें भी अपने श्रोताओं से बहुत कुछ कहना है ना
0: जी, और जब बात कही जाए कहना

0: चाहिए तो फिर शुरू कर दिया जाए, इंतजार किस बात का।
1: बिल्कुल, हम तो बैठे ही हैं कहने सुनने के लिए, क्यों।
0: जी हाँ, और देखिए ना, आज बहुत सारे महत्वपूर्ण दिवस हैं, कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, तो जब बातें होती हैं आज की महत्ता की, आज की महत्वपूर्ण बातों की, तो क्यों ना हम शुरुआत करते हैं आज के उस दिन की, यानी कि आज जो खास बात है वो है विश्व मल्टीपल स्क्लेरोसिस दिवस की।
1: जी जी, और आपको बता दें कि इसका उद्देश्य लोगों को तंत्रिका तंत्र से जुड़ी गंभीर बीमारी के प्रति जागरूक करना है। और लवी, देखिए आज विश्व मल्टीपल स्क्लेरोसिस दिवस के उपलक्ष में ही इससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में भी हम अपने श्रोताओं को सुनवाएंगे।
0: जी, तो आइए सुनते हैं।
1: बिल्कुल, हम अपने श्रोताओं के लिए लेकर आए हैं, आइए सुनते हैं इस संबंध में KGMU के डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी के प्रोफेसर डॉक्टर नीरज कुमार से ये विशेष वार्ता। प्रस्तुत करता है डॉक्टर रमनप्रीत सिंह।

आकाशवाणी सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नीरज कुमार, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी, किंग जॉर्जेस मेडिकल यूनिवर्सिटी से आज आपके समक्ष मल्टीपल स्क्लेरोसिस नामक बीमारी के संबंध में आपसे बात करने के लिए आया हूँ। मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या है? मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक ऑटोइम्यून बीमारी है जिसमें कि दिमाग की जो नसें होती हैं उनमें हमारे ही जो प्रतिरोधक सेल्स होते हैं जो हमारी शरीर को इम्यूनिटी देते हैं वो हमारे ही ब्रेन के सेल्स को न्यूरॉन्स को डैमेज करने लगते हैं। इस बीमारी के जो लक्षण हैं उसे पहचानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर किसी मरीज को आँखों की रोशनी में अचानक कमी आ जाए, एक आँख या दोनों आँखों में, या किसी मरीज को हाथ या पैर में लकवे जैसे संभावना आ रही है, सिम्टम्स आ रहे हैं, या हाथ या पैर दोनों ही कमज़ोर हो जाएं जिससे कि मरीज बिस्तर पे हो जाए, पेशाब से संबंधित समस्या आ जाए, अचानक बोलने में लड़खड़ाहट या चक्कर जैसा आना, जो कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस बीमारी के लक्षण हो सकते हैं।

0: बार बार इसका प्रभाव पड़ेगा और जितनी बार इसका अटैक आएगा उतना ही डैमेज आगे बढ़ता चला जाएगा। अब ये बीमारी ऐसी है जिसमें इलाज भी करना ज़रूरी है, इलाज में पैसे भी खर्च होते हैं और जांचों में भी खर्च होते हैं और बीमारी भी लंबे समय तक चलने वाली है, तो कहीं ना कहीं मरीज के संबंधित लोगों को, परिवार वालों को फाइनेंशियल भी इसका बर्डन होता है और बीमारी से मानसिक तनाव भी होता है। इस बीमारी को अगर हम लोग देखें तो हमें एक सपोर्ट, फाइनेंशियल और सोशल सपोर्ट की भी इसमें ज़रूरत रहेगी, जिसमें मरीज को उचित देखभाल मिलता रहे। ये बीमारी का अलग से एक क्लिनिक चलती भी है न्यूरोलॉजी विभाग में, जिसमें भी मरीज देख के और इलाज से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस बीमारी पे विजय पाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उसका सही समय पे जांच हो और निरंतर इलाज हो। चूँकि ये बीमारी ऐसी है जिसमें लंबे समय तक इलाज होता है और मरीज के दिमाग पे ही इसका डैमेज होता है, तो कई बार मरीज डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, तनाव में रहते हैं, उनके दिमाग में तरह तरह के प्रश्न आते हैं कि वो सही हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो इसमें जब ज़रूरत पड़ती है तो साइकेट्रिस्ट की भी मदद ली जाती है, मरीज को भी काउंसिल किया जाता है, परिवार वालों का सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है और जहाँ तक हो सकता है फाइनेंशियल सपोर्ट भी सरकार द्वारा, अस्पताल द्वारा भी दिया जाता है। तो बीमारी पे विजय पाने के लिए, बीमारी को सही से समझने के लिए और उसका इलाज करने के लिए एक मानसिक सहयोग भी प्रदान करने की अत्यंत आवश्यकता रहती है, जो कि मरीज के सही होने में एक मुख्य भूमिका निभाती है। आप सभी श्रोताओं को मेरा धन्यवाद।
1: तो श्रोताओं, देखिए, विश्व मल्टीपल स्क्लेरोसिस इस विषय पर अभी हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी KGMU डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी के प्रोफेसर डॉक्टर नीरज कुमार जी ने। प्रस्तुतकर्ता थी रमनप्रीत सिंह।
2: जी हाँ, बिल्कुल। और सीमा, हमें लगता है कि हम बहुत सारी जो समस्याएं हैं, बहुत सारी जो हमारी मानसिक परेशानियां भी होती हैं और मानसिक बीमारियां होती हैं, तो इसके लिए हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और हमेशा सावधानी भी बरतना चाहिए, क्योंकि हम इसको पहचानने के लिए बस इसके लक्षण पर ही इसको पहचान सकते हैं। और बहुत ही अच्छी जानकारी तो आपने सुनवाई ही, साथ ही साथ अब हम बात करेंगे आज के उस महत्वपूर्ण दिवस के और भी बातों की। तो चलिए हम महत्वपूर्ण बातों की ओर चलते हैं और जानते हैं आज की ताज़ा खबर।
1: जी, ताज़ा खबर।

0: जी हाँ, आज की ताज़ा खबर लेकर के आ गए हैं। और ताज़ा खबर में देखिए, जब बात करते हैं ताज़ा खबर देने वाला जो हमारा न्यूज़पेपर जो होता है, ये बहुत ही ख़ास होता है सुबह के साथ, और साथ ही साथ हाँ आज सुबह भी आपका है जो आपको ताज़ा खबर भी देता है, और साथ ही हमारी आकाशवाणी में जो ताज़ा खबर आपको समाचार के माध्यम से भी पहुँचते हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी हुआ करता था जब समाचार पत्र काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए ताज़ा खबर का एक ज़रिया हुआ करते थे, है ना। और 30 मई एक यादगार दिन हुआ करता है जो भारत में हर साल हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन 1826 में पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने देश के पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन शुरू किया था, और नाम उदंत मार्तंड का अर्थ है उगता हुआ सूर्य। और जानती है सीमा, ये उदंत मार्तंड हर मंगलवार को प्रकाशित होता था, और इसका उद्देश्य हिंदी भाषी आबादी को समाचार पहुंचाना था। कितनी खास बात थी, सोचिए 1826 की बात है ये, है ना। और उस वक्त इतना ख्याल रखना जरूरी होता था क्योंकि हम सभी गुलामी की जंजीरों में घिरे हुए थे।
1: बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हिंदी पत्रकारिता के योगदान को आज के दिन ही याद किया जाता है, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने हमें बताई लवी। तो आगे बढ़ते हैं, और एक और दिवस हमारे बीच देखिए हम आपको बताना चाहेंगे कि आज है विश्व आलू दिवस भी।
0: ओके।
1: और ये दिवस देखिए आलू जैसी महत्वपूर्ण खाद्य फसल के महत्व को समझाने

0: लोगों को उसके पोषण और कृषि में योगदान के प्रति जागरूक करने के लिए मनाया जाता है ना।
1: जी बिल्कुल, और हमें लगता है ना कि आलू तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे बच्चों के लिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये एक ऐसा सस्ता और आसान माध्यम है, इतना इतना अच्छी फसल है ये कि ये हर जगह उपलब्ध हो जाती है, चाहे चाट फुल्की हो, चाहे रसोई घर हो, चाहे बाहर हो, है ना। हर जगह मिल जाता है ये
1: जी।
0: देखिए और कहते हैं कि भारत विश्व के प्रमुख आलू उत्पादक देशों में शामिल है, हमारे लाखों किसान इस फसल में जुड़े इससे जुड़े हुए हैं और उनकी आजीविका का ये महत्वपूर्ण साधन भी है। क्यों, सही कहा?
1: जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और हमें लगता है कि आजीविका का साधन है और साथ ही साथ ये बहुत ही महत्वपूर्ण फसल भी हो चुकी है, और इसमें जाहिर सी बात है कि भारत भी काफ़ी आगे है, अग्रणी देश हो चुका है।
0: बिल्कुल,
1: और साथ ही साथ तभी हम कह सकते हैं ना कि आलू हमारे बच्चों के टिफिन का भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान ले चुका है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और जब बात आलू की है, फसलों की है, और फसलों के साथ साथ जब मौसम के हिसाब से फसलों का उत्पादन होता है, तो क्यों ना चलिए मौसम की ओर बढ़ते हैं। लेकिन हाँ, जानकारी देते हैं और जानकारी देने के साथ ही साथ आपको सुनवाते हैं ये गीत।

हाँ, ये जो गीत है ये फिल्म जानवर से लिया गया है और ये विशुद्ध रूप से किसी एक शास्त्रीय राग पर आधारित नहीं है। ये एक रोमांटिक सुगम संगीत है जिसे आनंद मिलंद ने संगीतबद्ध किया और इसे मुख्य रूप से इसमें राग यमन और राग पहाड़ी की हल्की झलक मिलती है। इस सदाबहार गाने को अलका याग्निक और मनहर उदास ने अपनी आवाज़ दी है।

0: बिल्कुल, मौसम तो बदल रहा है। और चलिए अब रुक कर दिलते हिल लेते हैं मौसम की ओर ही, क्योंकि गर्मी का मौसम तो अपने पूरे प्रभाव में है और लोगों की नज़र मौसम की ताज़ा जानकारी पर बनी रहती है। तो आइए जानते हैं आज के मौसम का हाल भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश जी से।
1: गुड मॉर्निंग।
2: आज सुबह कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: गुड मॉर्निंग।
2: तो सर, हमारे श्रोता बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि लखनऊ और उसके आसपास हमारे क्षेत्रों में आज का कैसा रहने वाला है मौसम का हाल, हमारे श्रोताओं को प्लीज बताएं।
1: जी, मौसम की बात करें तो आज भी मौसम काफी खुशनुमा रहेगा। खुशनुमा हवाएं चलेंगी और बीच बीच में हल्की बूंदाबांदी का असर आज भी देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर कहे तो आज और कल थोड़ा हल्की बूंदाबांदी का असर रहेगा, मौसम खुशनुमा रहेगा। बाकी परसों से धीरे धीरे फिर हल्के हल्के तापमान में बढ़ोतरी आएगी। तो कुल मिला के आज और कल दो दिन हमको बचाव रखने की आवश्यकता है।
2: जी जी दानिश जी, यानी कि बढ़ते पारे के बीच थोड़ी सी बूंदों की ठंडक रहेगी, है ना?
1: जी बिल्कुल, अभी बीच में तेज हवाएं गरज चमक के साथ और बिजली गिरने की भी संभावना है आज।

0: बिल्कुल बिल्कुल, पूरी सावधानी हमारे श्रोताओं को रखनी पड़ेगी। और दानी जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी हमारे श्रोताओं को। कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: तो देखिए लवी, ये थी मौसम की जानकारी। मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, वरिष्ठ वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में।
3: जी, और देखिए कार्यक्रम में आगे बढ़ने की बात है तो हम ये भी बताना चाहेंगे कि आज कौन से दिवस है।
2: क्योंकि देखिए इतिहास के पन्नों को जब टटोले तो हर दिन देखिए कोई रोचक जानकारी किसी रोचक सफर से हर दिन जुड़ा होता है। तो आपको बता दें कि 1987 में गोवा को भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था और ये दर्जा मिलने के बाद गोवा भारत का 25वां राज्य बना और इसके विकास को नई गति मिली, है ना
3: जी। और सन 2012 में विश्वनाथन आनंद 5वीं बार विश्व शतरंज चैंपियन बने। और साथ ही साथ अगली जानकारी,
2: और देखिए 1919 में लवी प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार और पत्रकार अज्ञेय का जन्म हुआ था। और आपको बता दें कि अज्ञेय जी ने हिंदी साहित्य को आधुनिक सोच और नई अभिव्यक्ति प्रदान की थी। उनकी रचनाएं आज भी साहित्य जगत में एक विशेष स्थान रखती हैं, ना
3: जी। बिल्कुल, और यादगार भी है। और इसी के साथ ही बता दें कि आज ही के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गहन प्रदर्शन के रूप में रविन्द्रनाथ टैगोर ने 30 मई यानी कि आज के दिन सन 1919 को अपनी नाइटहुड की उपाधि का त्याग किया था। नोबेल पुरस्कार विजेता के इस कदम ने भारतीय जनता के साथ गहरा जुड़ाव पैदा किया जो औपनिवेशिक अत्याचारों के खिलाफ सामूहिक अंतरात्मा और प्रतिरोध का प्रतीक था।
2: बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी जानकारी दी लवी जी। क्योंकि देखिए इतिहास में हर कुछ नए चीज़ें जुड़ी होती हैं। तो चलिए इसी के साथ और आगे बढ़ते हैं और आप काफ़ी सारी जानकारियाँ और लेकर आएंगे।
3: जी हाँ, जानकारियाँ तो देखी है ही कि क्योंकि हमारे जो शहर में जो गतिविधियाँ होती रहती हैं हमें उसका भी ख्याल रखना होता है क्योंकि उसी के हिसाब से हम उसमें शामिल हो सकते हैं। और देखिए आज जो हमारे शहर लखनऊ की बात है तो सत्यम साहित्य संस्था गोमती नगर की ओर से पुस्तक लोकार्पण समारोह यूपी प्रेस क्लब में 3:30 से आप इसमें शामिल हो सकते हैं और जा सकते हैं। यूपी प्रेस क्लब स्थान है। और साथ ही साथ जो अगला है ये कार्यक्रम, ये है खैराबाद फाउंडेशन की ओर से सदा इजिया ए सूफी नाइट उर्दू अकादमी सभागार में आयोजित किया जा रहा है। वक्त होगा शाम 6 बजे का। और अखिल भारतीय हिंदी पत्रकार संघ एवं रंग भारती के तत्वाधान में हिंदी पत्रकारिता दिवस की 200वीं वर्षगांठ पर समारोह आयोजित हो रहा है। स्थान है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान हजरतगंज में शाम 6 बजे से।
2: बिल्कुल बिल्कुल, तो श्रोताओं आप भी शामिल हों और इन गतिविधियों पर नज़र रखें। आपने सुन लिया हमने जो बताया आपको, इसमें ध्यान में रखें इसको। और देखिए लवी, समय तो बहुत तेज़ी से बीत रहा है तो चलते हैं, अब चलने का भी समय हो गया, लेकिन उससे पहले एक प्यारे से गीत सुना दें।
3: जी बिल्कुल, और देखिए गीत इसलिए भी सुनना ज़रूरी है क्योंकि हमारी जो मन है मन मस्तिष्क को ताज़ा कर देता है। तो आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले गीत के साथ जो कि मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में है और इस गीत को राग जौनपुरी पर आधारित है जो कि असावरी थाट से संबंधित है। और इस गीत को कवि नीरज ने लिखा है, फिल्म कन्यादान का ये गीत है। आपको इस गीत के साथ छोड़े जाते हैं लेकिन साथ ही साथ कार्यक्रम में आप सबसे लेते हैं इजाजत। तो अब लवि सिन्हा और
2: सीमा शाही को दीजिए इजाजत। नमस्कार,
4: लिखे जो

अभी आप सुन रहे थे नमस्कार लखनऊ का ये खास प्रोग्राम आज सुबह। इसी के साथ नमस्कार लखनऊ का ये सेगमेंट अब समाप्त होता है। मीडियम वेव के मीटर पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण और सुबह के 8 बजने को हैं। अब हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा समाचार प्रभात, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए तेल कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार दर्शाए गए हैं। अस्पतालों में प्रसव बढ़कर 90.6% हो गए हैं। म्यांमा के राष्ट्रपति मिन आंग हलाइंग 5 दिवसीय यात्रा पर आज भारत आएंगे। मौसम विभाग ने आज देश के कई राज्यों में तेज बारिश और गरज के साथ तूफान आने का पूर्वानुमान लगाया। हांगकांग में आयोजित 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरे दिन 4 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
5: Regarding the efforts of the government to keep the price stable, is Bharat Sarkar ne excise duty kam ki. So these all efforts have been done to keep the price stable. We are working on the strategic reserves also. Oil marketing companies ko work out karne ke liye kaha hai ki LPG ka jo reserve hai, that should be minimum 30 days with them. And they are working on it. And similarly for crude also we are working.
4: संयुक्त सचिव ने कहा कि सरकार रणनीतिक भंडारों के माध्यम से ईंधन सुरक्षा मजबूत करने और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि किसी भी एलपीजी वितरण केंद्र पर आपूर्ति की कमी की कोई सूचना नहीं है।
6: सरकार सभी घरों तक एलपीजी सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें। बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स से अपील है कि वो ऑथराइज्ड प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें।
4: विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास भारतीय नागरिकों को समय पर सहायता प्रदान कर रहे हैं। श्री महाजन ने कहा कि प्रभावित क्षेत्र से भारत के विभिन्न क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त उड़ानें संचालित की जा रही हैं। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने कहा कि कच्चे तेल का टैंकर व्यापारिक पोत निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल चुका है। इसके 3 जून को विशाखापट्टनम पहुंचने की संभावना है। उन्होंने कहा कि इस पोत पर लगभग 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चा तेल भारत आ रहा है। श्री शर्मा ने कहा कि क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 6ठे चरण के आंकड़े कल जारी कर दिए। इसके अनुसार मातृ और शिशु स्वास्थ्य पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा में भारत ने तीव्र प्रगति की है। सर्वेक्षण के अनुसार संस्थागत प्रसव 88.6% से बढ़कर 90.6% हो गए हैं। सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत की कुल प्रजनन दर 2 पर बनी हुई है। सर्वेक्षण के अनुसार 12 से 23 महीने के बच्चों के टीकाकरण का आंकड़ा लगातार 96% से अधिक बना हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि ये सुधार मिशन परिवार विकास सहित राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रमों के निरंतर प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। सर्वेक्षण के अनुसार महिलाओं के डिजिटल समावेशन और वित्तीय सशक्तिकरण में निरंतर प्रगति

0: ती हुई है। इसमें कहा गया है कि इंटरनेट का उपयोग करने वाली महिलाओं की संख्या लगभग दोगुनी होकर 64.3% पर पहुंच गई है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि आयुष्मान भारत और विस्तारित स्वास्थ्य सुरक्षा पहलों ने स्वास्थ्य सेवा में वित्तीय सुरक्षा मजबूत की है। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग 5 दिन की भारत यात्रा पर आज पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग हलाइंग की ये पहली भारत यात्रा होगी। गया में म्यांमार के राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। वे आज बाद में नई दिल्ली पहुंचेंगे। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। म्यांमार के राष्ट्रपति की कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में भाग लेने की संभावना है। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। कल नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच बैठक के दौरान म्यांमार और भारत के बीच आपसी संबंधों से जुड़े सभी पहलुओं पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत म्यांमार के राष्ट्रपति का स्वागत करने के लिए उत्सुक है।
1: म्यांमार के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात

0: राष्ट्रपति का स्वागत करने के लिए उत्सुक है।
1: म्यांमार के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता इन संबंधों को और मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। इस यात्रा का एक व्यापारिक पहलू भी है, जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। ये एक आधिकारिक यात्रा है।
2: दिस इज ऑफिशियल विजिट एंड वी लुक फॉरवर्ड टू वेलकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार।
0: इस यात्रा के अंतर्गत म्यांमार के राष्ट्रपति व्यापार और उद्योग जगत से संबंधित वार्ताओं और शहर के विभिन्न स्थलों पर भ्रमण के लिए 2 जून को मुंबई भी जाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के तरीकों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार सीमा सुरक्षा बल को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार कर रही है। श्री शाह ने कल गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर 2 नई सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरह से बदलने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने एक चतुर्भुजीय सुरक्षा ग्रिड की स्थापना की घोषणा की।
3: BSF की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्ण तया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और BSF के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी ही रहे। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। महाधिवक्ता तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि सरकार युवाओं के लिए चिंतित है और ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि आगे ऐसी कोई चूक न हो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। पंजाब नगर निकाय चुनावों में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने 8 नगर निगमों, 75 नगर परिषदों और 19 नगर पंचायतों के 1977 वार्ड में से 958 वार्ड जीत लिए हैं। कांग्रेस को 397, शिरोमणि अकाली दल SAD को 192 और भाजपा को 172 वार्ड में जीत हासिल हुई है। बहुजन समाज पार्टी को केवल 7 वार्ड मिले। निर्दलीय उम्मीदवारों ने 251 वार्ड जीतकर तीसरा

0: लोकार्पण, पुरस्कार वितरण और नागरिक कल्याण से जुड़ी विभिन्न पहलों की शुरुआत भी की जाएगी। इसके बाद उपराष्ट्रपति गोवा स्थित CSIR राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का दौरा करेंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारेक्काल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज बहुत तेज बारिश की आशंका जताई है। विभाग ने हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में ओलावृष्टि की भी आशंका व्यक्त की है। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस की टीम प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच गई है। न्यू चंडीगढ़ में कल दूसरे क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु के बीच फाइनल कल अहमदाबाद में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। हांगकांग में चल रही एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए अब तक कुल 8 पदक अपने नाम किए। इनमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत तालिका में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। कल प्रतियोगिता के दूसरे दिन भारतीय एथलीटों ने 4 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो रहा है। 1 महीने तक चलने वाले निर्वाचन आयोग की यह प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
2: धन्यवाद कनक। नीट UG पेपर लीक मामले में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी आज के अनेक अखबारों की पहली सुर्खी है। अमर उजाला ने सर्वोच्च न्यायालय का बयान दिया है, जवाबदेही तय होने तक नहीं रुकेंगे पेपर लीक मामले। देशबंधु और नवभारत टाइम्स ने CBSE की 12वीं की आंसर शीट भी डिजीलॉकर में भेजे जाने की जानकारी दी है। पत्र लिखता है, यहीं से करा सकेंगे रिवैल्यूएशन। शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पास करने की अनिवार्यता से छूट देने का सर्वोच्च न्यायालय का इंकार भी अनेक अखबारों में है। अमर उजाला लिखता है, समय सीमा 1 साल बढ़ी। दैनिक जागरण ने भी इस खबर को प्रकाशित किया है। पत्र ने न्यायालय के हवाले से लिखा है, सरकारी शिक्षकों को सेवा में बने रहने के लिए TET पास करना ही होगा। जनसत्ता ने कर्नाटक में कांग्रेस की बैठक आज होने का समाचार देते हुए लिखा है, DK शिवकुमार को चुना जाएगा नेता। पंजाब केसरी ने सिद्धारमैया की सिद्धि शीर्षक से अपने संपादकीय में लिखा है, कर्नाटक में जितनी शालीनता और शांति के साथ कांग्रेस पार्टी के भीतर नेतृत्व परिवर्तन हुआ है, उसे भारतीय लोकतंत्र की जीवंत ताकत कहा जा सकता है। दैनिक जागरण ने घरेलू उड़ानों में कटौती से हवाई किराया 30% तक बढ़ने का समाचार दिया है। मौसम विभाग की चेतावनी भी कई अखबारों में है। अमर उजाला लिखता है, अटका मॉनसून, 7 दिन के बाद देगा दस्तक, 10% कम होगी बारिश। राजस्थान पत्रिका की टिप्पणी है, बेवफा मॉनसून। दैनिक भास्कर लिखता है, इस साल सूखे का खतरा, हालांकि पत्र ने बिहार, झारखंड, बंगाल और उत्तर पूर्व में अच्छी बारिश की संभावना व्यक्त की है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए तेल कंपनियों को 30 दिन का LPG भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार दर्शाए गए हैं। अस्पतालों में प्रसव बढ़कर 90.6% हो गए हैं। म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग हलाइंग 5 दिवसीय यात्रा पर आज भारत आएंगे। मौसम विभाग ने आज देश के कई राज्यों में तेज बारिश और गरज के साथ तूफान आने का पूर्वानुमान लगाया और IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Naresh Mago. The headlines. Center asks oil marketing companies to build 30 days LPG reserves as West Asia conflict persists. National Family Health Survey shows major gains in maternal and child health. Institutional deliveries rise to 90.6%. Myanmar President Min Aung Hlaing to arrive in India this morning on a 5-day visit. IMD forecasts heavy rainfall and thunderstorms.

0: म्यांमार के सदर मिन ऑंग लैंग भारत के 5 रोजा दौरे के पहले मरहले में आज बिहार में बोधगया पहुंचेंगे। भारत के महकमे मौसमियात ने आज मुल्क की बहुत सी रियासतों में मूसलाधार बारिश और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की पेशगोई की है। हांगकांग में 20 साल तक की उम्र की एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट्स का बोलबाला रहा। उन्होंने दूसरे दिन सोने के 2 तमगों समेत 7 तमगे जीते हैं। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा कर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ फाइनल मैच खेलने को यकीनी बना दिया है। अब खबरें तफसील से। हुकूमत ने सरकारी शोबे की तेल मार्केटिंग कंपनियों से कहा है कि वो एलपीजी के जखीरे कम से कम 30 दिन के लिए कायम करें, क्योंकि मगरबी एशिया में महाजराई से तवानाई की आलमी सप्लाई में बार बार रुकावट आ रही है। पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत में ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने यह बात मगरबी एशिया महाजराई के बारे में बैन वजारती प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कल नामनिगारों से बात करते हुए कही। सप्लाई में रुकावट की रोकथाम से मुतालिक एहतियाती इकदाम का जिक्र करते हुए मोहतरमा शर्मा ने कहा कि भारत खाम तेल को जखीरा करने की गुंजाइश में इजाफे के लिए भी काम कर रहा है। मोहतरमा शर्मा ने कहा कि हुकूमत अहम जखीरों और बिला रुकावट सप्लाई को यकीनी बनाकर ईंधन की यकीनी फराहमी को मुस्तहकम बनाने पर भी काम कर रही है। इसके अलावा जखीरा अंदोजी की रोकथाम के लिए भी इकदाम किए जा रहे हैं। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत ने खानदानी सेहत का 6ठा कौमी जायजा जारी किया है, जिसमें आदाद शुमार से माँ और बच्चे की सेहत, तगजिए और माली तहफ़ के मैदान में भारत की खातिर खा तरक्की का पता चलता है। ये जायजा कल जारी किया गया, जिससे ये बात खास तौर पर पता चली है कि इदारों में की गई जजगी में जो पहले 88.6% थी, इजाफा होकर 90.6% हो गई है। एक तफसीली रिपोर्ट।
1: आदाद व शुमार से पता चला है कि 95.9% हामला खवातीन को जच्ची के बाद की निगहदाश्त मिलती है, जबकि माओं को पहली सेमाही में मिलने वाली जच्ची के बाद की निगहदाश्त में भी इजाफा हुआ है। पहले ये 70% थी, जबकि अब ये 76.2% हो गई है। जायजे में कहा गया है कि भारत में खवातीन के हामला होने की मजमू शरह TFR 2% बरकरार है और बच्चों की टीकाकारी से खानदानी मनसूबाबंदी के कौमी प्रोग्रामों के असरात की अहमियत जाहिर होती है, जिसमें मिशन परिवार विकास भी शामिल है। जायजे में खवातीन की डिजिटल शमूलियत और माली तफवीज अख्तियारात के मैदान में लगातार पेशरफ भी जाहिर की गई है। यह भी कहा गया है कि जिन खवातीन ने कभी न कभी इंटरनेट इस्तेमाल किया है, उनकी तादाद तकरीबन 2 गुना हो गई है। पहले ये 33.3% थी, जबकि अब ये तादाद 64.3% हो गई है। सर्वे में बताया गया है कि आयुष्मान भारत, PMJAY और हिफ्जान सेहत के तोसी शुदा इकदाम से हिफ्जान सेहत में सबके लिए पैसे की यकीनी फराहमी का इस्तेहकाम पैदा हुआ है। वजारत ने बताया कि इस दरियाफ्त से तरक्याती मकासद हासिल करने की राह में भारत लगातार तरक्की कर रहा है। स्वाति रखेजा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
0: म्यांमार के सदर मिन होंग यांग भारत के 5 रोजा दौरे पर आज सुबह बिहार के बोधगया पहुंचेंगे। उनके हमरा एक आला सतह का वफद भी होगा, जो बहुत से काबीना वजीरों, सीनियर अफसरों और सरकर्दा ताजिरों पर मुश्तमिल होगा। सदर मिन का उनकी मौजूदा हैसियत से भारत का यह पहला दौरा है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: म्यांमार के सदर यू मिन ऑंग ह्यांग बोधगया में महात्मा बोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। आज बाद में वो नई दिल्ली पहुंचेंगे, यहां वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर से मुलाकात करेंगे। उम्मीद है कि कल वो म्यांमार भारत तिहाती फोरम में शिरकत करेंगे। पीर को वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ दोनों मुल्कों के दरमियान तारीखी और तहजीबी रिश्तों को मजीद मुस्तहकम बनाने पर तबादला ख्याल करेंगे। नई दिल्ली में नामनिगारों से बात करते हुए दाते खारजा के तर्जमान रणजीत जायसवाल ने कहा कि उन सभी मामलात पर जो म्यांमार और भारत के दरमियान बहुत से पहलुओं पर मबनी ताल्लुकात का हिस्सा है, दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात के दौरान तबादला ख्याल किया जाएगा।
2: म्यांमार के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता इन संबंधों को और मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। इस यात्रा का एक व्यापारिक पहलू भी है, जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। ये एक आधिकारिक यात्रा है।
3: दिस इज ऑफिशियल विजिट एंड वी लुक फॉरवर्ड टू वेलकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार।
1: दौरे के हिस्से के तौर पर म्यांमार के सदर 2 जून को मुंबई जाएंगे, जिसका मकसद ताजिरों और सनतकारों से बातचीत करना और मौकों का दौरा करना है। हमारे नामनिगार ने बताया

ये गीत आप सुन रही हैं अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में। गीत के बोल लिखे हैं समीर ने, संगीत है आनंद मिलिंद का और फिल्म है दिल।

अभी आप सुन रही थी दिल फिल्म का गीत अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ में। इस गीत की फरमाइश का मेल हमें आया था गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से। लिखने वाले हमारे श्रोतागण थे राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा। और इसी गीत की फरमाइश का मेल हमें भेजा है शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार आप सबने। तो श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपके मेल आपके गीत कार्यक्रम, और कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं आप ही की पसंद के प्यारे प्यारे गीत। तो हमें मेल करने के लिए हमारा ईमेल आईडी नोट करें आपके मेल आपके गीत @gmail.com। तो चलिए हम लेते हैं अपना अगला मेल और आपको सुनवाते हैं आप ही की पसंद के प्यारे प्यारे गीत। तो चलिए पहले आपको सुनवा देते हैं ये गीत, फिर बताते हैं कि किसने इस गीत की फरमाइश की।

जी हाँ, चेहरा क्या देखती हो दिल में उतर कर देखो ना। जी हाँ, सलामी फिल्म का ये गीत विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा, आशीष विश्वकर्मा। तो आपने सुनना चाहा था सलामी फिल्म का ये गीत और हम आपको सुनवा चुके हैं ये गीत। तो चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं अपना अगला मेल, जो कि हमें लिखा है नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से। महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी ने। तो चलिए आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत, जो कि है लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीत फिल्म से ये गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, इंदिवर का लिखा हुआ। आइए सुनते हैं।

0: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
1: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।
2: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल, आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
3: श्रोताओं, आपके मेल और आपके गीत कार्यक्रम प्रसारित किया जा रहा है आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। तो जल्दी से करें हमें मेल और सुनें अपने फरमाइशी फिल्म गीत। तो चलिए करते हैं अगला मेल शामिल अपने कार्यक्रम में, और ये मेल हमें भेजा है नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक, मोहम्मद उमर डावर और राजेंद्र कटारे ने। और इसी गीत की फरमाइश का ये मेल हमें आया है भाटापारा छत्तीस

छत्तीसगढ़ से भी, जो हमें लिखा है सोहन जोशी ने, पायल जोशी ने और इनके सभी परिवारकरों ने। तो आइए आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद पर दाग द फायर फिल्म का ये गीत, जिसे गाया है अनुराधा पौडवाल ने। गीत के बोल लिखे हैं समीर ने, संगीत राजेश रोशन का और आवाज़ है अनुराधा पौडवाल की।

श्रोताओं, आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से आप सुन रहे हैं आपके मेल आपके गीत कार्यक्रम। और कार्यक्रम में आइए अगला मेल शामिल करते हैं ग्राम कुरियारपुर सांडी हरदोई उत्तर प्रदेश से आया हुआ। इसे लिखने वाले हमारे श्रोतागण हैं मुदित राजपूत, विजेंद्र पाल राजपूत, अनवी राजपूत, सुनीता राजपूत, शोभा राजपूत, दीपा राजपूत, राम फेरे राजपूत, कपिल राजपूत, प्रांजल, रमा, श्याम सुंदर और इनके सभी साथी गणोरी। तो चलिए आपको सुनवाते हैं आपकी फरमाइश पर ये गीत, जिसे गाया है आशा भोसले और कुमार सानू ने।

0: दिल का क्या कसूर। इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले और कुमार सानू की आवाज में। गीत के बोल लिखे थे मदन पाल ने और संगीत नदीम श्रवण का था। इसी के साथ आपके मेल आपके गीत कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। अब प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए संत कबीर नगर और झांसी जिले की हलचल।
1: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए संत कबीरनगर और झांसी जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं संत कबीरनगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अजय कुमार श्रीवास्तव का।
2: संत कबीरनगर जिलाधिकारी आलोक कुमार ने बीते दिनों कलेक्ट्रेट परिसर में बुजुर्गों के सम्मान की एक नई मिसाल पेश की। ट्रेजरी कार्यालय के निकट नवनिर्मित पेंशनर कक्ष का उद्घाटन जिलाधिकारी ने जनपद की सबसे बुजुर्ग पेंशनर 95 वर्षीय दुलारी देवी से फीता कटवाकर कराया। इस अवसर पर जिलाधिकारी आलोक कुमार ने दुलारी देवी को पुष्पगुच्छ और अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। जिलाधिकारी ने कहा कि इस कक्ष के बनने से अब पेंशनर को कलेक्ट्रेट आने पर बैठने और आराम करने की बेहतर सुविधा मिलेगी। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी जयकेश त्रिपाठी, वरिष्ठ कोषाधिकारी त्रिभुवन लाल और पेंशनर संघ के अध्यक्ष सुभाष चंद्र यादव सहित कई सदस्य मौजूद रहे। प्रशासन की संवेदनशीलता की सभी पेंशनर ने सराहना की है। संत कबीर नगर जनपद की प्रभारी मंत्री और प्रदेश की राज्य मंत्री ग्राम विकास एवं समग्र ग्राम विकास ग्रामीण अभियंत्रण विभाग श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम ने बीते दिनों खैलाबाद स्थित डाक बंगले में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विपक्ष पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संसद में महिलाओं के अधिकार संबंधी बिल पेश किए जाने के दौरान राहुल गांधी और इंडी गठबंधन के नेताओं ने जिस तरह की टिप्पणी की और मजाक उड़ाया वह देश की आधी आबादी के लिए एक काला दिन था। उन्होंने कहा कि विपक्षी गठबंधन ने महिलाओं के अधिकारों को संसद में छीनने का प्रयास किया है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश और देश की महिलाएं जन आक्रोश के साथ वोट की शक्ति का इस्तेमाल कर इस गठबंधन को खदेड़ने का काम करेंगी। संत कबीरनगर जिलाधिकारी आलोक कुमार ने तहसील खैलाबाद के ग्राम पंचायत पटखौली में रवि वर्ष 2025-26 के तहत गेहूं की फसल की क्रॉप कटिंग का औचक निरीक्षण किया। यह निरीक्षण सीसी ऐप के माध्यम से डिजिटल रूप में सम्पन्न हुआ। डीएम की मौजूदगी

0: चयनित किसान शैलेश कुमार के गाटा के दायरे में फसल की कटाई कराई गई, जिसमें कुल 19.700 किलोग्राम प्लाट उपज प्राप्त हुई। इस आधार पर क्षेत्र में गेहूं की औसत पैदावार 45.50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर अनुमानित की गई। संत कबीर नगर कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी आलोक कुमार की अध्यक्षता और मुख्य विकास अधिकारी जयकेश त्रिपाठी की उपस्थिति में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपायुक्त उद्योग राजकुमार शर्मा ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जनपद को 1600 का लक्ष्य मिला है, जिसे बैंकों को भेज दिया गया है। जिलाधिकारी ने सभी बैंकर्स और जिला समन्वयकों को सख्त निर्देश दिए हैं कि बैंकों में लंबित ऋण आवेदनों को निपटारा 1 सप्ताह के भीतर सुनिश्चित किया जाए। साथ ही लीड बैंक मैनेजर पवन कुमार को उद्योग विभाग की योजनाओं का लगातार फॉलोअप करने के निर्देश दिए गए। संत कबीरनगर जिले के जिलाधिकारी आलोक कुमार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की समीक्षा बैठक की। वर्ष 2026-27 के लिए जिले को मिले 1600 के लक्ष्य को बैंकों को भेजते हुए डीएम ने लंबित ऋण आवेदनों को 1 सप्ताह में निपटाने के कड़े निर्देश दिए। इस दौरान बेहतर कार्य करने वाले अग्रणी जिला प्रबंधक पवन कुमार सिन्हा, क्षेत्रीय प्रबंधक विजय प्रसाद और युवा उद्यमियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। पुलिस अधीक्षक संत कबीर नगर संदीप कुमार मीना द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन्स परिसर में निर्माणाधीन आधुनिक जिम एवं गेस्ट हाउस का निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने कार्यदायी संस्था को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि निर्माण कार्य में उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री का ही उपयोग किया जाए और मानकों से किसी भी प्रकार का समझौता न हो। उन्होंने सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए, ताकि पुलिसकर्मियों को जल्द ही इसका लाभ मिल सके। इसके साथ ही उन्होंने जिम में आधुनिक फिटनेस उपकरण उपलब्ध कराने का, गेस्ट हाउस में बेहतर वेंटिलेशन, स्वच्छता और भविष्य के लिए रख रखाव आज को लेकर भी आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। संत कबीर नगर जनपद में कानून व्यवस्था और जेल की सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखने के उद्देश्य से जिलाधिकारी आलोक कुमार व पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना द्वारा संयुक्त रूप से जिला कारागार का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान दोनों अधिकारियों ने जेल परिसर के भीतर सुरक्षा व्यवस्थाओं को परखा और जेल अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान बैरक, मेस और पूरे जेल परिसर की सघन चेकिंग की गई, जिसके बाद अधिकारियों ने कैदियों से सीधे वार्ता कर उनकी समस्याओं और मिलने वाली सुविधाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी ली। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने ड्यूटी पर मौजूद सभी कारागार कर्मियों को सख्त हिदायत दी कि जेल के अंदर किसी भी परिस्थिति में कोई भी प्रतिबंधित सामग्री नहीं जानी चाहिए और सभी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी पारदर्शिता व सही तरीके से करें। साथ ही जेल परिसर की साफ सफाई को लेकर भी विशेष निर्देश दिए गए। औचक निरीक्षण के बाद जिला कारागार में कैदियों के हुनर और सुधार की दिशा में एक नया कदम बढ़ाते हुए नवनिर्मित बेकरी का फीता काटकर भव्य उद्घाटन भी किया गया। इस पूरे निरीक्षण उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान जेल अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक PRO PK गुप्ता सहित अन्य जेल अधिकारी और भारी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद रहे।
1: संत कबीरनगर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं झांसी जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विकास कुमार का।
2: झांसी में मई के महीने में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचने पर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में दिखाई दिया। जिलाधिकारी के निर्देश पर स्कूल और खेल अकेडमी के समय में बदलाव किया गया। खुले मैदान में दोपहर के समय खेल गतिविधियों पर रोक लगाई गई तथा बच्चों और बुजुर्गों को अनावश्यक रूप से बाहर न निकलने की सलाह दी गई। नगर निगम द्वारा प्रमुख चौराहों पर प्याऊ शीतल जल केंद्र और छायादार शेड लगाए गए। प्रदेश के कई शहरों की तरह झांसी में भी गर्मी से राहत के लिए सार्वजनिक व्यवस्थाओं को मजबूत करने पर जोर दिया गया। उधर स्वास्थ्य विभाग ने लू से बचाव के लिए विशेष हेल्पलाइन और चिकित्सा व्यवस्था सक्रिय रखी। जिला अस्पताल में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में हीट स्ट्रोक वार्ड तैयार किए गए। ग्रामीण क्षेत्रों में आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया गया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश को निवेश का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र में विशेषकर झांसी को औद्योगिक और ऊर्जा हब के रूप में विकसित करने की योजनाओं को गति मिली। झांसी सोलर पार्क परियोजना तथा ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े प्रस्तावों पर कार्य आगे बढ़ा। शासन स्तर पर रोजगार और औद्योगिक विकास को लेकर लगातार समीक्षा बैठकों का दौर जारी रहा। झांसी मंडल में सड़क और रेल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए प्रयास भी जारी रहे। राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण, ग्रामीण संपर्क मार्गों की मरम्मत तथा शहर के यातायात प्रबंधन को लेकर कई योजनाओं पर काम तेज हुआ। शहर में ट्रैफिक सुधार और अतिक्रमण हटाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। नगर निगम द्वारा स्वच्छता अभियान को और गति दी गई। वार्ड स्तर पर सफाई निरीक्षण किए गए तथा खुले में कूड़ा फेंकने वालों पर जुर्माने की कार्यवाही हुई। शहर के प्रमुख बाजारों और सार्वजनिक स्थलों पर साफ सफाई को लेकर विशेष अभियान चलाया गया। जल संकट से निपटने के लिए प्रशासन ने ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति की निगरानी बढ़ाई। कई गांवों में टैंकरों के माध्यम से जल आपूर्ति की गई। खराब हैंडपंपों की मरम्मत तथा पाइपलाइन लीकेज दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। जल संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान भी चलाया गया। शिक्षा विभाग की बात करें तो

0: ग्रीष्मकालीन अवकाश से पहले विद्यालयों में सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी दिशा निर्देश जारी किए गए। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा नामांकन अभियान को गति दी गई ताकि नए शैक्षिक सत्र में अधिक से अधिक बच्चों को स्कूल से जोड़ा जा सके। कृषि क्षेत्र में किसानों को गर्मी और सूखे की स्थिति से बचाने के लिए कृषि विभाग ने सलाह जारी की। किसानों को कम से कम पानी वाली फसलें, सिंचाई प्रबंधन और पशुओं की सुरक्षा के लिए जागरूक किया गया। कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। जिले में जल संरक्षण और तालाब पुनर्जीवन अभियान को लेकर प्रशासन सक्रिय दिखाई दिया। मनरेगा के अंतर्गत तालाबों की सफाई और ग्रामीण जल संरचनाओं के संरक्षण का कार्य जारी रहा। महिला सुरक्षा कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन लगातार सक्रिय रहा। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में मिशन शक्ति अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। विद्यालयों और कॉलेजों में महिला हेल्पलाइन और साइबर सुरक्षा संबंधी जानकारी दी गई। साइबर अपराध पर नियंत्रण के लिए साइबर सेल द्वारा लोगों को ऑनलाइन ठगी से बचने की सलाह दी गई। पुलिस ने कई मामलों में कार्रवाई करते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की। धार्मिक और सामाजिक आयोजन को लेकर भी जिला प्रशासन अलर्ट रहा। सार्वजनिक कार्यक्रमों में सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर विशेष प्रबंध किए गए। सोशल मीडिया पर भ्रामक और आपत्तिजनक सामग्री पर निगरानी रखने के निर्देश जारी किए गए। प्रदेश के विभिन्न जिलों में सोशल मीडिया से जुड़े मामलों में पुलिस कार्रवाई भी चर्चा में रही। खेल गतिविधियों की बात करें तो झांसी और बुंदेलखंड क्षेत्र में क्रिकेट, हॉकी और एथलीट प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन जारी रहा। भीषण गर्मी को देखते हुए सुबह के समय अभ्यास कराने की व्यवस्था की गई। खिलाड़ियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए। रेल प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त पेयजल व्यवस्था, साफ सफाई और प्लेटफॉर्म प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया गया। गर्मी के मौसम में यात्रियों को राहत देने के लिए स्टेशन परिसर में सुविधाएं बढ़ाई गईं। स्वास्थ्य विभाग ने संचारी रोग नियंत्रण अभियान की तैयारी भी शुरू कर दी है। बीमारियों से बचाव के लिए फॉगिंग और साफ सफाई अभियान चलाया गया। नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीमें संवेदनशील इलाकों का निरीक्षण कर रही हैं। युवा और रोजगार से जुड़ी योजनाओं में कौशल विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया गया। विभिन्न विभागों द्वारा युवाओं को स्वरोजगार और प्रशिक्षण योजनाओं की जानकारी दी गई। प्रदेश सरकार की निवेश और विकास योजनाओं के तहत बुंदेलखंड को विशेष प्राथमिकता देने की बात दोहराई गई। सड़क, ऊर्जा, सिंचाई और औद्योगिक परियोजना को गति देने पर जोर दिया गया। इस दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासन द्वारा संयुक्त फ्लैग मार्च भी किए गए। संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी रखी गई। गर्मी और जल संकट के बीच पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी कई अभियान चलाए गए।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: जिले की हलचल, अभी आप सुन रहे थे संत कबीर नगर और झांसी जिलों की हलचल। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। अब आइए डालते हैं एक नज़र आज के प्रमुख कार्यक्रमों पर। संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 10 बजे से और रात्रि 9:30 का समय रहेगा राष्ट्रीय पत्रिका कार्यक्रम युवा भारती का। ये दोनों ही कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। न्यूज बुलेटिन विश्व दर्पण का अनुप्रसारण समय रहेगा सुबह 10:10 का।

रात्रि 8 बजे से हम लेकर हाजिर होंगे हिंदी कार्यक्रम, जिसमें आज प्रसारित की जाएगी हिंदी पत्रकारिता का गौरवशाली इतिहास। इस विषय पर सुरेंद्र अग्निहोत्री की वार्ता, वाचन एवं संपादन रहेगा सुरेंद्र राजेश्वरी का। महिलाओं के लिए घर आंगन कार्यक्रम के अंतर्गत आज दोपहर 1:15 से चर्चा होगी विश्व तंबाकू निषेध दिवस और उच्च तापमान और लू से कैसे बचाव करें इस विषय पर। साथ ही साथ महिलाएं कुछ लोकगीतों का भी आनंद उठाएंगी। विज्ञान जगत कार्यक्रम में रात्रि 8 बजे से प्रसारित की जाएगी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग उत्तर प्रदेश।

0: देश के विशेष सचिव रमेश चंद की भेंट वार्ता। विषय रहेगा, कैसे तकनीक और अनुसंधान से संवर रहा है प्रदेश। भेंट करता होंगे प्रवीण कुमार। तो श्रोताओं, ये थी रूपरेखा आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की।
1: अब वक्त है उड़ान का, अब वक्त है पहचान का, अब वक्त है अपने हुनर को आवाज देने का। जुड़िए नई उड़ान से, जहां सपनों को मिलता है आगाज और मेहनत को मिलती है आवाज।
2: तुमने दिया आवाज, लो मैं आ गया।
1: हर शाम 5:45 से 6:15 तक सिर्फ आकाशवाणी लखनऊ पर। नई उड़ान, आगाज हर हुनर का, आवाज हर मेहनत की।
3: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे, होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, युद्ध का ज्ञान रहा न जिन्हें, वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
0: अब आइए सुनते हैं देश गान।

0: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। अब वक्त हो गया है उर्दू कार्यक्रम का। आज की पेशकश आकाशवाणी लखनऊ के मरकज से, जिसमें आइए सुनते हैं उर्दू अदब में जदीद अफसाना निगारी पर गुफ्तगू। आज के मेहमान हैं आतियाबी और समनुदेशिती है सैयद मोहम्मद उमैर की। आइए सुनते हैं।
1: आज की उर्दू बज्म लेकर मैं आपका मेज़बान सैयद मोहम्मद उमैर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आदाब, कबूल फरमाएं। सामीन, उर्दू अदब में अफसाना निगारी एक अहम और मकबूल तरीन सिन्फ़ अदब है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। उर्दू अफसाना अपने आगाज से ही इंसानी जिंदगी के जज्बात, मसाइल, समाजी तगजुरात और तहजीबी अकदार का आईना रहा है, लेकिन वक्त के बदलते तकाजों के साथ साथ अफसाना निगारी में भी नए रुझानात, नई फिक्र और नई असालीब ने जन्म लिया जिसे हम जदीद अफसाना निगारी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, जदीद उर्दू अफसाना सिर्फ वाकयात के बयान तक महदूद नहीं रहा बल्कि इसने इंसान के बातिन, नफसियाती कश्मकश, तन्हाई, बेचैनी, माशरती इंतिशार और बदलती हुई कदरों को बड़ी गहराई के साथ पेश किया। तरक्की पसंद तहरीक के बाद जदीदियत ने अफसाने को एक नई सिमत अता की जहां अलामत, तजरीद, दाखली एहसासात और फिक्री पेचीदगियों को खास अहमियत हासिल रही। वहीं जदीद अफसाना निगारों ने रिवायती किस्सा पन से हटकर इंसानी शोर की तहों को दरियाफ्त करने की कोशिश की। यही वजह है कि जदीद अफसाना महज

0: इस्मत चुगताई ने बहुत से औरतों के ऊपर लिखे, टेढ़ी लकीर इस्मत चुगताई का बहुत अच्छा नामी गिरामी अफसाना है, या कुरतुल ऐन हैदर ने लिखे, रजिया सज्जाद जहीर ने लिखे, इस तरह से मुशर्रफ आलम जौकी ने बड़े अहम अफसाने लिखे हैं, फ्रिज में औरत या बेटी, ये मुशर्रफ आलम जौकी के बहुत ही अहम तरीन अफसानों के नाम हैं।
1: बहुत अच्छा कहा कि जदीद अफसाना निगारी में औरत को एक बाशऊर खुद मुख्तार शख्सियत के तौर पर पेश किया गया है और इसके समाजी घरेलू मसाइल को हकीकत का रूप देकर पेश किया गया है, बयान किया गया है, जिसमें बहुत से अफसाना निगार आपने जिनके नाम लिए काबिले जिक्र हैं। एक सवाल और यहाँ पर करेंगे, आपने शुरू में कौमी यकजहती का हवाला दिया था, कौमी यकजहती के ताल्लुक से करेंगे कि जदीद अफसाना निगारी में कौमी यकजहती और समाजी हम आहंगी के अनासिर किस हद तक मौजूद हैं, इस पर आप क्या कहती हैं?
0: जी हाँ, जदीद अफसाना निगारी में कौमी यकजहती का रंग आपको जा बजा देखने को मिलता है और काफ़ी अफसाने लिखे गए, काफ़ी पहलुओं पे अफसाने लिखे गए और आज से नहीं, मेरे ख्याल से मंटो ने भी लिखे हैं इस पे और रजिया सज्जाद जहीर ने भी लिखे हैं। सभी को पता है कि टॉबर टेक्सिंग बहुत ही मशहूर अफसाना एक रहा मंटो का, और जिसमें उन्होंने एक ऐसा इंसान जो कि पागलपन के उरूज पर पहुँच चुका था और पाकिस्तान की जेल में था, टॉबर टेक्सिंग, और क्योंकि वो नाम उसका टॉबर टेक्सिंग नहीं था लेकिन वो टॉबर टेक्सिंग जगह का रहने वाला था और उसको इतनी ज्यादा उनसियत उस जगह से थी कि वो पागल होने के बावजूद भी अपनी जमीन से इतनी बेपनाह मोहब्बत करता था कि वो हर पागलखाने में आने जाने वाले जो उससे मिलने आता था उससे यही पूछता था कि टॉबर टेक्सिंग कहाँ है। और उसका नाम जो था वो बिशन सिंह था लेकिन उसको लोग जानते टॉबर टेक्सिंग के नाम से ही थे। और आखिर में भी यही होता है कि जब लोगों को ये फैसला आता है कि हिंदुस्तान के जितने भी मुस्लिम पागल हैं वो पाकिस्तान चले जाएंगे और पाकिस्तान के हिंदू पागल हिंदुस्तान लाए जाएंगे, बंटवारे हो चुका होता है, उस वक्त टॉबर टेक्सिंग को जब लाया जाता है तो वो सरहद पे खड़े होकर सिर्फ यही बात कहता है कि टॉबर टेक्सिंग कहाँ है। और जब उसे पता चलता है कि वो पाकिस्तान में है तो वो जाने को हरगिज तैयार नहीं होता, उसे ये मतलब नहीं है कि वो किस जमीन पर है, सिर्फ जमीन पर लकीर खींचने से बंटवारे नहीं होते, कौमी यकजहती का रंग वहीं पर वो खत्म हो जाता है और आधा हिस्सा उसका पाकिस्तान और आधा हिंदुस्तान में रह जाता है। इसी तरीके के बहुत से अफसाने हैं।
1: बहुत अच्छा कह रहे हैं कि जदीद अफसाना निगारी में कौमी यकजहती, भाईचारा और समाजी हम आहंगी के अनासिर नुमाया तौर पर मौजूद हैं और हमें मिलते हैं, जो मुआशरे को मुस्बत पैगाम देते हैं, और इससे अफसाना निगारी ने बहुत अहम तरक्की भी की है। एक और सवाल यहाँ पर करेंगे, आपने बहुत सारे अभी अफसाना निगारों के नाम लिए, तो अहद हाजिर में जदीद अफसाना निगार कारी या सामे के लिए महज तफरी फराम कर रहे हैं या गौर व फिक्र की भी दावत दे रहे हैं अपने अफसानों में, इस पर आप क्या कहती हैं?
0: नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जदीद अफसाना निगारों में आज भी बहुत अहम अफसाना निगारों के नाम आते हैं, जिनमें अभी कुछ दिन पहले गुजरे हुए अफसाना निगारों में रामलाल जी का नाम है, और इस तरह के अभी मौजूदा अफसाना निगारों में आयशा सिद्दीकी साहिबा हैं या सबिया अनवर साहिबा हैं और मोहसिन खान साहब हैं और तमामों दीगर ऐसे अफसाना निगार हैं जो आज भी सिर्फ तफरी का सामान नहीं फराम कर रहे हैं, वो उनके इस्लाह का काम बराबर चल रहा है और वो अपने अफसानों के जरिए उनके में सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं, ख्वाह वो डिजिटली तौर से हो, ख्वाह वो किताबी शक्ल में हो, किसी भी तरीके से हो। अफसाने का मकसद ही यही होता है कि समाज को इस्लाह के दायरे से बाहर नहीं रखना है, इस्लाह दर इस्लाह करते जाना। तो अफसाना निगार जितने भी हैं चाहे कोई भी हो, वो हर वक्त इस्लाह के लिए ही अफसान गए, सिर्फ तफरी का कोई जरिया, क्योंकि तफरी के जरिए में उन पहलुओं को नहीं उजागर किया जाता है जो कहीं समाज में दब के रह गए, जिन पे लोग कभी गौर नहीं करते या लोग उन पे रोशनी डालने का कोई, अरे ये तो बहुत बोरिंग पहलू है, तो बोरिंग नहीं है, वो एक नजरिया है जिस नजरियो को उजागर करना एक अफसाना निगार का बहुत अहम फरीजा है।
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जदीद अफसाना निगार सिर्फ तफरी फराहम नहीं करते, ये आपने बिल्कुल वाज़ेह किया, बल्कि कारी और सामे को जिंदगी और माशरे के मसाइल पर गौर व फिक्र की दावत देते हैं। यहाँ अभी आपने सोशल मीडिया का तस्करा किया और इसी तरह डिजिटल का भी तस्करा किया, एक सवाल इसका लेंगे कि मौजूदा डिजिटल दौर और सोशल मीडिया ने जदीद उर्दू अफसाना निगारी को किस तरह मुतासिर किया है, इस पर आप क्या कहती हैं?
0: जैसे भी हमने पहले भी कहा आपसे कि सोशल मीडिया क्योंकि लाइफस्टाइल को बहुत मुतासिर करता है, आज का दौर ही डिजिटल युग है, डिजिटल दौर में आज हम जिंदा हैं, हर काम हमारा इवन की फोन से लेकर के टेप रिकॉर्डर हो, डिजिटली कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, हम उस पे डिपेंडेंट हैं। लेकिन चूंकि सोशल मीडिया जो है वो बहुत मुतासिर करता है अफसाना

0: आने को इसमें बहुत सारे पहलू आ जाते हैं। इसमें अफसाने की इशात बहुत जल्दी होती है, बहुत जल्दी फौरन इशात हो जाती, जबकि पहले बहुत वक्त लगता था अफसाने की इशात के लिए। सोशल मीडिया के दौर में इसकी बहुत ही आसानी हो गई। मुख्तसर अफसानों की तरफ रुझान लोगों का बढ़ा है, क्योंकि अब वक्त कम होता है लोगों के पास, तो मुख्तसर तरीके से वो सिर्फ स्क्रोल करेंगे, देखेंगे सोशल मीडिया पर और उन पे काम करते हैं।
1: जी, तो बहुत अच्छा कहना है आप कि सोशल मीडिया और डिजिटल दौर ने जदीद अफसाना निगारी को ज्यादा फरोग दिया है और दे रहे हैं, क्योंकि अब अफसाने तेजी के साथ कारीन तक पहुंच जाते हैं, एक क्लिक में उनके सामने होते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं। एक आखिरी सवाल आपसे करेंगे कि आज के प्रोग्राम के पेश नजर जदीद अफसाना निगारी का मुस्तकबिल आप कैसा देखती हैं, और आज हमारे सामईन को आप इस प्रोग्राम के तहत क्या पैगाम देना चाहेंगे, इसकी वजाहत फरमाएं।
0: देखिए, जदीद अफसाना निगारी का जो मुस्तकबिल है बहुत रोशन है। ऐसा नहीं है कि अफसाना निगारी का कहीं से जवाल आ रहा है, लिखने वालों की भी कमी नहीं है। बस गौर व फिक्र करने की बात है सामाइन से, ये है कि जिस तरह से चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए हो या अपने बुक्स के जरिए हो, वो काफी सारी सोशल मीडिया साइट्स हैं, चाहे रेखता है, उर्दू वेब पेज है, फेसबुक, यूट्यूब, कुछ भी हो सकता है, या किताबें हो सकती हैं, उनसे अफसानों का मुताला करें। मुताले की आदत को मत छोड़े, क्योंकि मुताले इंसान को आगे बढ़ाता है और आपका मुताले ही लिखने वालों का हौसला भी बढ़ाता।
1: बिल्कुल सही कहा आपके, जदीद अफसाना निगारी का मुस्तकबिल रोशन है, बहुत वाजे कर दिया आपने और पैगाम बहुत उम्दा दिया आपने कि नौजवान नस्ल मुताले से जुड़े, मुताले को फरोग दे, ताकि उर्दू अदब से वाबस्तगी उनकी बनी रहे और अफसाना निगारी इसी तरह तरक्की करता रहे। सामीन, आज की इस संजीदा और बामकसद बातचीत से ये हकीकत वाजे होकर सामने आती है कि जदीद उर्दू अफसाना निगारी ने अदब को नए मौजूआत, नई टेक्निक और जदीद उसलूब से मालामाल किया है। इसने इंसानी जिंदगी के बातिनी पहलुओं और असरी मसाइल को बहुत ही संजीदगी के साथ पेश करके उर्दू अदब को आलमी अदबी रुझानात की हम कदम बना दिया है। जदीद अफसाना आज भी उर्दू अदब की एक जिंदा, मुतहर्रिक और मुअस्सिर सिम के तौर पर अपनी अहमियत बरकरार रखे हुए है। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि जदीद उर्दू अफसाना निगारी न सिर्फ अपने अहद की तर्जुमानी है, बल्कि आने वाले जमानों के लिए भी फिक्री और अदबी रहनुमाई फराहम करती है। अदब के संजीदा कारीन और नौजवान कलमकारों के लिए ये एक ऐसी अदबी रिवायत है जो मुसलसल इर्तिका के सफर पर गामजन है, चल रही है। और अब हम अपने खुसूसी मेहमान मोहतरमा अतिया बी साहिबा के बे इंतहा ममनून व मशकूर हैं कि आपने हमारे सामईन के लिए बहुत ही उम्दा और अच्छी मालूमात फराहम की। इसी के साथ आज का उर्दू प्रोग्राम यहीं पर खत्म होता है। अपने मेजबान दोस्त सैयद मोहम्मद उमेर को दीजिए इजाजत। आदाब।
2: आप सुन रहे थे उर्दू कार्यक्रम। आज की पेशकश थी आकाशवाणी लखनऊ के मरकज से। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। और श्रोताओं, अब चलिए आपको लिए चलते हैं गांव जवार की माटी से जुड़े लोक परंपरागत गीतों की ओर। कार्यक्रम है लोक रंग। तो आज हमारे कार्यक्रम में अवधि माटी की खुशबू फैलाने आ रही हैं सीमा वर्मा और डॉक्टर विजय लक्ष्मी। आइए सुनते हैं इनके युगल स्वरों में ये देवी गीत।

सीमा वर्मा और डॉक्टर विजय लक्ष्मी के युगल स्वरों में आप सुने थे अभी देवी गीत, और अब आइए सुनते हैं इन्हीं के युगल स्वरों में ये झूमर गीत।

0: कंकड़ी मोहे लाग जई है नाही। जी हाँ, ये अवधि लोकगीत आप सुन रही थी सीमा वर्मा और डॉक्टर विजय लक्ष्मी के युगल स्वरों में। आपके साथ संगीतकर्ता थे नाल पर अवध बिहारी वर्मा, ढोलक पर राजेश शुक्ला जी, हारमोनियम पर संतोष तिवारी, बांसुरी पर दिगंत सैकिया और साइड रिदम में थे संजय श्रीवास्तव। इसी के साथ परंपरागत लोकगीतों का लोक रंग कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। श्रोताओं, सुबह के 10 बजे हैं और अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत कार्यक्रम।
1: जोश को मिले दिशा, मेहनत को मिले मान, कला को विस्तार मिले, परंपरा को मिले नई उड़ान।
2: कुछ करिए, बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए।
1: सुनिए नई उड़ान, जहां गाने हो, बातें हो, योजनाएं हो और हर खबर लाए विकास और अवसर की जानकारी। श्रोताओं के दिल कहें, नई उड़ान निभाएगा असली यारी। हर शाम 5:45 से 6:15 तक सिर्फ आकाशवाणी लखनऊ पर, गूंजे सफलताओं की आवाज।
3: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे, होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, इतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
0: तो चलिए श्रोताओं, फिल्म संगीत कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवाते हैं कुमार सानू की आवाज में। गीत के बोल मजरूह सुल्तानपुरी के और

राहत इंदौरी के लिखे इस गीत को आप सुन रहे थे अनु मलिक की बनाई तर्ज पर कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में। फिल्म थी खुददार। इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 401.61 मीटर पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। सुबह के 10:10 होने को है। अब से बस थोड़ी ही देर में हमारे दिल्ली केंद्र से अरुण प्रसारित किया जाएगा न्यूज बुलेटिन विश्व दर्पण। तो बने रहिए हमारे साथ और ट्यून करके रखिए आकाशवाणी लखनऊ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं कनकलता। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउंगलाइन 5 दिन की यात्रा पर आज भारत पहुंचे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा, यूक्रेन में युद्ध समाप्ति के करीब। अमेरिका में चल रही वार्ता के बीच इसराइल लेबनान संघर्ष और तेज। संयुक्त राष्ट्र ने देशों और टेक कंपनियों से बच्चों के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को सुरक्षित बनाने हेतु अधिक ठोस उपाय करने को कहा। और हांगकांग में आयोजित एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरे दिन 4 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउंगलाइन 5 दिन की भारत यात्रा के पहले चरण में आज सुबह बिहार के गया पहुंचे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है। राष्ट्रपति के रूप में ओ मिन आउंगलाइन की पहली भारत यात्रा है। गया में म्यांमार के राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। वे आज बाद में नई दिल्ली पहुंचेंगे। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। म्यांमार के राष्ट्रपति की कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में भाग लेने की संभावना है। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। कल नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच बैठक के दौरान म्यांमार और भारत के बीच आपसी संबंधों से जुड़े सभी पहलुओं पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत म्यांमार के राष्ट्रपति का स्वागत करने के लिए उत्सुक है।
1: म्यांमार के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता इन संबंधों को और मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। इस यात्रा का एक व्यापारिक पहलू भी है, जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। ये एक आधिकारिक यात्रा है।

0: म्यांमार।
1: इस यात्रा के अंतर्गत म्यांमार के राष्ट्रपति व्यापार और उद्योग जगत से संबंधित वार्ताओं और शहर के विभिन्न स्थानों पर भ्रमण के लिए 2 जून को मुंबई भी जाएंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन से चल रहा संघर्ष अब खत्म होने के करीब है। रूस की समाचार एजेंसी के अनुसार राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि किसी निश्चित समय सीमा का उल्लेख करना लापरवाही होगी, क्योंकि युद्ध के दौरान समय सीमा तय करना संभव नहीं होता। श्री पुतिन ने कहा कि रूस यूक्रेन मुद्दे पर वार्ता जारी रखने के लिए तैयार है, लेकिन औपचारिक बातचीत जैसी स्थिति नहीं है। श्री पुतिन ने कहा कि रूस के लिए सीधे सैन्य खतरा पैदा करने वाले सभी स्थान वैध सैन्य लक्ष्य हैं। रूस के राष्ट्रपति ने आरोप लगाया कि नेटो ने रूस को यह कहकर धोखा दिया कि वह पूर्व की ओर एक भी कदम नहीं बढ़ाएगा। इस बीच रूस की आधिकारिक मीडिया ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि लंदन में यूरोपीय देशों के प्रतिनिधि यूक्रेन संघर्ष के समाधान को लेकर अनौपचारिक परामर्श कर रहे हैं। इसराइल की सेना दक्षिणी लेबनान के मरजयून इलाके में मौजूद दिब्बिन गांव में दाखिल हो गई। ये कदम इसराइल के ताजा हवाई हमलों के बीच उठाया गया, जिसमें 6 लोग मारे गए। एक रिपोर्ट।
2: लेबनान की सरकारी मीडिया ने बताया कि दीर कानून, अल नहर और एबा सही पर हुए हमले में 5 लोग मारे गए। एबा गांव पर हुए हमले में नगर पुलिसकर्मी की मौत हो गई। वहीं लेबनान के 6 सदस्यों के सैन्य प्रतिनिधिमंडल ने अमेरिका के पेंटागन में इजराइल के सैन्य अधिकारियों से मुलाकात की। दशकों में दोनों देशों के बीच ये पहली प्रत्यक्ष वार्ता थी। पेंटागन ने चर्चाओं को सार्थक बताया और कहा कि इनका ध्यान क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता के लिए व्यवहारिक रूपरेखा तैयार करने पर केंद्रित था। उसने ये भी कहा कि वार्ताओं के परिणाम अगले सप्ताह होने वाली राजनीतिक नेताओं के बीच आगे की बातचीत को दिशा देने में सहायक होंगे। इसराइल और लेबनान के अधिकारियों के बीच पिछले महीने से वार्ता जारी है, लेकिन व्यापक सहमति तक पहुंचने के प्रयास जटिल बने हुए हैं। इस वार्ता में हिजबुल्ला भाग नहीं ले रहा है और उसने वार्ता के निष्कर्षों को अस्वीकार कर दिया है। पक्षों के बीच 17 अप्रैल से युद्ध विराम लागू है, लेकिन सीमा पर तनाव जारी है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से शिवांग मिश्रा।
1: ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका में रह रहे लगभग लेबनान के 11,000 नागरिकों के लिए निर्वासन से सुरक्षा की अवधि बढ़ा दी है। इससे उन्हें अगले 6 महीनों तक देश में रहने और काम करने की अनुमति मिल गई है। इस निर्णय की घोषणा गृह सुरक्षा विभाग ने की। ये विस्तार दक्षिणी लेबनान में इसराइल की सेना और ईरान समर्थित लेबनान स्थित सशस्त्र समूह हिजबुल्ला के बीच जारी संघर्षों के बीच हुआ है। ये विस्तार संघर्ष या असाधारण परिस्थितियों का सामना कर रहे देशों के लोगों को अमेरिका में अस्थायी रूप से रहने की अनुमति देता है। ट्रंप प्रशासन ने वेनेजुएला, हैती, निकारागुआ और सीरिया सहित कई देशों के लोगों के लिए इसी तरह की सुरक्षा को समाप्त करने की दिशा में बड़े पैमाने पर कदम उठाए हैं। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने बच्चों के लिए ऑनलाइन मंचों को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से देशों और टेक कंपनियों से अधिक सख्त कदम उठाने की अपील की है।
3: संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने प्रभावी नियमन, निगरानी और जवाबदेही पर बल दिया। श्री तुर्क ने कहा कि डिजिटल दुनिया बच्चों को शिक्षा, समुदाय और रचनात्मकता से जोड़ती है, लेकिन साथ ही उनकी सुरक्षा, निजता और मानसिक स्वास्थ्य के लिए खतरे भी पैदा करती है। श्री तुर्क ने कहा कि सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध इस समस्या का समाधान नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकारों और कंपनियों को मिलकर प्लेटफॉर्म को डिजाइन के स्तर पर ही सुरक्षित बनाना होगा, डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी और नुकसान पहुंचाने वालों की जवाबदेही तय करनी होगी। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय के दिशा निर्देशों में आयु सत्यापन प्रक्रिया के लिए सुरक्षा उपाय, बाल अधिकार प्रभाव आकलन और नियामक नीतियों के निर्माण में बच्चों की भागीदारी जैसे सुझाव दिए गए हैं। साथ ही कंपनियों के लिए पारदर्शिता, कड़ी निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित करने पर भी बल दिया गया है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से लवलीन निगम।
1: दक्षिणी कैलिफोर्निया की पूर्व मेयर ने चीन के एक अवैध एजेंट के रूप में काम करने का अपराध स्वीकार कर लिया है। एलिन वांग ने इस महीने की शुरुआत में मेयर पद से इस्तीफा दिया था। उन्होंने चीनी अधिकारियों की तरफ से चीन के पक्ष में लेख लिखे थे और ऐसा करते समय उन्होंने अमरीकी सरकार को कानून के अनुसार आवश्यक जानकारी नहीं दी थी। उन्होंने लॉस एंजलिस की एक संघीय अदालत में अपना अपराध स्वीकार किया। वांग को 10 साल की कैद और 3 साल तक निगरानी में

0: काटने की सजा हो सकती है। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
1: Regarding the efforts of the government to keep the price stable, Bharat Sarkar ne excise duty kam ki. So these all efforts have been done to keep the price stable. We are working on the strategic reserves also. Oil marketing companies ko work out karne ke liye kaha hai ki LPG ka jo reserve hai, that should be minimum 30 days with them. And they are working on it. And similarly for crude also we are working.
0: हांगकांग में एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने अब तक 8 पदक जीत लिए हैं। इनमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत तालिका में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। प्रतियोगिता के दूसरे दिन कल भारतीय खिलाड़ियों ने 4 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते। पूजा सिंह ने महिलाओं की ऊंची कूद में 1.93 मीटर की छलांग लगाकर स्वर्ण पदक जीता। भारत के नितिन गुप्ता ने पुरुषों की 5000 मीटर रेस वॉक का स्वर्ण पदक जीता। अमानत कंबोज ने महिलाओं की डिस्कस थ्रो में शीर्ष स्थान हासिल किया। राहुल जाखड़ ने पुरुषों की डेकाथलॉन में स्वर्ण पदक जीता। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज ब्रिस्टल में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे शुरू होगा। बृहस्पतिवार को चेम्सफोर्ड में पहले मैच में भारत ने मेजबान इंग्लैंड को 38 रन से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से बढ़त बना ली थी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउ लाइन 5 दिन की यात्रा पर आज भारत पहुंचे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा, यूक्रेन में युद्ध समाप्ति के करीब। अमेरिका में चल रही वार्ता के बीच इसराइल लेबनान संघर्ष और तेज। संयुक्त राष्ट्र ने देशों और टेक कंपनियों से बच्चों के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को सुरक्षित बनाने हेतु अधिक ठोस उपाय करने का आह्वान किया। और हांगकांग में आयोजित एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरे दिन 4 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण, धड़कन देश की। तो श्रोताओं, सुबह के 10:20 और 20 सेकंड हो रहे हैं। अब आइए चलते हैं, आपको लिए चलते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत की ओर, जिसका नाम है चित्रपट से। और इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे नए फिल्मी तराने। तो आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं प्रीतम की बनाई तर्ज पर अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा ये गीत। और फैंटम फिल्म का ये गीत आप सुन रहे हैं सैयद असरार शाह और अख्तर चंचल की आवाज़ में।

0: सपनों को देना है नई रफ्तार, तो सुनिए आकाशवाणी प्राइमरी चैनल का बेहतरीन प्रोग्राम। यूथ के लिए जरूरी जानकारी, सामयिक चर्चा, फील्ड से ओबी रिपोर्ट्स और गीत संगीत का परफेक्ट मिक्स, सब कुछ एक ही मंच पर। हर दिन शाम 5:45 पर रेडियो ऑन रखिए और जुड़िए नई उड़ान से।
1: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तक प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, ऋतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
2: श्रोताओं, आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट से, जिसमें हम आपको सुनवा रहे हैं नई फिल्मी तराने। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में चलिए अगला गीत आपको सुनवाते हैं गोलमाल 3 फिल्म से। शान, अनुष्का, मनचंदा की आवाज में आप सुन रहे हैं ये गीत, कुमार का लिखा हुआ, प्रीतम का संगीत है और फिल्म है गोलमाल 3।

0: अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। जी हाँ, गोलमाल 3 फिल्म का ये गीत आप सुन रही थी आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से कार्यक्रम चित्रपट से में।
1: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल, आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
2: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
3: जी,
2: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
3: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
2: पर ये होगा कैसे?
3: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
2: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
3: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
2: बस
3: बस
2: समझ गया।
3: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
4: RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

चेन्नई एक्सप्रेस, ये अगला गीत अब आइए आपको सुनवाते हैं इस फिल्म से। अरिजीत सिंह और नीति मोहन की आवाज में ये गीत आप सुन रहे हैं, अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा हुआ और संगीत है विशाल शेखर का।

घर आंगन मा है बहार, कहानी कविता और बतकही के फुहार, आपन बोली बानी संग लोक गीतन के बहे बयार, खान पान संग सेहत के और स्वावलंबन के बहचली है बयार, घर आंगन संग होई के तैयार, चलो विकास के रफ्तार, सोम बृहस्पति और साथे है दिन शनिवार, ईमेल और पाती के होए भरमार।

0: आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
1: श्रोताओं, एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुन सकते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। इस वक्त आप सुन रहे हैं नए फिल्मी तराने, कार्यक्रम है चित्रपट से। और चलिए कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवाते हैं कपूर एंड सन्स फिल्म से। गीत के बोल लिखे हैं बादशाह और कुमार ने, संगीत है अमाल मलिक का और आवाजें हैं बादशाह, फाजिल पुरिया, सुकृति कक्कड़, नेहा कक्कड़ की।

0: संगीत शंकर एहसान लॉय का था। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं मीडियम वेव के मीटर पर कार्यक्रम चित्रपट से, और आइए अब आपको सुनवाते हैं अगला गीत हाउसफुल फिल्म से।
1: Take it away!

दिल धड़कने दो। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे यशिता शर्मा, मनीष कुमार, टीपू, फरहान अख्तर, शंकर महादेवन और सुखविंदर सिंह की आवाज में। गीत के बोल लिखे थे जावेद अख्तर ने।

हाउसफुल। इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे मिका सिंह, सुनिधि चौहान, शंकर महादेवन, साजिद खान और अरुण को। गीत के बोल

0: समीर के और संगीत था शंकर एहसान लॉय का। आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से, और कार्यक्रम में आइए अगला गीत आपको सुनवाते हैं क्वीन फिल्म से। अमित त्रिवेदी का संगीत, अन्विता दत्त का गीत और आवाजें हैं लाभ जंजुआ, सोनू कक्कड़ और नेहा कक्कड़ की।
1: चली आ गई, उधर करो, फिर चली गई।

राष्ट्रीय त्रिपट से। ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। और कार्यक्रम में आइए अगला गीत आपको सुनवाते हैं बाजीराव मस्तानी फिल्म से, श्रेया घोषाल और शादाब फरीदी की आवाज में। गीत के बोल लिखे हैं सिद्धार्थ गरिमा ने और संगीत है संजय लीला भंसाली का।

0: अभी आप सुन रहे थे चित्रपट से।
1: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
0: मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। श्रोताओं, शुरू हो रहा है फिल्म संगीत का फोन इन प्रोग्राम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। हाजिर हूं मैं आपकी अपनी दोस्त रेखा मिश्रा। अब कहेंगे कुछ आप और कहेंगे कुछ हम भी, क्योंकि कार्यक्रम का नाम है कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। तो जिन श्रोताओं को करनी हो हमसे बात और सुनना हो अपनी पसंद का कोई भी गाना, वो हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0522-2238825। आइए जान लेते हैं कौन से श्रोता हैं लाइन पर और हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। हेलो।
2: हेलो, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, आप अपना नाम बताएं।
2: मैम, मैं सुनील कुमार बोल रहा हूँ, ग्राम गोकुलपुर लहरपुर सीतापुर।
0: जी सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आप सीतापुर में क्या करते हैं?
2: मैम, खेती बाड़ी करते हैं मैम।
0: अच्छा, ये बताइए कि कैसा है मौसम आज के दिन सीतापुर का?
2: मैम, मौसम तो इस में थोड़ी हवा चल रही है, क्योंकि रात में थोड़ा ठंड भी हुआ था क्योंकि बरसात हुई थी परसों हमारे उधर।
0: जी,
2: तो थोड़ा मौसम चेंज हुआ है तो थोड़ा गर्मी कम है मैम।
0: जी हाँ, बिल्कुल, मौसम में परिवर्तन हुआ है तो थोड़ा गर्मी से निजात मिली है हम सभी को। क्या सुनना चाहेंगे आज के कार्यक्रम में?
2: मैम, गाना हमको सुनवा दीजिए। फिल्म का नाम है लाल पट्टा मलमल का, उसमें गाना है क्या करते थे साजना तुम हमसे दूर रह के।
0: तो चलिए हम आपको सुनवा देते हैं आपकी पसंद का ये गीत। कार्यक्रम में आपने फोन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: जी जी, धन्यवाद मैम। और ये गाना सभी

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, जहां बातों का सिलसिला चलता है दिल से दिल तक और हर आवाज बन जाती है खूबसूरत एहसास। तो आइए जुड़ जाते हैं अगली आवाज से। हेलो।
1: हेलो, गुड मॉर्निंग मैम।
0: गुड मॉर्निंग, आप अपना नाम बताएं।
1: जी, मैं श्रीपाल गोयल बहादुरगढ़ हरियाणा से बोल रहा हूँ मैम।
0: जी श्रीपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। क्या कर रहे हैं आजकल आप वहाँ?
1: मैं तो बस अभी ड्यूटी पे था, बस कोल्ड ड्राइव किया तो भी लग गई, तो काफी अच्छा लग रहा है।
0: तो आपने अभी हरियाणा से फोन मिलाया या दिल्ली से फोन मिलाया है?
1: जी मैम, दिल्ली से मिलाया मैं तो, क्योंकि ड्यूटी पे हूँ ना, डेली मतलब ट्रेन शट डाउन करते हैं दिल्ली में, डेली काम के लिए आते हैं।
0: जी हाँ जी हाँ, तो ऑफिस से इतना समय मिल जाता है कि आप हमसे जुड़ पाए?
1: सॉरी मैम,
0: मतलब ऑफिस से इतना समय निकाल लेते हैं आप फोन मिलाने के लिए या अपने पसंद का गाना सुनने के लिए?
1: हाँ मैम, थोड़ा बहुत जो मतलब टाइम मिल जाता है काम के बीच में ही, टाइम निकाल
0: जी
1: लेते हैं।
0: बहुत अच्छी।

0: मैं तो भाई क्योंकि ड्यूटी पे हूँ ना डेली, मतलब ट्रेन शटडाउन करते हैं दिल्ली में, डेली काम के लिए आते हैं।
1: जी हाँ जी हाँ, तो ऑफिस से इतना समय मिल जाता है कि आप हमसे जुड़ पाएं?
0: सॉरी मैम,
1: मतलब ऑफिस से इतना समय निकाल लेते हैं आप फोन मिलाने के लिए या अपने पसंद का गाना सुनने के लिए?
0: हाँ मैम, थोड़ा बहुत जो है मतलब टाइम मिल जाता है काम के बीच में ही, टाइम निकाल लेते
1: जी
0: हैं।
1: बहुत अच्छी बात है कि आप अपने काम के बीच से हमारे कार्यक्रम के लिए समय निकालते हैं। क्या सुनना पसंद करेंगे आज के कार्यक्रम में?
0: जी मैम, फिल्म का नाम है आवारापन, और इसमें गाना है मोला मोला के नाम से। जी
1: तो हम आपको सुनवा देते हैं आपकी पसंद का ये गीत कार्यक्रम में। आपने फोन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद मैम।

0: 5। और आइए अब बात कर लेते हैं अगले कॉलर से।
1: अरे
0: हेलो
1: हाय,
0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो
1: हेलो।
0: जी नमस्कार, आप अपना नाम बताएं।
1: हेलो
0: हेलो
1: हेलो,
0: जी अपना नाम बताएं, आपकी आवाज़ हमारे पास तक पहुंच रही है।
1: हाँ हम गजराज बोल रहे हैं, किसी घरदोई से तहसील संदीला
0: जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आप क्या करते हैं
1: गाना
0: वहाँ?
1: सुना दीजिए, दो हंसों को जोड़ा बिछड़ गए रे गजब रामा।
0: जी गाना तो हम सुनवा देंगे आपको, आप अपने बारे में हमें कुछ
1: हमारे
0: बताना
1: तो बोली आ
0: चाहेंगे?
1: रही उनमा।
0: हेलो
1: हेलो हेलो
0: चलिए हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
1: अरे आवाज आपकी कम आ रही है।

मीडियम वेव के मीटर पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र. कार्यक्रम चल रहा है कुछ तुम कहो कुछ हम कहें. आज इस कार्यक्रम में मैं आपके साथ हूँ रेखा मिश्रा. जो श्रोता इस कार्यक्रम के माध्यम से हमसे जुड़ना चाहते हैं वो हमारा नंबर नोट कर लें. नंबर है 0522 2238 82.

0: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्म संगीत का फोन प्रोग्राम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। श्रोताओं, हम आपसे कहना चाहते हैं कि ये प्रोग्राम आपके लिए होता है और आपकी वजह से ही होता है। आपका फ़ोन हमारे पास आता है तभी हम आपकी पसंद का गीत आप तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन अगर आप हमें फ़ोन मिला रहे हैं तो थोड़ी सी तैयारी ज़रूर कर लें, क्योंकि अगर ऐन वक्त पर आपको गीत के बोल नहीं याद रहते, फ़िल्म का नाम नहीं याद रहता, तो हमें उस गीत को ढूंढने में बहुत परेशानी होती है और आपका भी कीमती समय बर्बाद होता है, क्योंकि आप अपने काम के बीच से समय निकाल कर हमें फ़ोन करते हैं और आप चाहते भी हैं कि आपकी पसंद का गीत आपके पास तक पहुँचे। तो आप थोड़ी तैयारी ज़रूर करके रखें और आइए जान लेते हैं कौन से श्रोता हैं लाइन पर। हेलो,
1: हेलो
0: जी, नमस्कार। Hello. आप अपना नाम बताएं।
1: नमस्ते, हमारा नाम नेत प्रसाद है
0: जी। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आपने कहाँ से फोन मिलाया है?
1: मोतीपुरवा लखनऊ
0: जी,
1: बॉर्डर
0: जी। जी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा कि

0: हमारे जो लोकल श्रोता हैं वो भी हमसे जुड़ते हैं। ये तो आपको
1: मिला बहुत दिनों के बाद
0: जी, आपको बहुत बहुत पहली बार मिला बहुत दिनों के बाद का क्या मतलब?
1: बहुत दिनों के बाद।
0: मतलब इसके पहले कभी मिला था कि नहीं?
1: अरे जी हाँ, नाखून सब खिया गए, काटने नहीं पड़ रहा है, मिलाते मिलाते।
0: तो इतना भाई क्यों मिला रहे हैं? बीच बीच में थोड़ा आराम कर लिया करिए ताकि आपके नाखून वापस फिर से बढ़ जाएं। तो आज फोन मिल गया है, तो आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप हमें बता दीजिए, तो हम जल्दी सुनवा दें।
1: हाँ जी हाँ
0: जी,
1: दो हंसों का जोड़ा बिछुड़ गया।
0: देखिए ये तो गीत अभी अभी जस्ट बच चुका है, तो वो तो हम आपको नहीं सुनवाते, हम आपको तो सुनवाते हैं अपनी पसंद का कोई। बिल्कुल, क्योंकि अभी जो गीत बज रहा था वो आपकी ही पसंद का था, तो हम अब आपको सुनवाते हैं
1: पसंद सुना दो पुरानी।
0: बिल्कुल बिल्कुल, हम आपको सुनवाते हैं अपनी पसंद का कोई गीत और उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा। जी आपने फोन किया, धन्यवाद धन्यवाद।

0: भावनाए हैं और उन भावनाओं को सुनने समझने का एक छोटा सा प्रयास। तो आइए जान लेते हैं कौन से श्रोता हैं लाइन पर। हेलो हेलो,
1: तारीफ कैसे करें आपकी मैडम, हर लफ्ज में खुशबू आ रही गुलाब की।
0: वाह क्या बात है, इतना बढ़िया परिचय देने वाले का नाम हमारे श्रोता जानना चाहेंगे।
1: हसीना भी मंसूरी बोल रही पालदाना का इंदौर से।
0: जी हसीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब आज ये बताइए कि आज इंदौर का मौसम कैसा है?
1: बहुत सुहाना मैडम, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है और बहुत सुहाना मैडम मौसम है। बहुत थोड़ी ठंडक का एहसास हुआ। एक शायरी आपके लिए बोल देती, इस गर्मी में थोड़ी सी ठंडक का एहसास हुआ जब आपकी आवाज का हमारे कानों में आगाज हुआ।
0: वाह वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या सुनना पसंद करेंगी आज के कार्यक्रम में?
1: मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल की आवाज में है गाना, और फिल्म का नाम है आजाद देश के गुलाम, और गाने के बोल है शायरी

कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से आप सुन रहे हैं ये कार्यक्रम। एक ऐसी संगीत की महफिल जहां ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, ना कोई अपना ना कोई पराया, यहां सिर्फ बातें हैं।

0: के कहो, ये सुना दीजिए।
1: जी हसीना जी, आपने हमारे कार्यक्रम में फोन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपकी पसंद का गीत पहुंच रहा है आपके रेडियो सेट पर।
0: शुक्रिया मैडम।

0: लफ्ज़ों में वो ताकत होती है जो दूरियों को भी मिटा देती है। एक सच्ची बात और एक प्यारी सी मुस्कान ज़िंदगी को खूबसूरत बना देती है। जी हाँ श्रोताओं, कार्यक्रम चल रहा है कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, संगीत का बेहद सुरीला सफ़र, जहाँ आपकी पसंद के गीत हम पहुँचा रहे हैं आप तक। तो आइए जान लेते हैं अब किससे बात होने वाली है हमारी। हेलो।
1: हेलो मैम, नमस्ते।
0: नमस्कार, आप अपना नाम बताएं हमें।
1: जी मैम, बबीता बघेल, मंडला मध्य प्रदेश से।
0: जी बबीता जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आपने पहले भी कभी फ़ोन मिलाया है हमारे कार्यक्रम में?
1: जी मैम।
0: बहुत अच्छी बात है। और कितने अंतराल के बाद लगा या अभी हालिया में आपका फ़ोन लगा था?
1: करीब 10 दिन के बाद।
0: जी बहुत ही अच्छा लगा जानकर कि
1: इसके पहले करीब 8 महीने पहले लगा था।
0: मतलब वो तो भाई आपकी कोशिश जारी रही होगी, अब कामयाबी मिली नहीं।
1: जी मैम, लगाते तो हैं गॉल लेकिन लगता नहीं है।
0: हाँ, हमारे बहुत सारे श्रोता उस समय जुड़ना चाहते हैं हमसे, तो उस समय कभी कभी फ़ोन भी व्यस्त आता है और कभी कभी दूसरे लोग ट्राई करते रहते हैं, उसकी वजह से भी नहीं लग पाता है। वैसे आप क्या करती हैं?
1: आपकी आवाज़ में थोड़ी कम आ रही है।
0: हेलो
1: जी,
0: आ रही है?
1: जी अब थोड़ी है।
0: अच्छा, क्या करती हैं आप मंडला में?
1: मैम हम तो हाउसवाइफ हैं, घर पे ही रहते हैं, आपका प्रोग्राम सुनते हैं।
0: बहुत ही अच्छी बात है भाई, घर पे रह के हमारा प्रोग्राम सुनती हैं। और घर में रहना, घर के काम को करना भी कोई छोटी बात नहीं होती, क्योंकि परिवार में इतने सारे लोग होते हैं तो हमें सबका ख्याल रखना होता है, सबकी ज़रूरतें पूरी करनी होती हैं। तो ऐसे में हमारा भी काम बहुत बढ़ जाता है, ऐसा नहीं कह सकते कि हम घर में रहते हैं। क्या सुनवाएं आज हम आपको?
1: मैम आज एक सॉन्ग सुना दीजिए, होंठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, मूवी का नाम है प्रेम गीत।
0: क्या बात है बबीता जी, आपने बहुत ही अच्छा गीत चुना और ये गीत मुझे भी बेहद पसंद है। तो हम आपको सुनवाते हैं जगजीत सिंह की आवाज में आपकी पसंद का ये गीत। आपने कार्यक्रम में फोन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद मैम।

0: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। इसे आप मीडियम वेव 747 किलोहर्ट्ज़ के साथ ही न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं और साथ ही साथ आप इसे सुन सकते हैं DTH के माध्यम से भी। तो अब कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे और बात कर लेते हैं अगले कॉलर से। हेलो।
1: जब मौसम बहार होता है
0: जी,
1: हर फूल खिलता है
0: जी,
1: खिल जाता है चमन मेरे दिल का
0: जी,
1: जब आपका प्यार मिलता है।
0: वाह वाह क्या बात है।
1: रेखा मिश्रा साहिबा को विजय पांडे का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी बहुत बहुत नमस्कार आपको हमारी ओर से और बहुत बहुत धन्यवाद, और इतना परिचय बढ़िया दिया जो आपने उसके लिए भी आपका आभार। तो आपने कहाँ से फोन मिलाया ये हमें बता दें।
1: मैं विजय पांडे थाना पचपड़वा जनपद बलरामपुर से बोल रहा हूँ। आपका तहे दिल से शुक्रिया, आपने मेरे काल को तस्लीम किए।
0: देखिए हमारा तो काम है कि अपने श्रोताओं के फ़ोन कॉल को हम शामिल करें अपने कार्यक्रम में। अब आपने इसके लिए हमें शुक्रिया कहा तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे आप क्या करते हैं बलरामपुर में विजय जी?
1: जी मैं खेती से जुड़ा हुआ हूँ।
0: तो अभी जैसे मौसम बदल,
1: मौसम तो इस समय बहुत खुशनुमा है क्योंकि एक दिन पहले बारिश हुई थी
0: जी,
1: तेज आंधी के साथ, अब मौसम बहुत सुहाना हो गया है
0: जी। तो हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि जो ये मौसम सुहावना हुआ है तो इससे खेती में कुछ असर पड़ेगा या ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला?
1: नहीं असर तो बहुत अच्छा पड़ेगा
0: जी,
1: क्योंकि खेतों में जो नमी नहीं थी अब नमी हो गई है, जुताई भी हो गई थी, अब

0: इस वक्त जो नर्सरी तैयार करेंगे तो उसके लिए पानी नहीं देना पड़ेगा अलग से।
1: जी हाँ, तो किस चीज़ की तैयारी चल रही है आपके खेत में इस समय?
0: अब इस वक्त दो धान लगाएंगे,
1: जी
0: काला नमक धान।
1: जी हाँ जी, तो ये बताइए, आप हमारे केंद्र से जो प्रसारित होते हैं खेती किसानी के कार्यक्रम, वो आप सुनते हैं?
0: वो मैं सुनता हूँ, सुबह शुरुआत में जब आते हैं।
1: हाँ हाँ जी जी हाँ,
0: तो वो मैं सुनता हूँ 5 मिनट के लिए।
1: जी,
0: और विविधा मैं सुनता हूँ, विविधा बहुत अच्छा हमको लगता है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद,
0: छोड़ता नहीं हूँ
1: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जब आप आती हैं विविधा में तो आपकी आवाज और कनिका अशोक की आवाज एक जैसी मिलती जुलती है, पता ही नहीं चलता है कि आप बोल रहे हैं कनिका अशोक जब
1: जी।
0: वो
1: बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे कनिका अशोक जी तो हमसे बहुत ज्यादा सीनियर हैं, तो उनकी हमारी कोई बराबरी नहीं है, फिर भी आपने ऐसा कहा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे क्या सुनना पसंद करेंगे आज के कार्यक्रम में?
0: फिल्म है आए दिन बहार के,
1: जी
0: लता मंगेशकर की आवाज में गीत सुनना चाहता हूँ।
1: तो
0: सजना चमन वालों, ये गीत सभी के लिए समर्पित रहेगा।
1: बिल्कुल, आपके और हमारे सभी सुनने वालों के लिए हम आपको सुनवाते हैं ये गीत। धन्यवाद।

0: सुनो सजना पपीहेने। जी हाँ श्रोताओं, अभी आपने ये गीत सुना, फिल्म का नाम आए दिन बहार के, और इस गीत को पसंद किया था विजय पांडे जी ने। उन्होंने हमें फ़ोन मिलाया था बलरामपुर से। हम आपसे कहना चाहेंगे कि अभी बहार के दिन तो नहीं आए, लेकिन हाँ मौसम में थोड़ा बदलाव जो हुआ है उससे लोगों को सुकून ज़रूर मिला है। और आइए अब जान लेते हैं कौन से श्रोता हैं लाइन पर और कौन सा गीत उन्हें पसंद है आज के कार्यक्रम में। हेलो हेलो
1: हेलो, नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, आप अपना नाम बताएं।
1: मैम रजनीश चौरसिया नावों के शहर लखनऊ से बात कर रहे हैं।
0: रजनीश
1: जी मैम।
0: जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। लखनऊ में कहाँ से फ़ोन मिलाया आपने?
1: मैम आलमबाग से मिलाया हमने कॉल।
0: वाह क्या बात है, हमारे जो आसपास के श्रोता हैं वो भी हमसे जुड़ते हैं और हमारे जो दूर दूर के श्रोता हैं वो भी हमारे कार्यक्रम से जुड़ते हैं, तो ये जानकर हमें और भी अच्छा लगता है। आज के कार्यक्रम में आप क्या सुनना चाहेंगे?
1: मैम फिल्म है दिल में सनम, गाना सुना है दिल में सनम की सूरत, और फिल्म है फिर तेरी कहानी याद आई, और जितने लोग सुन रहे हैं मैम सभी के लिए।
0: बिल्कुल, तो आपके लिए और आपकी तरफ से हमारे सभी श्रोताओं के लिए पेश है फिर तेरी कहानी याद आई फिल्म का ये गीत। आपने कार्यक्रम में फोन किया और हमसे बात की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: श्रोताओं, संगीत तो हम सभी को पसंद होता है, लेकिन संगीत अगर अपनी पसंद का हो तो कहना ही क्या। और हमारा ये कार्यक्रम होता है आपकी पसंद के गीतों को आप तक पहुंचाने का। तो आइए जान लेते हैं कौन से श्रोता हैं लाइन पर और क्या सुनना चाहते हैं आज के कार्यक्रम में। हेलो,
1: जय माता दी।
0: जय माता दी, आप अपना नाम बताएं।
1: मेरा नाम पूरन वर्मा है और मैं डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान, गांव का नाम अंसमेल बुगला से बात कर रहा हूं। मैडम
0: जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। वैसे जयपुर तो बहुत ही अच्छा शहर है
1: जी। मैडम
0: कभी किसी को
1: आइए कभी आप। मैडम
0: जी हाँ, ज़रूर, अगर कभी ऐसा मौका लगा तो हम ज़रूर आएंगे आपके शहर। आप वहाँ क्या करते हैं
1: जी? मैडम हम तो खेती बाड़ी करते हैं, मम्मी पापा है वो खेती बाड़ी करते हैं।
0: अच्छा।
1: और इस टाइम तो खेत खाली और मैं तो घर पे रहता हूँ। मैडम आपका कार्यक्रम सुनता रहता हूँ।
0: क्या बात है भाई, तो क्या सुनना चाहेंगे आज के कार्यक्रम में?
1: जी मैडम, फिल्म का नाम है कल मेरे भाई और उसमें गाने के बोल है मेहंदी रंग लाइट तेरी लगाई, और आप याद दे देते तो मैं दो तीन मित्रों को याद कर लूँ।
0: हाँ कर लीजिए आप दो तीन मित्रों को याद
1: जी। सबसे पहले तो आप है
0: जी, धन्यवाद।
1: और मेरा दोस्त है राकेश से, भगवान सिंह परवान जी, अभिनाथ जी, रमेश प्रजापति जी, गोल्डी बाई है और राहुल है, और जितने कॉलर दिनेश के साथ तमाम श्रोता आकाशवाणी लखनऊ के।
0: तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ आनंद लीजिए अपनी पसंद के इस गीत का। कार्यक्रम में आपने फोन मिलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: कुछ तुम कहो कुछ हम कहे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से चल रहा है फरमाइशी फिल्म संगीत का ये फोन इन प्रोग्राम। अब आइए जुड़ जाते हैं अगले कॉलर से। हेलो, नमस्कार, अपना नाम बताएं हमें।
1: मेरा नाम गुंजन तिवारी है।
0: जी गुंजन जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। कहाँ से फोन मिलाया है आपने?
1: जी मैम, अयोध्या से मिलाया है।
0: अच्छा, क्या सुनना चाहेंगे आज के कार्यक्रम में?
1: जी मैम, एक मुलाकात में।
0: तो चलिए हम आपको सुनवा देते हैं आपकी पसंद का ये गीत। कार्यक्रम में आपने फोन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: श्रोताओं, आपसे बातें करते करते वक्त का बिल्कुल पता ही नहीं चला और हम आ पहुंचे हैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर, तो बात कर लेते हैं आज के आखिरी कॉलर से। हेलो,
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते, आप अपना नाम बताएं।
1: मैं मोहम्मद रफी मंसूरी बोल रहा हूँ, इंदौर से।
0: जी, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम आपको बता दें कि आप आज हमारे आखिरी कॉलर हैं, तो जल्दी से अपना गीत हमें बता दीजिए।
1: दोस्ताना फिल्म का सुनवा दीजिएगा, बहुत खूबसूरत जवान एक लड़की।
0: तो हम आपको सुनवा देते हैं आपकी पसंद का ये गीत। कार्यक्रम में आपने फोन मिलाया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।

0: इस गीत के साथ ही कार्यक्रम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें अब समाप्त होता है। दें इजाजत अपनी दोस्त रेखा मिश्रा को और आप जुड़े रहें हमारे अन्य कार्यक्रमों के साथ।
1: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
2: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
0: मीडियम वेव के मीटर पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। पेश है कार्यक्रम चित्रपट से।

कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल के गुलस्वरों में ये था समीर का लिखा गीत, धुन बनाए अनु मलिक ने और फिल्म का नाम हम आपके दिल में रहते हैं। रानी मलिक का गीत, दिलीप सेन समीर सेन का संगीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं कुमार सानू की आवाज़ में। साथ दिया है अलका याग्निक ने और फिल्म का नाम है हकीकत।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत संयोजन में आइए सुनते हैं आनंद बख्शी का लिखा गीत। फिल्म का नाम है चरणों की सौगंध और गाने में किशोर कुमार का साथ दिया है अलका याग्निक ने।

अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में ये था हसन कमाल का गीत। संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और फिल्म का नाम पराया घर। सूर्या फिल्म से अब हम आपको सुनवा रहे हैं अलका याग्निक की आवाज़ में ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे चित्रपट से कार्यक्रम।

0: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तरपत्रोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे, होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, इतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
1: अब वक्त है उड़ान का, अब वक्त है पहचान का, अब वक्त है अपने हुनर को आवाज देने का। जुड़िए नई उड़ान से, जहां सपनों को मिलता है आगाज और मेहनत को मिलती है आवाज।
2: तुमने दी आवाज, लो मैं आ गया।
1: हर शाम 5:45 से 6:15 तक सिर्फ आकाशवाणी लखनऊ पर। नई उड़ान, आगाज हर हुनर का, आवाज हर मेहनत की।

घर आंगन मा है बहार, कहानी कविता और बतकही के फुहार, आपन बोली बानी संग लोक गीतन के बहे बयार, खान पान संग सेहत के और स्वावलंबन के बहचली है बयार, घर आंगन संग होई के तैयार, चलो विकास के रफ्तार, सोम बृहस्पति और साथे है दिन शनिवार, ईमेल और पाती के होए भरमार।

मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। पेश है सदाबहार नगमे। श्रोताओं, कभी कभी जीवन की राहों में कोई ऐसा चेहरा सामने आ जाता है जिसे हम जानते तो नहीं पर दिल उसे अपना मानने लगता है। एक अनजाना सा आकर्षण, एक मधुर सी जिज्ञासा मन को घेर लेती है। ऐसे ही कोमल भाव और अनकहे जज्बातों से भरा ये गीत आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में।

जब मन उदास हो तब यादों का एक झोंका, किसी अपने का एहसास और संगीत की मधुर धुन दिल को सुकून दे जाती है।

रिश्तों की खूबसूरती सिर्फ नज़दीकियों में नहीं बल्कि उन एहसासों में भी होती है जो दूरियों के बावजूद दिलों को जोड़े रखते हैं। कभी कभी कोई व्यक्ति हमारे जीवन में इतना खास बन जाता है कि उसके हर कदम, हर मुस्कान और हर याद का असर हमारे मन पर गहराई से छप जाता है।

श्रोताओं, जिंदगी एक लंबा सफर है। इस सफर में न जाने कितने ही लोग मिलते हैं, कुछ साथ चल पड़ते हैं, कुछ यादों में बस जाते हैं। कभी किसी राह में किसी मोड़ पर हुई एक छोटी सी मुलाकात जीवन भर का रिश्ता बन जाती है, तो कभी एक मुलाकात छोटी सी याद बनकर बस दिल में बस जाती है।

0: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, इतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: श्रोताओं, कभी कभी मंजिल से ज्यादा यादगार वो रास्ते होते हैं जिस पर हम किसी की यादों के सहारे चलते हैं।

0: सदाबहार नगमों का सफर आज बस यहीं तक। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से। मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। एक बजने वाले हैं समाचार कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन ऑनलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया पहुंचे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राष्ट्रपति के रूप में उनकी ये पहली भारत यात्रा है। म्यांमार के राष्ट्रपति ने गया में महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद वे नई दिल्ली पहुंचेंगे। उनका आज शाम विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात का कार्यक्रम है। म्यांमार के राष्ट्रपति कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में भाग लेंगे। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। कल नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस संबंध में जानकारी दी।
2: म्यांमार के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता इन संबंधों को और मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। इस यात्रा का एक व्यापारिक पहलू भी है जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। ये एक आधिकारिक यात्रा है।
1: कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया आज शाम विधायक दल की बैठक करेंगे। इसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सिद्धरमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। उन्हें नए नेता के चुने जाने तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में बने रहने का निर्देश दिया है। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान शुरू हो गया है। 1 महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की यह प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों के उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। स्वास्थ्य शिशु कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जारी किया है। मंत्रालय द्वारा यह सर्वेक्षण 2023-24 में किया गया था। इसमें 715 जिलों के 6,79,000 परिवारों को शामिल किया गया है। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि यह उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है।
3: मेरे लिए ये बहुत सम्मान की बात है कि मुझे तीनों सेनाओं से गार्ड ऑफ ऑनर लेने का अवसर मिला। इसके लिए मैं तीनों सेनाओं और सेना मुख्यालय को धन्यवाद देता हूँ। गार्ड ऑफ ऑनर के समापन के साथ मैं वर्दी में अपने साथियों से विदाई लेता हूँ। मैंने वर्दी में अंतिम बार समर स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया। ये उन वीर सैनिकों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया।
1: लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि उनका स्थान लेंगे। सिंगापुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान के शांग्रीला संवाद के दौरान

सचिव राजेश कुमार सिंह ने नीदरलैंड के रक्षा मंत्री डिलेन येसिलगो जेगेरियस के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वार्ता में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग बढ़ाने, सैन्य संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। ये भारत और नीदरलैंड्स के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है। जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती इलाकों में निवासियों ने केंद्र सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें कहा गया है कि सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में अवैध ढांचों और अनधिकृत गतिविधियों को हटाया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी मध्य प्रदेश और तेलंगाना में आज लू चल सकती है। उधर बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत की खबर है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मृतकों के प्रति दुख व्यक्त किया है और परिजनों को 4 लाख रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की है। गुजरात टाइटंस आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गए हैं। गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच कल अहमदाबाद में फाइनल मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: मीडियम वेव के मीटर पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।
1: सुनो ना,
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

0: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
1: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।
2: श्रोताओं, हम आपको बता दें एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से।

विज्ञान और किसान कार्यक्रम में दोपहर 2:30 पर हम आपको सुनाएंगे डॉक्टर देवेश पाठक से डॉक्टर सुशील कुमार राय की भेंट वार्ता। विषय रहेगा सनई ढैंचा की उन्नत खेती। सीमा वर्मा और डॉक्टर विजय लक्ष्मी के युगल अवधि लोकगीत आप सुन सकते हैं कार्यक्रम लोक माधुरी में दोपहर 2:45 पर।

एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल, गए

0: क्या है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल, आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
3: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
4: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
3: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
4: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
3: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001424।

0: बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
0: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001424 पर।
2: मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। 1:10 होने वाले हैं। अब इलाकाई खबरें नश्र की जाएंगी।
3: ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। दारुल हुकूमत लखनऊ में तैयार नौसेना शौर्य वाटिका का आज वजीर दिफा राजनाथ सिंह और वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने इफ्तिताह किया। 19 करोड़ की लागत से तैयार ये नौसेना शौर्य वाटिका हिंदुस्तानी बहरिया की बहादुरी, जज्बे और तकनीकी सलाहियत को मानवन है। ये वाटिका सीजी सिटी में डेवलप की गई है। यहां कायम रिटायर्ड जंगली पोत INS गोमती सयाहों के लिए तवज्जो का मरकज है। हिंदुस्तानी बहरिया और उत्तर प्रदेश महकमा सयाहत की मुश्तरका कोशिशों से तैयार ये ओपन एयर म्यूजियम जदीद इंटरप्रिटेशन सेंटर के तौर पर डेवलप किया गया है। इससे दारुल हुकूमत में सयाही सरगर्मियों में भी इजाफा होने की उम्मीद है। आज नौसेना शौर्य वाटिका की इफ्तिताही तकरीब में खिताब करते हुए उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा,
4: लखनऊ में एक तरफ राष्ट्र प्रेरणा स्थल जिसका उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने 25 दिसंबर को किया था, और यहाँ पर नौसेना म्यूजियम के रूप में भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम का एक अद्भुत केंद्र यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ है, और इसका भी यह फर्स्ट फेज का काम का लोकार्पण हो रहा है। इसके आगे के कार्य भी और आगे बढ़ेंगे।
3: हुकूमत ने मगरबी एशिया तनाज़ों की वजह से आलमी तवानाई फराहमी में रखने को देखते हुए अवामी शोबे की तेल मार्केटिंग कंपनियों को 30 दिन का LPG ज़खीरा महफूज करने के अहकाम दिए हैं। पेट्रोलियम और कुदरती गैस वजारत की मुश्तरका सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में ये जानकारी दी। ज्वाइंट सेक्रेटरी ने कहा कि हुकूमत हिकमत अमली ज़खीरों के तवसुत से ईंधन तहफ़ मजबूत करने और बग़ैर किसी रखने के फराहमी यकीनी करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कि किसी भी LPG डिस्ट्रीब्यूटर मरकज पर फराहमी की कमी की कोई खबर नहीं है।
5: सरकार सभी घरों तक LPG सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें। बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स से अपील है कि वो ऑथराइज प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें।
3: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की बेंच कल इस मामले में दायर अर्जियों की समाअत कर रही थी। इनमें एक अर्जी में NTA के नौ तश्कील या इसके हटाने के अहकाम देने और इसकी जगह पर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए बाइख्तियार और खुद मुख्तार इदारे के तश्कील का मुतालबा किया गया था। बेंच ने मरकज से हलफनामा दायर करने को कहा है। अब इस मामले की आइंदा समाअत जुलाई के दूसरे हफ्ते में होगी। एडवोकेट जनरल तुषार मेहता ने बेंच से कहा है कि हुकूमत नौजवानों के लिए फिक्रमंद है और यह यकीनी करने के लिए पुरहद है कि आगे ऐसी कोई चूक ना हो। दरिया इस्लाम मरकजी वजीर बराए तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक का मामला बेहद अफसोसनाक है। DD न्यूज को दिए एक खसूसी इंटरव्यू में जनाब प्रधान ने यकीन दहानी कराई कि री एग्जाम का अमल बगैर किसी दिक्कत के मुनज्जम तरीके से मुनक़िद होगा।
6: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने री नीट की घोषणा किया है, री नीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
3: मरकजी सानवी तालीमी बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल यकम जून से एक्टिव हो जाएगा। दरख्वास्त करने के ख्वाहिशमंद तुलबा की आंसर शीट की तस्दीक और दोबारा तशखीस के शफाफ अमल को यकीनी करने के लिए यह पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इसमें तशखीस का आला मेयार कायम होगा। बोर्ड ने कहा है कि तुलबा किसी भी जानकारी के लिए CBSE की टेली काउंसलिंग हेल्पलाइन 1800-1108004 और रिजल्ट CBSE

0: 2026@cbseshiksha.in पर राब्ता कर सकते हैं। बीएड ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम कल दो मीटिंगों में मुनक्किद होगा। पहली मीटिंग सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी मीटिंग दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। इम्तिहान के लिए रियासत के 72 जिला में 1011 मराकज बनाए गए हैं, जहां तकरीबन 4.5 लाख लोग इम्तिहान देंगे। रियासत में गुज़िश्ता जुमेरात की रात से मौसम में आई तब्दीली से अवामी जिंदगी मुतासर हुई है। तेज़ आंधी तूफान बारिश और आसमानी बिजली से कई अज़ला में जानो माल का नुकसान हुआ है। कल शाम आगरा में आंधी और तेज़ बारिश के चलते एक खातून समेत 2 अफराद की मौत हो गई और कुछ दीगर जख्मी हो गए। जौनपुर में भी बारिश से दर्ज हरारत में गिरावट आई है। आंधी पानी से हुए नुकसान को लेकर वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने सभी जिला मजिस्ट्रेटों को फौरी फील्ड में जाकर सर्वे और राहती रकम जल्द जारी करने के अहकाम दिए हैं। वज़ीर आला ने रियासती अवाम से खराब मौसम के दौरान अलर्ट रहने, गैर जरूरी सफर से बचने और इंतजामिया के जरिए जारी गाइडलाइन पर अमल करने की अपील की है। इस दरमियान महकमा मौसमियात ने रियासत के कई हिस्सों में आज और कल तेज हवाओं के दरमियान बारिश और आसमानी बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नष्ट किया जाएगा।
1: मीडियम वेव के मीटर पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। बहनों के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम घर आंगन।

मंगन कार्यक्रम है तैयार और सब श्रोता पंचन का ममता के नमस्कार। श्रोता पंचो, गर्मी तो देखो भाई बहुत पड़ रही है। ई विषय पर भाई अभी हम आपसे फिर से चर्चा के विषय में चर्चा करब, मुला सबसे पहले एक और महत्वपूर्ण विषय पर हम आप सबसे चर्चा कर ली, विश्व तंबाकू निषेध दिवस जौन काल 31 मई का हर साल हमारे देश में मनावा जाता है। और इके लत भाई देखो कम उम्र से ज़्यादातर लड़कन बच्चन माँ युवा पीढ़ी माँ पर जाते है। इके खतरा मनई जाना तो है मूल बड़ी आसानी से संगत के असर कह लो या यह के लत घर माँ आजी बाबा नानी नाना कोई खात होए तो उका देख के पड़ जाते है कि देखी तनी कस होत है, बस धीरे धीरे पड़ गया आदत। तो यह लिए यह के उपयोग से कितना खतरा है, ई के उपयोग के खिलाफ लड़ाई खातिर काल के दिन मनाओ निश्चित भा कि आजकल युवा पीढ़ी और आवे वाली पीढ़ी ई तंबाकू के लत के शिकार ना होए, मने देश के मनई जागरूक होए और समाज नशा मुक्त रहे। पंचो, ई विश्व तंबाकू निषेध से पहले मने 25 से 31 तक तंबाकू निषेध सप्ताह मनत है। और देखो पंचो, ई वर्ष ई विषय दिवस के विषय मने थीम है निकोटिन और तंबाकू की लत का आकर्षण बेनकाब करें। और पंचो देखो, ई जो गंभीर समस्या है जो तंबाकू वाली है, ई पर देखो भाई हम आप सबसे फिर से बात करब। मले मुने भाई देखो कहे कि आज है भाई शनिवार मन भावन के दिन, फरमाइशी ईमेल और पाती पर आधारित लोकगीत सुनवाई थे आज आप सबका। तो चलो ईमेल और पाती पढ़े के लगा लगावा जाए। तो पहल ईमेल आवा है जिला रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से और भेजे वाले श्रोता पंचन के नाम है राज रामराज राजू भानु रामशंकर पत्रकार भाई वाले पप्पू रक्षा मौर्या रामसागर साहू। और एक और ईमेल आवा है ग्राम व पोस्ट ललहवा जिला खीरी से, भेजे वाले हैं विजय पाल यादव शुभम यादव शिखा यादव ऋचा यादव गुड़िया यादव सुरभि यादव राजेश कुमार व विजय पांडे जी। इन सबका हमार कार्यक्रम बहुत नीक लागत है और भाई देखो ये हमार नियमित श्रोता भी हैं। इन सबके फरमाइश पर चलो सुना जाए ये नेक गीत। स्वर है अम्बेश्वरी श्रीवास्तव बहनी एवं विमल पंत बहनी के।

0: से जन कल्याण।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: छोटा पंचो, जीवन मरण हमरे सबके हाथे में देखो दो होत नहीं है। मूला ये जीवन बहुत अनमोल है। उका हमका सबका गलत उरिया ले जाए के, गलत आदत डार के, खतरे मां ना डारे का चाहिए। तो ये तो सब हमरे हाथे में है कि नहीं। ये तंबाकू के सेवन जानलेवा भी साबित हो सकत है। ई के सेवन से अगर कैंसर जैस बीमारी भई है और अगर शुरुआत स्थिति में पता लाग जाए तो मने नीक हो जात है। जैसे पंचो हमरे एक बहन के लड़का जी के ई बीमारी भई।

साल भर पहले की बात है, तो उके मुँह के ऑपरेशन भा और वो अब देखो नीक है, लेकिन शुरुआत में पता चल गवा कि उका मुँह का कैंसर है, तो अब नीक है और अपन परिवार भी चला रहा है। और देखो कितना खुशहाल परिवार इस समय है कि भाई तकलीफ तो रही लेकिन जब नीक हुई के ठाड़ भा तो सबका बहुत खुशी भाई है। तो ये जो है जो उल्टा सीधा खाप अब छोड़ भी दीस है, अब कुछ नया खात है कि जिससे उका कोई आगे परेशानी हो। और वही दूसरी ओरिया एक अमरीका की रही, उनके ऑपरेशन भा रहा तो भाई वो जो है चल बसी, तो अब आज हमरे बीच वे नाई है। तो उनका कहा रहा कि आखिरी समय में उनके पता चला कि उनका भाई मुँह के कैंसर भावा है, वह जो है बीड़ी पियत रही। तो ये सब ना करे का चाहिए इसे भाई, देखो अपन तो दही बर्बाद होते हैं और जो है घर के जो मनई हैं उन्हों परेशान होते हैं। तो ये जो जो तम्बाकू से निर्मित बीड़ी हुक्का गुटका ये सब बहुत खतरनाक है और इसे कैंसर नहीं औरों कई बीमारी के भी खतरा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में देखो पंचो अब हूँ कहूँ कहूँ बहनी हो रही नशा पत्ती करती हैं, जैसे अभी हम बताएं हमारी काकी जो उन और जो है जो उन बहनी गर्भवती होती हैं बहनन का भाई देखो गर्भ माँ पल रहे शिशु दोनों खातिर खतरनाक होता है। तो इनके सेवन से फेफड़े के कैंसर हृदय रोग गर्भाशय के बीमारी ये सब के खतरा रहा है। तो कहे कि कहे ही जानलेवा चीज के जीवन सेवन की किन जाए भाई, पंचो प्रकृति हमका सबका कितना बढ़िया बढ़िया चीज दिया है, फल फूल तरकारी अनाज और तलब मिटावे का हो तो भाई सौंफ और लौंग इलायची गरी खा लो है कि नहीं। और अगर भाई जू करे तो भाई लगत है ना कि कुछ चबाए बहुत देर तक चाहिए तो चिंगम देखो कितना रेखा बच्चा सब यहाँ बार चबाए खावा करते हैं तो तू सब चबा लो है कि नहीं। तो पंचो हमका सबका मिल के यह के खिलाफ आवाज उठावे का चाहिए और जनमानस का जागरूक करके उनका उनके जीवन सुरक्षित करे के कोशिश करे का चाहिए। तो सब जागरूक हुई हैं यह है उम्मीद के साथ है कार्यक्रम में आगे बढ़ा जाए और कुछ सकारात्मक बात मने गीत गौनई और श्रोता पंचन के पाती पढ़ा जाए। तो अगला ईमेल आवा है दिल्ली से भेजे वाले श्रोता पंच हैं कुमार तुषार भानु शांतनु विकास अनुग्रह विक्रांत भव्या सौम्या और उनके संगी साथी। और एक और भाई देखो पाती आई है डाक द्वारा बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ से भेजे वाले हैं श्रोता पंच रामचंद्र माखीजा श्रीमती सविता बेबी स्वाति माखीजा एवं पूरा माखीजा कुटुम्ब। इन सब के फरमाइश पर चलो सुना जाए इन नक्टा स्वर है मधु श्रीवास्तव एवं सुषमा प्रकाश बहिनी के।

हाँ श्वेता पंचो, देखो ये गीत गौनई सुन के जूगा कितना आनंद आ जात है। काहे कि भाई देखो गर्मी तो है और हम सभी जो है त्रस्त हैं इसे। भाई नौतपा जी जौन आजकल चल रहे हैं ये बिच्छे बहनी देखो, सूर्य देव के किरण धरती पर लंबवत परत है जिसे तापमान बढ़ जात है, जिसे भीषण गर्मी परत है। और देखो ये गर्मी से भाई देखो 2 रोज से तनी राहतों मिली है, कहूँ जूड़ बयार तो कहूँ बरखा, भाई जिसे हम सबका राहत भी मिली। तो भाई चलो अब तनी श्रोता पंचन के ईमेल पढ़ के और फरमाइशी लोकगीत सुनवाए के उन्हों का राहत दे दिन जाए, है कि नहीं। तो अब अगली ईमेल है जो आई है गौरपुर बमना खेड़ा जिला हरदोई से, भेजे वाले श्रोता पंच है नेहा वर्मा, अर्पिता, हर्षिता, अंजलि, सुधाकर, कोमल, सियाराम। और एक और ईमेल आवा है लालगंज रायबरेली उत्तर प्रदेश से, भेजे वाले श्रोतापंच हैं तुलसीराम गुप्ता, पंकज गुप्ता, शिवा गुप्ता, देवता दीन मास्टर जी, बेनी जी, आकांक्षा, अंशिका, शारदा जी। इस सब श्रोता पंच ई किसानी गीत सुने के इच्छा रखत हैं। तो चलो सुनो ई प्रियंका पांडे बहनी के स्वरमा किसानी गीत।

तो देखो कतना अनौनी मनौनी करिन है परदेश न जाए खातिर, सगरे तरकारी खवाए खुश करी हैं इ गर्मी माँ। श्रोता पंचो देखो गर्मी के साथे लू भी भयंकर चलत है, तो यह हमसे भी बचाव भी बहुत जरूरी है। तो देखो जरूरी ना हो तो भाई 11-12 बजे के बीचे से लेके 3-4 बजे के बीच तक ना निकलें। अगर बहुत जरूरी है भाई तो भाई करिया ऐनक लगाए के निकलें, लड़कन बच्चन का उढ़ाए बिढ़ाए टोपी ओपी लगाए के निकलें, पानी लगे जरूर धरे रहें। देखो बाजारे में मौसमी फल जो उन पानी वाले होते हैं जो मने तरबूज खरबूजा खीरा लीची ये सबके सेवन ज़्यादा करें, और भाई इससे पानी के कमी के पूर्ति होते है। और यह के साथ है छाछ नारियल पानी नींबू पानी ये सब के भी सेवन बिरिया बिरिया पर करत रहें। इस सब के सेवन से लू के असर भी कम होते है जल्दी और ना ही होते है, और देही में देखो जो कहा होते है पानी के कमी भी ना ही होते है। तो अब भाई फिर से श्रोता पंचन के पाती पढ़ा जाए। ई मेल आवा है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे राधेश्याम नागनपुरे वंदना भावना बिंदु गोलू कुसुमबाई बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार ढाक से। और अब यह यही माँ एक और ईमेल ग्राम खैगांव तहसील महेश्वर से है भेजे वाले हैं श्रोता पंच प्रेम लाल वर्मा वेदिका वंश निकेश धर्मेंद्र मेघा नंदिनी हर्षिता ममताबाई वर्मा। और इनके साथ एक और ईमेल है रिंग रोड नर्मदा नगर से सूरज वर्मा नीरज शिवम धीरज चिंता वर्मा ऋषभ कनक और भावना वर्मा। इन सब के फरमाइश पर आप सब सुनो अलका चतुर्वेदी बहनी के स्वर्मा इस सोहर।

और श्रोतापन जो देखो, ये गर्मी के मौसम में हम सबका तो भाई पानी ज़्यादा पियहीन का चाहिए। मुला हम सबका हराहा गोरू चिरैया चिंगूर सबके खातिर दाना पानी रखे का चाहिए, है कि नहीं? देखो हमका हम लोग ना दे तो उनका के दे। तो बहिरे अगर नाद वाद हो को बनवाइल के धैले, यह टब धैले बाल्टी धैले उमा पानी भर के धै दे कि आवें पी के चले जाएँ। और चिरैया चिंगूर खातिर ऊपर छज्जा पर पानी धै दे, दाना धै दे। और श्रोतापन जो देखो भाई, प्यास तो भाई सबका लागत है, तो सबके प्यास बुझे और उनके आशीष मिले। और यही के साथ है अब भाई देखो आगे फिर से, और देखो आम के भाई सीजन चल रहा है आजकल, मौसम बहुत है। तो यही के मेरे यही मेरे देखो एक फरमाइश आई है आजमगढ़ से, भेजे वाले श्रोता पंच हैं गरिमा, शिखा, गुन्नू, चंचल, मान्या, श्रेया और उनके संगी साथी। मौसम भाई आमे पर है, लोकगीत उनका सुना चाहत हैं। तो कहरवा स्वर सुनो आप सब, स्वर है लक्ष्मी जोशी एवं नवनीता जफा बहनी के।

और देखो भाई आम से कितना चीज बनाता है कि नहीं। तो अब भाई देखो कार्यक्रम आगे बढ़ी और जल्दी से एक अंतिम ईमेल पढ़ ली जाए जो नावा है ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से भेजे वाले श्रोता पंच हैं राम शरण विश्वकर्मा साहिल विश्वकर्मा मंजू रंजना वंदना प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा। इन सब का हमारा कार्यक्रम भाई बहुत नीक लागत है और ये सब श्रोता पंच नक्टा सुने के फर...

कार्यक्रम सुनने वाले सभी फौजी भाइयों को जय हिंद। पहला गीत जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, उसके लिए हमें मेल आया है गांव हांडी खेड़ा जिला सिरसा से। श्रोता हैं राधेश्याम, इंदिरा और सार्थक शर्मा। इसी गीत के लिए हमारे पास एक पत्र आया है मध्य प्रदेश से, भेजा है रघुनाथ, मालवीय, रीना, सुषमा, दुर्गा, परी, आयुष, सुभाष, मधुबाला, राम मिलन और ओम प्रकाश ने। तो आइए सुन लेते हैं आप सभी की पसंद पर अनोखी अदब फिल्म का ये गीत, जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी ने, साथ दिया है लता मंगेशकर जी ने।

राजेश, संदीप, किशोर, सचिन का मेल आया है बनोसा दरियापुर महाराष्ट्र से, और एक पत्र हमारे पास आया है देवरी भाटापारा से गन्नू लाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा और गणेश मिस्त्री का। भाटापारा से दान सिंह रावत, दानू, पद्मिनी रावत, शुभम और सौरभ रावत का। और एक मेल हमारे पास है मोनू सेठ का, ये लिखते हैं, तिरंगा सुनाता है हमारी संघर्ष गाथा, तिरंगा सुनाता है हमारी संघर्ष गाथा, केसरिया रंग साहस व बलिदान दिखाता, सफ़ेद रंग सच्चाई व शांति की रोशनी बिखेरता, हरा रंग खुशी व हरियाली को दर्शाता। और ये सुनना चाहते हैं तिरंगा फिल्म से ये गीत, तो हम इनके लिए पेश कर रहे हैं इनकी पसंद का ये गीत।

आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जवानों के लिए, जो आधारित होता है पत्र और ईमेल पर। और ये अगला मेल जो हमारे पास आया है वो है रायबरेली से। रामराज, राजू, भानु, रामशंकर, पत्रकार बहाई वाले, रक्षा मौर्य, रामसागर साहू और सज्जन लाल यादव का आप सभी ने सुनना चाहा है तेजाब फिल्म का गीत। आवाज़ें हैं सुदेश भोसले और अनुराधा पौडवाल की। तो हम आपकी पसंद का गीत आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। उससे पहले एक मेल और हमारे पास है। टीडी मल्होत्रा, ऋत्विक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप का आपने मेल किया है मोहाली चंडीगढ़ से। कालका से मेल आया है शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज का। तो आइए सुन लेते हैं आप सभी की फरमाइश पर ये गीत जिसे हमने लिया है तेजाब फिल्म से। आवाज़ें हैं सुदेश भोसले और अनुराधा पौडवाल की।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जवानों के लिए। अगला मेल जो आया है वो है किसान रेडियो क्लब ग्राम पोस्ट ललहुआ जिला खीरी से। श्रोता हैं विजय पाल यादव, शुभम यादव, रिचा सुरभि गुड़िया, राजेश कुमार और विजय पांडे जी। ये लिखते हैं, मीठे बोल बोलिए क्योंकि अल्फाजों में जान होती है, इन्हीं से आरती अरदास और अजान होती है। ये दिल के समंदर के वो मोती हैं जिससे इंसान की पहचान होती है। बिल्कुल सही बात है विजय पाल जी कि अगर हम अच्छा बोलते हैं, मीठा बोलते हैं तो वो हमारी पहचान बनता है, हमारे संस्कारों की झलक होती है हमारी वाणी। और आप सभी लिखते हैं कि हमारे यहाँ से प्रसारित कार्यक्रम यानी आकाशवाणी लखनऊ से प्रसारित कार्यक्रम इन्हें बेहद पसंद आते हैं और ये हमारे नियमित श्रोता हैं। और आज इन्हें पसंद है हिमालय की गोद में फिल्म का गीत। गीत के बोल हैं, एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, आवाज़ है लता मंगेशकर की। तो हम आपकी पसंद का गीत आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। उससे पहले एक मेल और शामिल करते हैं जो आया है जसवाड़ी ज़िला खंडवा मध्य प्रदेश से। श्रोता हैं दुर्गेश नागनपुरे, राधे श्याम, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार ढाक से। तो आइए आप सभी के लिए हम सुनवा देते हैं हिमालय की गोद में फिल्म का ये गीत।

0: ग्राम कैथनपुरवा पोस्ट सातनपुरवा जिला अमेठी से एक पत्र आया है प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, शीतल तरंग श्रीवास्तव, शिव बख्श सिंह और गोविंद सिंह का। एक और पत्र है राजेश कुमार मिश्र, राकेश कुमार, अनुराग, अंशुल, आस्था, अंजलि और केशरी मिश्र का, ग्राम नरहरपुर पोस्ट सिमरी पुरुषोत्तमपुर जिला सुल्तानपुर से। और एक मेल हमारे पास आया है विजय लक्ष्मी कुशवाहा का, सांडी जनपद हरदोई से। ये लिखती हैं कि आपके यहाँ से प्रसारित कार्यक्रम हमें बहुत ही पसंद आते हैं, हम आपके यहाँ के नियमित श्रोता हैं और हर दिन मेल भी करते हैं, कभी कभी हमारा फ़ोन भी लग जाता है, लेकिन हम आपके कार्यक्रमों से हमेशा जुड़े रहते हैं। तो विजय लक्ष्मी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक मेल हमारे पास और है जो है मलियान सरधना मेरठ से, और श्रोता हैं अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान जैन और जीवयम जैन। आप सभी ने सुनना चाहा है ब्रह्मचारी फिल्म का गीत, बोल हैं दिल के झरोखे में तुझको बिठाकर। तो आइए सुन लेते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
1: दिल के झरो

0: जवानों के लिए। अभी आप सुन रहे थे पत्र और ईमेल पर आधारित ये कार्यक्रम। मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। दोपहर के 2:15 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दोपहर समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, आवश्यकता पड़ने पर भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार। म्यांमार के राष्ट्रपति ओमिन आउल लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे, महाबोधि मंदिर में की पूजा अर्चना। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज दोपहर बाद बेंगलुरु में, नए नेता का होगा चुनाव। बिहार में आंधी बारिश और बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने कहा, अगर समझौते के प्रयास विफल होते हैं तो अमेरिका ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करेगा। और महिला क्रिकेट में आज ब्रिस्टल में 3 मैचों की T20 श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर है और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार है। पुणे के खड़गवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के 150वें बैच की पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ये अभियान अब भी जारी है।
2: As far as Operation Sindoor is concerned,
3: जहां तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, ये अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है, साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
1: जनरल द्विवेदी ने पास आउट होने वाले कैडेटों से व्यावसायिकता, नेतृत्व और राष्ट्र सेवक के उच्चतम मानकों को बनाए रखने का आग्रह किया। सेना प्रमुख ने इस पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण होने वाली महिला कैडेटों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि साहस, दृढ़ संकल्प और सैन्य उत्कृष्टता लिंग भेद रहित गुण है। अकादमी से कुल 353 कैडेटों ने स्नातक की उपाधि प्राप्त की। मित्र विदेशी देशों के 21 कैडेटों को भी डिग्री प्रदान की गई। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है।
4: मेरे लिए ये बहुत सम्मान की बात है कि मुझे तीनों सेनाओं से गार्ड ऑफ ऑनर लेने का अवसर मिला। इसके लिए मैं तीनों सेनाओं और सेना मुख्यालय को धन्यवाद देता हूँ। गार्ड ऑफ ऑनर के समापन के साथ मैं वर्दी में अपने साथियों से विदाई लेता हूँ। मैंने वर्दी में अंतिम बार समर स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया। ये उन वीर सैनिकों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया।

हसरत जयपुरी के लिखे मोहम्मद रफ़ी के गाए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम जवानों के लिए अब समाप्त होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी फौजी भाइयों को जय हिंद।

0: के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है।
1: म्यांमार के राष्ट्रपति आज सुबह 9 बजे विशेष विमान से गयाजी एयरपोर्ट पहुंचे। गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने पर बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और अन्य अधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। पदभार संभालने के बाद यह उनकी पहली विदेश यात्रा है। राष्ट्रपति यू मीन आंग हलाइंग विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर और बकरौर स्थित ऐतिहासिक सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना किया। साथ ही वे म्यांमार के विभिन्न बौद्ध मठों का भी दौरा किया। राष्ट्रपति के साथ उच्च स्तरीय अधिकारियों और बौद्ध प्रतिनिधियों का एक शिष्टमंडल भी मौजूद था। म्यांमार के राष्ट्रपति के आगमन को देखते हुए महाबोधि मंदिर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। आकाशवाणी समाचार के लिए गया जी से धर्मवीर भारती।
0: राष्ट्रपति ओमी नाउलाइन आज शाम नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से भी वो मुलाकात करेंगे। म्यांमार के राष्ट्रपति कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में शामिल हो सकते हैं। राष्ट्रपति ऊ सोमवार को दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यगत संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चर्चा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने आज शाम बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक करेंगे। इसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री डीके शिवकुमार को कांग्रेस विधानसभा पार्टी के नए नेता के रूप में औपचारिक रूप से निर्वाचित किए जाने की संभावना है।
2: आज डीके शिवकुमार राज्यपाल तावरचंद गहलोत से मिले। स्वेयरिंग इन सेरेमनी के दिनांक और जगह के बारे में चर्चा करने वे लोक भवन गए थे। इस बार युवा विधायकों को अवसर मिलने की संभावना है। अगले महीने राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव होने के कारण जल्दी से जल्दी सरकार बनाने का प्रक्रिया समाप्त करने पर गौर किया जा रहा है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: कांग्रेस के 136 विधायकों को विधानसभा बैठक में उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। AICC महासचिव और कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह गुर्जेवाला कार्यवाही का अवलोकन करेंगे। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष ज्ञान पुनरीक्षण SIR अभियान शुरू हो गया है। एक महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि भारत में चुनाव संविधान, चुनावी कानून और निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पारदर्शी दिशा निर्देशों के अनुसार ही कराए जाते हैं। नई दिल्ली स्थित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन में श्री कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनावों के दौरान पारदर्शिता, जवाबदेही और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए लगभग 1,08,00,000 कर्मियों को तैनात किया जाता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की परीक्षा पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि उसके साझेदार TCS की तकनीकी खराबी के कारण आज कुछ परीक्षा केंद्रों पर संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET UG 2026 की शुरुआत देरी से हुई। NTA ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि समस्या का समाधान हो गया है और ये सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी छात्र को असुविधा न हो, परीक्षा पूर्ण समय सीमा के साथ आयोजित की जा रही है। एजेंसी ने बताया कि दोपहर के सत्र का समय संशोधित किया गया है। विद्यार्थियों को दोपहर 2:30 बजे से प्रवेश दिया जाएगा, जबकि परीक्षा निर्धारित समय 3 बजे के बजाय 4 बजे से शुरू होगी। केंद्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2023 के परिणामों के संबंध में भ्रामक विज्ञापन देने के लिए एक निजी कोचिंग सेंटर पर 7,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण ने अब तक कोचिंग संस्थानों को 60 से अधिक नोटिस जारी किए हैं और 1,46,00,000 रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया है। स्वास्थ्य शिशु कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जारी किया है। ये सर्वेक्षण 2023-24 में किया गया था। इसमें 715 जिलों के 6,79,000 परिवारों को शामिल किया गया।

0: गोवा ने आज पणजी स्थित कला अकादमी में 40वां राज्य स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर सभा में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने गोवा को एक आदर्श राज्य बताया जिसने विकास और अपनी समृद्ध संस्कृति को संरक्षित रखा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज कहा कि गोवा इस बात का प्रेरणादायी उदाहरण है कि पहचान और प्रगति साथ साथ कैसे आगे बढ़ सकती हैं। पणजी के कला अकादमी में गोवा के 40वें राज्य स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गोवा ने आधुनिक विकास को अपनाते हुए अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सफलतापूर्वक संरक्षित रखा है। गोवा केवल एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान, सामाजिक सद्भाव और बौद्धिक खुलेपन से निर्मित एक जीवंत सभ्यता है। इससे पहले उपराष्ट्रपति ने प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट मारियो मिरांडा पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, स्मारक डाक टिकट और विशेष आवरण जारी किए, पुरस्कार और नियुक्ति पत्र वितरित किए तथा दीनदयाल स्वास्थ्य सेवा योजना के अंतर्गत बढ़ी हुई सहायता का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विकसित गोवा आवश्यक है। महेश चोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने कहा है कि अगर समझौते के प्रयास विफल होते हैं तो अमेरिका के सेना ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। एशिया के प्रमुख सुरक्षा मंच शांग्रीला संवाद में श्री हेक्सेथ ने कहा कि जरूरत पड़ने पर ऐसे अभियान संचालित करने के लिए अमेरिका के पास क्षेत्र और दुनिया भर में पर्याप्त सैन्य भंडार मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि देश किसी भी आपात स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। श्री हेक्सेथ ने कहा कि ईरान के साथ संघर्ष में शामिल होने के बावजूद अमेरिका एशिया प्रशांत क्षेत्र के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता बनाए हुए है। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अपने शीर्ष सलाहकारों के साथ 2 घंटे की बैठक की। इसमें ईरान के साथ युद्ध विराम बढ़ाने के उद्देश्य से समझौते की संभावना पर चर्चा की गई। सिचुएशन रूम में हुई बैठक को स्पष्ट निर्णय लिए बिना समाप्त हो गई। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड और तटीय कर्नाटक में भी वर्षा की संभावना है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में ओले पड़ने का अनुमान है। पश्चिमी मध्य प्रदेश और तेलंगाना में आज लू चल सकती है। उधर बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत की खबर है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मृतकों के प्रति दुख व्यक्त किया है और परिजनों को 4 लाख रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की है। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। वर्ष 1826 में आज ही के दिन हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था। एक रिपोर्ट।
2: उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक और संस्थापक पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। उन्होंने हिंदुस्तानियों के हित के हेत जैसे अमर संकल्प और भारतीय पत्रकारिता की नींव रखने वाले ध्येय वाक्य के साथ उदंत मार्तंड समाचार पत्र की कोलकाता के बड़ा बाजार इलाके से नींव रखी। उस दौर में जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था तब हिंदी में समाचार पत्र निकालना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। उदंत मार्तंड से शुरू हुआ ये सफर आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे बड़ा औजार बना। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी समाचार पत्रों और पत्रिकाओं ने जनमानस के भीतर स्वाधीनता का भाव जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 4 दिसंबर 1827 को उदंत मार्तंड का अंतिम अंक प्रकाशित हुआ जिसमें श्री शुक्ल ने लिखा कि आज दिवस लो उग्यो मार्तंड उदंत, अस्ताचल को जात है दिनकर दिन अब अंत। समाचार पत्रों से शुरू हुआ सफर आज रेडियो, टेलीविजन, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया तक पहुंच चुका है। हालांकि इस बदलाव के साथ पत्रकारिता की जिम्मेदारियां भी बड़ी हैं। हिंदी पत्रकारिता दिवस अवसर है उन पत्रकारों और संपादकों को याद करने का जिन्होंने अपने लेखन और साहस से समाज को नई दिशा दी। साहस की कलम से किसी ने क्या खूब लिखा है, खींचो ना कमानों को ना तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो।
0: भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज ब्रिस्टल में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।

सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, आवश्यकता पड़ने पर भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार। म्यांमार के राष्ट्रपति ओमेनाउ लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे, महाबोधि मंदिर में की पूजा अर्चना। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज दोपहर बाद बेंगलुरु में, नए नेता का होगा चुनाव। बिहार में आंधी बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत। और महिला क्रिकेट में आज ब्रिस्टल में 3 मैचों की T20 श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: मीडियम वेव के मीटर पर आपने ट्यून किया है आकाश फागल का लखनऊ केंद्र। 2:30 हो चुके हैं। विज्ञान और किसान कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं सनई ढैचा की उन्नत खेती विषय पर डॉक्टर देवेश पाठक से की गई भेंट वार्ता। भेंट कर रहे हैं डॉक्टर सुशील कुमार राय।
1: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, जहां हरी खाद के लिए सनई ढैचा की उन्नत खेती करना चाहते हैं तो इसकी क्या कुछ संभावना है, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र कठौरा अमेठी से वैज्ञानिक डॉक्टर देवेश पाठक। स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जहां हरी खाद के लिए किसान भाई बहन सनई ढैचा की खेती करना चाहते हैं तो क्या कुछ संभावना है?
2: जी धन्यवाद सर। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, जब हम सनई और ढैचा की खेती के बारे में बात करते हैं तो ये मुख्यतः क्या है कि दलहनी वर्ग की फसलें होती हैं जिनकी जड़ों में राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं जो वायुमंडल की जो नाइट्रोजन होती है उसको मिट्टी

0: नत्रजन प्राप्त होता है हरी खाद के तौर पे।
1: और ढैंचा से?
0: ढैंचा से बात करें तो ढैंचा भी हमारा एज इट रहता है, इसका मतलब हम लोग मतलब उसकी वैल्यू की बात करें तो ये भी हमारा क्या है 35 से 40 किलोग्राम प्रति एकड़ मतलब हमको क्या है नत्रजन देता है, 8 से 16 किलो प्रति एकड़ हमारा जो है फास्फोरस या पोटास है, 15 से 20 किलो प्रति एकड़ हमारा क्या है पोटास इसमें मिट्टी से प्राप्त होता है अगर हरी खाद के तौर पर हम इसको उपयोग करते हैं तो।
1: यानी खेत में ऐड होता है
0: जी
1: जो अगली फसल के काम
0: जो अगली फसल के लिए, अगर जैसे इस समय की बात करें तो खरीफ मौसम का हमारा ये सीजन चल रहा है हमारे किसान भाइयों का, अगर धान की नर्सरी का प्रयोग कर चुके हैं, बहुत सारे किसान भाई हमारे धान की नर्सरी भी लगा चुके होंगे, उसकी मतलब उसमें अगर नत्रजन की प्रतिपूर्ति करना है तो सनई और ढैंचा की खेती उनके लिए उपयुक्त समय है इस समय उसका।
1: लेकिन नर्सरी डालने के 15 दिन पहले डालें तो ज्यादा अच्छा रहे?
0: जी जो इसका जो बेस्ट टाइमिंग है वो मई के अंतिम सप्ताह से लेके जून के प्रथम सप्ताह तक हम इसकी बुआई कर देना चाहिए,
1: यानी सबसे उपयुक्त समय चल रहा है
0: जी।
1: जहां भी किसान भाइयों बहनों को हरी खाद के लिए सनई ढैंचा की बुआई करनी है तो इस सप्ताह में जरूर बुआई,
0: जरूर से जरूर बुआई कर देना।
1: डॉक्टर साहब, उन्नत प्रजातियां कौन कौन सी हैं सनई की और ढैंचा की?
0: सनई और ढैंचा की जो हमारी पहली बात तो हमको ये ध्यान देना है कि हम प्रमाणित बीजों का चयन करें, साथ ही साथ बीज जो है हमारे रोग मुक्त होने चाहिए। अगर हम सनई की उन्नत सील प्रजाति की बात करें तो हमारा K12 एलो है, हमारा M13 है, DSH4 है। अगर हम ढैंचा की बात करें तो हमारी नरेंद्र ढैंचा 1 है, हमारी पंत ढैंचा है, हिसार ढैंचा है आदि, ये प्रमुख जो हमारी कुछ प्रमुख उन्नतशील प्रजातियां हैं सनई ढैंचा की, जो हम इसकी बुआई करके हम अपनी खेतों की नत्रजन और ऑर्गेनिक कार्बन और जैविक कार्बन की प्रतिपूर्ति कर सकते हैं।
1: और इसके अलावा स्थानीय प्रजातियां किसान भाइयों बहनों के पास पहले से मौजूद हैं?
0: जी डॉक्टर साहब बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, वो सारी प्रजातियां उनके पास पहले से भी मौजूद, वो भी प्रयोग में ला सकते हैं।
1: तो जहां भी हरी खाद के लिए सनई या ढैंचा की बुआई करनी है तो खेत का चुनाव और खेत की तैयारी में क्या कुछ खास करना है, पलेवा भी करना होगा?
0: जी अगर हम खेत की तैयारी की बात करें तो हमको क्या है 1 से 2 गहरी जुताई करने के बाद 2 से 3 हल्की जुताई कर लें, उसके बाद मिट्टी को हम क्या है भुरभुरी बना लें, भुरभुरी बनाने के बाद हमको खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए इसकी बुआई के लिए, और जो बीज की मात्रा है वो हम प्रति एकड़ के हिसाब से देखें तो 15 से 20 किलो प्रति एकड़ बीज की मात्रा सनई और ढैंचा दोनों की ले सकते हैं।
1: 15 से 20 किलो प्रति एकड़?
0: प्रति एकड़।
1: बुआई का तरीका क्या होगा?
0: बुआई का तरीका 2 विधियां हैं, जैसे बहुत सामान्यता विधि है छिटकवा विधि है हमारे बीच में। अगर हमारे किसान भाई लाइन सोइंग करना चाहते हैं तो कतार से कतार की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर और बीज की गहराई 3 से 5 सेंटीमीटर रखनी चाहिए।
1: अच्छा, फसल की भूख मिटाने के लिए कुछ खाद और उर्वरक की मात्रा भी देनी होगी?
0: जी डॉक्टर साहब, खाद प्रबंधन के तौर पे अगर हम देखें तो क्योंकि ये हमारी दलहनी फसलें हैं इनमें नत्रजन की बहुत आवश्यकता नहीं होती है,
1: लेकिन
0: प्रारंभिक दिवस में हम क्या है 8 से 10 किलो प्रति एकड़ नत्रजन और 15 से 20 किलो प्रति एकड़ फॉस्फोरस बुआई के समय डाल सकते हैं,
1: यानी बेसल डोज
0: में डाल सकते हैं
1: जब खेत की तैयारी कर रहे हैं अंतिम जुताई के समय।
0: अगर हम FOIM के तौर पे ले रहे हैं
1: यानी देसी खाद
0: गोबर की खाद का प्रयोग अगर कर रहे हैं तो 2 से 3 ट्राली प्रति एकड़ या अगर हम उसको करें तो 6 से 8 टन प्रति एकड़ हम गोबर की खाद का प्रयोग खेत की तैयारी के समय सनई ढैंचा की खेती के लिए प्रयोग कर सकते हैं।
1: यानी 60 से 80 कुंतल अगर गोबर की सड़ी खाद है, लगभग 2-3 ट्राली होगी, उसको अगर खेत की तैयारी के समय मिला दें तो इससे ताकत मिलेगी?
0: जी, इससे क्या है हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी, साथ ही साथ हमारी मिट्टी की जो फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी है वो भी सही होगी, साथ ही साथ जो मिट्टी की जल धारण क्षमता है, वायु संचार का जो माध्यम है मिट्टी में, वो भी क्या है उससे उपयुक्त माना जाएगा।
1: तो कितने दिन बाद हरी खाद के रूप में पलटाई होगी सनई या ढैंचा की? डॉक्टर साहब
0: आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है, ये जो बिंदु है इसमें बहुत सारे किसान भाई हमारे कंफ्यूज हो जाते हैं। हमको हरी खाद के तौर में अगर हम सनई ढैंचा का प्रयोग कर रहे हैं तो खेत में फूल आने से पहले यानी
1: ठीक पहले
0: 40 से 45 दिन बाद खेतों में उसकी पलटाई कर देनी चाहिए, हैरो या रोटावेटर से हम उसकी क्या कहते हैं खेत में पलटाई कर देंगे। अगर उसकी पलटाई हम खेत में फूल आने से पहले कर देते हैं तो हमारे खेत में जैविक कार्बन की मात्रा पर्याप्त मात्रा उसको मिट्टी को मिल जाएगी
1: और बायोमास भी मुलायम होगा
0: अगर इस बात का हमारे किसान भाई विशेष ध्यान दे कि अगर जब हम 40 से 45 दिन पहले करते हैं तो हमारा जो वो तना है उसका मुलायम होता है, अगर उसको यही चीज अगर हम बाद में करेंगे तो कठोरता की वजह से उसका अपघटन आसानी से नहीं होगा मिट्टी में,
1: यानी सड़ान देर से होगी,
0: जो कि उसके लिए क्या है कि अगर हम बीज के तौर पे तैयार कर रहे हैं तब हम इसको ध्यान में दें, अदरवाइज अगर हम हरी खाद के रूप में इसका प्रयोग करना चाह रहे हैं तो 40 से 45 दिन से पहले हमको क्या है उसके 40 से 45 दिन बाद उसकी पलटाई खेतों में कर देनी चाहिए।
1: जब हरी खाद के रूप में सनई और ढेंचा की पलटाई करेंगे तो कौन कौन सी विशेष बातें हैं जो ध्यान में रखना है?
0: उसमें हमको ये देखना है कि हमारी मिट्टी में पर्याप्त नमी होनी चाहिए, साथ ही साथ अगर हमारा जो खेत है उसमें नमी पर्याप्त मात्रा में बनी होनी चाहिए,
1: यानी पलटाई के बाद पानी
0: की जरूरत पड़ती है, हम उसको पानी डालने के बाद उसको अपघटन के लिए पानी की आवश्यकता होती है, तो पानी का खेत में रहना बहुत आवश्यक है।
1: क्या यूरिया का प्रयोग भी फायदेमंद होगा?
0: बहुत सारे किसान भाई हमारे पूसा डिकम्पोजर का भी प्रयोग करते हैं गलाने के लिए पानी, यूरिया का भी प्रयोग करते हैं, ये डिपेंड करता है उनकी कि हाँ अगर अपघटन तेजी से लाना है तो हम इसका प्रयोग कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे सनई ढेंचा की उन्नत खेती के बारे में, अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें या आपके कृषि विज्ञान केंद्र कठौरा अमेठी आना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: जी सर, अगर इस विषय में किसी को कोई भी जानकारी हमारे किसान भाइयों को चाहिए तो वो हमारे मोबाइल नंबर पर निश्चित मतलब बात कर सकते हैं, जो कि मेरा मोबाइल नंबर है वो है 88 87 58 58 82। इसके साथ ही साथ अंग्रेजी में बात करें तो 8887585882।
1: एक बार और हिंदी में,
0: 88 87 58 58 82, ये हमारा मोबाइल नंबर है, इस पर भी आप संपर्क करके हमसे अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपके निकटतम हमारे अगर सुलभता हो तो आप हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में भी विजिट करके आप इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
1: चलते चलते और क्या आह्वान करना चाहते हैं किसान भाइयों बहनों का सनई ढेंचा की उन्नत खेती के बारे में? डॉक्टर साहब,
0: सनई ढेंचा जो है हमारी बहुत ही मतलब अगर खरीफ मौसम की बात करें तो हरी खाद के तौर पे अगर हम सनई ढेंचा का प्रयोग हमारे किसान भाई करते हैं तो उनको सबसे बड़ा जो है वो टिकाऊ खेती की तरफ बढ़ेंगे, साथ ही साथ अगर हम बात करें तो रासायनिक उर्वरकों की उपलब्धता जो है उनकी कम होगी, लागत कम होगी,
1: निर्भरता कम होगी
0: और उनकी क्या है लागत में कमी आएगी, जो सबसे बड़ा वेटेज है आज के किसान भाइयों का, क्योंकि हमारी आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा क्या है बीमारियों में जा रहा है, अगर हम लागत कम कर ले जाएं तो हमें उत्पादन और अधिक और सर्वाधिक प्राप्त हो सकता है
1: और खेत का हीमोग्लोबिन भी बढ़ेगा। जब खेत का हीमोग्लोबिन बढ़ेगा सनई ढेंचा के चलते हरी खाद के रूप में, तो निश्चित रूप से जो रासायनिक खाद का प्रयोग आप करेंगे उसका भी असर दिखेगा, फसल की भूख मिटेगी, खेत की भूख मिटेगी। डॉक्टर देवेश पाठक, आज आप कार्यक्रम में आए और सनई ढेंचा की उन्नत खेती कैसे करें किसान भाई बहन और उसकी हरी खाद के रूप में पलटाई कैसे करें ताकि खेत की ताकत बढ़े, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।
2: सनई ढेंचा की उन्नत खेती, अभी आपने डॉक्टर देवेश पाठक से डॉक्टर सुशील कुमार राय की ये भेंट वार्ता सुनी। कार्यक्रम था विज्ञान और किसान। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।
3: बात सेहत की हो या हुनर को तराशने की, खोजने हो प्रगति के पर, या करना हो अपना उद्यम, सरोकार है उन सब से जिससे निखरे आपकी पहचान और मिले आपको एक नई उड़ान। उड़ान सुनिए हर शाम 5:45 से मीडियम वेव 747 किलोहर्ट्ज़ आकाशवाणी लखनऊ पर।
2: श्रोताओं, हम आपको एक बार फिर से बता दें, लोकायतन कार्यक्रम में शाम 6:30 पर आप सुनेंगे भेंटवार्ता प्रधानमंत्री आवास योजना से बदलता गांव। जानकारी देंगे अजीत प्रताप सिंह और इनसे बातचीत करेंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय।

गन्ने की फसल में समन्वित कीट प्रबंधन, ये भेंटवार्ता सुनवाई जाएगी खेती किसानी कार्यक्रम में शाम 6:50 पर। जानकारी देंगे डॉक्टर सुजीत प्रताप सिंह और इनसे बात करेंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय।

कार्यक्रम विज्ञान जगत में शाम 7:31 पर आज का आकर्षण रहेगा, भेंट वार्ता, कैसे तकनीक और अनुसंधान से समर रहा प्रदेश। विशेषज्ञ होंगे रमेश चंद्र, विशेष सचिव विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग उत्तर प्रदेश। भेंटकर्ता होंगे प्रवीण कुमार। तो सुनना ना भूलें कार्यक्रम विज्ञान जगत, समय शाम 7:31।

हिंदी कार्यक्रम में आज आपके लिए खास रहेगा वार्ता, हिंदी पत्रकारिता का गौरवशाली इतिहास। वार्ताकार होंगे सुरेंद्र अग्निहोत्री। समय याद रखें, रात्रि 8 बजे कार्यक्रम रहेगा हिंदी।

शाम में अवध शाम 7:45 पर, रात्रि 8:10 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम, जिसमें आज आपको सुनवाएंगे स्वाति रिजवी की गाई चंद गजलें।

0: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे, होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, इतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
1: मीडियम वेव के मीटर पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। लोक संगीत के कार्यक्रम लोक माधुरी में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं सीमा वर्मा और डॉक्टर विजय लक्ष्मी के गाए युगल औधी लोकगीत। आरंभ करते हैं इनके गाए लोक भजन से।

मुंदरिया पायो कहाँ। अभी आपने सीमा वर्मा और डॉक्टर विजय लक्ष्मी के स्वर में सुन रहे थे ये लोक भजन। आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से कार्यक्रम चल रहा है लोक माधुरी। आइए अब सुन लेते हैं सोहर।

लोक माधुरी कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे सीमा वर्मा और डॉक्टर विजय लक्ष्मी के गाए युगल औधी लोकगीत। संगत कलाकार थे नाल पर अवध बिहारी वर्मा, ढोलक पर राजेश शुक्ला, हारमोनियम पर संतोष तिवारी, बांसुरी बजाई थी दिगंत सैकिया ने और साइड रिदम पर थे संजय श्रीवास्तव।

0: मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। दिन के 3 बजे हैं, हमारी ये सभा अब समाप्त होती है। सायंकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ शाम 5 बजे आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए।
1: आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस की टीम ने फाइनल्स में जगह बनाई।

यूनिक फैक्ट्स, काफी कुछ कलरफुल, बेहतरीन। लेकिन आज जो मैं लेके आई हूँ वो भी बेहतरीन है, रंगीन है, एक अलग सी दुनिया का हिस्सा है। जिस बारे में लेकर के आई हूँ उसको जानने के लिए तो आपको ट्यून इन करके रखना पड़ेगा। फिर से स्वागत है आपका आपकी दोस्त के साथ। आपने ट्यून इन किया है 100.7 FM रेनबो लखनऊ स्टेशन, और प्रोग्राम सतरंगी दुनिया शुरू हो चुका है। स्वागत हो चुका है आपका। और ये खूबसूरत गाने के साथ मैं सोच रही हूँ कि आगाज़ कर दिया जाए इस खूबसूरत से प्रोग्राम का। ये खूबसूरत गाना सुनिए और तुरंत

की, और ये बहुत ही बेहतरीन एक्टर हैं। खैर, इनकी हंसी से मुझे याद आ गया, आगे जो आज हम सतरंगी दुनिया में बात करने वाले हैं उस बारे में आगे बात करते हैं। आज मैं तीन फिल्में आपके लिए लेकर के आई हूँ। जी हाँ, तीन फिल्म्स जो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों की लिस्ट में जगह रखती हैं। इसमें आपको पता है कमल हसन की एक फिल्म है जिसको बाद में, अच्छा वो ओरिजिनल फिल्म है कमल हसन की, जो मतलब दुनिया की मतलब टॉप फिल्म्स में शामिल किया गया, जिसको बाद में दयावान नाम से उसका रीमेक किया गया था। हर साल इंडियन सिनेमा ढेरों फिल्म्स बनाती है। 100 साल से भी ज़्यादा समय से भारतीय फिल्मों का एक जो मनोरंजन का एक संगम चल रहा है वो बेहतरीन तरीके से चलता चला जा रहा है। अब तो भाषा का भी कोई बैरियर नहीं है, फिल्में पैन इंडिया रिलीज की जा रही हैं। और लेकिन इनमें से जहाँ कुछ फिल्में हिट हो जाती हैं तो वहीं कुछ पिट जाती हैं। फिल्मों के पिट जाने का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे ना, कुछ फ्लॉप हो जाती हैं और कुछ पर बेचारी फिल्मों पर विवाद का खतरा मंडराने लगता है। लेकिन कुछ फिल्में ऐसी रही हैं हिंदी सिनेमा की जो हमेशा के लिए दर्शकों के दिल में बस गई, कुछ ने ऑस्कर तक में अपने नाम का डंका बजाया और दुनिया में खूब नाम कमाया। अगर बात करें तो भारत हर साल 20 से अधिक भाषाओं में 1,500 से 2,000 के बीच फिल्में बनाता है। हर साल लगभग 1,500 फिल्में, सोचिए। दुनिया में सबसे ज्यादा फिल्में भारत में ही प्रोड्यूस की जाती हैं। पर आपको पता तो होना चाहिए कि 100 सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में भारत की 3 फिल्में शामिल हैं। कौन सी हैं वो फिल्में, उसके लिए तो आपको ट्यून इन करके रखना पड़ेगा। ये खूबसूरत सा गाना आपको सुनना ही पड़ेगा और मैंने सोचा है कि आपको सुना लिया जाए, सुना दिया जाए। चलिए ये सुनिए, ट्यून इन करके रखिए, तुरंत वापस आते हैं, बात करते हैं उन 3 फिल्मों के बारे में।

तरीके का जोनर जो है ये संभाल लेते हैं, समेट लेते हैं अपने आप में, और ऐसा लगता है कि जैसे ये गाना इन्हीं के लिए बना था, कोई और तो गा ही नहीं सकता था। इतना खूबसूरत, इतने प्यार से निभा देते हैं। और कई बार कुछ गाने ऐसे होते हैं जिनमें इतनी मुर्कियाँ, इतनी मुर्कियाँ, इतना टिपिकल कि सोचते हैं हाय हाय क्या खतरनाक गा दिया इन्होंने। लेकिन इस गाने को सुनकर कितनी खूबसूरत पाई जाती है कि आहा, बहुत बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। खैर, हम बात क्या कर रहे थे? जो बात कर रहे थे उसके लिए आपका वेलकम बैक। दूसरे जोन में चले गए थे ना आप। अब तो जमाना ऐसा है कि आप पुरानी से पुरानी फिल्मों को इंटरनेट पे देख सकते हैं, वो भी घर बैठे। ना कहीं थिएटर जाने की ज़रूरत, ना सीडी खरीदने की ज़रूरत, ना कैसेट खरीदने की ज़रूरत। तो अब जो घर पे रह करके खरीद सकते हैं, देख सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, और इवन बहुत ज़्यादा टिकट्स खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है। आपस में फैमिली के साथ देख सकते हैं, बड़ी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी एलईडी स्क्रीन्स जो हैं वो सबके घर पे ऑलमोस्ट लगी हैं। अरे नहीं लगी है तो कोई बात नहीं, मोबाइल में देख सकते हैं। अकेले हैं तो कोई बात नहीं, ईयरफोन लगा करके अकेले देख सकते हैं। खैर, समय जो है ना वो सुविधाओं के साथ जो है बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें भी लाता है। जैसे इतनी पुरानी पिक्चरों को कहाँ देख

जैसे उर्दू कवि का किरदार निभाया था, जिसकी कविताओं और काम को लोग कोई भाव नहीं देते थे। तब उस कवि की जिंदगी में एक वैश्याएक लड़की आती है जो उसे उसकी कविताओं के लिए बहुत मोटिवेट करती है। और वैश्या का रोल वहीदा रहमान ने निभाया था, वही मीना कुमारी गुरुदत्त की एक्स गर्लफ्रेंड के रोल में थी। कितनी खूबसूरत ये पिक्चर है, मैंने देखी है। मैं आपको बताऊं तो आप देख सकते हैं इस पिक्चर को और इसके बारे में बहुत सारी और बातें भी जान सकते हैं, है ना खूबसूरत बात। कितनी पुरानी फिल्म है और कितनी कितनी मतलब अमेजिंग सी स्टोरी है इसकी। आप इसके बारे में सोचिए, सर्च करिए, तुरंत आती है और दूसरी मूवी।

ترے کی یہ فلم ہے پاتھیر پانچالی،

कल आपके साथ और ढेर सारी बातें, और जिन फिल्मों के बारे में हम बात करने जा रहे थे वो फिल्मों को बताते बताते

लिया जाए, उसके बाद

कमल हासन की फिल्म नायकन कई ब्लॉकबस्टर फिल्म्स दे चुके। कमल हासन ढेरों अवार्ड्स जीत चुके। एक फिल्म को उनकी टाइम मैगजीन ने दुनिया की 100 सर्वश्रेष्ठ फिल्मों की लिस्ट में शामिल किया। इस फिल्म का नाम है नायकन। जी हाँ, 1987 में रिलीज हुई, तब सिनेमा घरों में 75 दिनों तक चलती रही और ब्लॉकबस्टर रही। बाद में इस फिल्म को बॉलीवुड में दयावान नाम से बनाया गया था। माधुरी दीक्षित, विनोद खन्ना, फिरोज खान लीड रोल में थे। याद तो आ गई होगी दयावान, लेकिन हो सकता है नायकन देखी ना हो। जी करे आपका तो इंटरनेट पे देख कर ढूंढ कर इसे देख सकते हैं आप। बाकी मेरा समय हो गया है जाने का, 3:55 और 56 होने को है। मैं जाती हूँ और अगली आवाज इंतजार कर रही है आपसे जुड़ने का, आपसे कनेक्ट करने का। मैं फिर किसी और दिन आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। खूबसूरत से गाने के साथ आपको छोड़ के जा रही हूँ। मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए।

मुख्य समाचार। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ आज लखनऊ के सीजीसीटी में 9 करोड़ की लागत से निर्मित नौसेना शौर्य वाटिका का लोकार्पण किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि लखनऊ राष्ट्रभक्ति और सैन्य गौरव का प्रतीक बन रहा है। लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि नौसेना शौर्य वाटिका लखनऊ के लिए एक प्रेरणा स्थल और लखनऊ की पहचान बनेगा। ये शौर्य वाटिका केवल बनावट का नमूना भर नहीं है, ये हमें सेनाओं के संघर्ष और योगदान को स्मरण कराएगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि भारत में चुनाव संविधान, चुनावी कानून और निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पारदर्शी दिशा निर्देशों के अनुसार ही कराए जाते हैं। नई दिल्ली में स्थित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनावों के दौरान पारदर्शिता, जवाबदेही और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए लगभग 1.8 करोड़ कर्मियों को तैनात किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 134वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा। आकाशवाणी के द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण किया जाएगा। केंद्र सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का LPG भंडार सुरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी। संयुक्त सचिव ने कहा कि सरकार रणनीतिक भंडारों के माध्यम से ईंधन सुरक्षा मजबूत करने और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन शाम 5 बजे प्रसारित किया जाएगा।

बजकर 6 मिनट का वक्त हो चुका है और फहीम हाजिर है लेकर के प्रोग्राम यूथ वेव। और जैसा कि दोस्तों आज है सैटरडे का दिन यानी शनिवार का दिन, और शनिवार के दिन हम इस विषय पर बात करते हैं स्किल डेवलपमेंट की। जी हाँ, आज का जो विषय है वो सब्जेक्ट जो है वो है स्किल डेवलपमेंट, यानी कि एक ऐसा विषय कि वो बहुत कुछ आपको निखार सकता है अगर आपके अंदर कोई ऐसा हुनर है जो अभी तक आपके पूरी तरह से आपको नहीं आता है, या यूँ कहें कि उसमें आप परफेक्ट नहीं हैं। तो स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं कि जहाँ पर आप एडमिशन ले करके और अपने जो स्किल है उसको आप अच्छे से बना डेवलप कर सकते हैं। कौशल विकास एक ऐसा विषय है जिस पर अगर बात की जाए दोस्तों, तो युवाओं का एक जो विषय है ये ऐसा विषय है कि उनका जो भविष्य है वो उज्ज्वल होने के साथ साथ वो स्वयं को तो आत्मनिर्भर बनाएंगे ही, साथ ही साथ बहुत से युवाओं को भी रोज़गार भी दे सकते हैं।

खास योजना है वो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी PMKVY है। इसमें युवाओं को मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और रोजगार के अवसर भी प्रदान किए जाते हैं। दोस्तों, स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में बहुत सारे संस्थान युवाओं को उनकी स्किल और योग्यता के अनुसार उनके कौशल का विकास करते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन, भारत सरकार के कई सारे संस्थान हैं जो युवा

मीडियम वेव 4.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। अब हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ हो रही है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर है और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार है। पुणे के खड़कवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में 150वें बैच की पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा, ये अभियान अब भी जारी है।
1: जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, ये अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है, साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
0: जनरल द्विवेदी ने पास आउट होने वाले कैडेटों से व्यावसायिकता, नेतृत्व और राष्ट्र सेवा के उच्चतम मानकों को बनाए रखने का आग्रह किया। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि जनरल चौहान का स्थान लेंगे। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन आज भारत के 5 दिन के दौरे पर बिहार के गया पहुंचे। म्यांमा के राष्ट्रपति के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है।

राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन आज शाम नई दिल्ली पहुंचेंगे। वे विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात करेंगे। कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धारमैया बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक कर रहे हैं। इसमें नए नेता का चुनाव किया जाना है। श्री डीके कुमार शिवकुमार को कांग्रेस विधानसभा पार्टी के नए नेता के रूप में औपचारिक रूप से चुने जाने की संभावना है। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान शुरू हो गया है। महीने भर चलने वाली ये प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने कहा कि अगर ईरान के साथ समझौते के प्रयास विफल होते हैं तो अमेरिका की सेना उसके खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। एशिया के प्रमुख सुरक्षा मंच शांग्रीला संवाद में श्री हेग्सेथ ने कहा कि जरूरत पड़ने पर ऐसे अभियान संचालित करने के लिए अमरीका के पास क्षेत्र और दुनिया भर में पर्याप्त सैन्य भंडार मौजूद है। उन्होंने कहा कि देश किसी भी आपात स्थिति का सामना है। राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन आज शाम नई दिल्ली पहुंचेंगे। वे विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात करेंगे। कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धारमैया बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक कर रहे हैं। इसमें नए नेता का चुनाव किया जाना है। श्री डीके कुमार शिवकुमार को कांग्रेस विधानसभा पार्टी के नए नेता के रूप में औपचारिक रूप से चुने जाने की संभावना है। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान शुरू हो गया है। महीने भर चलने वाली ये प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने कहा कि अगर ईरान के साथ समझौते के प्रयास विफल होते हैं तो अमेरिका की सेना उसके खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। एशिया के प्रमुख सुरक्षा मंच शांग्रीला संवाद में श्री हेग्सेथ ने कहा कि जरूरत पड़ने पर ऐसे अभियान संचालित करने के लिए अमेरिका के पास क्षेत्र और दुनिया भर में पर्याप्त सैन्य भंडार मौजूद है। उन्होंने कहा कि देश किसी भी आपात स्थिति का सामना

0: प्रतियोगिता से बाहर हो गई। सेमीफाइनल में आज भारतीय जोड़ी को जापान की साइका होबारा और युइची सिमोगामी ने हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। शाम के 5:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए इस सभा के और कल की सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में। सबसे पहले जानकारी इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। आज रात्रि 9:30 पर सुनिएगा राष्ट्रीय पत्रिका कार्यक्रम युवा भारती। संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम रात्रि 10:00 सुना जा सकेगा, जिसे हम दिल्ली केंद्र से ही रिले करेंगे। शाम 5:10 का समय रहेगा कार्यक्रम युवा तरंग का। नई उड़ान कार्यक्रम सुनेगा शाम 5:45 पर। शाम 6:30 पर लोकायतन कार्यक्रम में वार्ता सुनिएगा, विषय होगा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से बदलता गांव। वार्ताकार होंगे अजीत प्रताप सिंह। खेती किसानी कार्यक्रम का समय रहेगा शाम 6:50 पर। आप सुनेंगे डॉक्टर सुजीत प्रताप सिंह से डॉक्टर सुशील कुमार राय की बातचीत, विषय होगा गन्ने की फसल में समन्वित कीट रोग प्रबंधन। शाम 7:31 पर विज्ञान जगत कार्यक्रम में सुनिएगा भेंटवार्ता, कैसे तकनीक और अनुसंधान से समर रहा है प्रदेश। इस विषय में विशेष सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग उत्तर प्रदेश श्री रमेश चंद्र से भेंट करेंगे प्रवीण कुमार। रात्रि 8:00 हिंदी कार्यक्रम में सुरेंद्र अग्निहोत्री की वार्ता प्रसारित की जाएगी, हिंदी पत्रकारिता का गौरवशाली इतिहास। सुगम संगीत के कार्यक्रम में रात्रि 8:10 पर सुनेगा गजलें, कलाकार होंगी स्वाति रिजवी। ये थी जानकारी इस सभा के कार्यक्रमों की और अब विवरण कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का। कल अपराह्न 11:00 प्रधानमंत्री रेडियो पर साझा करेंगे अपने मन की बात। कार्यक्रम होगा मन की बात। रात्रि 10:00 सुनेगा रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। ये दोनों ही कार्यक्रम अपने दिल्ली केंद्र के माध्यम से रिले करेंगे। कल सवेरे 9:30 पर उर्दू कार्यक्रम में सुनेगा खत के लिए शुक्रिया, पेशकश आकाशवाणी लखनऊ की होगी। सामयिक चर्चा का प्रसारण समय रहेगा प्रातः 9:15 पर। सवेरे 6:05 पर कृषि चर्चा कार्यक्रम में विषय होगा मक्का उत्पादन की उन्नत तकनीक, जानकारी देंगे डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी। श्री रामचरितमानस गान सुनेगा सवेरे 6:43 पर। सवेरे 7:00 स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में नीना सोनकर की जानकारी का विषय होगा स्वास्थ्य के लिए लाभदायक मट्ठा और छाछ, कहिए नहीं तंबाकू को, ये विषय है कार्यक्रम विविधा का। समय रहेगा सवेरे 7:10 पर। सवेरे 7:31 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में उस्ताद जाकिर हुसैन का तबला वादन प्रसारित किया जाएगा। कार्यक्रम लोक रंग और लोक माधुरी का प्रसारण समय रहेगा सवेरे 9:50 पर और दिन में 2:45 पर। इसमें सुनिएगा अवधि लोकगीत, कलाकार होंगे मगन मिश्र। बच्चों के लिए कार्यक्रम होगा बालमंच दिन में 12:00। दिन में 1:15 पर आज इतवार है कार्यक्रम में झलकी सुनिएगा दर्जी की मर्जी। दिन में 1:30 पर अक्षयवट कार्यक्रम में डॉक्टर आर प्रधान से डॉक्टर अलका चौधरी की बातचीत का विषय होगा तंबाकू मुक्त बुढ़ापा गौरवशाली जीवन। दिन में 2:30 पर विज्ञान और किसान कार्यक्रम में डॉक्टर अनिल प्रताप सिंह से डॉक्टर सुशील कुमार राय की बातचीत का विषय होगा जायद फसलों में सामयिक प्रबंधन। दिन में 3:15 पर सुनेगा संस्कृत कार्यक्रम, इसमें डॉक्टर भुवनेश्वरी भारद्वाज की वार्ता का विषय होगा योगा कर्मश्य कौशलम। दिन में 3:30 पर हेलो डॉक्टर कार्यक्रम का विषय होगा गर्मी का मौसम और स्वास्थ्य रक्षा के विभिन्न उपाय, विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर अभयनाथ तिवारी और संचालन सुभाष खन्ना का होगा। शाम 6:30 पर लोकायतन कार्यक्रम में लोक भाषा कवि गोष्ठी सुनिएगा, इसमें कवि होंगे

सुखदेव प्रसाद छैल, राम दुलारी सुजान और राम प्रकाश अवस्थी। शाम 7:31 पर सुनेगा कार्यक्रम पत्र के लिए धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे इस सभा में और कल की सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है युवा साथियों का कार्यक्रम युवा तरंग।

नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी स्वस्थ, खुश और उत्साह से भरपूर होंगे। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त विष्णुप्रिया और आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम युवा तरंग। दोस्तों, युवा शक्ति किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत होती है। युवाओं के सपने, उनका उत्साह, उनकी सोच और उनका संघर्ष ही समाज और राष्ट्र को नई दिशा देता है। इसी ऊर्जा, इसी जोश और इसी सकारात्मक सोच को समर्पित है हमारा ये कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं ज्ञान, मनोरंजन, प्रेरणा और नई जानकारी का अनोखा संगम। यहाँ होंगी रोचक बातें, विचारों की चर्चा, प्रेरणादायक संदेश और भी बहुत कुछ जो आपके दिन को और भी बेहतर बना देगा। तो तैयार हो जाइए कुछ नया सीखने, कुछ नया सोचने और अपने सपनों को नई उड़ान देने के लिए। आइए सकारात्मकता और उत्साह के साथ शुरू करते हैं युवा तरंग इस प्यारे से गीत के साथ।

0: आज का दौर डिजिटल दौर है, जहां हर सुबह का आगाज न्यूज़पेपर से नहीं बल्कि नोटिफिकेशन से शुरू होता है। सोशल मीडिया, जो कभी सिर्फ मनोरंजन का जरिया था, आज युवाओं की पहचान, विचार और अभिव्यक्ति का सबसे बड़ा माध्यम बन चुका है। यही प्लेटफॉर्म आज उन्हें जोड़ता है दुनिया से, देता है जानकारी, रोजगार के अवसर और आत्मविश्वास से अपनी बात रखने की आज़ादी। पर सवाल ये है कि क्या सोशल मीडिया हमारे लिए साधन है या आसक्ति? सोशल मीडिया अगर हमें कुछ फायदा पहुंचाता है तो क्या कुछ नुकसान भी पहुंचाता है? आइए इसी पर करते हैं चर्चा और जानते हैं युवाओं के विचार उन्हीं की जबानी। आज के दौर में सोशल मीडिया की हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है?
1: हमारा नाम कुलदीप यादव है। देखिए, सोशल मीडिया की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में सोशल मीडिया का मतलब गुड इफेक्ट भी है, बैड इफेक्ट भी है। सोशल मीडिया हमारे जीवन में उपयोगी है, मतलब अगर एक तरीके से देखा जाए उपयोगी भी है, लेकिन उसका मतलब हमारे हिसाब से कम यूज किया जाए तो ही उपयोगी साबित होगा। अगर हम उसका ज़्यादा यूज कर रहे हैं तो हमारे लिए कहीं ना कहीं दिक्कत भी हो सकती है।
0: आपको क्या लगता है, क्या सोशल मीडिया पर किसी तरह की कोई लिमिटेशन होनी चाहिए कि हमें उसे कितना उपयोग करना है और कितने समय के लिए उपयोग करना है?
1: सोशल मीडिया पर लिमिटेशन लगानी चाहिए कि मतलब जैसे कि वो आदमी जैसे उसमें लगा होता है कि जैसे हम लोग के इंटरेस्ट जिसमें होता है वही कंटेंट भेजे जाते हैं, तो इसमें लिमिटेशन ये लगानी चाहिए कि मतलब कुछ ऐसे कंटेंट भेजे जाएँ ताकि मतलब वो हमारे लिए यूज़फुल हो, कि ऐसे ऐसे कंटेंट ना भेजा जाए कहीं गलती से हम लोग कोई दूसरा अन्य मतलब इंटरेस्टेड वीडियो देख रहे हैं तो वही हम लोगों के पास दोबारा रिपीट करके आने लगे, इसलिए इस पर यही लिमिटेशन लगनी चाहिए।
2: मेरा नाम कुशाग्र है और मैं एक BAMS स्टूडेंट हूँ। मेरे हिसाब से सोशल मीडिया ज़रूरी है हमारे लिए। हमारी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा कनेक्टेड हो चुकी है सोशल मीडिया से कि हम दूर जाने का सोच तो सकते हैं पर जा नहीं सकते। सुबह उठते हैं, फ़ोन चलाते हैं, सबसे पहला काम ही यही करते हैं कि बस उठो और फ़ोन उठा लो और चेक करो कि कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आ रखी है तो रिप्लाई करो। जहाँ ये सब ड्रॉबैक्स हैं, वहाँ फ़ायदे भी हैं कि हमें कुछ चाहिए होता है, कुछ जानना होता है कि दुनिया में हो क्या रहा है, कुछ लेटेस्ट न्यूज़ हो रखी है, कोई चीज़ ट्रेंड कर रही है, कोई ना कोई पेज, कोई ना कोई आदमी ज़रूर पोस्ट करा होगा करंट इवेंट के बारे में और तुम्हें पता चल जाएगा। तो फ़ायदा तो है कि कुछ भी जानना हो, कोई भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, फिंगर टिप्स पे होती है, तुरंत ही आ जाती है हमारे पास। तो फ़ायदे तो बहुत सारे हैं सोशल मीडिया के, पर जैसे कि एक फ़ायदा ये भी है कि हमें हमेशा हमारे दोस्तों से कनेक्टेड रखता है।
3: मेरा नाम वंदना कुमारी, मैं MS स्टूडेंट। आज का युवा मोबाइल और इंटरनेट पर बहुत अधिक निर्भर हो गया है। पढ़ाई, नौकरी, मनोरंजन हर जगह इनकी आवश्यकता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या हम बिना मोबाइल और इंटरनेट के एक दिन भी जी सकते हैं? मैंने तो जिया है। शुरुआत में यह कठिन लगेगा, लेकिन अगर हम एक दिन मोबाइल से दूर रहें तो हमें मन की शांति, परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। सोशल मीडिया से दूरी हमें अपने रिश्ते सुधारने में मदद करेगी। हम अपने आसपास के लोगों से और करीब आ सकते हैं। ज़रूरी है कि हम मोबाइल का इस्तेमाल करें, लेकिन उसके गुलाम ना बने। हफ्ते में एक दिन नो मोबाइल डे मनाना युवाओं के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा।
4: मेरा नाम अभिनव है और मैं अभी अपना LLB परस्यू कर रहा हूँ। देखिए, जब सोशल मीडिया की बात होती है तो सोशल मीडिया एक बहुत ही वास्ट स्पेस है, बहुत ही वास्ट एरिया है, और अगर लोग कहते हैं कि उनको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है तो उनको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है अगर वो डिस्ट्रैक्ट होना चाह रहे हैं। जैसे कि बात करेंगे अर्जुन की, तो अर्जुन जब देख रहे थे आप कि वो निशाना लगा रहा था मछली पे, तो उसको केवल मछली की आँख दिख रही थी, वो और चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा था। तो सोशल मीडिया पे भी अगर आप जो है अपना जो आपको काम करना है आप उस पर फोकस रहेंगे तो वो काम आपका निकल जाएगा, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। तो इसीलिए अर्जुन जैसी आपकी भी निगाह होनी चाहिए, कंसंट्रेशन होना चाहिए।
0: तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि सोशल मीडिया आज के युवाओं की आवाज़ है, उनके विचारों, उनकी भावनाओं और पहचान का माध्यम भी है। मुद्दा ये नहीं है कि सोशल मीडिया अच्छा है या बुरा, बात ये है कि हम उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। अगर सकारात्मक सोच रखेंगे तो यही माध्यम ज्ञान का

रोजगार का और बदलाव का सबसे मजबूत जरिया बन जाएगा। तो आइए सोशल मीडिया को समय की बर्बादी नहीं बल्कि समय की समझदारी बनाएं, क्योंकि समझदारी से किया गया हर क्लिक भविष्य को दिशा देता है। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त है आपको एक गीत सुनाने का, तो आइए सुन लेते हैं ये गीत।

सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं।

0: है या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें, और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: दोस्तों, आज हम एक ऐसे खाद्य पदार्थ के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो लगभग हर घर की रसोई में मौजूद होता है और जिसे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक पसंद करते हैं। हम बात कर रहे हैं आलू की। जी हाँ, इसी महत्वपूर्ण फसल के महत्व को उजागर करने के लिए हर वर्ष 30 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटो यानी कि अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य आलू के पोषण, खाद्य सुरक्षा, कृषि और आर्थिक विकास में योगदान के प्रति लोगों को जागरूक करना है। दोस्तों, आलू दुनिया की सबसे लोकप्रिय और महत्वपूर्ण फसलों में से एक है। इसकी उत्पत्ति दक्षिण अमेरिका के एंडीज माउंटेन क्षेत्र में मानी जाती है। आज ये दुनिया के लगभग हर देश में उगाया और खाया जाता है। भारत भी आलू उत्पादन करने वाले प्रमुख देशों में शामिल होता है। आलू केवल स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि पौष्टिक भी है। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन सी, विटामिन B6, पोटेशियम और फाइबर जैसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और संतुलित आहार का हिस्सा बन सकता है। यदि आलू को उबालकर या कम तेल में पकाकर खाया जाए तो ये स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। आज दुनिया के सामने बढ़ती जनसंख्या और खाद्य संकट जैसी चुनौतियां हैं, ऐसे में आलू एक महत्वपूर्ण फसल के रूप में सामने आता है। कम भूमि और कम समय में अधिक उत्पादन देने की क्षमता के कारण ये खाद्य सुरक्षा को मजबूत बनाने में मदद भी करता है। यही कारण है कि कई देशों में इसे भविष्य की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करने वाली प्रमुख फसल माना जाता है। आलू किसानों के लिए आय का एक अच्छा स्रोत है। इसकी मांग पूरे वर्ष बनी रहती है और इससे जुड़े भंडारण, परिवहन तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में भी रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। आलू की खेती ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत में शायद ही कोई ऐसा घर हो जहां आलू का उपयोग ना होता हो। आलू की सब्जी, समोसा, पराठा, टिक्की, चाट, दम आलू, आलू गोभी और कई अन्य व्यंजन इसके बिना दोस्तों अधूरे होते हैं। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये लगभग हर सब्जी के साथ आसानी से मिल जाता है। हालांकि आलू लाभदायक तो है, लेकिन इसका अत्यधिक सेवन या अत्यधिक तेल में तले हुए रूप से सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाता है। इसलिए संतुलित मात्रा में और स्वस्थ तरीके से इसका उपयोग करना चाहिए। साथ ही किसानों को बेहतर बीज, सिंचाई और आधुनिक तकनीकों की सुविधा उपलब्ध कराकर उत्पादन को और बढ़ाया जा सकता है। ये दिवस हमें सिखाता है कि एक साधारण दिखाई देने वाली फसल भी दुनिया भर में भूख मिटाने, पोषण सुधारने और किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में बड़ी भूमिका निभा सकती है। हमें आलू के महत्व को समझना चाहिए और कृषि को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करना चाहिए। अंत में ये कहा जा सकता है कि आलू केवल एक सब्जी नहीं बल्कि खाद्य सुरक्षा, पोषण और कृषि विकास का एक महत्वपूर्ण आधार भी है। अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस हमें इसके महत्व को पहचानने और किसानों के योगदान का सम्मान करने का अवसर प्रदान करता है। दोस्तों, आगे और विषय पर चर्चा करेंगे हम आपसे, उससे पहले सुनते हैं एक गीत।

दोस्तों आइए अब हम बात करते हैं डिजिटल भारत की। डिजिटल भारत का उद्देश्य देश को तकनीकी रूप से सशक्त बनाना और हर नागरिक तक डिजिटल सुविधाएं पहुंचाना है। आज के समय में तकनीक हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है और भारत भी तेजी से डिजिटल विकास की ओर बढ़ रहा है। डिजिटल भारत के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल भुगतान, ई गवर्नेंस, आधार, UPI, डिजी लॉकर और अनेक सरकारी सेवाएं लोगों तक आसानी से पहुंच रही हैं। दोस्तों अब लोगों को छोटे छोटे कार्यों के लिए लंबी कतारों में खड़ा नहीं होना पड़ता है, बल्कि वो घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से अपना काम कर सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी डिजिटल भारत ने नई संभावनाएं खोली हैं। छात्र ऑनलाइन कक्षाओं, ई पुस्तकों और डिजिटल सामग्री के माध्यम से आसानी से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। वहीं डिजिटल भुगतान ने लेन देन को तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक भी बना दिया है। हालांकि साइबर अपराध और डिजिटल साक्षरता जैसी कुछ चुनौतियां भी हैं, लेकिन जागरूकता और सही उपयोग से इन समस्याओं का समाधान भी किया जा सकता है। दोस्तों डिजिटल भारत केवल एक योजना नहीं है, बल्कि एक विकसित, आधुनिक और आत्मनिर्भर भारत का सपना है। ये देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और युवाओं के लिए नए अवसरों के द्वार भी खोल रहा है। तो दोस्तों ये तो बात थी डिजिटल भारत की। आइए अब सुनते हैं एक गीत।

दोस्तों, आज तो हमने आपसे बहुत सारी बातचीत करी और बहुत सारे विषयों पर आपसे चर्चा भी की है और आपको अधिक से अधिक जानकारी देने का प्रयास भी किया है। तो दोस्तों, अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। तो मुझे यानी विष्णु प्रिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा तरंग। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम नई उड़ान।

नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने पसंदीदा कार्यक्रम नई उड़ान में। मैं हूं आपका दोस्त कपिल। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस गर्मी की छुट्टी आप कहां घूमने जा रहे हैं, तो बहुत से लोगों का जवाब गोवा भी हो सकता है, क्योंकि गोवा है ही बहुत खूबसूरत जगह। वैसे गोवा जाने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर

से मार्स तक होता है। लेकिन आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज हम मना रहे हैं गोवा राज्य स्थापना दिवस। हर साल 30 मई को गोवा अपना स्थापना दिवस मनाता है। आज ही के दिन साल 1987 में गोवा को भारत का 25वां राज्य बनने का गौरव मिला था। समुद्र की खूबसूरत लहरें, सुनहरे बीच, रंग बिरंगी संस्कृति और संगीत से भरा गोवा सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि भारत की विविधता और खूबसूरती की पहचान भी है। दोस्तों, गोवा का इतिहास भी काफ़ी दिलचस्प रहा है। करीब 450 साल तक गोवा पर पुर्तगालियों का शासन रहा, लेकिन आज़ादी के बाद भी गोवा भारत का हिस्सा नहीं बन पाया था। फिर साल 1961 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय चलाकर गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराया। इसके बाद गोवा केंद्र शासित प्रदेश बना और फिर 30 मई 1987 को उसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। गोवा का नाम सुनते ही हमारे मन में सबसे पहले खूबसूरत बीच, नारियल के पेड़, चर्च, समुद्री खाना और शानदार म्यूजिक की तस्वीर उभरती है। लेकिन गोवा की असली पहचान उसकी संस्कृति और वहाँ के लोगों की सादगी में बसती है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम और ईसाई समुदाय मिलजुल कर त्यौहार मनाते हैं। गोवा का कार्निवाल पूरी दुनिया में मशहूर है। साथ ही वहाँ की कोंकणी भाषा और लोक संगीत लोगों के दिलों को छू लेते हैं। दोस्तों, गोवा सिर्फ घूमने की जगह नहीं बल्कि हमें यह भी सिखाता है कि जीवन को खुशी और सादगी के साथ कैसे जिया जा सकता है। छोटा सा राज्य होने के बावजूद गोवा ने शिक्षा, पर्यटन और संस्कृति के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है। आज के दिन हम उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों और वीरों को नमन करते हैं जिन्होंने गोवा को आज़ादी दिलाने में अपना योगदान दिया था। फिलहाल आइए गोवा को महसूस करने के लिए एक गीत सुनते हैं।

0: तो दोस्तों, मैं जानता हूं कि आप सब गोवा के समुद्री किनारों में खो गए होंगे, लेकिन वापस आ जाइए क्योंकि अब हम बात करेंगे उस दिवस की जिसकी वजह से हम दुनिया भर की बातें, शहर, खबर और बहुत कुछ जान पाते हैं। जी हां, आज ही है हिंदी पत्रकारिता दिवस। हर साल 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। इसी दिन साल 1826 में भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र उद्दांत मार्तंड प्रकाशित हुआ था। इसके संपादक थे पंडित जुगल किशोर शुक्ला जी, जिन्हें हिंदी पत्रकारिता का अग्रदूत भी कहा जाता है। दोस्तों, पत्रकारिता सिर्फ खबरें सुनाने का माध्यम नहीं है, बल्कि समाज को जागरूक करने, सच सामने लाने और लोगों की आवाज़ बनने का एक मजबूत जरिया है। आज हम सुबह अखबार पढ़ते हैं, मोबाइल पर न्यूज़ देखते हैं, रेडियो सुनते हैं या टीवी पर देश दुनिया की जानकारी लेते हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब जानकारी पहुंचाना इतना आसान नहीं था। उस दौर में पत्रकारों ने कठिन परिस्थितियों में भी सच को लोगों तक पहुंचाने का काम किया। हिंदी पत्रकारिता ने देश की आज़ादी की लड़ाई में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। समाचार पत्रों और पत्रकारों ने लोगों में जागरूकता फैलाने का काम किया था और अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ बुलंद की थी। दोस्तों, आज पत्रकारिता का स्वरूप काफ़ी बदल चुका है। अब डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का दौर है। खबरें कुछ ही सेकंड में दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंच जाती हैं, लेकिन आज के समय में सबसे बड़ी ज़रूरत है सच्ची और जिम्मेदार पत्रकारिता की। ऐसी पत्रकारिता जो बिना डर और बिना पक्षपात के समाज के सामने सच रख सके। एक अच्छे पत्रकार की पहचान सिर्फ खबर दिखाने से नहीं होती, बल्कि सच और जिम्मेदारी के साथ अपनी बात रखने से होती है। दोस्तों, हिंदी पत्रकारिता ने देश की भाषा, संस्कृति और आम लोगों की आवाज़ को हमेशा मजबूत किया है। आज भी गांव, कस्बों और छोटे शहरों तक हिंदी पत्रकारिता लोगों को जानकारी और जागरूकता से जोड़ रही है। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस पर हम उन सभी पत्रकारों, लेखकों, संपादकों और मीडिया कर्मियों को सलाम करते हैं जो दिन रात मेहनत करके समाज तक सही जानकारी पहुंचाने का काम करते हैं। तो आइए इस अवसर पर हम ये संकल्प लें कि हम हमेशा सही जानकारी को महत्व देंगे और अफवाहों से दूर रहेंगे। फिलहाल जो अब हमारा सेगमेंट है वो है विमर्श। विमर्श यानी कि ऐसा सेगमेंट जिसमें हमारे कुछ कंपेयर बाहर जाते हैं, फील्ड पर जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं और आपके लिए विभिन्न विषयों पर लेकर आते हैं लोगों से बातचीत की हुई जो जानकारी होती है उसको। तो आज का जो विषय है वो है व्यवसाय योजना के लिए लक्ष्य निर्धारण, उद्यमी अनुभव, और इस पर बातचीत की है आशीष सोनी ने फील्ड में जाके। तो आइए सुनते हैं।
1: हो या हो बड़ा कारोबार, हर व्यवसाय की शुरुआत एक लक्ष्य से होती है। कोई ग्राहक बढ़ाने का सपना देखता है, कोई अपनी पहचान बनाने का, तो कोई सीमित संसाधनों में भी कारोबार को आगे ले जाने की कोशिश करता है। लेकिन बदलते बाजार, बढ़ती प्रतिस्पर्धा और ग्राहकों की पसंद के बीच आखिर उद्यमी अपनी व्यवसाय योजना कैसे बनाते हैं, इन्हीं वास्तविक अनुभवों और व्यवहारिक पहलुओं पर आज होगी हमारी खास चर्चा। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपका रेडियो दोस्त आशीष सोनी। विमर्श श्रृंखला के अंतर्गत आज का हमारा विषय है व्यवसाय योजना के लिए लक्ष्य निर्धारण, उद्यमी अनुभव। इस विषय को और गहराई से जानने और समझने के लिए हम जुड़ रहे हैं शहर के कुछ सफल उद्यमियों के साथ, जिनके अनुभव व्यवसाय की सफलता के तमाम रहस्य खोलेंगे। इस विशेष विमर्श में हमारे साथ जुड़ रहे हैं हरि प्रसाद यादव, जो कि लगभग 50 वर्षों से हार्डवेयर व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। बेकरी व्यवसाय से जुड़े हुए राहुल अग्रवाल अपने खाने के स्वाद से अपने व्यवसाय में चार चांद लगाने वाले विशाल श्रीवास्तव, सफल कपड़ा व्यवसायी करण वर्मा के साथ साथ डेयरी व्यवसाय का कुशल संचालन करने वाले अनुज शर्मा। तो आइए सुनते हैं इन सभी सफल उद्यमियों के अनुभव, संघर्ष और

0: सफलता की कहानी उन्हीं की जुबानी। तो सबसे पहले इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं हरि प्रसाद यादव जी। दादा, आपका हमारे कार्यक्रम नई उड़ान में हार्दिक स्वागत है।
1: धन्यवाद
0: दादा। जैसा कि आपने बताया कि ये हार्डवेयर की जो शॉप है आपकी, लगभग 50 साल से आप इसको चला रहे हैं, तो कैसा अनुभव रहा अब तक का आपका?
1: कुशल रहे अपने कार्य में
0: जी,
1: हालांकि पैसे की कभी नहीं, पूंजी लगाने में
0: जी,
1: तो ज्यादा जितनी जरूरत थी उतना नहीं कर पाए, ये सब रहा।
0: अच्छा दादा, जब आपने ये व्यवसाय शुरू किया तो शुरुआत के 6 महीने में आपका लक्ष्य क्या रहा उस समय?
1: अब जो उचित था, प्रॉफिट मिलता रहा, हमारे काम में कोई बाधा नहीं पड़ी। बस
0: जी जी
1: जी, हमेशा ईमानदारी से काम करते रहे
0: जी,
1: तो इससे हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट ले ले, ये नहीं किया। और ये करना हम उचित भी नहीं समझे,
0: मतलब ग्राहक जोड़ना आपका लक्ष्य रहा।
1: लक्ष्य था।
0: अच्छा, एक सवाल ये है दादा कि व्यवसाय में सबसे कठिन समय कौन सा रहा और उससे बाहर कैसे निकले आप?
1: वैसे हमारे लिए कोई कठिन समय खास नहीं रहा, पैसा जितना रहा हमारे पास कैपिटल के स्वरूप में
0: जी,
1: हम उसी पे ही डिपेंड रहे और उसी से अपना जो उचित प्रॉफिट था लेते रहे।
0: राहुल जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि किसी व्यवसाय के संचालन में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है?
2: देखिए, एक उद्यमी का अनुभव होने के कारण जो मुझे लगता है सबसे अनिवार्य है लक्ष्य का निर्धारण, ये सर्वप्रथम एक कदम होता है किसी भी व्यवसाय के लिए।
0: कम पूंजी में व्यवसाय शुरू करने वालों के लिए सबसे जरूरी क्या होना चाहिए?
2: देखिए, सबसे जरूरी तो ये है कि लक्ष्य निर्धारित हो, हमें पता हो क्या करना है और हमारे पास जो भी रिसोर्स कहें या साधन कहें अवेलेबल हैं, उनसे हम क्या बेहतर कर सकते हैं।
0: जी जी।
2: तो मेरे हिसाब से प्लानिंग बहुत जरूरी होती है कि हम सोच कर, विचार कर और जो लोग जिनको उस पे तजुर्बा है उनसे बात करके निर्धारित करें कि हमें क्या करना है।
0: क्योंकि आप बेकरी के व्यवसाय से काफी समय से जुड़े हुए हैं, तो आपका अनुभव क्या कहता है कि व्यवसाय संचालन में सबसे महत्वपूर्ण और ये कि ग्राहक को जोड़े रखना, ये कितना जरूरी होता है?
2: क्योंकि हम लोग जैसे लखनऊ में हैं और लखनऊ में आज का परिवेश और 17-18 साल पहले या शुरुआती 2000 के दौर में अगर मैं आपसे बात करूं तो चुनिंदा बेकरियां थी। आज की डेट में मार्केट बढ़ा है, ग्राहक बढ़े हैं, तो कंपटीशन भी बढ़ा है और काफी हद तक बढ़ा है, लेकिन डिमांड भी बढ़ी है। तो जो हमारे कस्टमर हैं उनसे जुड़े रहना ही मार्केट में टिकने का एकमात्र उपाय है। अगर हम अपने ग्राहक से नहीं जुड़ेंगे और उनकी जरूरतों को नहीं समझेंगे तो हम उस पे जो है फिर मार्केट में टिक नहीं पाएंगे।
0: जब लक्ष्य पूरे नहीं होते हैं तो खुद को और अपनी टीम को कैसे प्रेरित करते हैं आप?
2: देखिए, मेरा तो एक ही उपाय है कि अगर लक्ष्य तक नहीं पहुंच रहे हैं तो ठहरना, एक लंबी सांस भरना और एक चिंतन मनन की स्थिति में आना कि हम क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। सही की प्रशंसा करना, गलत के लिए सोच विचार करके उसके ऊपर काम करके ऐसे प्रयास करना कि उस गलत को भी हम सही में बदलें, शायद यही कारण है कि पिछले 17-18 सालों से हम लोग मार्केट में टिके हुए हैं।
0: अच्छा, ऑनलाइन अगर हम बात करें तो ग्राहक और दुकान पर आने वाले ग्राहक की सोच में क्या फर्क पड़ा है?
2: ये बड़ा ही अच्छा प्रश्न किया आपने। जो देखिए ऑनलाइन का ग्राहक है तो उसमें भी प्रकार है, कुछ जो है बहुत कॉस्ट सेंसिटिव वाला ग्राहक होता है जो सिर्फ पैसों को देखता है, और कुछ ऐसा होता है कि जिसने बस मंगा लिया, उसको किसी चीज से कोई मतलब नहीं। लेकिन जो आपकी हमारी जो दुकान पे आता है तो वो कुछ अपेक्षाएं लेके आता है कि वो हमारे नाम के साथ, हमारे प्रतिष्ठान जो है हमारा, उसके जुड़े हुए लोगों के फीडबैक के साथ वो उसके साथ आता है। तो ऑनलाइन हम भी काम करते हैं और कहेंगे कि बुरा नहीं है, क्योंकि उससे डेफिनेटली हमें बिजनेस तो मिलता ही है, लेकिन नए जो जिनके अवसर उनके लिए भी अच्छा मौका है नए ग्राहकों से जुड़ने का। लेकिन मैं सलाह यही दूंगा तो जो हमारे आसपास के कस्टमर हैं, लोग हैं, उनको हम ना छोड़ें, उनको भी अपनी उतनी ही अहमियत दें जितना ऑनलाइन वालों।
0: करण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: करण जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि किसी व्यवसाय को बढ़ाने में सबसे पहले हमें ग्राहक पर ध्यान देना चाहिए या उस व्यवसाय से होने वाले मुनाफे पर?
3: देखिए, अगर आप व्यवसाय को ग्रो करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको ग्राहकों की रुचि पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। मुनाफा तो बाद की चीज है, अगर ग्राहक आपसे जुड़ेंगे तो ही आपको लाभ मिलेगा, नहीं तो ग्राहक से आप कितना भी लाभ कमा लें, अगले दिन दुकान तो आपकी नहीं चल पाएगी ना।
0: तो आप जो है अपने व्यवसाय में लक्ष्य निर्धारण कैसे करते हैं?
3: लक्ष्य निर्धारण का मतलब ये होता है कि हम लोग

0: देखते हैं कि अभी जो आने वाला समय है वो किस प्रकार का रहेगा, या आज के समय में लोग किस प्रकार के कपड़े पसंद करते हैं, कौन सा त्योहार आने वाला है, तो उस हिसाब से हम लोग कपड़े ला करके रखते हैं। उस हिसाब से मतलब आधुनिक समय में लोग क्या पसंद कर रहे हैं, तो ऐसी चीजें इनको ला करके रखनी होती है जिससे हमारा व्यवसाय ग्रो कर सके, बढ़ सके।
1: जी जी। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि योजना कुछ और थी और बाजार की स्थिति कुछ और हो गई, तब इस स्थिति में आपने क्या किया?
0: देखिए, वैसे तो अमूमन ऐसा कभी होता नहीं, क्योंकि हम लोग बड़ा अनुभवी हैं, पिताजी से बहुत सारा अनुभव हमें मिल चुका है। लेकिन कभी भी अगर ऐसा होता भी है तो आस पड़ोस से नजदीकी जो है थोक विक्रेताओं से लेकर के हमें तुरंत भरपाई करनी पड़ती है, दुकान पर चीजें लानी पड़ती है, नहीं तो फिर हमारे कस्टमर दूसरी जगह जाने की संभावनाएं रहती है।
1: अच्छा, तकनीकी का जमाना है तो आज सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्रचार व्यवसाय बढ़ाने में कितना मददगार साबित हो रहा है?
0: जी बिल्कुल, ऑनलाइन जो माध्यम है ये व्यवसाय को आगे ग्रो करने में बहुत ज्यादा अपना अहम भूमिका निभाता है। हम लोग फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर जो पोस्ट लगाते हैं, बहुत प्रकार की वीडियो बना करके डालते हैं, तो उससे काफी लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं और जो सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं वो लोग देख पाते हैं, और हमारे आसपास में अगर हैं तो जितना संभव हो सकता है हमारी प्रतिष्ठान पर आते हैं और हमसे जुड़ने का प्रयास करते हैं।
1: यानी कि दोनों ही माध्यम फायदेमंद हैं।
0: जी
1: अनुज शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी धन्यवाद।
1: अनुज जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि व्यवसाय में लक्ष्य निर्धारण कितना जरूरी है और हम किस तरीके के लक्ष्य निर्धारित करके अपने व्यवसाय में सफलता प्राप्त कर सकते हैं?
2: मेरा ये मानना है कि किसी भी व्यवसाय के लिए एक लक्ष्य जो निर्धारित करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर लक्ष्य निर्धारित नहीं होगा तो हम अपने कार्य में सफल नहीं हो पाएंगे। और इसके लिए मैं समझता हूँ, मेरा जैसे डेयरी का व्यापार है तो उसके लिए मुझे लक्ष्य निर्धारित, मैं छोटे छोटे चीजों पर ध्यान देता हूँ, छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करता हूँ कि मुझे फला फला गाँव से या इस जगह से मुझे इतना शुद्ध दूध लेना है, भले ही मुझे 2 रुपए ज्यादा महंगा देना पड़े। तो मैं ये सब क्वालिटी पर विशेष ध्यान रखते हुए और छोटे स्तर से हर प्रकार से एक जो लक्ष्य है वो निर्धारित करके ही कार्य किया जाता है।
1: जी जी। अच्छा, त्योहारों या शादी के सीजन में आप अपना बिजनेस कैसे प्लान करते हैं?
2: त्योहारों के और शादी विवाह के जब सीजन चल रहे होते हैं उस समय डिमांड काफी बढ़ जाती है, तो चूंकि प्रोडक्शन भी उसी अनुपात में होना चाहिए, इसलिए हमारे और भी जो घनिष्ठ लोग हैं और जो इस व्यवसाय में जुड़े हैं और उनकी क्वालिटी निर्धारित है, फैट वगैरह चेक करके, और उनसे भी ले करके हम संपर्क करके कोशिश ये करते हैं कि कोई भी कस्टमर हमारा वापस न जाए और क्वालिटी मेंटेन रहे। बेसिकली हम क्वालिटी पर विशेष ध्यान देते हैं। इसके अलावा मैं टेक्निकल तौर पर भी ध्यान देता हूँ, जैसे कि फ्रीजर लगा रखे हैं और बड़े कंटेनर हैं जिसमें डीप फ्रीजिंग की जाती है। डीप फ्रीजिंग करने के बाद जो भी मल्टीपल प्रोडक्ट निकलते हैं, जैसे घी, पनीर और दूध और मक्खन इत्यादि, ये सब भी फ्रेश क्वालिटी के निकले, ताकि अलग अलग जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं अलग अलग दुकानों पर और जो कस्टमर है वो ले जाते हैं और उसको जब यूज करते हैं तो वो बताते हैं रिस्पांस अच्छा है।
1: अच्छा, क्वालिटी मेंटेन करने के लिए आप क्या करते हैं?
2: क्वालिटी मेंटेन करने के लिए मैं उसको स्वयं चेक करता हूँ, उसकी एक वानगी जो है नमूना रहता हूँ, और उसको मैं अपने घर में भी प्रयोग करता हूँ। मेरे अभी तक के जो अनुभव में आया है कि कभी भी कोई खराब चीज मैं जाने नहीं देता हूँ, अगर मुझे लगता है कि ये दूध फट जाएगा, ये खराब हो जाएगा, तो मैं उसको रोक लेता हूँ और उसको हटा देता हूँ, मार्केट में उसको खपाता नहीं।
1: जी जी। कोई युवा अगर नया स्टार्टअप शुरू करना चाहे तो उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
2: मेरा संदेश यही है कि कोई भी स्टार्टअप करें तो उसमें टीम वर्क और विश्वास और दृढ़ संकल्प और मेहनत, इन 3-4 चीजों का बड़ा ही महत्व है। व्यवसाय छोटा हो या बड़ा, उसमें लगनशीलता होनी चाहिए, परसिस्टेंसी होनी चाहिए, कंटिन्यूसी होनी चाहिए, और लगातार सतत प्रयास से ही वो कामयाब हो सकते हैं। और कस्टमर का विश्वास जीतना, उसके लिए क्वालिटी पर विशेष ध्यान और मेहनत पर भरोसा, ये जरूरी है।
1: विशाल जी, आपका हमारे कार्यक्रम नई उड़ान में हार्दिक स्वागत है।
3: धन्यवाद।
1: विशाल जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि किसी व्यवसाय के संचालन में लक्ष्य निर्धारण कितना जरूरी होता है?
3: क्योंकि लक्ष्य निर्धारण के बिना तो फिर वही बात हुई कि एक नाव तो लगा दी लेकिन उसमें पतवार नहीं लगाई। आपको मालूम ही नहीं है आपको कहाँ जाना है, किधर जाना है, क्या करना है। तो हम अगर अपने बिजनेस के जो है परिप्रेक्ष्य में बात करें तो हमको हमारा जो एकमात्र उद्देश्य है वो है कि हमको अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, हमको अपना लाभांश अर्जित करना है, और यही हमारा मोटिव है, तो उसी को लेकर के हम कार्य कर रहे हैं।
1: अच्छा विशाल जी, आपने ये जो बताया कि जो है लाभ अर्जित करना हमारा उद्देश्य होना चाहिए, लेकिन इसमें ग्राहक की संतुष्टि कितनी महत्वपूर्ण रहती है?
3: देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। आप लाभ अर्जित कर सकते हैं एक समय के लिए, थोड़े समय के बाद यदि आपने अपने ग्राहक की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं की, उनके हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स को डिजाइन नहीं किया, उनकी नीड्स की एनालिसिस नहीं की, तो धीरे धीरे धीरे धीरे ये जो बिजनेस की प्रक्रिया है यह मंद पड़ जाएगी और बिजनेस शिथिल होकर के बंद हो जाएगा। बहुत ही नेचुरल सी चीज है। हमारे यहाँ भी जो लोग आते हैं, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि वो उनका टारगेट मार्केट क्या है।

0: जी
1: तो अल्टीमेटली अगर आप देखें तो हमारा टारगेट ऑडियंस कैसा है, टारगेट मार्केट क्या है, उसी के हिसाब से हमने अपने प्रोडक्ट्स को पोजीशन किया हुआ है।
0: जी
1: अगर मैं मैनेजमेंट की भाषा में बात करूं, उसी हिसाब से बिजनेस चल रहा है।
0: क्योंकि आप सफल उद्यमी हैं, तो लक्ष्य को निर्धारित करते समय विशाल जी, आप ग्राहक, बजट या बाजार, इसमें से सबसे ज्यादा महत्व किसे देते हैं?
1: देखिए, तीनों का ही अपना महत्व है।
0: जी जी
1: अगर आप किसी एक को हटा देंगे तो वो जिस मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं वो कभी कम्प्लीट नहीं होगी।
0: जी
1: अब हमारे पास जो बच्चे आते हैं उनका एज ग्रुप जो होता है, दैट इज बिटवीन 80 to 25 ईयर्स ऑफ एज, और उनकी एक जो एवरेज स्पेंडिंग पावर है समवेयर अराउंड 150 to 200 रुपीज।
0: जी
1: अगर मैं उससे ऊपर की प्राइसिंग के प्रोडक्ट्स रख दूंगा तो मेरे को मालूम है कि मेरा बिजनेस नहीं चल पाएगा।
0: जी
1: तो बजट इज इक्वली इम्पोर्टेंट। टारगेट ऑडियंस की नीड्स के हिसाब से ही आपको बजट एलोकेशन करना है, उसी के हिसाब से सर्विसेज देनी है, और यही बिजनेस की सफलता का मंत्र है।
0: तो दोस्तों, हमारे आज के इस विमर्श में शामिल सभी पैनलिस्टों का बहुत बहुत धन्यवाद। अलग अलग उद्यमियों के अनुभव से यही सीख मिलती है कि व्यवसाय में सफलता सिर्फ पूंजी से नहीं, बल्कि सही सोच, स्पष्ट लक्ष्य और लगातार मेहनत से मिलती है। छोटे कदम, सही योजना और समय के साथ लिया गया सही निर्णय ही बड़े सपनों को साकार बनाता है।
2: जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे सेगमेंट विमर्श, जिसके अंतर्गत आप सुन रहे थे व्यवसाय योजना के लिए लक्ष्य निर्धारण, उद्यमी अनुभव, और ये जो आउटडोर ब्रॉडकास्ट था ये किया था आशीष सोनी जी ने। तो चलिए अब कुछ समाचार आपको बता देते हैं, जो शहर के समाचार हैं। दोस्तों, ललित कला की दुनिया में भी तकनीक के प्रयोग के साथ नवाचार किया जा रहा है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इसका हिस्सा बन रहा है। राज्य ललित कला एकेडमी की ओर से आयोजित ग्रीष्म कार्यशालाओं में अब एआई से प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें रेखांकन, चित्रांकन, क्ले मॉडलिंग, कैलीग्राफी आदि विधाओं का प्रशिक्षण दिया जाएगा। एकेडमी इस बार प्रदेश के सभी जिलों में ग्रीष्म कार्यशालाएं आयोजित करने जा रही है। फिलहाल 50 जिलों में कार्यशालाओं की तिथियां तय हो चुकी हैं, जबकि 25 जिलों में कार्यशालाओं के लिए स्थानीय संस्थाओं से बात चल रही है। एकेडमी के अध्यक्ष डॉक्टर सुनील कुमार विश्वकर्मा ने बताया कि लखनऊ में एकेडमी परिसर में 8 जून से 20 दिवसीय कार्यशाला शुरू कराई जाएगी। यहां अप्लाइड आर्ट के विशेषज्ञ और एकेडमी के प्रशिक्षण देंगे। वे चित्रों की दुनिया में एआई के उपयोग की संभावनाओं के बारे में भी बताएंगे। एआई टूल्स में केवल लिखकर, प्रॉम्प्ट डालकर एक सटीक तस्वीर बनाई जा सकती है, चाहे आपको वास्तविक चित्र बनाना है या काल्पनिक, ये टूल्स सेकेंडों में बना देते हैं। इनका सही उपयोग कैसे करना है, ललित कला के होनहारों के लिए ये जिज्ञासा का विषय है। लेकिन इस कार्यशाला में वे इन सब विषयों को निःशुल्क सीख सकेंगे। इसके साथ ही उन्हें कैलीग्राफी भी सिखाई जाएगी। डॉक्टर विश्वकर्मा ने बताया कि ये पहल कला से लोगों को जोड़ने के लिए की गई है। इस बार प्रशिक्षुओं से प्रशिक्षण शुल्क नहीं लिया जाएगा, उन्हें केवल 100 रुपये पंजीकरण शुल्क देना होगा। दोस्तों, स्कूल कॉलेजों में भी होंगी कार्यशालाएं। एकेडमी के अध्यक्ष ने बताया कि प्रदेश के कुछ ज़िलों में कला के प्रति लोगों की रुचि कम है, ऐसे ज़िलों में भी हम कला अभिरुचि कार्यशालाएं आयोजित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसके लिए स्कूल कॉलेजों को एकेडमी से जोड़ा जा रहा है, ताकि वहाँ भी कार्यशालाएँ कराई जा सके। दोस्तों, ऐशबाग के सामुदायिक केंद्र का 2.5 करोड़ से होगा पुनर्निर्माण। ऐशबाग की संत सुदर्शनपुरी कॉलोनी में सामुदायिक केंद्र का पुनर्निर्माण कराया जाएगा। 2.5 करोड़ रुपए की लागत से सामुदायिक केंद्र को राज्यसभा सदस्य डॉक्टर दिनेश शर्मा की संस्तुति पर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के सीएसआर फंड से कराया जाएगा। महापौर सुषमा खरकवाल की मौजूदगी में इसका उद्घाटन कर दिया गया है। डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि इस पुनर्निर्माण कार्य से क्षेत्र के नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। महापौर ने कहा कि संत सुदर्शनपुरी कॉलोनी में सामुदायिक केंद्र का पुनर्निर्माण स्थानीय नागरिकों की लंबे समय से चली आ रही आवश्यकता को पूरा करेगा। तो ये तो थे आज के समाचार, और अब आइए लुत्फ उठाते हैं एक और गीत का।

जी हाँ, कहाँ उड़ चली, और कार्यक्रम का नाम भी है नई उड़ान, लेकिन जो वक्त है वो इजाज़त नहीं दे रहा है कि और उड़ा जाए। तो अब फिर नेक्स्ट किसी दिन में होगी आपसे मुलाकात। अपने दोस्त कपिल को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नई उड़ान। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे।
1: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
3: 8700001-4242।
4: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
5: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
7: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।

0: घर आंगन मा है बहार, कहानी कविता और बतकही के फुहार, आपन बोली बानी संग लोक गीतन के बहे बयार, खान पान संग सेहत के और स्वावलंबन के बहचली है बयार, घर आंगन संग होई के तैयार, चलो विकास के रफ्तार, सोम बृहस्पति और साथे है दिन शनिवार, ईमेल और पाती के होए भरमार।
1: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तरपत्तरोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है। इनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है, बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, इतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।

मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:20 होने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार।

0: सूरजपुरस्थितस्य लोहुम इति समवायस्य भ्रमणम् अकरोत्। अयं समवायः महत्वपूर्णखनिनाम् उन्नतसामग्रीणां च उत्पादनं विदधाति। अत्रावसरे श्रीवैष्णवः अवोचत् यत् लिथियम बैटरी, स्थायी चुंबक इत्येतौ आधुनिकप्रौद्योगिक्यां महत्वपूर्णां भूमिकां निभालयतः। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः परिकल्पना वर्तते यत् एतेषां निर्माणं भारते स्यात्। एतेषां प्रौद्योगिक्यः विकासः स्वदेशस्तरे भवेत्। श्रीवैष्णवेन उक्तं यत् अस्याः परिकल्पनायाः अनुरूपं लौहुम नामकेन समवायेन सफलतापूर्वकं जटिल प्रौद्योगिकी विकसिता।
1: एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में वहां से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए। आज उस प्लांट को देखने का मौका मिला। लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीन है जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए, और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीन है जो कि बहुत ही एक अच्छे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप किया।
0: म्यांमारस्य राष्ट्रपतिः मिन आंग लाइंग इत्यसौ अद्य पञ्चदिवसीय भारत यात्रायै बिहारस्य गयां सम्प्राप्तः। तेन बोधगया स्थितस्य विश्व प्रसिद्धस्य महाबोधि मन्दिरस्य दर्शनं विहितम्। राष्ट्रपतिना तत्र बोधिवृक्षस्य अधः प्रार्थना अपि कृता। अत्रावसरे म्यांमारस्य राष्ट्रपतिना बकराऊर स्थिते ऐतिहासिके सुजाता मन्दिरे शिरं नत्वा बोधगया स्थितस्य बर्मी मठस्य यात्रा कृता। राष्ट्रपतिना सह वरिष्ठाधिकारिणः, बौद्धप्रतिनिधयः, उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलम् अपि अवर्तत। संस्कृतवार्तायाः संस्करणम् इदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन AIR चलदूरभाषीय तंत्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। ऋतु विज्ञान विभागेन उक्तं यत् वायुमंडलीय परिस्थितिभिः अनुमीयते यत् दक्षिण पश्चिम प्राविट आगामिषु चतुष्पञ्च दिनेषु केरलस्य तमिलनाडोः च कतिपय भागेषु आगमिष्यति। अरबसागरे बंगालखात्यां लक्षद्वीपे कन्याकुमार्यां च प्राविट अग्रे समेधते। ऋतुविज्ञान विभागेन केरलस्य अष्टजनपदेषु अद्य प्रचण्ड वृष्टेः पूर्वानुमानं विधाय पीतवर्ण सञ्चेतना प्रसारिता। ऋतोः प्रतिकूलता कारणेन जूनमासस्य तृतीयदिनं यावत् मत्स्यजीविनः केरल लक्षद्वीपतटयोः समुद्रे उद्यमं न कुर्वन्तु इति परामर्शः अपि प्रदत्तः। सेनाप्रमुखः जनरल उपेन्द्र द्विवेदी अवोचत् यत् भारतीय सशस्त्रबलानि उच्चस्तरीय सतर्कतायां विद्यन्ते। आवश्यकता विद्यते सति ऑपरेशन सिन्दूर 2.0 इति सिन्दूराभियानस्य द्वितीयचरणाय सन्नद्धानि सैन्यबलानि वर्तन्ते। पुणेनगरस्य खडकवासलास्थितायां राष्ट्रियरक्षाकादम्यां स्नातकान् सार्धैकशततमस्य दलस्य पासिंग आउट परेड इति प्रयाणं सम्बोधयता जनरल द्विवेदिना उक्तं यत् सिन्दूराभियाने दृढसंकल्पेन प्रत्युत्तरप्रदातस्य क्षमता प्रदर्शिता। तेनोक्तं यत् एतत् अभियानम् इदानीम् अपि सन्ततं प्रवर्तते। जनरल उवेदी अवोचत् यत् सिन्दूराभियाने भारतीयसैन्यबलानां मध्ये तारतम्यम् अवलोकितम्। सममेव वयं भविष्यकालाय आत्मानं सन्नद्धं कुर्महे। सेनाप्रमुखेण स्नातकाः व्यावसायिकनेतृत्वस्य राष्ट्रसेवायाः च सर्वोच्चमानकान् यथावत् प्रवर्तितुम् आकारिताः।
2: जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, ये अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है। साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी श्वः प्रातः 11 वादने आकाशवाण्याः मन की बात कार्यक्रमे जनैः साकं स्वविचारान् प्रकटयिष्यति। कार्यक्रमोऽयं मासिक रेडियो कार्यक्रमस्य 34th प्रभागः वर्तते। अयं कार्यक्रमः आकाशवाणी दूरदर्शनयोः अन्तर्जालीयपटले प्रसारयिष्यते। एतदतिरिच्य कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालीयवेबफलकं समेत्य न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप इति तन्त्रांशे अपि उपलब्धः भविष्यति। प्रमुखः रक्षाध्यक्षः

0: पंचो जय हिंद।
1: कृष्णा भैया।
0: हाँ देवेश भैया।
1: देखा यह सम्मत गर्मी बहुत पड़ता है।
0: हाँ
1: और गर्मी में अगर जान लियो कि बिजली तनिको कटी तो समझ लियो कि जीव अकुलाए लागत है।
0: बिल्कुल सही बात है भैया। देखो दो दिन ते दोन बा कुछ मौसम
1: राहत बा
0: है, लेकिन जौन बा जैसे बता रहे हो जीव एकदम बौखला जाता है कि भाई देखो अब तो जौन बा लाइन चली गई, अब कहाँ ते जौन बा बिना हाकी। अब पहले कह रहा कि अपने यहाँ बेना रहत रहा, अब तो देखा घर में बेना ही नहीं मिली भैया।
1: बिल्कुल भैया, काहे से कि समय बदला अपन आदत बदली तो वही के साथे साथे जो है सुविधा बदल गई जीवन में, और जब सुविधा मिलत गई तो वही के हम सब उपयोग करे लागे। अब जो है पंखा के हवा निकलागत है, और अगर पंखा बंद हुई जाते है तो फिर भैया बड़ी दिक्कत जनाए लागत है।
0: भैया देखो एक चीज़ और है, ने कहा हम तो यूँ कहते हैं ना कि हम पंच धीरे धीरे एकदम से मशीनीकरण के युग में तो चले गए हैं, हम पंच भी मशीन हो गए हैं। अब देखो पहले कह रहा कि अपने गाँव में देखो जम्बा दोपहरिया का हो, महुआ का पेड़ है, आम एक पेड़ है, या बाग बगीचा है, वहाँ खटिया निकल है, 10 लोग बैठे और वह दोपहरिया बीत जाते रही। अब तो ये है ना क्योंकि यहाँ जाए ना क्योंकि दुआरे बैठी अपन पंखा लगाए लो, एक और जो चला इतना बड़ा फर्राटा वाला, अब लगा के बैठो तो जब लाइन चली जाए
1: फर्राटा
0: तो
1: कूलर तमाम व्यवस्था हो गया है, और यह व्यवस्था के साथ है जैसे आप कह रहे हो मनाई बाग बिरवा से अब दूर होता है।
0: हाँ
1: बस ओका जौन है उपकरण चाही, जौन संसाधन चाही कि हाँ आसानी से अपन जीवन यापन हो सके।

0: सुविधा चाही भैया, काम न चाही सुविधा ज्यादा चाही। कि देखो जौन बा काम कम करे पड़े, बेना न डलावे पड़े, पंखा फर फर चलाए। और हम तो गए रहे देखो जय के तरफ, तो देखे जय लगाए के कूलर वो बैठे मार हवा हमके पड़े रहे। तो हम कहे भाई देखो ऐसा है ना कि लाइन के ऊपर बिल्कुल निर्भर पूरा तरह से न रह भैया, अपन कुछ देसी व्यवस्था जरूर करे रहो भैया।
1: बिल्कुल सही बात है। और भैया देखो एक चीज़ और है, बिजली कहाँ तक पूर्ण पड़े, अगर वही के उपयोग सही से करी हो तब तो भैया वो जौन संसाधन उपलब्ध है वही के लाभ मिली, लेकिन अगर आप दुरुपयोग करी हो तो जान लियो कि फिर काम बनी है ना
0: हाँ
1: बिगड़
0: भाई,
1: गई
0: ये
1: है।
0: तो बिल्कुल भैया। देखो हम तो आज देखत रहे ना कि जौन बावत है तीन खम्भा हमारे जौन बा रास्ता में पड़ा, तीनों में खूब वो बड़ा वाला बल्ब जौन खूब लगा था रात की बल्ब था, और वो तीनों बरत रहा। तो हम
1: दिनहीं
0: साइकिल,
1: मान
0: हाँ दिनहीं में साइकिल ठड़ियाई कि हम कहे भैया बंद करो के, और ना ही तो यही है देखो बिजली की बर्बादी है। और जब अंधेर होता तो भी लागत है कि बिजली चली गई।
1: बिल्कुल भैया। देखा घरों में अक्सर ये होता है कि पंखा चलाएं बैठ गए, या बिजली जलाएं बैठ गए, ओकरे बाद उठें क्यों बुलाए लिहेज या कोनो काम हो गया पता लाग घरे में से निकल गए और बत्ती जराता है पंखा चलाता है, फिर थोड़ी देर बाद आधा घंटा एक घंटा में लौट के आए तब यादव नहीं है फिर आए बैठ गए। हाँ तो ये बहुत गलत होता है। काहे के मतलब यू है कि अगर कमरा में से निकल रहे हो तो बिजली जौन है पंखा जौन है वह का बंद कर दियो, सही तरीका से आप उपयोग करो उपभोग करो ताकि जौन है एक संरक्षण हो सके,
0: बिल्कुल भैया,
1: ऊर्जा के
0: देखो
1: संरक्षण बहुत जरूरी है
0: बहुत
1: भैया।
0: जरूरी है, सही बता रहे हो। यही के लिए देखो अब सरपंच भैया जौन बा बड़े हैं, सोलर एनर्जी वो जौन बनावत है बड़ी छत लागत है छत पे, ओकरे तरफ बढ़े हैं कि जौने यू बिजली के ऊपर हम पंचन का निर्भरता कम हो अपन। भाई देखो अगर ऊर्जा न बहुत कीमती है, सरकार बड़ा पैसा लगावत होकर पीछे, और हम लोग जहाँ छोट का कमरा है या छोटे दुआर है जहाँ 10 वाट की जरूरत है वहाँ हम 500 वाट का लगाए बैठे हैं बल्ब, तो वह तो एक तरह से नुकसान है। तो हम
1: बिल्कुल
0: पंचन
1: भैया
0: के भाई देखो ये ध्यान रखे चाहे कि बचत एक एक पैसा करब तो वही जौन बा हमारे आगे वाले समय के लिए हरदम काम दे।
1: बिल्कुल भैया। देखो बिजली जौन है वो आधुनिक जीवन के आधारभूत आवश्यकता है, लेकिन यह के मतलब यूँ नहीं है कि वही पे हम सब पूरी तरीके से निर्भर रही और वही के संरक्षण के बजाय वही का यह तरीके से इस्तेमाल करी कि जौन है अपन जौन काम है वो बनत रहे बिगड़े ना पावे।
0: बिल्कुल भाई, देखो दुरुपयोग ना करो सदुपयोग करो, चाहे बिजली हो चाहे पानी हो या प्राकृतिक संसाधन या हमारे पंचन के द्वारा निर्मित संसाधन जौन है, यह की खातिर कि अगर आज वो बच जाए बिजली तो जहाँ बिजली ना आए है या जहाँ कम है वहाँ के लिए काम दे।
1: और बिल्कुल भैया एक चीज़ और रहा है पर्यावरण खातिर भी एक के बड़ा लाभ हो, काहे से कि जौन बिजली उत्पादन होते वह माँ प्राकृतिक गैस कोयला तमाम ईंधन लागत है, तो ये जौन संसाधन बिजली के उत्पादन में लाग रहे हैं उन्हों का कहूँ ना कहूँ बचत हुई है और अपन पर्यावरण जौन है वहू के बचत हुई है।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है भैया। देखो जौन बा सरकार बड़ा पैसा लगावत है, सुने के आवत है कि हम पंच जौन बिजली कम पैसा में पावा करते, सरकार उपे सहायता देता है वो खरीद के बाहर से लई आवत है। तो भाई देखो हम पंचन की यह ध्यान रखे के चाहे कि अपन संसाधन है ओका सदुपयोग अच्छी तरीके से करी, दुरुपयोग न करी।
1: बिल्कुल भैया। और देखो जब संसाधन के अच्छे से उपयोग होता है वही के सदुपयोग होता है तो गांव देहात समाज के तस्वीर जो होते बदल जाते है, और ऐसे ही गांव के तस्वीर कैसे बदल रही है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से, तो भैया जानकारी दे रहे हैं अजीत प्रताप सिंह भैया, तो आप जाना जाए कि क्या जानकारी वो दे रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से बदलता गांव विषय
0: बिल्कुल
1: पे।
0: भैया सुना जाए।
2: नमस्कार श्रोताओं, जैसा कि हम सब जानते हैं, तीन जरूरतें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। तो रोटी हम सब अपनी मेहनत से उगा लेते हैं गेहूं की फसल के रूप में, और कपड़ों की भी अब बहुत कोई समस्या नहीं है, लेकिन एक पक्की छत वाला मकान जो कि हर मौसम में हमारे जीवन यापन में आसानी लाता है, सबका सपना होता है। और यह ज़रूरत हमारे भारत देश खासकर ग्रामीण क्षेत्र में पिछले कुछ सालों में सपना जैसी ही रही है। इसी आवश्यकता के कारण आज से लगभग 12 साल पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसी योजना की शुरुआत की थी जिसे आज हम सब प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से जानते हैं। और चूंकि हमारे देश की अधिकांश आबादी आज भी गांवों में निवास करती है, इसलिए

इसका महत्व प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के रूप में और बढ़ जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में लोग इस योजना को कॉलोनी योजना के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि यह योजना केंद्र सरकार के द्वारा देश के सभी राज्यों में प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से चलाई जाती है और इसकी शुरुआत वर्ष 2014 में हुई थी। इसमें वर्ष 2011 की सामाजिक आर्थिक जनगणना के उन गरीब परिवारों को शामिल किया गया था जिनके पास अपना किसी भी प्रकार का कोई पक्का मकान नहीं था और वे कच्ची कोठरी अथवा छप्पर या खुले में निवास कर रहे थे। बाद के वर्षों में ग्राम पंचायतों को यह अधिकार दिया गया कि वो इसका चयन करें और इसमें नए परिवारों के नाम शामिल करते जाएं। वर्तमान समय में इस योजना के लिए सभी गांवों में पात्र परिवारों का चयन आवास प्लस सर्वे 2025 के द्वारा किया जा चुका है और पात्र परिवारों को शीघ्र ही आवास अथवा कॉलोनी की सुविधा देना प्रारंभ हो जाएगा। इस योजना के अंतर्गत वर्तमान समय में सभी पात्र परिवारों को अपना पक्का घर उनके द्वारा स्वयं बनाने के लिए मैदानी क्षेत्रों में 1,20,000 रुपये और पर्वतीय क्षेत्रों में 1,30,000 रुपये 3 किस्तों में परिवार की महिला सदस्य के बैंक खाते में सीधे भेजे जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में यहाँ पे मैदानी इलाकों में जो पहली किस्त होती है ये 40,000 रुपये की होती है जिसमें उनको आवास में नींव एवं DPC स्तर तक का निर्माण करना होता है। इसके बाद दूसरी किस्त उन्हें दी जाती है जिसमें उन्हें 70,000 रुपये दिए जाते हैं। इस 70,000 रुपये की दूसरी किस्त से लाभार्थी को अपने घर की दीवारें खड़ी करके छत डालनी होती है। इसके बाद 10,000 रुपये उन्हें प्लास्टर आदि के रूप में पुनः दिए जाते हैं तीसरी किस्त के रूप में। इसके अलावा यदि परिवार के सदस्य अपने इस घर के निर्माण कार्य में स्वयं मजदूरी का कार्य करते हैं तो उन्हें 90 दिनों की मजदूरी जो कि वर्तमान समय में लगभग कुल 22,680 रुपये होती है ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा के अंतर्गत दी जाती है। और साथ ही साथ यदि उस परिवार के पास शौचालय की सुविधा नहीं उपलब्ध है तो स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 12,000 रुपये का अनुदान शौचालय निर्माण के लिए भी दिया जाता है। तो इस प्रकार से प्रधानमंत्री आवास योजना में सभी पात्र परिवारों को लगभग 1,54,000 से अधिक की सहायता उनका अपना स्वयं का घर बनाने के लिए मिलती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह पूरी धनराशि बिना किसी कटौती के बिना किसी बिचौलिया के लाभार्थी परिवार की महिला सदस्य के बैंक खाते में सीधे पहुंचती है जिससे महिला सशक्तिकरण और परिवार में महिलाओं का सम्मान और महत्व भी बढ़ता है जो कि ग्रामीण समाज में आज एक महत्वपूर्ण आवश्यकता और समय की मांग है। इस योजना में लाभार्थियों को लगभग 25 वर्ग मीटर में अपना घर बनाना होता है जिसमें रसोई घर भी सम्मिलित होता है। इस प्रकार से शौचालय व रसोई घर से युक्त आवास एक परिवार के रहने की जरूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त होता है। श्रोताओं, लगभग 1,40,00,000,000,000 से अधिक आबादी वाले अपने भारत देश में और खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी तमाम परिवार ऐसे हैं जो कि बिना छत और घर के निवास कर रहे हैं और अपनी कम आमदनी के कारण रोटी कपड़ा और अन्य ज़रूरतों को पूरा करने में ही उनकी पूरी कमाई खर्च हो जाती है। ऐसे में उनका अपना घर बनाने का कार्य एक सपने के पूरा जैसे होने वाला होता है। तमाम परिवार अब तक जीवन भर यह सपना पूरा नहीं कर पाते थे जिससे गर्मी सर्दी और बरसात के मौसम में उन्हें तमाम परेशानी होती थी। इस प्रधानमंत्री आवास योजना से जहां एक ओर इन गरीब और वंचित परिवारों को बिना किसी भेदभाव अथवा कटौती के अपना स्वयं का घर का सपना साकार हो रहा है, महिला सशक्तिकरण और सम्मान बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर हमारे देश के ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार भी हो रहा है। यह योजना माननीय प्रधानमंत्री जी की एक महत्वपूर्ण योजना है और यह योजना आगामी वर्ष 2037

0: 1947 तक उनके विकसित भारत के सपने को साकार करने में बेहतरीन भूमिका निभाएगी, ऐसा हम सबका विश्वास है। तो इस प्रकार से अपने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली तमाम आबादी, विशेषकर निर्धन और वंचित परिवार जिनके पास अपना पक्की छत वाला मकान नहीं है और वे गरीबी के कारण उसे बनाने में भी सक्षम नहीं हैं, उन्हें अब इसके लिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस योजना के अंतर्गत अब तक पूरे देश में 4 करोड़ से अधिक घर बनाए जा चुके हैं और इनमें से 3 करोड़ घर तो महिलाओं को ही दिए गए हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में ही अब तक 60 लाख से अधिक लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल चुका है और प्रधानमंत्री जी एवं सरकार का लक्ष्य है कि मार्च 2029 तक पूरे देश में कोई ऐसा परिवार न बचे जिसके पास अपना पक्का मकान न हो। इस प्रकार से पूर्णतया अनुदान आधारित विश्व की यह सबसे बड़ी एवं अनूठी आवास योजना भारत के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अंत में अब मैं इस योजना पर अपनी 4 पंक्तियां कह के अपनी बात समाप्त करता हूं, जो कि हैं कि जिनके सिर के ऊपर छत नहीं है उनकी खातिर है, कि जिनके सर के ऊपर छत नहीं है उनकी खातिर है, कि जिनके पास कुछ दौलत नहीं है उनकी खातिर है, कि जो परिवार अब तक घर नहीं अपना बना पाए, कि जो परिवार अब तक घर नहीं अपना बना पाए, वो बनाने की भी अब हिम्मत नहीं है उनकी खातिर है, बनाने की भी अब हिम्मत नहीं है उनकी खातिर है।
1: देवेश भैया,
2: हाँ कृष्ण,
1: देखो यू रहे अजीत प्रताप सिंह भैया, वो बतावत रहे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से बदलता गांव। तो भैया देखो, जिसे बताया कि अगर अपने गांव पर ऊपर छत ना आई है तो सरकार हम पंचन के खातिर जौन बा ग्रामीण आवास योजना से छत पक्का देता है, साथ साथ में वो घर में शौचालय भी देता है, रसोई घर भी जैसे बताए भैया कि वो सब जौन बा 25 वर्ग मीटर में कितना बताए कि सबके एक मकान मिला करता है। तो भाई देखो, अगर जौन बा ऐसा व्यवस्था सरकार के द्वारा है तो बड़ी नीक बात है भैया।
2: बिल्कुल भैया, देखो अगर आप यह जौन योजना है वही माँ पात्रता आपके है तो आप आवेदन करके वही के लाभ उठा सकत हो। काहे से कि रोटी कपड़ा और मकान कहा जाता है कि सबे के मूलभूत आवश्यकता होते है, और अगर यह आपका जरूरत है और आप मकान नहीं बना पा रहे हो तो सरकार आपका एक अवसर दे रही है, सुनहरा मौका दे रही है कि आपके अपन मकान आपके गांव में बन जाए, तो यह योजना के लाभ उठावा जा सकता है। और ये जौन बढ़िया तरीके से जानकारी दी, एक बार फिर से अजीत प्रताप सिंह भैया का बहुत बहुत
1: धन्यवाद भैया। अब देखो जौन बात सही बात है कि देखो अपन सबन के बत कही तो होते रहा था, अपने बैठकी में हम पंचावा करी थे तो जानकारी तो यू प्रयास रहा करता था कि नई से नई जानकारी और नीक से नीक जानकारी अपने पंच बहन के उपलब्ध करा जाए। तो भैया देखो जौन बा एक गौ नहीं सुनाए दो तब फिर करे आगे हम पंच चला जाए तो खेती पाती की बत कही की जाए।
2: बिल्कुल, तो आप सुना जाए नकटा, कलाकार हैं सुधा द्विवेदी।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: देवेश भैया।
2: हाँ कृष्णा भैया।
1: देखो हम पंच अपन खेती पाती काम तो हरदम देखा करते है और करा करी था कि देखो कौन काम ऐसा है कि जौन अपन जौन बा बराबर ध्यान रखे पड़ता है। तो देखो यहाँ समय तो कुछ खेती पाती काम कम है, लेकिन जौन बा अब आवे वाले समय में जौन बा हम पंच जौन धान की तैयारी कर रहे हैं वो सब तो है ये है तैयारी कर रहे हैं। फिर एक बात अपने खेत में जौन सब्जी लगी है वह की देख रेख है। तो भाई देखो काम कुछ कम जरूर हो जाता है, एकदम ते बंद ना होते अपने।
2: बिल्कुल सही बात है भैया। और जौन है खेती पाती माँ कुछ ना कुछ ऐसा लाग रहा था कि आप खेती से जुड़े रहो, कुछ आय के नए संसाधन जौन है पावे खातिर आप कुछ नवा करत रहो, तो ये बहुत काम जौन है आपके चलत रहा थे। अर्थोपार्जन के खातिर भी कुछ ना कुछ ऐसा करे के चाहिए कि खेती पर ही पूरी तरीके से आप निर्भर ना रहो।
1: भाई देखो ये तो सही बात है कि देखो मौसम अनिश्चितता को होता है और हमार पंचायत खेती पाती जौन बा मौसम पे आधा ज़्यादा निर्भर रहा करता है। और अगर पूरा खेती पर निर्भर रहा तो कहूँ कहूँ कबाऊ धोखा हो जावा करता है। तो बड़ा जौन बा यू होता कि भाई देखो हम एक कई जगह पूरा काम के है, एक खेत में पूरी मेहनत करे या फसल के ही पीछे पूरी मेहनत करे, तो आज हम जौन बा इतना घाटा में चला गए। तो ओकरे साथे साथे हमें पंचन के और चीज़ देखे के चाहे और ओकर आमदनी के अपन जरिया बनावे चाहे।
2: भैया देखो जैसे कि एक प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना आई है, तो जिमा जो है खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से तमाम ऐसा व्यवसाय के आपका योजना में लाभ दिन जा रहा है कि आप अगर ऐसा कोनो व्यवसाय कह रहे हो तो वही माँ प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के माध्यम से आपका सहायता की जाई। और आप आपन जौन व्यवसाय है जैसे अचार निर्माण होगा, पापड़ होगा, मसाला के प्रसंस्करण, ये सब काम जौन होता है, जैम जैली मुरब्बा आदि के काम जौन है ये सब शुरू करके आप अपन आर्थिक रूप से अर्थोपार्जन के दृष्टि से अधिक लाभ कमाए।
1: भैया देखो हम तो ये चीज़ जाना करी था ना कि देखो अपने खेती में कुछ अपन फसल या उत्पादन ऐसा होता है कि जौन एक समय आवा था कि दो पैसा के लिए महंग हो जाता है। जैसे देखो टमाटर पिछले समय इतना

0: पैदा होत है कि जौन बा जब गर्मी आवा करत है तो जल्दी जल्दी वो तो तोड़ के फेंका हो के भैया, या 2 रुपये किलो 1 रुपये किलो बाजारे में निकाले के लिए हम पंच मजबूर हो जाए। तो भाई देखो, अगर हम पंच ऐसे जैसे आप बता रहे हो सूक्ष्म उद्योग, अगर हम पंच ऐसा प्रशिक्षण कहूँ से ले ले, अब देखो ये समय तो ओके जौन बा हम पंच संरक्षित करके चटनी बना ले, जैम जैली जैसे आप बता रहे हो, तो ओकर सदुपयोग करके निक पैसा तो कमाई सका कर।
1: बिल्कुल जैसे आप कहो टमाटर, टमाटर के आप प्रसंस्करण कई के वो बनाते कैचअप,
0: हाँ
1: तो वही के आप
0: अरे भैया चटनी कितनी बना था वही मीठी वाली पन्नी में देखो भर के मिला था बाजारे में जा। तो अगर हम पंच ऐसा कोनो उद्योग लगा रहे हैं, ओकर प्रशिक्षण ले ले हैं, जानकारी ले ले हैं, तो उसे निक पैसा कमा सके थे।
1: बिल्कुल सही बात है। और अमेजोन आवश्यक दस्तावेज होते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक के पासबुक, और जौन भी कागजात लागत हैं वैके सबके विषय में आप जानकारी कई के, और का पात्रता है एक योजना के लाभ ले खातिर वैके पूरी जानकारी कई के आवेदन कई के एक के लाभ उठावा जा सकत
0: भाई
1: है।
0: देखो, हम तो यूँ देखे थे ना, जौन अपने किसान पंच भैया जागरूक हैं, वो देखत रहा करत थे कि किसान गोष्ठी कहाँ लागत है, किसान मेला कहाँ लागत है, प्रशिक्षण केंद्र कहाँ लागत है। तो जाए कि जौन बा प्रशिक्षण केंद्र पे प्रशिक्षण लेवा करत थी, और जहाँ आप प्रशिक्षण ले हो ना वहीं सारी जानकारी बताई जाए, भैया आपकी कागज़ लागे, अगर ये उद्योग लगाओ तो इतना पैसा लागे, ये बैंक में जाओ यू कागज़ लगाओ तो आपके जौन बा ऐसे ऐसे पै के सहायता सरकार के द्वारा मिल जाए।
1: बिल्कुल
0: अब
1: सही बात भैया, जौन आप कहो कि जानकारी होए के चाही, काहे से कि अगर जानकारी ना हुई है कि हमका करे के का है, कहाँ जाए के संपर्क करे के है, तो फिर काम बन नहीं पावत है, और यहाँ वहाँ मनाई भटका करत है, और का कोनो तरीके के लाभ नहीं मिल पावत
0: भाई
1: है।
0: देखो, सरकार बराबर जौन बा हम पंचन प्रशिक्षण करावा करा था, बस जानकारी करे के रहा था। तो देखो अपने बैठकी में हम अपन चर्चा भी करा करी थे, भाई देखो यहाँ किसान मेला है, यहाँ किस गोष्ठी है, ई जौन बा मेला लगा है, प्रदर्शनी लगी है, या अपने क्षेत्र में जाए के ब्लॉक में जाए के भी पता हम पंच कई लेवा करी थे, और वहाँ प्रशिक्षण ले। अब यहाँ समय देखो, जैसे आम आम है भैया ना, तो पका आम हो या कच्चा आम हो, इहू को देखो जौन बा हम पंच प्रसंस्करण कई के ऊपर निक पैसा कमाई जाती थे।
1: बिल्कुल सही बात है। अब पक्का आम के भैया देख रस जो है वही का
0: हाँ
1: लेके
0: भैया,
1: बेचा जा,
0: पन्ना जोन
1: पन्ना
0: अमावट कही
1: हाँ
0: जाता है, बहुत
1: अमावट
0: सारी
1: बेचा,
0: चीज मिलते हैं।
1: या कच्चा आम है वे के अचार होएगा, हाँ जैली तमाम तरीके के बन जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जौन हैं एका आप प्रशिक्षण ले के कि कैसे एका बनवा जाए, फिर वह के बाद एक पैकेजिंग कैसे कीन जाए, तमाम इमा जौन प्रोसेस होत है, पद्धति होत है, वही के पालन करत भय भैया जौन है आप एक अच्छा उद्योग।
0: बैठा सको तो भैया देखो, हम तो देखे थे ना, हमारे यहाँ जौन बा वो खादी ग्रामोद्योग का प्रशिक्षण केंद्र बा, तो खादी ग्रामोद्योग सरकार के द्वारा बड़ा नीक प्रशिक्षण केंद्र वहाँ चलाया जाता है। तो में अचार है, चटनी है, जैम है, जैली है, बहुत ऐसा जौन बा सूक्ष्म उद्योग का जौन बा वहाँ वो प्रशिक्षण देवा करत थी, 10-10 दिन का, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना। तो हम तो अपने देखी थे, हमारे क्षेत्र के लोग सब वहीं जावा करे थे खादी ग्रामोद्योग वाले प्रशिक्षण केंद्र पे, और वहाँ प्रशिक्षण लेके आवा करे थे। अब तो कुछ भैया ऐसा अपन अचार उचार बनावे के सीख ले हैं कि वो खूब नीक तरीके से अपन बेच के पैसा कमा
1: बिल्कुल
0: करे थे।
1: भैया, देखो आज जो है 30 मई है, अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाया जा रहा, तो आलूओं के देखो भैया वो बनाए लिए थे ना, चिप्स बनाए लिए
0: चिप्स
1: लिया
0: है,
1: जाता है,
0: पापड़
1: हाँ
0: है भैया,
1: पापड़ है।
0: नमकीन
1: तो
0: है।
1: ये उद्योग भी यह दृष्टि से भी बहुत अच्छा रहा था, और ये जो आपके अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनावा जा रहा है, एक केवल उद्देश्य ये है कि आलू की जौन उपज है वही की तरफ हमार सबके ध्यान आकर्षित हुए, और हम सब आलू की उन्नत प्रजाति का अपनाई, उन्नत खेती का अपनावत भय, आलू के पैदावार अधिक से अधिक करें।
0: बिल्कुल एकदम, हम तो यूँ कह लिया कि बहुत महत्वपूर्ण सब्जी अपने यहाँ, अपने थाली के, अपने घर का सब्जी आलू मानी जाता। भाई देखो, जब सब सब्जी ना रहता ना, तो भैया आलू और प्याज लेके सब्जी बना लो, है कि ना।
1: बिल्कुल सही बात
0: तो भाई
1: भैया,
0: देखो, आलू के प्रति हमार पंचन का अगर रुझान रुझान रहे तो हम पंच नीक पैसा कमाओ करे थे, और है भी रुझान भैया। देखो अपने यहाँ कितनी आलू पैदा होता है, और हम पंच कितना आलू खपत करी थे। तो भाई देखो, दोनों चीज़ है, अगर उत्पादन होए तो खपत भी होए, और खपत होए तो अपन जेब में पैसा दो उठे आए।
1: बिल्कुल भैया। और एक चीज़ और है कि आलू जो है वो भोजन के महत्वपूर्ण हिस्सा है, कौनों भी सब्जी बनावे लागो तो बिना आलू भैया वो अधूरी लागत है, और इमा कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी, पोटेशियम, फाइबर के जौन मात्रा होते, इससे बड़ा शरीर का भी लाभ होते।
0: बहुत भैया, लेकिन उन्हें खाते

0: जो भैया शुगर से मधुमेह से पीड़ित ना है, मधुमेह वालों के लिए ताल्लुक भैया यूँ होता कि उनसे बड़ा दूर रखा, लेकिन उसे बात ना है भाई। देखो उत्पादन हम पंच करत है सबके खातिर, अब वो समाज में जेके जैसे आवश्यकता है वो खरीदत है, वो अपने हिसाब से खावा करत है। तो भाई देखो आज अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस है, आप बताओ तो बड़ी नीक बात है। अब आलू तरफ हम पंच जागरूक होए, ओकर उत्पादन करी, संरक्षण करी, उसे अधिक से अधिक पैसा कमाई भी। अब भैया एक चीज़ और है, अपने खेत में जैसे आप बता रहे हो ना गन्ना का यह समय मिठास वाली फसल, अगर बोए हो तो वो जोन बा आई गए है यहाँ तक अपने कमर तक आई गए है इतनी बड़ी बड़ी।
1: तो बिल्कुल भैया, गन्ना के फसल में समन्वित कीट प्रबंधन कैसे कीन जाए, यह के विषय में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर सुजीत प्रताप सिंह भैया और बतकही कह रहे हैं डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया। तो आओ दोनों जनन के बतकही के लाभ उठावा जाए और जानकारी लीन जाए यह विषय पे, गन्ना की फसल में समन्वित कीट प्रबंधन।
0: बिल्कुल सुना जाए भैया।
2: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, जहां मिठास की फसल आपके खेत में खड़ी है तो बहुत सारे हानिकारक कीट नुकसान पहुंचाते हैं, उनका समन्वित प्रबंधन कैसे हो ताकि मित्र कीट भी आपके खेत में रहें और दुश्मन कीट का प्राकृतिक प्रबंधन होता रहे, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद शाहजहांपुर से वैज्ञानिक अधिकारी डॉक्टर सुजीत प्रताप सिंह साहब, स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब ये बताएं कि इस समय गन्ने की फसल में कौन कौन से हानिकारक कीट हैं और उनका समन्वित प्रबंधन कैसे करें मिठास के किसान भाई बहन।
3: सभी कृषक भाइयों और बहनों को मेरा सादर नमस्कार। चूंकि मिठास की क्रॉप गन्ने की फसल है और इस समय जो तापमान है, तापमान लगभग 42 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड का चल रहा है, इस तापमान में बहुत सारे ऐसे बेधक कीट होते हैं, बहुत ऐसे चूसक कीट होते हैं, कुछ ऐसे कुतर कर खाने वाले कीट होते हैं, बहुत ही ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं।
2: जैसे
3: अगर मैं बेधक कीट की बात करता हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा यदि नुकसान होता है गन्ने की फसल में तो बेधक कीटों से ही होता है। गन्ना जमता है उसी समय अंकुर बेधक कीट का प्रकोप शुरू हो जाता है और ये अंकुरण के समय ही होता है और उच्च तापमान में ये परिलक्षित होता है। दूसरा चोटी बेधक एक ऐसा कीट है जो कि गन्ने को सबसे ज्यादा नुकसान करने वाला ये बेधक कीट है। पूरे साल ये गन्ने की फसल पे सर्वाइव करता है, इसकी 5 पीढ़ियां पाई जाती हैं, पांचों पीढ़ियां गन्ने की समसामयिक समय समय से आके गन्ने की फसल को नुकसान पहुंचाने का काम करती हैं। प्रथम पीढ़ी अभी समाप्त हो चुकी है जो कि मार्च अप्रैल के महीने में अभी लगी थी। द्वितीय पीढ़ी मई के द्वितीय सप्ताह से जून के द्वितीय सप्ताह तक रहती है और इस समय उच्च तापमान में द्वितीय पीढ़ी का प्रकोप बहुत तेजी से दिखाई दे रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका प्रकोप अभी एडल्ट तितली के रूप में दिखाई दिया। बहुत सारे किसान, जागरूक किसान भाई हमारे उत्तर प्रदेश के, समेकित कीट प्रबंधन के रूप में बहुत सारे ऐसी तकनीकी हैं जिनका उपयोग करके चोटी बेधक की पॉपुलेशन इनकी जनसंख्या को बहुत हद तक कम कर देती है।
2: डॉक्टर साहब प्रबंधन पर आएंगे, बेधक कीटों की बात चली है तो और कौन कौन से बेधक कीट हैं जो इस समय नुकसान कर रहे हैं फसल को?
3: इसके अलावा एक और बेधक कीट है जो कि उच्च तापमान में सबसे ज्यादा सक्रिय हो जाता है, उसका नाम जड़ बेधक है।
2: अच्छा,
3: जड़ बेधक एक ऐसा कीट है जो कि अप्रैल से जून तक ये बहुत ही सक्रिय होता है, मानसून काल में थोड़ा सा ये निष्क्रिय हो जाएगा, सुसुप्त अवस्था में चला जाता है। इसके बाद जब गन्ना मेच्योरिटी की तरफ जाता है, मिठास उसमें पैदा होने लगती है, अक्टूबर से कटाई तक ये जड़ बेधक गन्ने को नुकसान लगातार पहुंचाता रहता है।
2: और मानसून आने के साथ और बेधक भी आएंगे?
3: हाँ, मानसून आने के साथ साथ जैसे ही गन्ना बनने लगता है उसमें गन्ने को नुकसान पहुंचाने वाले तना बेधक का प्रकोप शुरू हो जाता है। उसमें प्लासी बेधक के नाम से एक कीट आता है जो बहुत ही खतरनाक कीट है, उसका भी प्रकोप शुरू हो जाता है। गुरदासपुर बेधक का कीट का प्रकोप शुरू हो जाता है। तो अन्य बेधक कीट है
2: और पोरी बेधक भी।
3: पोरी बेधक बहुत ही अच्छा आपने बताया, पोरी बेधक जिसे इंटरनोट बोरर कहा जाता है, इसका भी प्रकोप उसी समय जुलाई महीने से ही शुरुआत हो जाती है और गन्ने को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं।
2: कहीं कहीं पारिला की भी समस्या?
3: हाँ, इस साल अगर गत वर्ष की चर्चा करें तो गत वर्ष में बहुत ज्यादा पारिला की समस्या थी और इस समय उत्तर प्रदेश में मेरा भ्रमण काल चल रहा है, इस समय पारिला का बहुत ही कम प्रकोप है।
2: अच्छा,
3: कहीं कहीं इसके निम्फ दिखाई दे रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ उसके परजीवी कीट इपरिकेनिया मिलानोलिका भी दिखाई दे रहा है
2: पीछे पीछे
3: पीछे पीछे। तो दोनों का बैलेंस प्राकृतिक रूप से ये बना हुआ है जिसकी वजह से पैरिला का जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, आगे नहीं बढ़ पा रही है।
2: तो किसान भाई बहन कैसे पहचाने कि पैरिला का प्रकोप हो गया है उनकी मिठास की फसल में?
3: किसान भाई अपने खेतों में जैसे ही खेत के अंदर घुसेंगे, पैरिला एक ऐसा कीट है, चूसक कीट की संज्ञा में आता है, बहुत तेजी से ये फाइटर प्लेन की जैसे उड़ता है, इसकी शरीर बिल्कुल फाइटर प्लेन के जैसे संरचना होती है, भूरे रंग का होता है और आगे

0: इसकी चोंच नुकीला होता है और इसके जो निम्फ होते हैं ये पिंक कलर के सफेदी के रंग के होते हैं और छोटा होगा, तो इस तरह से पहचान सकते हैं किसान भाई। किसान भाई के पहचानने का बड़ा आसान तरीका मैं बताऊं, सारे के सारे चूसा कीट भागते नहीं है।
1: अच्छा,
0: पायला कीट एक ऐसा स्मार्ट कीट है जो उड़ता है जैसे ही किसान भाई अपने खेतों
1: और
0: में जाएगा।
1: इसका निम्फ और एडल्ट दोनों
0: दोनों उड़ते हैं,
1: यानी प्रौढ़ कीट भी और शिशु कीट भी।
0: शिशु कीट दोनों उड़ते हैं, इसको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए इस पे कीटनाशक का स्प्रे करके भी इसको बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है।
1: लेकिन जो जैविक उपाय है उसको तो अपना सकते हैं।
0: हाँ, किसके अलावा चूसक कीट और भी हैं जो कि मुख्य चूसक कीट है इस उच्च तापमान में, जैसे काला चिकटा ब्लैक बग के नाम से जाना जाता है।
1: हाँ,
0: ब्लैक बग एक ऐसा कीट है जो कि पेड़ी फसल में ज्यादातर दिखाई देता है।
1: और इसकी पहचान,
0: ब्लैक बग के जो चींटे होते हैं सामान्य रूप से काले रंग के होंगे जैसा नाम,
1: यानी काले चींटे जैसे,
0: काले के चींटे जैसे हो दिखाई देते हैं। गन्ने की गोप में जो कि ऊपरी हिस्सा मुलायम हिस्सा होता है उसके अंदर पाए जाते हैं, उनके पीठ पे दो सफेद धारियां निश्चित रूप से होंगी, इसको देख के किसान भाई पहचान सकते हैं।
1: अगर नुकसान का स्तर अधिक है इनका तो,
0: अगर नुकसान का स्तर उसमें ज्यादा दिख रहा है, गन्ने की फसल पूरी तरह से पीली पड़ गई है, तो उसमें सबसे इसमें तो कीटनाशक का ही स्प्रे करना बेहद लाभप्रद होता है, क्योंकि हमें त्वरित निदान करने की आवश्यकता है जिससे कि फसल नुकसान से बचा जा सके। एक और चूसक कीट है जो कि इस समय ज्यादातर दिखाई दे रहा है, उसका नाम है थ्रिप्स।
1: अच्छा,
0: थ्रिप्स ऐसी कीट है जिसे चींटी की संज्ञा दी गई है
1: जी।
0: इतनी महीन होती है और इसका आकार लगभग 2 मिलीमीटर छोटा होता है, किसान नंगी आंख से भी नहीं इसको देख सकता। इसके जो लक्षण दिखाई देते हैं ये गहरे भूरे रंग का होता है और जो मेल होता है, नर होता है, वो थोड़ा हल्के रंग का होता है।
1: और ये पत्तियों की निचली सतह पे,
0: हाँ पत्तियों की ये निचली सतह पे कम दिखाई देता है, ब्लैक बग नीचे दिखाई देता है, वहीं थ्रिप्स सबसे ऊपर दिखाई देगा और वहां पे दिखाई देगा जहां पत्तियां ऊपर के हिस्सा नुकीला हो जाती है
1: जी।
0: पत्तियां मुड़ जाती हैं, जब पत्तियां मुड़ जाती हैं तो उसी मुड़ी वाले हिस्से में ये थ्रिप्स बैठा रहता है और रात के समय में और सुबह और शाम के समय में ये नुकसान पहुंचाता है।
1: तो जहां भी काला चिकटा या पैरिला की समस्या है या थ्रिप्स की समस्या है या कहीं कहीं सफेद मक्खी की समस्या है, तो इसका प्रबंधन एक साथ हो कैसे डॉक्टर साहब?
0: अब जैसे काला चिकटा है, पारीला है, इसके अलावा गुलाबी चिकटा भी आता है जिसे मिलीबग कहा जाता है, इसके अलावा थ्रिप्स है जो मैंने बताया, एक और सैनिक कीट है जो कुतरकर खाते हैं, ये भी एक प्रमुख कुतरकर खाने वाला कीट है,
1: और माइट की भी समस्या आगे बढ़ी।
0: बिल्कुल, मकड़ी की भी समस्या आ रही है। मकड़ी की समस्या गन्ने में 30 से 120 दिन के बीच में आता है और मकड़ियां कई तरह की होती है, रेड माइट भी होता है और रस्ट माइट भी होता है, वेब माइट भी होते हैं, ब्लिस्टर माइट भी होते हैं, लेकिन समय समय से अलग अलग माइट आते हैं। इनसे भी बचाव करने के लिए कीटनाशक यदि मैं चर्चा करूं और पायरिला की जैविक प्रबंधन की बात करूं, पायरिला एक ऐसा कीट है कि मेटराइजियम एक फंगस है, फंगस का स्प्रे करके भी हम पायरिला से बचाव किया जा सकता है।
1: यानी माचिस की एक डिबिया 10 ग्राम लगभग,
0: हाँ, इस तरह से मेटर,
1: एक लीटर पानी के,
0: एक लीटर में 10^7 उसके स्पोर साइज होते हैं, उसका स्प्रे करके पायरिला से बचा जा सकता है। अन्य चूसक कीट है उसके लिए चूंकि त्वरित निदान चाहिए फसल की सुरक्षा के लिए, तो कीटनाशक का स्प्रे करना किसान भाइयों को भी बेहद लाभप्रद होता है। कीटनाशक में यदि नाम की बात करता हूं तो प्रोफेनोफास 40%, साइपरमेथ्रिन 4% की ईसी में आता है, इसका
1: कॉम्बिनेशन
0: में आता है, बहुत सारे ट्रेड नेम बनाते हैं इसको, 300 मिलीलीटर 250 लीटर पानी के साथ मिला के किसान भाई स्प्रे कर दे प्रति एकड़ की डोज में बता रहा हूँ
1: जी,
0: इससे निजात पा सकता है।
1: और
0: इसके अलावा अगर विकल्प के रूप में इमिडाक्लोरपीड 17.8 SL की दवाई आती है, 80 से 100 मिलीलीटर प्रति 250 लीटर पानी में प्रति एकड़ की दर से स्प्रे करके सारे चूसक कीट से बचाव किया जा सकता है। इसके अलावा और भी दवाएं हैं, क्विनालफास है, क्लोरपायरीफास भी 400 मिलीलीटर प्रति एकड़ की दर से स्प्रे कर सकता है, मोनोक्रोटोफास 36 SL है, 500 मिलीलीटर प्रति एकड़ की दर से 250 लीटर पानी में स्प्रे करके इन सारी चूसक कीटों से बचाव किया जा सकता है।
1: और जहां माइट या मकड़ी की समस्या है वहां
0: मकड़ी के लिए सल्फर और चूना का इस्तेमाल किसान भाई कर ले,
1: यानी घुलनशील गंधक।
0: हाँ, घुलनशील गंधक, सल्फर 400 ग्राम लेगा और 12 ग्राम चूना लेगा, लेने के बाद 250 लीटर पानी में उसको घोल के स्प्रे कर दे तो जो भी मकड़ी है चाहे वो रेड माइट हो या वेब माइट हो बड़ी आसानी से समाप्त हो जाती हैं। इसके अलावा यदि कीटनाशक का भी स्प्रे करता है तो निश्चित रूप से ये मकड़ियां अपने आप स्वतः समाप्त हो सकती हैं।
1: डॉक्टर साहब, जहां बेधक कीटों की समस्या है, अलग अलग पीढ़ियां हैं, तो वहां समन्वित कीट प्रबंधन कैसे अपनाए?
0: बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कृषक भाइयों के हित में। यदि चोटी बेधक की बात करें, अंकुर बेधक की बात करें, जड़ बेधक की बात करें, तो सबसे पहले समेकित कीट प्रबंधन के माध्यम से ही चोटी बेधक को खत्म किया जा सकता है। किसी एक विधि से चोटी बेधक जैसे खतरनाक कीट को खत्म नहीं कर सकते हैं। इसमें से किसान भाई जागरूक हो चुके हैं और फेरोमोन ट्रैप का इस्तेमाल कर रहे हैं
1: जी।
0: फेरोमोन ट्रैप एक ऐसा व्यवहारिक विधि है जो मादा स्लब

0: होती हैं। मादा सलव हमेशा प्रजनन के समय एक सुगंध छोड़ती हैं जिसकी वजह से मेल आकर्षित हो जाते हैं और उससे पॉपुलेशन मेटिंग के बाद पॉपुलेशन बढ़ता है। वैज्ञानिकों ने क्या किया कि फेरोमोन ट्रैप आर्टिफिशियल बना लिया, कृत्रिम रूप से बनाया, और एक फेरोमोन ट्रैप में कीटनाशक डाल देते हैं,
1: यानी गंध पास है।
0: हाँ, गंध पास है, उसमें डाल देंगे और जितने भी मेल होते हैं सारे
1: आकर्षित
0: हो जाएंगे और कीटनाशक उसमें चूंकि पड़ा रहता है वहां पे इकट्ठा होकर मर जाते हैं।
1: तो एकड़ में कितना गंध पास लगाएं?
0: एक एकड़ में यदि करें तो लगभग 20 मीटर के अंतराल पे, दूरी पे, आप 10-12 फेरोमोन ट्रैप लगाना चाहिए।
1: 15 तक लगा सकते हैं?
0: हाँ, 15 तक लगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा लगाने से फायदा यह होगा कि नर सलभ आकर्षित होंगे और उनकी जनसंख्या काफी हद तक घट जाएगी।
1: और अगर नुकसान का स्तर अधिक है तो सुरक्षित रसायन?
0: सुरक्षित रसायन की बात करें, इस समय किसान भाइयों से मैं अपील यही कर रहा हूँ, क्योंकि यदि उसमें 15% से ज्यादा उसमें नुकसान का स्तर है, जिस आर्थिक क्षति लेवल से ज्यादा है, तो उसमें क्लोरेंट्रा नीलिप्रोल जो कि 18.5 SC का आता है, इसका 150 मिलीलीटर प्रति एकड़ की दर से 400 लीटर पानी के साथ मिलाए और जड़ों के पास जो स्प्रेयर होता है, नैपसैक स्प्रेयर के नोजल को ढीला करके, स्प्रे का काम नहीं करेगा किसान
1: जी,
0: उसको जड़ों के पास तर करना है, उसको डालना है सीधे धार के साथ,
1: ताकि इस पूरे सिस्टम में
0: चूंकि ये सिस्टमिक दवाई है, जड़ों के पास डालने के बाद 24 घंटे के अंदर सिंचाई कर देगा, तो जैसे ही पानी अवशोषित होगा पौधों से, पानी के साथ साथ दवा भी अवशोषित हो जाएगा और पूरा पौधा जहरीला हो जाएगा, इससे जितने भी ये चोटी बेधक कीट है ये जैसे ही खाता है वो मर जाता है और निष्क्रिय हो जाता है।
1: क्या ये दवा क्लोरेंट्रा दानेदार भी आती है क्या?
0: हाँ, क्लोरेंट्रा नीलिप्रोड ये दानेदार दवाई भी में भी आता है, 0.4G में आता है, इसका भी इस्तेमाल किसान भाई पेड़ी फसल में कर सकता है, क्योंकि पेड़ी फसल में बहुत सारे पतवार होते हैं, बहुत सारे,
1: यानी 9 किलो,
0: हाँ 9 किलो प्रति एकड़ की दर से जितने भी दानेदार दवाएं हैं नमी की अवस्था में डालेगा तो उसके फायदे ज्यादा से ज्यादा होंगे और बेधक कीटों से भी बचाव आसानी से कर सकते हैं।
1: कोई परजीवी का भी प्रयोग कर सकते हैं?
0: इस समय चूंकि हम समेकित कीट की बात कर रहे हैं तो परजीवी के रूप में ट्राइकोगर्मा जापानिकम एक ऐसी स्पीसीज है जो कि चोटी बेधक के अंडे को परजीवी कृत करके उसको नष्ट कर देती है। इससे काफी हद तक अगर इसकी संख्या बात करें तो 20,000 प्रति एकड़ की दर से जापानिकम स्पीसीज जो होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है, जिससे चोटी बेधक के अंडे उसमें समाप्त हो जाते हैं परजीवीकृत होकर और उसकी पॉपुलेशन बहुत ही कम हो जाती है।
1: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे गन्ने की फसल में समन्वित कीट प्रबंधन के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें या आपके उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद शाहजहांपुर आना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: 6389025312 63890253122 6389025312।
1: चलते चलते और क्या आह्वान करना चाहते हैं मिठास के किसान भाइयों बहनों का गन्ने की फसल में समन्वित कीट प्रबंधन के बारे में? डॉक्टर साहब,
0: इस समय कृषक भाई अपने फसलों का बेहद ध्यान दे के निगरानी करते रहें, क्योंकि कल्ले फूटने का समय चल रहा है, गर्मी का समय चल रहा है, इसमें वर्टिकल ग्रोथ करने की आवश्यकता नहीं है, हॉरिजेंटल ग्रोथ पे आप ध्यान दें, जिससे कि उसमें समन्वित कीट प्रबंधन के विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल करके गन्ने की में इसका उपयोग करें, जिससे कम से कम कीट लगे और आपके गन्ने में ज़्यादा से ज़्यादा कल्लों का विकास हो सके
1: और मित्र कीट भी आपके खेत में बढ़ें, ताकि प्राकृतिक रूप से भी
0: बिल्कुल
1: उनका प्रबंधन करते रहें।
0: हाँ।
1: डॉक्टर सुजीत प्रताप सिंह साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और गन्ने की फसल में समन्वित कीट प्रबंधन कैसे करें किसान भाई बहन, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।
2: देवेश भैया,
3: हाँ कृष्ण,
2: देखो गन्ना का फसल के अपने कैसे सुरक्षित रखी जाए, देखो एक और जोन बा कीड़वा बताए कि हेलीकॉप्टर की तरह उड़ाता है, तो हम जब देखा करी थे जब घुसा ना तो भन्न सूढ़ा करत है, यहीं कहूँ काने पे तो कहूँ कांधे पे बैठा करत है, तो भाई देखो यू सब कीटवा पतंगा अपने फसल के लिए बड़ा नुकसान करा करत थी।
3: तो भैया जो है गन्ने की फसल में समन्वित कीट प्रबंधन विषय पे बहुत है बढ़िया जानकारी दी डॉक्टर सुजीत प्रताप सिंह भैया और उनसे बतकही की डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया, तो दोनों जनन का
2: बहुत बहुत धन्यवाद भैया। देखो जौन बा और बतकही हो, मौसम का हाल चाल हो, काल हम पंच अपने बैठके का सुनाओ और करे पहले जौन बा एक गौनाई आप सुना दो तब फिर और बातचीत होगी।
3: बिल्कुल भैया, कहरवा जिहके बोल है कुंया के ठंडा पानी, कलाकार डॉक्टर अनिल त्रिपाठी, तो आज सुना जाए ई गीत।

0: देवेश भैया,
1: हाँ कृष्ण
0: देखो
1: भैया,
0: अपने बैठकी में हम पंच मौसम का हालचाल जरूर चर्चा करा करी था। तो आज मौसम का हालचाल का मिला है अपने मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ से, तो चर्चा कर दो तो फिर आगे एक बात कही हुई भैया।
1: बिल्कुल भैया, भारत सरकार, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत मौसम विज्ञान विभाग, मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ द्वारा प्राप्त मौसम केयर और वर्षा केयर पूर्वानुमान तारीख 30 मई 2026 से 1 जून 2026 तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में दोनों जगह भैया संभाग में कुछ स्थान पे बरखा गरज चमक के साथ में बौछार पड़े के संभावना है। और अगर चेतावनी के बात की जाए भैया तो कहूँ कहूँ मेघ गर्जन वज्रपात के साथ में यहाँ तड़ित झंझावात यानी तेज झोंकेदार हवा चले के संभावना है।
0: बिल्कुल भैया, तो चलो यूँ तो रहा मौसम का हाल चाल, लेकिन एक चीज़ और है भैया, जैसे आप बताओ कि तड़ित झंझावात और मेघ गर्जन, तो जब भाई देखो मेघ गर्जन हो था ना, तो कहा होता कि बड़ा डर लगा करा था कि अगर कहूँ बाहर हो और बादल कड़का ही लागत है और आंधी चले लागत हो, तो यूँ डर लागत है कि भाई देखो कहाँ भाग जाए। लेकिन अगर आप सुरक्षित स्थान पर पहुँच जाओ तो सबसे नीक है।
1: बिल्कुल भैया, कहा जाता है कि आकाशी बिजली गिरे के संभावना ऐसे में बहुत अधिक रहा थे। तो ऐसन स्थान पे आप खड़े हों, कोनो मजबूत दीवार के सहारे खड़े हों, या ऐसन इमारत के नीचे, ऐसन जौन है छत के नीचे आप रहें जौन की मजबूत रहे, अपने आप का जहाँ पे सुरक्षित कह सकें ऐसे स्थान पे रहे चाहिए, खुले में नहीं टहरे।
0: बिल्कुल देखो का होता कि हम पंच ज़्यादातर अपने खेती पाते में रही थे, बिजली कड़के ही लागत हो, तो प्रयास यूँ करे चाहे कि भाग कर हम पंच का करी थे जानते हो भैया, वो अगल बगल जो बिरवा है या बाग है वहाँ जाए खड़ा हो भाई, वहाँ ना जाए चाहे, बिल्कुल बाग में ना जाए चाहे, बिरवा के नीचे हरे पेड़ के नीचे ना जाए चाहे, भाग कर घरे तरे जाए,
1: बिजली के खंभों से दूर रह चाहिए।
0: हाँ भाई देखो घरे भाग के जाओ जौन बा सुरक्षित स्थान पर रहो, बिजली जौन बा बिरवा में ज़्यादा आकर्षित होता, तो भाई देखो यू

0: से बचे रहो, अपन जान माल को सुरक्षा करे रहो, तो अपन खेती पाती तो निक होए। और कल है भैया रविवार, तो रविवार के दिन अपने लोकायतन में पंच भाइयों के
1: भैया लोकायतन में लोक भाषा कवि गोष्ठी प्रतिभागी कवि हुई हैं सुखदेव प्रसाद छैल भैया, राम दुलारे सिंह सुजान भैया और रवि प्रकाश अवस्थी भैया। और खेती किसानी में सफलता की कहानी सुनी है पंच भाई, जेके विषय हुई आम की सघन बागवानी। वार्ताकार हुई हैं मोहम्मद फहद फारूकी भैया और भेंटकर्ता डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया।
0: बिल्कुल भैया, तो यू रहा खेती किसानी का जौन बा, और बाद यू रहा जौन बा कवि गोष्ठी जौन बा लोकायतन का। अब देखो घड़ी इशारा करत है, पंच भाइयों से विदा ली जाए। जय हिंद।

0: लोकायतन एवं खेती किसानी कार्यक्रम समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर

0: पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात में देश विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे अपने विचार। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा कार्यक्रम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लखनऊ में किया नौसेना शौर्य वाटिका का लोकार्पण। रक्षा मंत्री ने कहा, डिफेंस कॉरिडोर के जरिए रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बना रहा है प्रदेश। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज ग्रेटर नोएडा में लोहम का किया दौरा। कहा, लिथियम आयन बैटरी की तकनीक का स्वदेशी विकास है प्रधानमंत्री की परिकल्पना। और प्रदेश भर में कल आयोजित होगी उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2026। हाईटेक कमांड कंट्रोल रूम के जरिए होगी परीक्षा केंद्रों की निगरानी। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मुक्ता शर्मा, समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समस्त नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर यह कार्यक्रम सीधे प्रसारित होगा। हिन्दी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लखनऊ के सीजी सिटी में 9 करोड़ रुपए की लागत से 2 एकड़ से अधिक क्षेत्र में निर्मित नौसेना शौर्य वाटिका का लोकार्पण किया। लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि लखनऊ राष्ट्रभक्ति और सैन्य गौरव का प्रतीक बन रहा है। श्री सिंह ने कहा कि नौसेना शौर्य वाटिका केवल बनावट का नमूना भर नहीं है, यह सबको सेनाओं के संघर्ष और योगदान को स्मरण कराएगी। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत का रक्षा क्षेत्र आत्मनिर्भर होने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इसमें उत्तर प्रदेश के डिफेंस कॉरिडोर की अहम भूमिका है।
1: हमने यहां पर लखनऊ में डीआरडीओ की प्रयोगशालाएं भी प्रारंभ की हैं। डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से उत्तर प्रदेश भारत के रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बना रहा है और यहां लखनऊ में ब्रह्मोस का भी निर्माण हो रहा है और भी कई तरह से उत्तर प्रदेश डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत कर रहा है। इसके लिए भी मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को बहुत ही बधाई देता हूं।
0: इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारतीय सैनिकों की वजह से 140 करोड़ भारतवासी चैन की नींद सोते हैं। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के बेहतर माहौल में ही जन कल्याण एवं विकास योजनाएं प्रभावी ढंग से आगे बढ़ सकती हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंच प्रण के संकल्प से जुड़कर विकसित भारत की संकल्पना साकार हो सकती है।
1: देश

0: यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के सामने विकसित भारत की जिस संकल्पना को हमारे सामने रखा है, उसमें उन्होंने हर भारतवासी से कहा कि विकसित भारत के लिए हर नागरिक को पंच प्रण के साथ जुड़ना पड़ेगा। वे जो पंच प्रण है उनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण है अपनी सेना के प्रति और यूनिफॉर्म धारी फोर्स के प्रति सम्मान का भाव हमारे मन में हो।
1: भारतीय नौसेना और उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में विकसित यह परियोजना अत्याधुनिक ओपन एयर म्यूजियम एवं इंटरप्रिटेशन सेंटर के रूप में तैयार की गई है। नौसेना शौर्य वाटिका में भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त युद्धपोत आईएनएस गोमती को स्थापित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र की एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर उत्तर प्रदेश में 5 जून से 21 जून तक विकास, सेवा, सुशासन और जनकल्याण की उपलब्धियों को समर्पित व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल बैठक कर अभियान की तैयारियों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एक रिपोर्ट।
2: अभियान के तहत 5 जून से 21 जून के बीच प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में लगभग 10 किलोमीटर की प्रगति पथ यात्रा आयोजित की जाएगी। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण और 8 जून से 14 जून तक जनसंपर्क अभियान, संवाद कार्यक्रम और पैदल मार्च आयोजित किए जाएंगे। 11 से 14 जून तक मीडिया संवाद कार्यक्रम होंगे। 14 से 16 जून के बीच जन कल्याण मेलों का आयोजन होगा। वहीं 16 और 17 जून को जिला स्तर पर विकसित भारत संकल्प सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। 18 और 19 जून को केंद्र सरकार की 12 वर्षों की विकास यात्रा तथा विकसित भारत के संकल्प को प्रदर्शित करने के लिए विशेष प्रदर्शनियां लगाई जाएंगी। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
1: केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर स्थित लोहम का दौरा किया। यह उद्यम लिथियम आयन बैटरी, महत्वपूर्ण खनिजों और उन्नत सामग्रियों का उत्पादन करता है। संवाददाताओं से बातचीत में श्री वैष्णव ने कहा कि लिथियम बैटरी और स्थायी चुंबक कई आधुनिक तकनीकों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की परिकल्पना है कि उनका निर्माण भारत में ही किया जाए और इनकी तकनीक का विकास स्वदेशी स्तर पर हो। उन्होंने कहा कि इसी परिकल्पना के अनुरूप लोहम नामक एक युवा स्टार्टअप ने सफलतापूर्वक एक जटिल तकनीक विकसित की है। केंद्रीय राज्य मंत्री और पीलीभीत के सांसद जितिन प्रसाद ने आज पीलीभीत में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के तहत भाजपा के जिला प्रशिक्षण वर्ग के उद्घाटन सत्र में कार्यकर्ताओं के साथ भाग लेकर संगठनात्मक विषयों पर विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ संगठन को और अधिक सशक्त बनाने के लिए हम सभी संकल्पित हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। और अब शेष समाचार। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह पोर्टल शुरू किया जा रहा है। प्रदेश भर में कल उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 आयोजित होगी। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी को परीक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। परीक्षा के लिए 72 जनपदों में स्थापित 1011 परीक्षा केंद्रों पर कुल 4,44,958 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। निगरानी के लिए एक हाईटेक कमांड कंट्रोल रूम बनाया गया है। परीक्षा को लेकर प्रशासन ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं। परीक्षा केंद्रों की सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी। परीक्षा 2 पालियों में सम्पन्न होगी। इसी क्रम में अमरोहा की अपर जिलाधिकारी गरिमा सिंह ने बताया कि बीएड प्रवेश परीक्षा जनपद में 6 परीक्षा केंद्रों पर संपादित होगी।
3: जिले में बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए लगभग सभी सेंटर्स तय हो चुके हैं। उस पर सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट और परीक्षा के पेपर्स के संबंध में सभी चीजें लगभग तैयार कर ली गई हैं। जिले में जितने भी सेंटर्स हैं, बच्चों को वहां पे पर्याप्त सुविधा भी मिल पाए, इसके लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। क्लॉक रूम की भी व्यवस्था कर ली गई है।
1: उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने जून महीने में बिजली बिल पर 10% का अतिरिक्त फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज लागू करने का निर्णय किया है। अगले महीने उपभोक्ताओं को अपने बिजली बिल में 10% अधिक भुगतान करना होगा।

0: अयोध्या स्थित डोगरा रेजिमेंटल सेंटर में आज अग्निवीर योजना के तहत सातवें बैच के 835 अग्निवीर जवानों ने सफलतापूर्वक अपना सैन्य प्रशिक्षण पूरा कर लिया। डोगरा रेजिमेंटल सेंटर के कमांडेंट ब्रिगेडियर जितेंद्र शर्मा ने बताया कि सभी जवान सेना में विभिन्न मोर्चों पर तैनात कर दिए जाएंगे।
1: 835 अग्निवीर जो है वो पासिंग आउट होके अपनी अपनी यूनिटों में वो ज्वाइन करेंगे। जाति के साथ ही अग्निवीर इनको वो जो अपना कार्य है वो करना पड़ेगा और उसके लिए यहाँ पर हमने इन्हें ट्रेन करा है और मुझे विश्वास है कि अपना ये कार्य अच्छे ढंग से ये पूरा करेंगे।
0: आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। वर्ष 1826 में आज के दिन ही हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था। एक रिपोर्ट।
2: उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक और संस्थापक पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। उदंत मार्तंड से शुरू हुआ सफर आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे बड़ा औजार बना। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी समाचार पत्रों और पत्रिकाओं ने जनमानस के भीतर स्वाधीनता का भाव जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समाचार पत्रों से शुरू हुआ ये सफर आज रेडियो, टेलीविजन, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया तक पहुँच चुका है। हालांकि इस बदलाव के साथ पत्रकारिता की जिम्मेदारियां भी बड़ी हैं। हिंदी पत्रकारिता दिवस अवसर है उन पत्रकारों और संपादकों को याद करने का जिन्होंने अपने लेखन और साहस से समाज को नई दिशा दी।
0: प्रदेश के कई जिलों में बारिश के बाद तापमान में गिरावट आने से लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ वर्षा का अनुमान जताया है, जबकि कई जगहों पर तेज हवा के साथ बिजली कड़कने की भी आशंका जताई गई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात में देश विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे अपने विचार। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा कार्यक्रम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लखनऊ में किया नौसेना शौर्य वाटिका का लोकार्पण। रक्षा मंत्री ने कहा, डिफेंस कॉरिडोर के जरिए रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बना रहा है प्रदेश। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज ग्रेटर नोएडा में लोहम का किया दौरा। कहा, लिथियम आयन बैटरी की तकनीक का स्वदेशी विकास है प्रधानमंत्री की परिकल्पना। और प्रदेश भर में कल आयोजित होगी उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2026। हाईटेक कमांड कंट्रोल रूम के जरिए होगी परीक्षा केंद्रों की निगरानी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: महात्मा गांधी के अनुसार युद्ध भूमि से भागने से अच्छा है हम लड़खड़ाएं, गिर जाएं, लेकिन फिर से शक्ति बटोर कर खड़े हो जाएं।
4: मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विज्ञान जगत।

0: नमस्कार, विज्ञान जगत के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण। सवाल पूछना इंसान की फितरत है और उन सवालों का जवाब ढूंढना ही विज्ञान है। एक समय था जब हम सितारों को सिर्फ देखते थे। आज उत्तर प्रदेश का युवा उन सितारों तक पहुंचने की तकनीक गढ़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहरा रहा है। जय जवान जय किसान के साथ अब गूंज रहा है जय विज्ञान। विज्ञान और तकनीक की भूमिका विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ती जा रही है। ऐसे में अपने राज्य उत्तर प्रदेश में विज्ञान के क्षेत्र में क्या कुछ खास किया जा रहा है? प्रदेश सरकार क्या कुछ विज्ञान के प्रोत्साहन और प्रगति के लिए कर रही है? इसके बारे में और जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के विशेष सचिव रमेश चंद्र जी। स्वागत है आपका।
1: बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी। तो सबसे पहले सर यही जानना चाहेंगे कि आपका विभाग यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के मुख्य उद्देश्य और कार्य क्या है?
1: देखिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन हमारे पास दो तरीके की संस्थाएं काम कर रही हैं। एक का नाम है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, जिसे हम CST कहते हैं
0: जी।
1: और दूसरा है उत्तर प्रदेश रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर। तो आज हम चर्चा करने के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी पर विशेष तौर पर फोकस कर रहे हैं, जिसके लिए मुझे आमंत्रित किया गया है
0: जी।
1: तो इस क्षेत्र में हम चयनित जो भी विषय होते हैं उसमें गुणवत्ता परक शोध, युवा वैज्ञानिकों में प्रोत्साहन, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, विज्ञान को लोकप्रिय कैसे बनाया जाए, नक्षत्रशालाओं के माध्यम से आम जनता के बीच खगोल विज्ञान या जिसे एस्ट्रोनॉमी कहते हैं उसकी शिक्षा कैसे दी जाए, लोगों में उसके प्रति इंटरेस्ट और जागरूकता कैसे लाई जाए, बहुत सारे काम हम ऐसा करते हैं

0: कि हमें आवश्यकता पड़ती है पेटेंट कराने की, तो उसके लिए भी हम पेटेंट की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कुछ सुविधा केंद्र की स्थापना करने का काम करते हैं। प्रौद्योगिकी का विकास कैसे हो, टिश्यू कल्चर के माध्यम से हम कृषि क्षेत्र को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। इसी तरीके से आज के समय में जैसे आप देख रहे हैं पूरे विश्व में क्रूड ऑयल, LPG इन सब को लेकर हाहाकार मचा हुआ है,
1: जी
0: तो उस क्षेत्र में हम लोग बायोडीजल उत्पादन की तकनीक से कृषकों को रूबरू करा के उन्हें समृद्ध बनाना चाहते हैं। पेट्रोल की खपत को कम करके ग्रीन फ्यूल पर फोकस करने की बात पर काम कर रहे हैं। नील हरित शैवाल से कैसे रासायनिक उर्वरक के स्थान पर जैविक उर्वरक का प्रयोग किया जा सकता है, इस सब पर बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम जो भी नव प्रवर्तक राज्य हैं या जिला स्तरीय प्रदर्शन करने वाले जो नव प्रवर्तक लोग होते हैं उनको विकसित करने का भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा विज्ञान की लोकप्रियता और बढ़े इसके लिए साइंस बस और साइंस पार्क जैसी परियोजनाओं का निरंतर हम लोग संचालन कर रहे हैं। फिलहाल अभी हमारे पास विज्ञान बस के रूप में एक बस है जो जिले में जा जाकर 8 से 10 दिन या जिस तरीके से संबंधित जिलाधिकारी डिमांड करते हैं तरीके से उसको गाँव के दूर दराज क्षेत्रों में पहुँचाते हैं। उसमें हमारे कर्मचारी और वैज्ञानिक रहते हैं, लोगों को विज्ञान के विषय में बहुत कुछ जानकारी देते हैं। खासतौर से जो हमारे स्टूडेंट पढ़ने वाले छात्र हैं, नए छात्र जो हाई स्कूल से के इंटर तक है, उनको बहुत मदद मिल रही है।
1: जी बिल्कुल, अगर हम स्पेसिफिक क्षेत्र की बात करें कि जैसे कि कृषि हुआ, डिजिटल क्षेत्र हुआ, सूचना प्रौद्योगिकी हुआ, तो इनमें क्या कुछ खास किया जा रहा है, कौन कौन सी खास योजनाएं चलाई जा रही हैं ताकि देश और प्रदेश की समृद्धि और प्रगति हो सके।
0: जैसा कि आपको विदित है कि ये हमारा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस भारत सरकार से संचालित होता है, उसी के तहत हम लोग काम करते हैं। तो बहुधा जो भारत सरकार विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग की जितनी भी योजनाएं हैं उसी के अनुरूप उसमें थोड़ा और प्रयास करके हम स्टेट लेवल पर उसको और बेहतर कराने का प्रयास करते हैं। तो आप देख रहे हैं बहुत सारे क्षेत्रों में रिसर्च डेवलपमेंट का काम, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में अभी भी रिसर्च के मामले में हम लोग थोड़ा सा कतिपय कारणों से उतना अच्छा नहीं कर पाए हैं जितना करने की आवश्यकता है। तो उसी गैप को भरने के लिए हम लोग कृषि के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में या डिजास्टर मैनेजमेंट के क्षेत्र में, प्रदूषण को नियंत्रित करने के क्षेत्र में उस सब पर, प्लस इसके अलावा जो नैनो टेक्नोलॉजी, चाहे नैनो यूरिया बनाने की बात आ रही हो, AI के आधार पर मशीन लर्निंग, बहुत सारे क्षेत्रों में हम लोग गुणवत्ता पर शोध को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। और इसके अतिरिक्त चूंकि भारत कृषि प्रधान देश है और उत्तर प्रदेश में खास तौर से कृषि अपनी महत्वपूर्ण भूमिका में रहता है GDP के क्षेत्र में, ड्रोन आधारित कृषि, इसके अलावा जो क्लाइमेट रिजाइलेंस कृषि कैसे हो, कैसे हम इरिगेशन का बेहतर कर सकते, और हम ये भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा पानी बचाने की हमें जल संरक्षण की आवश्यकता है। आपको पता होगा कि धान की खेती करते हैं जब हम, तो उत्तर प्रदेश या जिस क्षेत्र में धान की खेती की जाती है, धान सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि पानी से पैदा होने वाली फसल है, जिसमें लगभग 1 किलोग्राम चावल पैदा करने के लिए 3,000 से 4,000 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो उस पानी को कैसे कम किया जाए और हम धान की फसल को बेहतर कैसे कर सके, उस दिशा में भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं।
1: जी, यानी कहीं ना कहीं विज्ञान के जरिए सतत विकास को भी बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है, और उत्तर प्रदेश को साइंस एंड टेक के हब के रूप में विकसित करने के लिए क्या कुछ वर्तमान में सरकार की प्राथमिकताएं हैं?
0: आप जानते हैं उत्तर प्रदेश हमारा मानव संसाधन के दृष्टिकोण से सबसे समृद्ध राज्य है। हमारे पास आज के समय में लगभग 16 करोड़ तो युवा जनशक्ति है, और युवा जनशक्ति के पास ही सब कुछ करने का सामर्थ्य होता है। तो उस युवा जनशक्ति को सही दिशा देने की आवश्यकता है, उसको सही सीख देने की आवश्यकता है। इसलिए हम लोग AI बेस्ड काम करने की तकनीक, ड्रोन आधारित, रोबोटिक्स आधारित, डेटा साइंस जैसे आधुनिक क्षेत्रों में रिसर्च के क्षेत्र को प्रोत्साहन देने का काम कर रहे हैं। टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स या नॉर्मल इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पर ये काम किए जा रहे हैं। इसके अलावा विज्ञान पार्क और नक्षत्रशाला, जिसे हम प्लानिटोरियम कहते हैं, उसकी भी स्थापना कर रहे हैं ताकि उससे भी लोगों को अपने देश की सांस्कृतिक जो विरासत है विज्ञान के क्षेत्र में, चाहे वो मेडिकल के क्षेत्र में रहा हो, चाहे सर्जरी के क्षेत्र में रहा हो, चाहे एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में रहा हो, चाहे जिस क्षेत्र में रहा हो, उसका भी पता चलना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि विरासत की डोर जो ही आगे हमें ले जाती है आसमान की तरफ, जो विरासत की डोर को नहीं संभाल पाएगा वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो उस चीज को भी जानने के लिए हम विज्ञान पार्क या नक्षत्रशालाओं के माध्यम से उसको भी स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं।
1: जी, यह तो बात हो गई कि विरासत के साथ साथ हम कैसे आगे बढ़े, लेकिन राज्य में जो नई IT और स्टार्टअप नीति है जो युवाओं को किस तरह से मदद कर सकती है और क्या कुछ नए अवसर पैदा हो सकते हैं, इसके बारे में बताएं।
0: आप जैसा कि जानते हैं कि हमारे युवा ही हमारे देश का भविष्य हैं, तो और युवाओं को अब हम जैसा जानते हैं कि सभी को सरकारी नौकरी तो नहीं प्रदान की जा सकती, लेकिन उसको रोजगार के सुअवसर अवश्य प्रदान किए जा सकते हैं। उसके लिए हम लोगों ने जो भी हमारे सरकार की नीति रही है, चाहे IT के क्षेत्र में, चाहे स्टार्टअप के क्षेत्र में, अभी आपको पता होगा बहुत सारे इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना की बात की जा रही है। अभी हमारे 2025-26 के बजट में भी इसकी चर्चा थी। तो उस इंडस्ट्रियल पार्क में एक तरीके से सब कुछ अवेलेबल रहेगा। जैसे आप जाओ, किराए का मकान जो वेल फर्निश्ड होता है, आप जाओ वहाँ

0: बैग उठाओ और अपना रहना शुरू कर दो। ठीक उसी तरीके से वहां पर सुविधाएं विकसित करने की बात की जा रही है, जहां एक ही खिड़की पर सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा, वहीं पर इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा होगी, वहीं पर आपके कार्यालय होंगे, सब कुछ होगा। तो ये बहुत बड़ा कदम सरकार का है, जिसके जरिए हम लोग युवाओं को स्टार्टअप के क्षेत्र में कोई भी काम करना चाहे तो बिना किसी हर्डल के, बिना किसी बाधा के, जो कहते हैं कि एक तरीके से लाल फीताशाही के चक्कर में भटकता है, उसकी भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सुलभ और आसान पहुंच, इस दिशा में हमारी सरकार प्रयास कर रही है।
1: जी बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं सुगमता के साथ लोग अपने रोजगार खुद कर सकें और रोजगार पैदा कर सकें, इसकी कोशिश की जा रही है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन तकनीक के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों से आगे निकलने के लिए क्या कुछ खास कर रहा है?
0: उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की हमारे सरकार की नीति रही है, तो उस क्षेत्र में प्रयास करने के लिए ड्रोन और खास तौर से AI का प्रयोग कैसे सकारात्मक दिशा में किया जाए। सकारात्मक दिशा करने का आशय सीधा सीधा है कि AI के निगेटिव पक्ष भी हैं, निगेटिव पक्ष को ओवरलुक करके कैसे हम उसके पॉजिटिव पक्ष को आगे ले जा सकते हैं, उसके लिए हमारी सरकार और हमारा विभाग दोनों प्रयासरत।
1: जी क्या कुछ खास योजनाएं भी चलाई जा रही हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के?
0: उस तरीके से तो जैसे कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से लर्निंग की बात करते हैं, किस तरीके से मैकेनिकल लर्निंग हो या इनोवेशन में लर्निंग हो, डाटा कलेक्शन, हमारे पास रिमोट सेंसिंग का जो हमारा क्षेत्र है, जहां पर हमारा दूसरा सेंटर है, वहां पर हम लोगों ने देखा है कि हम लोग डाटा कलेक्शन की दिशा में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। खासतौर से PM गतिशक्ति जो भारत सरकार की योजना है, उससे हमारी रिमोट सेंसिंग एजेंसी भी जुड़ गई है। और आपको ये जानकर ताजुब होगा कि कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है आज के समय में, कोई भी विभाग ऐसा नहीं है जो हमसे जुड़ने की बात नहीं कर रहा है। हमसे अभी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने पूछा कि किस तरीके से हम अपने बस स्टेशन को या लोकल जो बस स्टाफ्स होते हैं या अन्य गाड़ियों के स्टाफ्स होते हैं, उनको हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, रेलवे से रोडवेज की कनेक्टिविटी कैसे हो सकती है, और कहां कहां पर स्पॉट पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर ज़्यादा टर्निंग है, जहां एक्सीडेंट होने के चांस होते हैं, इन सारे क्षेत्रों पर काम कर रहे हैं। तो उसको कैसे फिर से रिवाइव कर सकते हैं, कंजर्व कैसे कर सकते हैं, और बेहतर प्लानिंग, आप जानते हैं इसी से जुड़ा हुआ फैक्टर अगला आता है हेल्थ का, या अपने देश में क्या पूरे वर्ल्ड में आप देखेंगे मोटापा, जिसे ओबेसिटी कहते हैं, उसके शिकार सारे लोग हो रहे हैं, खासतौर से अब तक बच्चे भी हो रहे हैं। उसके पीछे लाइफ स्टाइल है, पार्किंग की सुविधा नहीं है, टहलने की सुविधा नहीं है। तो कैसे शहरों को बेहतर बनाया जाए जिसमें पार्किंग की भी सुविधा हो, टहलने के लिए स्पेस मिले, खेलने के लिए स्पेस मिले, ताकि लोग कुछ फिजिकल एक्सरसाइज कर सके, खेल कूद करे। तो इस तरीके से सारे डिपार्टमेंट विज्ञान प्रौद्योगिकी की तरफ नजर उठाकर देख रहे हैं और यथासंभव हम प्रयास कर रहे हैं कि उनकी मदद करें।
1: जी आए दिन आकाशीय बिजली की वजह से जन क्षति की खबरें आते रहती हैं, तो आकाशीय बिजली से बचाव और पूर्व चेतावनी हेतु क्या कुछ खास किया जा रहा है?
0: हम लोगों ने शुरू में तो बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे पाए थे, आकाशीय बिजली को नेचुरल डिजास्टर मानकर खाली अपना एक तरीके से दुख व्यक्त कर लेते थे, लेकिन अब हम उस चीजों से आगे आ गए हैं। विज्ञान की ही मदद से अभी हमारा इसरो के वैज्ञानिकों के साथ और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट होल्डर्स के साथ हम लोगों ने प्लान किया है, चर्चा हुई है, मीटिंग हुई है कि किस तरीके से हम आकाशीय बिजली का, इससे पहले कि भूमि पर गिरे, उससे पहले हम उसकी अलार्मिंग दे सके लोगों को, उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। एक अभी फील्ड मिल्स, जिसे हिंदी में कहेंगे विद्युत क्षेत्रीय मिल, तो उसकी स्थापना की बात की जा रही थी कि वो पहले ही डिटेक्ट कर लेगी और बता देगी इतने समय के बाद इस क्षेत्र विशेष में बिजली गिर सकती है, तरीके से अलार्मिंग का काम करेगा, तो वो काम कर रहे हैं। और दूसरे हमें सात जनपद ऐसे मिले, सात जनपद जिसमें खासतौर से बलिया है, गाजीपुर है, सोनभद्र है और फतेहपुर है, मिर्जापुर है, ऐसे सात जनपद है जिसमें ये कार्य स्टार्ट कर दिया गया है स्पॉट आइडेंटिफिकेशन का, क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसकी संख्या, लाइटनिंग से होने वाली कैजुअल्टी की संख्या ज्यादा है, इसलिए सबसे पहले फोकस इसी पर है। आने वाले समय में हम लोग कोशिश यही है कि सबसे मिलकर एक ऐसा सटीक मॉडल तैयार कर लें जो इस आपदा से निपटने में मदद कर सके, ताकि कोई कैजुअल्टी ना हो पाए। माननीय मुख्यमंत्री जी की भी यही अपेक्षा है कि आने वाले समय में विद्युत से होने वाली जो कैजुअल्टी है आकाशीय विद्युत से, वो जीरो हो जाए, हमारा प्रयास भी उसी दिशा।
1: जी यानी उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कई सारे महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं और आपका डिपार्टमेंट भी उनमें अग्रणी भूमिका में है, तो यह जानना चाहेंगे चलते चलते कि जो युवा वैज्ञानिक बनने या तकनीक के क्षेत्र में करियर बनाने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए आपकी क्या सलाह होगी?
0: ये आपका प्रश्न मेरे हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। दुनिया पर वही राज करेगा जो तकनीक के क्षेत्र में बेहतर हो।
1: बिल्कुल,
0: जिसके पास ट्रेड और टेक्निक दो चीज होगी, वो आने वाले समय में राज करेगा। USA इसका जीता जाता उदाहरण है।
1: बिल्कुल,
0: तो मैं यही चाहता हूँ कि तकनीक के क्षेत्र में हम पीछे ना रह जाएं। जैसे आप देख रहे हैं कि आजकल दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है रेयर अर्थ मेटल को लेकर, क्रिटिकल मेटल को लेकर, तो चाहे इन्हीं सब की उपयोगिता सब जगह दिखाई दे रही है, चाहे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना हो, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का यूज करना हो, इलेक्ट्रिकल व्हीकल का यूज किया जाना हो,

0: सोलर पैनल का यूज किया जाना हो, रिन्यूएबल एनर्जी, जितने भी इस तरीके की चीजें, सब में इसकी आवश्यकता पड़ती है। लेकिन हमारे यहाँ भी रिसर्च और डेवलपमेंट में बहुत काम नहीं हुआ है, तो हम अपने युवा शक्ति से यही अपेक्षा कर रहे हैं और हम उनको प्रोत्साहित भी करने के लिए यही कहेंगे, इस क्षेत्र में काम करें, क्योंकि इसमें अपार संभावनाएं हैं। और मैंने जैसा कि पहले कहा कि जो इस क्षेत्र में आगे बढ़ेगा वही एक दिन दुनिया पर राज करेगा, तो इस क्षेत्र में उनको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। उसके लिए अब AI डेटाबेस सेंटर, रोबोटिक्स, कोडिंग, डिकोडिंग आदि बहुत सारी चीजें हैं, नए नए इनोवेशंस हो रहे हैं, रिसर्च हो रहे हैं। इन सब चीजों पर जो युवा काम करें तो वो निश्चित तौर पर न केवल अपना भविष्य बनाएंगे बल्कि अपने साथ साथ देश का भी भविष्य बनाएंगे।
1: जी, हमें उम्मीद है कि हमारे श्रोता आपके विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उठाएंगे। आप आकाशवाणी स्टूडियो में पधारे और उत्तर प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
1: तो श्रोताओं, विज्ञान जगत के इस अंक में इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए प्रवीण को दीजिए अनुमति, नमस्कार।
2: विज्ञान जगत कार्यक्रम समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।
3: बात सेहत की हो या हुनर को तराशने की, खोजने हो प्रगति की पर, या करना हो अपना उद्यम, सरोकार है उन सब से जिससे निखरे आपकी पहचान और मिले आपको एक नई उड़ान। उड़ान सुनिए हर शाम 5:45 से मीडियम वेव 747 किलोहर्ट्ज़ आकाशवाणी लखनऊ पर।
4: मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो।
5: सुनिए कहानी, कविताएं, नाटक, मिलिए बाल प्रतिभाओं से और रूबरू होइए बाल दोस्तों की कला से। साथ ही खुलेगा मनोरंजन जानकारियों का पिटारा, होगा बाल दोस्तों की बातों का चटखारा। सुनिए हर रविवार दोपहर 12 बजे आकाशवाणी लखनऊ के मीडियम वेव 747 किलोहर्ट्ज़ न्यूज ऑन AIR और DTH के द्वारा। तो सुनना ना भूलिएगा अपना ये कार्यक्रम प्यारा बाल मंच।
2: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम अवध। आइए सुनते हैं घरौंदा फिल्म में रूना लैला को।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: चितचोर फिल्म के लिए यह आवाज है यशुदास की।

0: गाओ ना गीता, अब तो गाना आता है तुम्हें?
1: मुझे नहीं आता।
2: नहीं मिलना भैया, आजकल तो गीता दीदी खूब गाती है।
3: हाँ हाँ गाइए ना।

0: सर, इतनी तेज चलाने की क्या जरूरत है सर?
1: जिंदगी में मैंने कभी हार नहीं मानी विनोद, और वो भी एक गलत तरीके से ओवरटेक करती हुई गाड़ी से।
0: That's the spirit, sir.

0: खट्टा मीठा फिल्म में अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर को। इसी के साथ शाम अवध कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडिया वेब पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है हिंदी कार्यक्रम।
1: हिंदी कार्यक्रम के आज के संक में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, सुरेंद्र राजेश्वरी की ओर से। श्रोताओ, आज है हिंदी पत्रकारिता दिवस। आज के इस अवसर पर आपको एक विशेष वार्ता सुनवाते हैं जिसका विषय है हिंदी पत्रकारिता का गौरवशाली सफर। वार्ताकार हैं श्री सुरेंद्र अग्निहोत्री।
2: हिंदी पत्रकारिता और भारतीय समाज का रिश्ता केवल समाचार देने और लेने का नहीं है, बल्कि यह एक सांस्कृतिक और वैचारिक आंदोलन की निरंतर यात्रा है। भारत जैसे विकासशील और विविधतापूर्ण देश में हिंदी पत्रकारिता ने एक सजग प्रहरी की भूमिका अदा की है। जब हम समाज को जागरूक करने की बात करते हैं तो हिंदी पत्रकारिता केवल एक माध्यम नहीं बल्कि एक परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में उभरती है। हिंदी पत्रकारिता केवल सूचनाओं के आदान प्रदान का माध्यम नहीं है बल्कि एक परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में उभरती है। हिंदी पत्रकारिता ने भारतीय जनमानस को एक अलग ही चेतना प्रदान की है जिसके कारण भारत में एक विकास, परिवर्तन, समाज में एक नया नेतृत्व का चयन हुआ है। भारतीय समाज की विविधतापूर्ण भाषा में हिंदी पत्रकारिता संवाद का एक संवाहक बन के उभरी है। हिंदी पत्रकारिता ने भारत के निर्माण में, सामाजिक सुधार में और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा में युगांतकारी भूमिका निभाई है। हिंदी पत्रकारिता समाज की आत्मा है। यदि यह निष्पक्ष, निर्भीक और जनमुखी रूप में जब अपना वैभव दिखाती है तो भारत के समाज में बदलाव की एक ऐसी यात्रा शुरू हो जाती है जिसके कारण विकास के नए मापदंड खड़े होते हैं और देश में एक सामाजिक, आर्थिक रूप से प्रगति होती है। आज हम देखते हैं कि जब हमारा देश प्रगति की ओर और विश्व में एक महाशक्ति बनने की दिशा में अग्रसर है तो हिंदी पत्रकारिता की ओर दृष्टि डालना आवश्यक हो जाता है। हिंदी पत्रकारिता ने भारतीय समाज के उन क्षेत्रों में अपना योगदान किया है जहां पर लोगों को जानकारियों का अभाव था। उस समाज के लिए हिंदी पत्रकारिता ने सामाजिक जागरण का कार्य किया। अगर हम अतीत की ओर देखते हैं, 1826 में जब हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन हुआ तो भारतीय समाज की औपनिवेशिक दासता और कुरीतियों को दूर करने में तथा भारत के पुनर्जागरण करने में हिंदी पत्रकारिता ने महत्वपूर्ण योगदान किया।

राजा राम मोहन राय और भारतेंदु हरिश्चंद्र जैसे मनीषियों ने पत्रकारिता के माध्यम से भारतीय जीवन में सुधार के लिए नए कदम और नई योजनाओं के साथ पुनरुत्थान किया। हमारे समाज के अंदर उस कालखंड में सती प्रथा, बाल विवाह, जातिवाद जैसी बुराइयां चल रही थीं। इनको दूर करने के लिए समाज के मानस को हिंदी पत्रकारिता ने झकझोरा, और हिंदी पत्रकारिता ने केवल झकझोरा ही नहीं, उनके लिए एक नया रास्ता भी दिखाया है। हिंदी पत्रकारिता ने समाज के बीच में एक विश्वास का रिश्ता कायम किया। संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के प्रति जनता को सचेत करना इसका प्राथमिक लक्ष्य बन गया है। लोकतांत्रिक मूल्यों का संरक्षण और जागरूकता हिंदी पत्रकारिता का एक अटूट रिश्ता लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में आज समाज के सामने आता है। आज़ादी के बाद पत्रकारिता ने सत्ता को जवाबदेही बनाने और जन समस्याओं को मंच देने का काम किया है। भारत में भाषा केवल एक संवाद का साधन नहीं है बल्कि पहचान है। हिंदी पत्रकारिता के द्वारा समाज को एक सूत्र में बांधने की, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक एक संपर्क भाषा के रूप में हिंदी पत्रकारिता ने समाज को जोड़ने का कार्य किया है। भाषा समाज की धड़कन होती है। हिंदी पत्रकारिता ने भाषा को सरल और सुबोध बनाया ताकि यह आम आदमी तक पहुँच सके। हालाँकि इस प्रक्रिया में भाषाई शुद्धता और गहराई के साथ कुछ समझौते भी हिंदी पत्रकारिता को करने पड़े हैं, लेकिन हिंदी पत्रकारिता ने सामाजिक चेतना, भारतीय रीति रिवाज, लोक कलाओं, साहित्य को संरक्षित करने के लिए तथा अपनी जड़ों को बचाए रखने के लिए अमूल्य रूप से बदलाव किया और जटिल कानूनी भाषा तथा वैज्ञानिक विषयों को भी सरल हिंदी में पेश कर समाज के ज्ञान को बढ़ाया है, जो अंग्रेजी के माध्यम से हमारी भारतीय समाज के पास बातें नहीं पहुंच सकती थीं, उनको हिंदी ने नए नए शब्दों के माध्यम से समाज के बीच में अपनी बात को पहुंचाया। वैज्ञानिकीकरण के माध्यम से जिस तरह समाज की आवश्यकता थी उसके लिए भी हिंदी पत्रकारिता ने एक सेतु का काम किया। आज हम देखते हैं हिंदी पत्रकारिता सामाजिक बदलाव का ही बायस नहीं है बल्कि हमारे बच्चों के विकास में, उनकी शिक्षा के लिए और उनके योग्यता को बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। हिंदी पत्रकारिता की अगर बात करें, हिंदी भाषी ग्रामीण अंचल जो आज मुख्य धारा में आ गया है उसके पीछे भी हिंदी ही है। हिंदी पत्रकारिता बुनियादी रूप से सूचनाओं का आदान प्रदान करना, भविष्य के लिए लोगों के लिए जोड़ना तथा सामाजिक चेतना जगाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। हिंदी पत्रकारिता के सामने आज कुछ चुनौतियां भी खड़ी हो गई हैं। जिस तरह से डिजिटल क्रांति और सोशल मीडिया का दौर आया है, उस दौर में हिंदी के समाचार पत्रों के सामने अपने पाठकों के बीच में पहुंचने तथा अपने समाचारों को तत्काल पहुंचाने की एक चुनौती है। लेकिन इस चुनौती के बीच में भी हिंदी पत्रकारिता बड़े ही अपने सामाजिक दायित्वों को निभाते हुए खबरों को इस तरह से प्रस्तुत कर रही है जिसके माध्यम से एक सत्य उद्घाटित होता है और सत्य के साथ हमारे जो भारतीय मूल हैं उनके प्रति भी हिंदी पत्रकारिता की वचनबद्धता प्रकट हो रही है। 1990 के दशक से उदारीकरण के दौर में हिंदी पत्रकारिता के सामने बहुत सारी चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। इन चुनौतियों से मुकाबला करने के लिए हिंदी पत्रकारिता को जहां तकनीकी रूप से अपने आप को सक्षम बनाना पड़ा है, वहीं दूसरी ओर अगर देखते हैं तो हिंदी पत्रकारिता ने डिजिटल दुनिया में भी एक अपना वर्चस्व कायम किया है। हिंदी पत्रकारिता आज YouTube के माध्यम से उन सुदूर क्षेत्रों की खबरें जो कभी मुख्य मीडिया में आ नहीं पाती थी, जो हमारे चैनलों के भीड़ में भी जिन खबरों को कभी संज्ञान नहीं लिया जाता था, उन खबरों को भी हिंदी पत्रकारिता ने मुख्य धारा की पत्रकारिता के सामने प्रस्तुत करने का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। हिंदी पत्रकारिता का अगर देखते हैं अतीत से लेकर अब तक की यात्रा को देखते हैं तो 200 वर्ष की इस यात्रा में हिंदी पत्रकारिता ने अपना आर्थिक सामाजिक वर्गीकरण करने के साथ साथ ही हिंदी पत्रकारिता ने इस देश के विकास में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। हिंदी पत्रकारिता को अगर हम देखते हैं तो हिंदी पत्रकारिता मूलपरक विचारों के द्वारा समाज का अनकहा मौन को अभिव्यक्त करने का एक साधन बनकर उभरी है। स्त्रियों के लोकगीत में व्याप्त आर्त पुकार पिछले 200 वर्ष से जो चुप थी उसको सुचिता के साथ प्रकट किया है। और अगर देखा जाए तो हिंदी पत्रकारिता ने उजड़ने के मंजर को आबाद कर देने का जोखिम उठाया है। अपने बलिदान

0: के बल पर हिंदी पत्रकारिता ने गणेशंकर विद्यार्थी से लेकर लाला जगत नारायण तक एक निर्भीक पत्रकारिता का उदाहरण प्रस्तुत किया है, जिसके कारण आज हम कह सकते हैं अक्षरों की ड्योढ़ी पर शब्दों के पुष्पों से जन के मन की जीत को समकालीन समय में सत्य के रूप में उद्घाटित करने वाली हिंदी पत्रकारिता पौड़ता की ओर बढ़ रही है।
1: हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर अभी आप ये विशेष वार्ता सुन रहे थे, जिसका विषय था हिंदी पत्रकारिता का गौरवशाली सफर। वार्ताकार थे श्री सुरेंद्र अग्निहोत्री। इसके साथ ही आज का हिंदी कार्यक्रम का यह अंक अब यही संपन्न होता है। सुरेंद्र राजेश्वरी को आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे हिंदी कार्यक्रम, हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।
3: सेहत की हो या हुनर को तराशने की, खोजने हो प्रगति के पर, न करना हो अपना उद्यम, सरोकार है उन सब से जिससे निकले आपकी पहचान और मिले आपको एक नई उड़ान। नई उड़ान सुनिए हर शाम 5:45 से मीडियम वेव 747 किलोहर्ट्ज आकाशवाणी लखनऊ पर।
4: मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो।
5: सुनिए कहानी, कविताएं, नाटक, मिलिए बाल प्रतिभाओं से और रूबरू होइए बाल दोस्तों की कला से। साथ ही खुलेगा मनोरंजन जानकारियों का पिटारा, होगा बाल दोस्तों की बातों का चटखारा। सुनिए हर रविवार दोपहर 12 बजे आकाशवाणी लखनऊ के मीडियम वेव 747 किलोहर्ट्ज न्यूज ऑन AIR और DTH के द्वारा। तो सुनना ना भूलिएगा अपना ये कार्यक्रम प्यारा बाल मंच।
2: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सुगम संगीत। आज इसमें सुनिए गजलें। कलाकार हैं स्वाति रिजवी। आइए इनसे सबसे पहले सुनते हैं कैफी आजमी का कलाम। क्षमा कीजिएगा, कैफी अकरमानी का कलाम।

अभी आप सुन रहे थे स्वाति रिजवी की आवाज़ में गज़लें। इसी के साथ सुगम संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम चित्रपट से। कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म हिमालय की गोद में, आवाज़ लता मंगेशकर की, गीत आनंद बख्शी का और संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

शब्द रचना आनंद बख्शे की, संगीत संयोजन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की और फिल्म का नाम जीने की राह।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। कर्नाटक में डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के डबल्स फाइनल में पहुंचे और ब्रिस्टल में दूसरे महिला T20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धरमैया और डॉक्टर जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि डी के शिव कुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
1: जब मीटिंग आरंभ हुई तो सिद्धरमैया द्वारा एक लाइन का रेजोल्यूशन दिया गया कि CLP नेता का चयन का कार्य AICC को सौंप देना चाहिए। इसके बाद AICC जनरल सेक्रेटरी KC मेरो गोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सिद्धरमैया से अलग मुख्यमंत्री के कक्ष में बातचीत की। तब तक CLP मीटिंग रुकी रही। जब फिर से मीटिंग आरंभ हुई तो ये रेजोल्यूशन पारित किया गया कि डी के शिव कुमार नेता के रूप में चुने गए हैं। इसके बाद सभी विधायक राज्यपाल से मिले और डी के शिव कुमार को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाने के लिए वक्त मांगा। अब डी के शिव कुमार और अन्य मंत्रिमंडल के सदस्य June 3 को 4:05 पर शपथ ग्रहण करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना DMK पार्टी के सचेतक एग्री SS कृष्णमूर्ति ने आज राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और उनसे सत्तारूढ़ TVK द्वारा कथित तौर पर 4 विधायकों की खरीद फरोख्त के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि ये चारों विधायक ऑल इंडिया अन्ना DMK से इस्तीफा देने के तुरंत बाद TVK में शामिल हो गए। श्री कृष्णमूर्ति ने कहा कि इन विधायकों ने व्हिप का उल्लंघन करते हुए TVK सरकार के पक्ष में मतदान किया। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित

0: होना चाहिए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: किसानों की खेती और मिट्टी को सुरक्षित रखने के लिए खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा और यह 30 जून तक पूरे देश में चलाया जाएगा। इस अभियान में कृषि विज्ञान केंद्र सभी भाग लेने वाली संस्थाओं के मुख्य समन्वय की भूमिका निभाएंगे। इस अभियान के लिए 1600 से अधिक टीमें बनाई गई हैं। इसके अलावा जिन 100 जिलों में रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग होता है वहां विशेष रूप से 500 टीमें गठित की गई हैं। इस अभियान के दौरान खेतों को बचाने और किसानों को समय पर सही सलाह देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के लगातार हो रहे उपयोग को कम करना है। किसानों को मिट्टी की जांच के आधार पर उर्वरकों और अन्य कृषि संसाधनों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक किया जाएगा, साथ ही उन्हें जैविक खाद और जैव उत्पादों के अधिक उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि समाधान दीदी वर्तमान में सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में काम करता है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि एआई और तकनीक के उपयोग के कारण लोक शिकायतों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है।
2: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में स्टार्टअप लोहम का दौरा किया। श्री वैष्णव ने कहा कि लोहम लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों और उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा है।
3: एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में वहां से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए। आज उस प्लांट को देखने का मौका मिला। लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीनें जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए, और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीनें जो कि बहुत ही एक अच्छे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप किया।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। इसका प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी ये कार्यक्रम प्रसारित करेगा। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन भारत की 5 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज शाम श्री ऊ मिन से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के प्रति म्यांमा के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। उन्होंने कहा कि वे शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सोमवार को उनकी मुलाकात का इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले दिन में म्यांमा के राष्ट्रपति बिहार में गया गए और महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि चिकित्सा वस्त्र, तकनीकी वस्त्र और स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी क्षेत्र भारत की आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने की अपार क्षमता रखते हैं। विशाखापट्टनम में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार भारत को वैश्विक विनिर्माण और नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि ये प्रयास मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है। सरकार ने सोमवार से 31 अक्टूबर तक कपास के आयात पर सीमा शुल्क में

0: अस्थायी रूप से छूट दी है। कपड़ा मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि ये निर्णय कपास किसानों और संपूर्ण कपास मूल्य श्रृंखला के हितों को सर्वोपरि रखते हुए लिया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान लागू किया गया ये उपाय कपड़ा उद्योग के लिए कपास की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर हैं और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे चरण के लिए तैयार हैं। पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पासिंग आउट परेड में जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ये अभियान अब भी जारी है।
1: जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, ये अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है। साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट और प्रथम दिन का कवर जारी किया। इस अवसर पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष राम बहादुर राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बधाई संदेश पढ़ा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हिंदी पत्रकारिता की द्विशताब्दी भारत की चेतना, विचार और जन जागरूकता का उत्सव है। श्री सिंधिया ने कहा कि पत्रकारिता का इतिहास भारत का इतिहास भी है। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रीय जागृति का एक आंदोलन है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने डिजी यात्रा ऐप के माध्यम से 10 करोड़ से अधिक निर्बाध यात्राएं संपन्न कराने के लिए डिजी यात्रा टीम को बधाई दी है। श्री नायडू ने कहा है कि ये उपलब्धि निर्बाध और कागज तथा संपर्क रहित प्रक्रिया पर यात्रियों के बढ़ते भरोसे को दर्शाती है। वर्तमान समय में डिजी यात्रा ऐप पर 38 हवाई अड्डे हैं और अगले वर्ष इनमें 27 और हवाई अड्डे जुड़ जाएंगे। पश्चिम बंगाल में स्वच्छता में सुधार और नागरिक समस्याओं का तेजी से समाधान करने के लिए एक नया स्वच्छ मोबाइल ऐप जारी किया गया है। आवासन और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने आज कोलकाता में इस ऐप को जारी किया। इस ऐप के जरिए नागरिक अपनी समस्याओं जैसे रुका हुआ पानी, कचरा या नालियों का फोटो अपलोड कर सकते हैं। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम ITI क्लस्टर के लिए एक निजी कंपनी आर्सेलर मित्तल निपॉन स्टील इंडिया की रणनीतिक निवेश योजना SIP को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली SIP है। आंध्र प्रदेश इस योजना के अंतर्गत उद्योग साझेदारी को क्रियान्वित करने वाला पहला राज्य बन गया है। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की है। कल आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, माहे, लक्षद्वीप और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में तेज वर्षा की संभावना है। अगले दो दिनों में ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारिकाल और मध्य प्रदेश में भी तेज बारिश हो सकती है। कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में तेज हवाओं के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने का अनुमान है। और अब बात खेलों की। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में उन्होंने दक्षिण कोरिया के सीओ सेउंग जाए और किम वॉन हो को हराया। ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो मिक्स डबल्स सेमीफाइनल में हार गई। ब्रिस्टल में दूसरे महिला T20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 5वें ओवर

0: Congress Legislature Party in Karnataka to take oath as Chief Minister on Wednesday. Month-long Khet Bachao Abhiyan to be launched from Monday to promote balanced and judicious use of fertilizers. Prime Minister Narendra Modi to share his thoughts in Man Ki Baat program on Akashvani tomorrow. IMD forecast thunderstorms accompanied by hailstorms over East Rajasthan, Himachal Pradesh, Uttarakhand and Vidarbha tomorrow. In badminton, Sattvik Sairaj, Ranki Reddy and Chirag Shetty advanced to men's doubles final of Singapore Open, and in women's cricket, England set a target of 169 runs for India in the second T20 international in Bristol. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। कर्नाटक में कांग्रेस कानून साज पार्टी ने डीके शिवकुमार को अपना लीडर मुंतखब किया है। वो बुध के रोज नए वजीर आला की हैसियत से हलफ लेंगे। कीमियावी खाद के मुतवाजन और सोच समझकर इस्तेमाल को फरोग देने की खातिर फिर से एक माह तवील खेत बचाओ अभियान शुरू होगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। भारतीय मौसमियात महकमे ने मशरकी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में कल ओले गिरने और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की पेशगोई की है। बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी सिंगापुर ओपन के मर्दों के डबल्स के फाइनल में पहुंच गई है। और खवातीन क्रिकेट में ब्रिस्टल में दूसरे T20 मैच में इंग्लैंड ने भारत के सामने 169 रन का निशाना रखा है। अब खबरें तफसील से। कर्नाटक में वजीर आला के ओहदे से सिद्धरमैया के इस्तीफे के बाद विधानसभा में कांग्रेस कानून साज पार्टी की मीटिंग में डीके शिवकुमार को नया लीडर मुंतखब किया गया है। इस सिलसिले में सिद्धरमैया और डॉक्टर जी परमेश्वर की जानिब से पेश की गई करारदाद को अरकान असेंबली ने मंजूर कर लिया। इस तरह डीके शिवकुमार कर्नाटक के नए वजीर आला होंगे। जनाब शिवकुमार को लीडर मुंतखब करने से मुतालिक करारदाद मंजूर किए जाने के बाद मीटिंग में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल ने सभी कांग्रेस अरकान असेंबली को बाजाब्ता तौर पर इस फैसले से मुतला किया। बाद में नामानिगारों को जानकारी देते हुए जनाब वेणुगोपाल ने ऐलान किया कि पार्टी के अरकान असेंबली ने इत्तफाक राय से डीके शिवकुमार को अपना लीडर मुंतखब किया है और वो सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए गवर्नर मौसूफ से मिलने जाएंगे। उन्होंने ये भी बताया कि हलफबरदारी की तकरीब 3 जून को होगी। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
2: तनाव से भरे कुछ लम्हात के बाद ये खबर सामने आई कि डीके शिवकुमार को कांग्रेस कानून साज पार्टी का लीडर मुंतखब कर लिया गया है। सुबुकदोश होने वाले वजीर आला सिद्धरमैया ने एक सतर पर मुश्तमिल ये करारदाद पेश की थी कि कानून साज पार्टी के लीडर के इंतखाब का मामला ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी पर छोड़ दिया जाना चाहिए। इसके बाद AICC के जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने विधानसौधा में वजीर आला के चैम्बर में सिद्धरमैया के साथ अलहदा अलहदा बातचीत की। इस तरह कानून साज पार्टी की मीटिंग में वक्फे के बाद जब ये दोबारा शुरू हुई तो डीके शिवकुमार को लीडर मुंतखब कर लिया गया। इसके बाद रियासत के गवर्नर ने डीके शिवकुमार को वजीर आला की हैसियत से हलफ लेने के लिए मदऊ किया। रियासत के गवर्नर के साथ मुलाकात के बाद यह ऐलान किया गया कि डीके शिवकुमार और उनकी काबीना के साथियों के हलफबरदारी की तकरीब 3 जून को सुपहर 4:05 पर होगी। बेंगलुरु से सुधेंद्र की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
1: ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेतों, किसानों और गाँवों को जोड़ते हुए खेत बचाओ अभियान को एक जामे कौमी मुहिम की शक्ल दी जानी चाहिए। वजीर मौसूफ ने आज नई दिल्ली में खेत बचाओ अभियान की तैयारियों के सिलसिले में आला सतह की मीटिंग की सदारत करते हुए ये बात कही। मीटिंग के दौरान जनाब चौहान ने कहा कि मस्कूरा मुहिम में कीमियावी खाद के मुतवाजन और सोच समझकर इस्तेमाल करने, मौसम से वाबस्ता चैलेंजों के मद्देनजर किसानों को बरवक्त सलाह देने, पंचायत सतह पर सरगर्म शमूलियत और मुतालिका स्कीमों के फायदे सीधे गांव तक पहुंचाने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। पेश है एक रिपोर्ट।
3: पीर के रोज से मुल्क भर में खेत बचाओ अभियान का आगाज होगा।

0: 31 जून तक जारी रहेगा। इस मुहिम में शामिल सभी इदारों के हम राबताकार के तौर पर कृषि विज्ञान केंद्र को मुकर्रर किया गया है। 1600 ज़्यादा टीमें तश्कील दी गई और खाद के ज़्यादा इस्तेमाल वाले 100 अजला के लिए कुल 500 टीमें बनाई गई हैं। मुहिम के दौरान खेतों को बचाने और किसानों को बरवक्त और सही रहनुमाई फराहम करने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। ज़राअत की वजारत ने जोर देकर कहा है कि कीमियावी खाद के बेतहाशा इस्तेमाल को कम करना इस मुहिम का असल मकसद है। किसानों को खाद के मुतवादिन इस्तेमाल और मिट्टी की जांच की बुनियाद पर दीगर ज़रई सामान को इस्तेमाल में लाने, माहौल के लिए साजगार खाद, नामियाती और हयातियाती अशिया के इस्तेमाल को फ़रोग देने के सिलसिले में मालूमात फराहम की जाएगी। दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद आजम खान।
1: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क लोगों से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये माहाना रेडियो प्रोग्राम का 134वां नशरिया होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के तमाम नेटवर्क्स, AIR न्यूज़ की वेबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी नशर होगा। इसे AIR न्यूज़, DT न्यूज़, वज़ीर आज़म के दफ्तर और इत्तला तो नशरियात की वजारत के यूट्यूब चैनलों पर बराह रास्त सुना जा सकेगा। हिंदी नशरिये के फौरन बाद आकाशवाणी से इस प्रोग्राम को इलाकाई जबानों में नशर किया जाएगा। अमले, अवामी शिकायत और पेंशन महकमे के वज़ीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में मसनूई ज़हानत AI पर मबनी CP ग्राम्स वॉयस चैटबोर्ड समाधान दीदी का आगाज किया। इसे भाषिनी के इश्तराक से इंतजामी इस्लाहात और अवामी शिकायत के महकमे ने तैयार किया है। इस चैटबोर्ड के तवसुत से लोग गुफ्तगू के जरिए अवामी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। मीडिया से खिताब करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने समाधान दीदी को शिकायत के इजाले से मुतालिक सरकार के निज़ाम को सभी के लिए दस्तयाब कराने की समत एक अहम कदम करार दिया। वजीर मौसूफ ने इस बात को उजागर किया कि समाधान दीदी सरदस्त सभी 22 शेड्यूल्ड भारतीय जबानों में काम करेगा और इसमें मजीद इलाकाई और मकामी जबानें शामिल करने के लिए कोशिशें जारी हैं।
2: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
1: सरकार ने कपास की दरामद को अगले महीने की पहली तारीख से इस साल 31 अक्टूबर तक कस्टम्स ड्यूटी से आर्जी तौर पर मुस्तस्ना कर दिया है। एक नोटिफिकेशन में टेक्सटाइल्स की वजारत ने कहा है कि कपास के किसानों और कपास से मुतालिक पूरी वैल्यू चेन के मफाद को मलहूज़ खातिर रखते हुए ये फैसला किया गया है। इसमें कहा गया है कि अब जबकि कपास का सीजन नहीं है तो इस कदम पर अमल दरामद से टेक्सटाइल सनत के लिए कपास की मुनासिब दस्तियाबी को यकीनी बनाया जा सकेगा, MSME इदारों की मदद हो सकेगी, लागत को एतदाल पर लाया जा सकेगा और भारतीय टेक्सटाइल्स की मुसाबकत को मुस्तहकम बनाया जा सकेगा। वजारत ने जोर देकर कहा है कि इस इकदाम से किसानों के मफादात का तहफ्फुज़ होगा और मार्केट में इस्तेहकाम को यकीनी बनाया जा सकेगा। इलेक्ट्रॉनिक और IT महकमे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने आज ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में लोहम का दौरा किया, जो पायदार अहम मादनियात और जदीद साजो सामान तैयार कर रहा है। मीडिया से बातचीत करते हुए जनाब वैष्णो ने कहा कि मुख्तलिफ जदीद टेक्नोलॉजीज में लिथियम बैटरियां और मकनातीस कलीदी रोल अदा करते हैं और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का नज़रिया है कि इन्हें भारत में ही तैयार किया जाए और इसकी टेक्नोलॉजी को भी अंदरून मुल्क ही तैयार किया जाए। उन्होंने कहा कि इस नज़रिए से मुताबकत रखते हुए लोहम नामी एक नए स्टार्टअप ने कामयाबी के साथ ये अहम टेक्नोलॉजी तैयार की है।
3: मेटल्स में बैटरी बनाने के लिए, परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोडक्शन हो, चाहे किसी भी तरह का, आज की बड़ी मशीनों में सब जगह परमानेंट मैग्नेट्स और लिथियम की बैटरीज का उपयोग होता है। इसका प्रोडक्शन भारत में हो और बड़ी बात यह है कि इसकी टेक्नोलॉजी भारत में डेवलप हो, ऐसा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है। इस विजन के तहत एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में वहां से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए। आज उस प्लांट को देखने का मौका मिला, लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीनें जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए, और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीनें जो कि बहुत ही एक अच्छे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप किया।
1: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं।

म्यांमार के सदर ऊ मिन आउ लाइन भारत के 5 रोज़ा दौरे के तहत आज शाम नई दिल्ली पहुंचे हैं। खारजी उमूर के मरकजी वजीर ममलिकत कीर्तिवर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका खैर मकदम किया। इससे कबल आज म्यांमार के सदर ने बिहार के गया का दौरा किया और वहां महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके हमरा मुख्तलिफ काबीनी वुजरा, सीनियर अहदेदारान और कारोबारी रहनुमाओं का एक आला सतही वफद भी है। म्यांमार के सदर का ओहदा संभालने के बाद यह उनका भारत का पहला दौरा है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज उनसे मुलाकात की। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर डॉक्टर जयशंकर ने तवील मुद्दती बाहमी इश्तराक को मुस्तहकम करने के तई म्यांमार के सदर की मुस्बत सोच की सताइश की। उन्होंने कहा कि वो अमन, तरक्की और खुशहाली की खातिर शराकतदारी की पेशरफ्त के सिलसिले में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ जनाब लाइन की मीटिंग के मुंतजर हैं। म्यांमार के सदर दोनों मुल्कों के दरमियान तारीखी और तहजीबी रवाबित को मजीद मुस्तहकम करने की खातिर पीर के रोज़ वजीर आजम मोदी से बातचीत करेंगे। वो एक कारोबारी फोरम में भी शिरकत करेंगे। कौमी सेहत अथॉरिटी की जानिब से नाफिज करदा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत मुल्क भर में 90 करोड़ आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट्स आभा का तारीखी संगे मील हासिल किया गया। सेहत व खानदानी बहबूद की वजारत ने कहा कि एक मरबूत मुश्तरका तरीक़ेकार और शहरियों पर मरकूज डिजिटल सेहत इको निज़ाम की जानिब भारत के सफर में यह एक अहम पेशरफ्त है। वजारत ने कहा कि 2021 में 14 करोड़ से ज़्यादा आभा अकाउंट्स की तादाद बढ़कर इस साल 90 करोड़ हो गई है। दिल्ली पुलिस के खसूसी शोबे ने पाकिस्तान की ISI और मुंबई के जराइम पेशा ग्रोह के नेटवर्क के इशारे पर काम करने वाले 8 मुलजिमों को गिरफ्तार किया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए दिल्ली पुलिस के खसूसी शोबे के खसूसी पुलिस कमिश्नर अनिल शुक्ला ने बताया कि इन मुलजिमों को दिल्ली में अहम तनसीबात और सिक्योरिटी एहलकारों पर हमला करने का काम सौंपा गया था। उन्होंने कहा कि इन मुलजिमों के कब्जे से हथियार और धमाकाखेज मादा जब्त किया गया है। जनाब शुक्ला ने बताया कि ये मुलजिम सरहद पार अपने आकाओं के इशारे पर काम कर रहे थे। इन्हें दिल्ली, महाराष्ट्र और पुणे से गिरफ्तार किया गया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने कल आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरलम, माहे, लक्षद्वीप और मुल्क के शिमाल मशरकी हिस्सों में तेज़ बारिश की पेशगोई की है। अगले 2 दिन के दौरान ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, क्राइकल और मध्य प्रदेश में भी शदीद बारिश का इम्कान है। मौसमियात महकमे ने मशरकी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ खित्ते में कल आंधी और ज्वालाबारी के साथ बारिश की पेशगोई की है। इसके अलावा दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और मगरबी बंगाल में गंगा की तराई वाले खित्ते में भी कल गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश होने का इम्कान है। केरलम में मानसून से पहले की बारिश के तनाजुर में भारतीय मौसमियात महकमे ने तिरुवनंतपुरम जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जिले के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश हुई है। कई इलाकों से पानी जमा हो जाने और ट्रैफिक में खलल पड़ने की इत्तला मिली है। शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर राम मोहन नायडू ने डिजी यात्रा ऐप के जरिए 10 करोड़ से ज्यादा बिला रुकावट सफर के तजुर्बात को यकीनी बनाने के लिए डिजी यात्रा टीम को मुबारकबाद दी। जनाब नायडू ने कहा कि इस संगे मील से बिला रुकावट, पेपर के बगैर और किसी खास राब्ते के बगैर मुसाफिरों के बढ़ते एतमाद की अक्कासी होती है। बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की मर्दों के डबल्स की भारतीय जोड़ी आज सिंगापुर ओपन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने सेमीफाइनल मुकाबले में आलमी नंबर 1 जनूबी कोरिया की जोड़ी सियू सियांग जाए और किम वोन हो को 21-19, 21-18 से हरा दिया। इससे कबल ध्रुव कपिला और तनिशा क्रास्तो की मिक्स्ड डबल्स की भारतीय जोड़ी सेमीफाइनल में जापान की जोड़ी से 16-21, 21-17, 13-21 से हार गई। खवातीन क्रिकेट में 3 T20 मैचों की सीरीज के तहत ब्रिस्टल में खेले जा रहे दूसरे T20 मैच में इंग्लैंड की टीम ने भारत की जीत के लिए 169 रन का निशाना रखा है। अब से कुछ देर पहले तक खवातीन की भारतीय टीम ने 12 ओवर्स में 2 विकेट पर 95 रन बना लिए थे। इससे कबल इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। इंग्लैंड ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 5 विकेट के नुकसान पर 168 रन बनाए थे। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। कर्नाटक में कांग्रेस कानून साज पार्टी ने डी के शिव कुमार को अपना लीडर मुंतखब किया है। वो बुध के रोज नए वजीर आला की हैसियत से हलफ लेंगे। कीमियावी खाद के मुतवाजन और सोच समझकर इस्तेमाल को फरोग देने की खातिर पीर से 1 माह तवील खेत बचाओ अभियान शुरू होगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी

नमस्कार, स्वागत है आपका आकाशवाणी की अखिल भारतीय युवा पत्रिका युवा भारती में। पत्रिका जो हर बार लेकर आती है नए विषय, नए स्वर, नई सोच और नई उड़ान। आज का अंक खास है कई मायनों में, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन लोगों की, उन विचारों की और उन रास्तों की जो युवा भारत को आकार दे रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ पूरे जोश के साथ। दोस्तों, कभी सोचा है कि जब न टीवी था, न इंटरनेट, न स्मार्टफोन, तो लोग सच कैसे जानते थे, अपनी बात कैसे कहते थे और अन्याय के खिलाफ आवाज कैसे उठाते थे? जवाब है एक अखबार से, एक छापाखाना, थोड़ी सी स्याही और बहुत सारा साहस। उदंत मारतंड 30 मई 1826 को तत्काल

0: साल 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाते हैं। ये सफर आसान नहीं था। अंग्रेजी हुकूमत थी, पाबंदियां थी, हर रोज खतरे से आंख मिलाना था। भारी आर्थिक तंगी और उच्च डाक दरों के कारण ये अखबार बहुत दिनों तक नहीं चल सका और 4 दिसंबर 1827 को इसका आखिरी अंक प्रकाशित हुआ। लेकिन जो बीज उदंत मार्तंड ने बोया वो पेड़ बनकर खड़ा हो गया। हिंदी पत्रकारिता को जैसे एक नई भाषा मिलती गई, एक नई धार मिलती गई और आजादी के बाद हिंदी पत्रकारिता और पकी और फैली। और फिर आया डिजिटल युग, जहां हर हाथ में स्क्रीन है और हर इंसान एक संभावित पत्रकार है। लेकिन आज सवाल ये है कि जब पत्रकारिता डिजिटल हो रही है, जब खबर रील बन रही है, तो इन 200 सालों की विरासत को आखिर आगे कौन ले जाएगा? युवा पत्रकार कैसे दें इस समय के सवालों का जवाब, इसी विषय पर आज हमारा संपादकीय लिखा है और स्वर दिया है वरिष्ठ पत्रकार और लेखक हरेंद्र प्रताप सिंह ने। शीर्षक है समय के प्रश्न और युवा पत्रकारिता के उत्तर। तो सुनिए और सोचिए।
1: अगस्त 1947 के पहले जो हिंदी पत्रकारिता हुई, उसका मुख्य मकसद था देश को आजाद कराना और उस समय जो कुछ अंधविश्वास थे समाज में उसको दूर करना और कहीं न कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विकास पत्रकारिता को भी सहयोग करना। तो ये तीन मुख्य मकसद थे पराधीन भारत में। और जब देश आजाद हुआ तो जाहिर है कि एक नई शुरुआत थी, लोकतंत्र नया नया स्थापित हुआ, फिर हमारा संविधान सामने आया। तो हिंदी पत्रकारिता ने और भाषाई पत्रकारिता ने मुख्य रूप से देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया। और मैं खास करके हिंदी पत्रकारिता में आजाद भारत में रेडियो का, आकाशवाणी का योगदान बहुत ज्यादा मानता हूँ, क्योंकि खासकर जो हरित क्रांति हुई, श्वेत क्रांति हुई, उसमें आकाशवाणी की बहुत बड़ी भूमिका रही। भारत की जो आजादी है उसमें पत्रकारिता का और पत्रकारों का तो बहुत बड़ा योगदान रहा ही, लेकिन उसमें भी विशेषकर जो युवा पत्रकार थे उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। बल्कि आप शुरू से ही देखें,

0: उदंत मारतंड हो या फिर दैनिक समाचार सुधावर्षन या फिर बाद में एक उर्दू का अखबार आया आपको प्याम आज़ादी और कई भाषाई अखबार जैसे मराठी में बाल गंगाधर तिलक ने केसरी और मराठा शुरू किया, फिर बाद में महात्मा गांधी ने खुद अंग्रेजी में और गुजराती में फिर बाद में हिंदी में पत्रकारिता की। तो उस पूरे दौर को यदि आप देखिए, यहाँ तक कि भगत सिंह तक ने भी जो है वो पत्रकारिता की, यशपाल ने पत्रकारिता की। पूरी आज़ादी की यदि यात्रा आप देखिए पत्रकारों की, तो उसमें युवाओं का बहुत बड़ा योगदान है। बाल गंगाधर तिलक खुद 25-26 साल के थे जब उन्होंने अपना अखबार निकाला। गणेश शंकर विद्यार्थी का जो प्रताप निकला तो उस समय वो मात्र 24 साल के थे, और भगत सिंह 23 साल की उम्र में 2-3 अखबारों के लिए लिखते थे और प्रताप के लिए तो वो नाम बदल के लिखते थे। तो इस तरह से जितने भी पत्रकार थे उसमें ज्यादातर यंग लोग ही रहे। और महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से लौटे और उन्होंने यंग इंडिया की शुरुआत की, नवजीवन की शुरुआत की, तो उन्होंने 30-35 साल के युवाओं को ही अपनी संपादकीय टीम में रखा। मेरा ये मानना है कि समय चाहे जैसे भी बदला हो और आगे भी बदलता रहेगा, पत्रकारिता के जो मूल्य हैं वो वही रहते हैं। मूल्य है सत्य को सामने लाना, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना, चाहे आप कलम से लिखिए, मोबाइल से लिखिए। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि बीच में स्वतंत्र भारत में एक आंदोलन भी हुआ, वो कहलाता है छात्र आंदोलन, जिसको हम लोग जेपी मूवमेंट भी कहते हैं, 1974-75 का जो आंदोलन है। तो आप यदि देखिएगा तो उसमें भी युवा पत्रकारों की भी बहुत बड़ी भूमिका रही। और स्वाधीन भारत में दो और खास किस्म की पत्रकारिता शुरू हुई, एक खोजी पत्रकारिता जिसने कहीं न कहीं उन व्यवस्था पे भी जो है एक अंकुश लगाया जहां कुछ उसने देखा कि गलत हो रहा है, और दूसरी जो एक पत्रकारिता जो एक चरम रूप पे आई वह है विकास पत्रकारिता। विकास से जो व्यक्ति छूट गया उसको सामने लाना और मानवाधिकार की बात करना, पर्यावरण की बात करना, पर्यावरण के हितों की बात करना, ये 20वीं सदी की पत्रकारिता की सबसे एक विकसित सोच थी। खबर को एक खबर के रूप के साथ साथ विचार के रूप में भी प्रस्तुत करना, जनसंचार का क्षेत्र ये शुरू से युवाओं को आकर्षित करता रहा है, क्योंकि इसमें एक उनको कहीं ना कहीं ग्लैमर भी नजर आता है। मेरा यह मानना है कि पत्रकारिता आज की तारीख में भी एक लोक सेवा है। मुख्य मकसद वही है कि आप कलम से या शब्दों से या अपने विचारों से आपको समाज की, देश की और मानवता की सेवा करनी है। पत्रकारिता चाहे 18वीं सदी की हो, 19वीं सदी की हो, 20वीं सदी की हो, 21वीं सदी की हो, पत्रकारिता आज भी एक बड़ा ही पवित्र प्रोफेशन है। मैं कहूंगा युवाओं को, आज भी युवाओं को अधिक से अधिक संख्या में इस क्षेत्र में आना चाहिए।
1: हरेंद्र प्रताप सिंह के विचारों ने हमें एक बार फिर याद दिलाया कि माध्यम बदलते हैं मगर जिम्मेदारी नहीं बदलती, और जब माध्यम की बात हो तो एक नाम जहन में हमेशा रहना चाहिए, आकाशवाणी। वो आवाज जो दशकों से घर घर तक पहुंचती रही, वो आवाज जो दूर दराज के गांवों में भी उम्मीद की किरण बनती रही। आकाशवाणी के 90 साल के ऐतिहासिक पड़ाव पर इस अंक में हमारे साथ हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापक, युवा साहित्य और संस्कृति कर्मी विशाल पांडे, जिन्होंने रेडियो को सिर्फ एक माध्यम के रूप में नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक संस्था के रूप में देखा, समझा है और इसमें उनकी एक हिस्सेदारी भी रही है। आइए उन्हीं से जानते हैं कि आकाशवाणी के 90 साल विरासत आज के युवाओं के लिए क्या मायने रखती है।
2: मेरे लिए आकाशवाणी केवल एक प्रसारण संस्था नहीं है बल्कि वह मेरे बचपन की ध्वनि है, मेरे संस्कारों की लय है और मेरी चेतना का एक स्थायी संगीत। आज जब दुनिया तेजी से बदल रही है, संचार के माध्यम बदल रहे हैं, आवाज़ें बदल रही हैं, तब भी मेरे भीतर कहीं एक रेडियो धीरे धीरे बजता रहता है। वही परिचित उद्घोष, वही शब्दों की गरिमा, वही ध्वनि का अनुशासन और वही आत्मीयता। शायद इसलिए मैं आज भी रेडियो सुनता हूँ। टेलीविज़न कब देखा था ये मुझे सचमुच याद नहीं। मेरा बचपन गोरखपुर में बीता, शुरुआती शिक्षा भी वहीं हुई। मेरी माँ शिक्षिका हैं लेकिन मेरे लिए वे केवल शिक्षिका नहीं बल्कि साहित्य, भाषा और संस्कृति से भी मेरा पहला परिचय कराने वाली हैं। उनका आकाशवाणी गोरखपुर से गहरा संबंध है। वे वहाँ निशा निमंत्रण जैसे साहित्यिक कार्यक्रमों से जुड़ी हैं

0: अक्सर उनके साथ आकाशवाणी केंद्र भी जाया करता था। आज भी मुझे वह परिसर याद है, वहाँ का शांत वातावरण, स्टूडियो के बाहर लगी हुई लाल बत्ती, धीमी आवाज में होती बातचीत, स्क्रिप्ट के पन्नों की सरसराहट और प्रसारण शुरू होने से पहले का वह अद्भुत मौन। एक छोटे बच्चे के लिए वह संसार किसी जादुई लोक से कम नहीं था। आकाशवाणी गोरखपुर एक प्रतिष्ठित केंद्र रहा है, वहाँ अनेक बड़े साहित्यकारों, कलाकारों और संगीतज्ञों का आना जाना था। मुझे याद है जब कोई वरिष्ठ कवि या कलाकार स्टूडियो में आते तो वहाँ का वातावरण एकदम बदल जाता। शब्दों के प्रति आदर और कला के प्रति समर्पण मैंने वहीं देखा। शायद वही संस्कार बाद में मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा बन गए। बाल सभा के कई कार्यक्रमों में मुझे अवसर भी मिला। रेडियो पर अपनी आवाज़ सुनना उस समय बहुत रोमांचक था। रिकॉर्डिंग के दौरान माइक के सामने बैठना, सही उच्चारण का ध्यान रखना, शब्दों को स्पष्ट बोलना, ये सब मेरे लिए गतिविधियां ही नहीं थीं, बल्कि भाषा के प्रति एक अनुशासन का प्रशिक्षण भी था। आज जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता है कि आकाशवाणी ने मुझे बोलना ही नहीं सिखाया, बल्कि सुनना भी सिखाया। और सुनना वास्तव में सबसे बड़ी कला है। रेडियो की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह श्रोता की कल्पना को जीवित रखता है, आपको अपने भीतर दृश्य रचने की स्वतंत्रता देता है। रेडियो सुनते हुए हम केवल श्रोता नहीं रहते, हम सह रचनाकार बन जाते हैं। धीरे धीरे समय बदला, मैं उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय आया। एक नया शहर, नया वातावरण, नए संघर्ष, लेकिन इस परिवर्तन के बीच भी एक चीज स्थिर रही, आकाशवाणी से मेरा संबंध। दिल्ली आने के बाद मुझे युववाणी का हिस्सा बनने का अवसर मिला। ये मेरे जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण अनुभव था। युववाणी केवल कार्यक्रम नहीं बल्कि युवाओं की अभिव्यक्ति का मंच था। वहाँ विचार थे, ऊर्जा थी, भाषा का उत्साह था और समाज को देखने की एक नई दृष्टि। बाद में मुझे हिंदी वार्ता और संस्कृत वार्ता से भी जुड़ने का अवसर मिला। ये मेरे लिए प्रसारण ही नहीं बल्कि भाषा और विचार की साधना भी रही। आज सोशल मीडिया के समय में सूचनाएं बहुत हैं, लेकिन विश्वसनीयता कम होती जा रही है। ऐसे समय में आकाशवाणी का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ शब्दों के पीछे उत्तरदायित्व है। कई बार मुझे लगता है कि रेडियो सुनना दरअसल अपने भीतर लौटना है, क्योंकि रेडियो हमें थोड़ी देर के लिए दुनिया के शोर से बचाकर शब्दों और ध्वनियों की एक शांत दुनिया में ले जाता है। और शायद यही कारण है कि आकाशवाणी 90 वर्षों बाद भी उतनी ही प्रासंगिक है। मैं स्वयं को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे इस परंपरा से जुड़ने का अवसर मिला। मैं अपनी माँ के प्रति भी कृतज्ञ हूँ, जिनके माध्यम से मेरा परिचय इस संसार से हुआ। आकाशवाणी के 90 वर्षों की इस गौरवशाली यात्रा को मेरा विनम्र प्रणाम है।
1: तो जैसा अभी विशाल पांडे ने कहा, आकाशवाणी ने हमेशा ही नई पीढ़ी को अभिव्यक्ति का मंच दिया है, और आज की युवा पीढ़ी अभिव्यक्ति के नए नए रास्ते खोज रही है। कोई कैमरा उठाता है, कोई माइक थामता है, और कोई निकल पड़ता है अनजाने रास्तों पर, बस एक बैग, एक कैमरा और एक जज्बे के साथ। सफर को कंटेंट बनाना और कंटेंट को करियर बनाना, ये कमाल कर रहे हैं आज के ट्रेवल ब्लॉगर्स। जब घर की चार दीवारी को छोड़कर पहाड़, समंदर और अनजान शहर ही दफ्तर बन जाएं, तो जिंदगी कुछ और ही रंग ले लेती है। आज हम मिलने वाले हैं दो ऐसे ही युवाओं से, श्वेता राठौर और सौरभ परमार, जो डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स और ट्रैवल ब्लॉगर्स हैं। इनके लिए रास्ता ही मंजिल है और हर मोड़ पर एक नई कहानी है। आइए सुनते हैं उनसे उनके रिस्क, उनकी रील्स और उनके रास्तों की बात, जो इन्होंने खुद चुने हैं। रास्ते, रिस्क और रील्स। श्वेता राठौर और सौरभ परमार से बातचीत की मैंने, यानी नवोदिता और प्रांजल ने।
2: आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक AI और एक डिजिटल एरा में रह रहे हैं। यूथ के साथ कनेक्शन बहुत जरूरी है। आपका जो एक ऑनलाइन प्रेजेंस है वो बहुत क्वर्की स्पॉन्टेनियस कंटेंट से भरा हुआ है। आपके सोलो ट्रैवलिंग जर्नी में प्लानिंग से लेके उसका एग्जीक्यूशन कितना इम्पोर्टेंट है और आपका उसमें क्या प्रोसेस है?
3: जब हम ट्रैवलिंग शुरू करते हैं तो बिल्कुल

0: प्लान प्लान करते हैं, हमारी कोई आइटिनरी नहीं होती, क्योंकि हमारे हिसाब से ट्रैवलिंग वैसे ही होती है जब आप एक्सप्लोर करने जाते हो किसी जगह को और आप मन में बिठा के रखे हो हमें ये करना है ये करना है ये करना है ये करना है, तो खत्म है वहां पे एक्सप्लोरेशन, क्योंकि आप टारगेटेड ट्रैवल कर रहे हो. तो हम जब भी प्लान करते हैं तो हम बस जगह को देखते हैं, ये हमें पसंद आ रही है जगह, चलो चलते हैं. कैसे जाना है वो उसी दिन डिसाइड होता है, आपको बस से जाना है, आपको फ्लाइट से जाना है, आपको ई रिक्शा लेके जाना है, इट्स अप टू यू. और आइटिनरी की बात तभी आई जब हम फॉरेन ट्रैवल करना शुरू किए, क्योंकि वहां पे नेसेसिटी बन जाती है, आपको दिखाना है वीजा ऑफिसर को कि आइटिनरी एक सर्टेन वे में होनी चाहिए. वहां पे भी हम कोशिश करते हैं कि जितनी फ्लेक्सिबिलिटी हो सके हमारे प्लान में हम उतना रखें. और ट्रैवलिंग करते समय आपको बहुत ही स्मार्टली चलना होता है, बेवजह रिस्क नहीं ले सकते हैं. जैसे यूथ जो है या सोलो ट्रैवलिंग वाली जब बात आती है तो मोस्टली ऐसी आती है कि इज इट सेफ, कैसे हम जाएं, कैसे बजट हैंडल करें. मान लीजिए आपका बजट 10,000 है, आप प्लान कीजिए आसपास की जगहों का, हो सकता है कि आपकी जो ट्रैवलिंग हो वो 1,000-2,000 में ही हो जाए. तो अगर आपको ट्रैवलिंग शुरू करनी है तो सबसे पहले तो आसपास की जगहों को घूमना शुरू कीजिए, देखिए कि आपको कितना मजा आ रहा है और क्या एक्सप्लोर करने में मजा आ रहा है. तो उससे आप ना लॉन्जेविटी ला सकते हैं. अगर आप आगे जाएंगे ना बड़े स्टेट्स में किसी भी ऐसी जगह पे जा रहे हैं जो अनएक्सप्लोर्ड है और आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपको हैंडल करने का तरीका आता होगा.
1: और अब आपसे ये जानना चाहेंगे, जितनी आसानी से श्वेता ने कहा कि हम एकदम उसी दिन प्लान करते हैं, लेकिन फिर भी आपका पर्पस तो ये है कि उस चीज को आपको कवर करना है और आप उसको किसी भी तरीके से आपको देखने सुनने वालों के सामने रखना है, क्या वाकई ये इतना स्पॉन्टेनियस होता है या फिर?
2: मुझे लगता है श्वेता ने झूठ बोला है, इससे भी ज्यादा स्पॉन्टेनियस है.
1: अच्छा.
2: हाँ, क्योंकि हम लोग जो पूरा का पूरा कॉन्टेंट है स्टोरी के अराउंड रिवॉल्व करता है. हम लोगों ने जब इनिशियली ट्रेवल स्टार्ट किया था तो हम सिर्फ ये नहीं करना चाहते थे कि मैं यहाँ पे जा रही हूँ, ये करना चाह रही हूँ. हम लोग सच में एक बहुत ही ऐसी जगह पे फिक्स थे दोनों के दोनों अपने लाइफ में कि हम वहां से निकल नहीं पा रहे थे. शी वॉज वर्किंग इन कॉर्पोरेट ऑफिस और मैं मीडिया एडिटिंग कर रहा था. जब इसने जॉब छोड़ी श्वेता ने, तो हमने सोचा कि हम इसको ना एक आइडिया बेस लेके चलते हैं, कंटिन्यूटी रखते हैं इसमें. तो इनिशियली ऐसा हुआ कि जब हमने स्टार्ट किया तो हमने एक स्टोरी जनरेट की. स्टोरी मतलब वो रियल लाइफ से ही जनरेटेड थी कि श्वेता ने अपनी जॉब छोड़ी है और जॉब छोड़ के उसने ट्रेवलिंग करना शुरू किया है. बट ट्रेवलिंग के लिए आपको पैसे चाहिए और स्टार्टिंग में हमारे पास सिर्फ ऐसे 10-12 हजार रुपए थे दोनों के पास मिला के, ये हमारी सेविंग्स थी. तो हम लोगों ने एक हफ्ता ट्रेवल किया. एक हफ्ता जब हमने ट्रेवल किया तो हम लोगों ने सोचा कि मैं पूरा कंटेंट संभालूंगा और तुम पूरा फाइनेंस संभालो. तो ये हमारी स्टोरी चली. तो क्या हुआ कि विद इन 3 मंथ्स हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए थे और सिर्फ 10,000 से हमने शुरू किया था उस टाइम.
1: आपके जवाब में एक्चुअली 2-3 ऐसे पॉइंट आए जहां पर मेरे अंदर कुछ क्यूरियोसिटी है. एक तो ये कि जब आपने बोला कि श्वेता ने अपनी नौकरी छोड़ी, आई वुड होप कि आपके अंदर भी वो एक सेंस ऑफ नर्वसनेस, वो इनसिक्योरिटीज होंगी कि छोड़ तो दी आगे कैसे होगा. और जो आपने एक जिक्र किया कि आपके पास 10,000 फॉलोअर्स थे, वो 10,000 भी कैसे आए. और दूसरा ये कि आपने ये कहा कि जो चीजें आप कह रहे हैं, आप स्टोरी सोचते हैं, हम लोग तुरंत इसको करना चाहते हैं. कभी कोई आपके आसपास कोई सोशल ऐसी चीज है जो आपको ज्यादा इम्पैक्ट करी है, पॉलिटिकल है, या जानबूझ के आप ऐसे कंटेंट से दूर रहना चाहते हैं जहां पे किसी भी तरह के डिस्प्यूट की कोई गुंजाइश हो?
2: हम लोग का जो मेन कॉन्सेप्ट है और जो कंटेंट का मेन कोर है वो ये है कि हम लोगों को ना दुखी नहीं करना चाहते. देयर इज अ लॉट ऑफ सैडनेस गोइंग ऑन और चीजें होती रहती हैं आसपास. अगर हम किसी भी चीज को टच करें तो आप कभी भी सही या गलत नहीं हो सकते पूरी तरह से. लेकिन हम थोड़ा सा ना हैप्पीनेस स्प्रेड करना चाहते हैं अपने आसपास, तो इसलिए हम उन टॉपिक से थोड़ा सा दूर रहते हैं. हमारा चैनल ऐसा नहीं था कि यहाँ सुपर पॉपुलर है और लोग वीडियोस देख रहे हैं, वो ये एक दो वीडियो पे व्यूज आ गए थे, इस वजह से हमारे फॉलोअर्स हो गए थे. हमने बेसिकली ये सोचा कि हम ऐसे वन ऑफ करके नहीं चल सकते हैं, हमें थोड़ा सा कमिट करना पड़ेगा क्योंकि हमें करना था ये.
1: श्वेता, एक सवाल और बनता है आपसे बीच में कि आप एक जॉब में थी तो उस जॉब को छोड़ते वक्त कुछ तो आपने पैटर्न देखा होगा कि कुछ तो बेहतर कर सकते हैं.
0: सबसे बढ़िया बात मेरे अंदर मुझे यही लगती है कि मैं बहुत इम्पल्सिव हूँ. जैसे कि आप बंजिंग जंपिंग करने जा रहे हो तो आप साथ में ये भी रखो कि आप बैकआउट भी बैकआउट नहीं करना मुझे, ये मेरे दिमाग में लेकिन बात कौनती रहती थी कि तू सरवाइव कैसे करेगी, घर से पैसे नहीं लेने, सब इंडिपेंडेंट तो हो गए अब. तब मैंने शुरू की फ्रीलांसिंग. पहले शुरू किया अपने आसपास के लोगों से, फ्रीलांसिंग के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी और कोई आसपास कर भी नहीं रहा होता अब. तो फिर मैंने थोड़ा सा और एक्सप्लोर किया तो मुझे पता चला कि फ्रीलांसिंग वेबसाइट भी है मैडम. जैसे मैंने अपनी प्रोफाइल बनाई, फ्रीलांसर्स की ना अलग दुनिया है.
1: कुछ जो अभी यूथ अभी हमारे इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं तो उनके लिए आप क्या बता सकती हैं, जो कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे उस हिसाब से मैं अपनी प्रोफाइल को चेंज करना पड़ा, कैन यू गिव सम एग्जांपल्स?
0: हाँ, जैसे एक वेबसाइट है फ्रीलांसर, अपवर्क है, एक फाइवर है, तो ये ना पॉपुलर वेबसाइट्स है.
3: तो जब हम इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे कंटेंट देखते हैं तो हर एक कंटेंट का एक यूएसपी होता है. जब

0: हम आपका कंटेंट देखते हैं तो उसका एक यूएसपी है कि यूनिक वॉइस ओवर्स होते हैं, संस्कृत का यूज करते हैं, कभी शुद्ध हिंदी का यूज करते हैं। कुछ वर्ड्स हैं जैसे आप रेलवे को बहुत अलग प्रोनाउंस करते हैं,
1: लोपद गामिनी।
0: हाँ, और उसके पीछे का इंस्पिरेशन क्या है?
1: इंस्पिरेशन एक तो देखो, हिंदी ना बहुत सुंदर है, मतलब हिंदी बहुत ही प्यारी लगती है। हमने स्कूल में वैसे सीखा नहीं है जिस तरह से हमें सीखना चाहिए था, तो हम कोशिश करते हैं कि हम अपने माध्यम से हम खुद भी सीखें। हम हर बार जब स्टोरी लिख रहे हैं, जैसे ये स्टोरी लिखने बैठा है, जैसे अभी मैं बोलूंगी ना तो कंप्लीट हिंदी नहीं बोल पाऊंगी, मुझे कुछ कुछ वर्ड्स, जैसे इंग्लिश वर्ड्स जो कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश होती है, तो उसमें जैसे अभी बोला मैंने तो नहीं आती। तो हम ना कोशिश करते हैं कि इसकी हिंदी लेके आते हैं, क्योंकि लगता है हमें बेहतरीन हिंदी, और हमें ऐसा लगता है कि लोगों को ना बहुत मजा आता है हिंदी सुनने में, जैसे हमें मजा आता है। बाकी आधा हिस्सा इसका भी है इसमें।
2: मुझे लिखने का बहुत पहले से शौक था। हमने एक वीडियो बनाई थी बहुत पहले, भारत माता टेम्पल है, जब हम वहां पे गए तो मैंने सोचा कि यार अगर यहाँ पे इतने सारे गॉड्स हैं, गॉडेसेस हैं, हमारा पहला टेम्पल विजिट था वो मेजर, तो हम उनको ऐसे साधारण भाषा में बोल नहीं सकते हैं, हमें थोड़ा सा रिस्पेक्टफुल करना पड़ेगा। तो जब हमने किया तो हमें खुद अच्छा लगा, और दूसरा हम एक तरह से हिंदी को थोड़ा सा ना प्रमोट भी करना चाहते थे कि हम ना मुहावरों का बहुत इस्तेमाल करते हैं।
0: आपने एक इंडिया सीरीज शुरू की थी जिसमें 500 का चैलेंज लिया था, आपने पूरा इंडिया घूमा था, तो अगर उसके बारे में कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे, और लद्दाख से लेके कन्याकुमारी तक हर राज्य में अलग कल्चर है, अलग भाषा है, अलग खाना है, तो कुछ एक्सपीरियंस हो, कुछ ऐसी चीज जो जिससे आप एनकाउंटर हुई हो।
1: एक तो भारत कितना भी घूम लो खत्म नहीं होने का है, बहुत जगह कवर की, बहुत सारे लोगों से मिले, बहुत सारे स्टेट्स में गए, लेकिन अभी तक स्टिल ऐसे लगता है हमें जब कोई वीडियो आती है कि यार यहाँ तो गए ही नहीं, ये तो एक्सप्लोर ही नहीं किया। और दूसरी बात यह है कि बहुत कुछ जानने को मिला, और बताए ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स थे जहाँ पे हमें लगा कि जब आप घूमना शुरू करते हो तो आपको रियलाइज होता है कि ये हमारा जो भारत है ना सही में बहुत डाइवर्स है,
3: मतलब जो डाइवर्सिटी हम किताबों में
1: पढ़ते हैं
3: उसका जब वास्तविक रूप हमें देखने को मिलता है तो फिर वो डेफिनेटली वो हमें
1: बहुत ही मजेदार होता है। हाँ,
3: एक क्रिएटर के तौर पर जो छोटी मोटी टेक्निकलिटीज होती है लाइक ट्राईपॉड है या छोटे मोटे और जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं, तो अगर डिफिकल्ट टेरेन में गए मान लीजिए आप, तो वो हैंडल करना कितना मुश्किल है, चैलेंजिंग होता है आपके लिए या इजी है?
2: इसमें जो टेक्निकल आप एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो नए क्रिएटर्स के साथ आती है वो ना ओवर थिंक करते हैं चीजों को। हमने जब ये चैनल स्टार्ट किया था हमारे पास एक फोन था, उसमें 4K वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं होती थी, और हमारे चैनल 3 महीने में जो हमारा 1 मिलियन हुआ वो सिर्फ उस फोन से हुआ। उसके आप वीडियो क्वालिटी देख लीजिए, एकदम बेकार वीडियो क्वालिटी। मेन मकसद ये होता है कि जो स्टोरी है ना, एक पूरा पैकेज आप कैसा दे रहे हैं, अब जो बताना चाह रहे हो पहुंच पा रहा है लोगों तक। आपको सुंदर नहीं दिखाना है, हर चीज सुंदर नहीं हो सकती है, या फिर हर चीज आसान नहीं हो सकती है। तो जो हमारे पास है सबसे पहले में उससे ही स्टार्ट करना चाहिए, वो ही इस्तेमाल करना चाहिए। पहले हमारे पास कैमरा था, फिर हमने गोप्रो भी लिया, फिर हमने अलग अलग कैमराज खरीदे, लेकिन फिर हमें बाद में पता चला कि ये सब ना बस हिंड्रेंस है, ये सब हमारी उसमें काम में बाधा डाल रहा है। अगर मान लीजिए हम ट्रैक कर रहे हैं और कोई लाइक 5 घंटे का ट्रैक है और मैं बैग पैक करके बैग में सामान लेके चल रहा हूँ तो मेरे लिए आसान नहीं है। तो हमने ये रियलाइज किया कि एक अच्छा फोन लीजिए आप, और उसी फोन से आप जितना हो सके उतना कीजिए,
3: और छोटे मोटे जो आपको उसकी एक्सेसरीज मतलब जैसे ट्राइपॉड
2: यस यस जितना छोटा हो सके, मतलब
1: कॉम्पैक्ट रखो।
2: जो गोल है, गोल ये नहीं है कि दूसरों के लिए आसान बनाना है, गोल ये है कि मुझे अपने लिए काम आसान बनाना है।
3: लास्ट सवाल एक्चुअली मेरा आपसे यही होने वाला था कि क्या लगता है फॉलोअर्स और सक्सेस?
1: सक्सेस मेरे दिमाग में ये रहता है कि क्या मैं जो बना रही हूँ उससे मैं खुश हूँ, इररेस्पेक्टिव ऑफ फॉलोअर्स। हमें ऐसा लगता है जो हमने इतने 4 सालों में एनालाइज किया है कि हमारी रीच बहुत ज्यादा है, हम जब लोगों से बात करते हैं बहुत मजेदार लगता है, ये है सक्सेस हमारे लिए कि हमारी बात जो है वो इस तरह तक पहुंची कि लोग मजे ले रहे हैं उसके, और लोग उसको बहुत दिन तक याद रख रहे हैं। आपने जो वो वाली वीडियो बनाई थी ना, उसमें जो आइसक्रीम खाई थी और बहुत मजा आया था, वो जो बच्चे, तो वो है सक्सेस हमारे लिए। फॉलोअर्स हमारे लगभग 700K है इंस्टाग्राम पे, जैसे 5 मिलियन उस पर यूट्यूब पे है, तो वो हमारे लिए नंबर है। बस जब तक हमें ऐसा नहीं लगता कि जो हम दे रहे हैं वो 100% हमारा है, हमको मजा आता है, हम उसमें कंटेंट बनाते हैं।
2: आपके पास जो है जैसा है वहां से स्टार्ट करो, पुट योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, डोंट एक्सपेक्ट एंड इट विल वर्क आउट अगर आपने इनफ मेहनत करी है तो।
4: श्वेता और सौरभ की बातें सुनकर एक बात साफ हो जाती है कि आज के युवा के लिए करियर का मतलब बदल चुका है। वो अपने लिए नए नए रास्ते ढूंढ रहे हैं, अपनी अभिव्यक्ति के लिए और उससे अपने रोजगार के लिए। लेकिन हर युवा का सपना और हर युवा की परिस्थिति एक जैसी नहीं होती। कोई घर से दूर पहाड़ों पर कंटेंट बना सकता है, तो कोई घर की जिम्मेदारियों के बीच अपनी पढ़ाई पूरी करने का सपना देख रहा होता है, और पढ़ाई

0: ऐसी जिससे भविष्य में रोजगार की कुछ उम्मीद हो। और ऐसे में एक नाम जहन में आता है भरोसे का, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू, जहां शिक्षा की कोई सीमा नहीं, ना उम्र की, ना दूरी की, ना परिस्थिति की। आज हमारे साथ हैं इग्नू के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर कीर्ति विक्रम सिंह, जिनसे हम जानेंगे कि रोजगार परक शिक्षा के क्षेत्र में इग्नू किस तरह नए आयाम छू रहा है और क्या युवाओं के लिए वाकई यहाँ आकाश जितनी संभावनाएं हैं। स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में।
1: जी धन्यवाद।
0: सबसे पहला सवाल तो यही है कि जो हमारी नई शिक्षा नीति, हालांकि अब उस नीति को आए हुए भी अब समय हो गया है, और जो ओपन लर्निंग या दूरस्थ शिक्षा है, वर्तमान से इसके भविष्य की संभावनाओं को आप कैसे देखते हैं?
1: देखिए, अगर हम बात करें दूरस्थ शिक्षा की, तो इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। ये एक ऐसी शिक्षा पद्धति है कि इसमें विद्यार्थी को केंद्र में रख के सारी मेथोडोलॉजी डिजाइन की जाती है। मतलब इसमें हम लोग ये प्रयास करते हैं कि विद्यार्थी को कुछ हम ऐसी सहूलियतें दें कि वो अन्य काम अगर कर रहा है पढ़ाई के साथ साथ, मान लीजिए स्वरोजगार कर रहा है या किसी रोजगार में है, कोई गृहिणी है या कोई किसान है, तो उनको सहूलियतें मिलें कि वो अपने पेस के अनुरूप अपनी पढ़ाई कर सकें। मुझे लगता है कि ये समय की मांग है और यही प्रयास सरकार का भी है।
0: तो आपको क्या लगता है कि अभी जो जन सामान्य में जो जागरूकता है इस तरह की पढ़ाई को लेकर, इस तरह के कोर्सेज को लेकर, पाठ्यक्रम को लेकर, वो किस स्तर पर है और उसको बेहतर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए?
1: जागरूकता का स्तर तो काफी अच्छा है, खासतौर से कोविड के बाद जब लोगों ने देखा कि सारे वेज एंड मीन्स बंद हो गए हैं लर्निंग के, तो वहां पर दूरस्थ शिक्षा एक बहुत इंपॉर्टेंट विकल्प के रूप में उभर के आया और अब ये युवाओं की एक तरह से चॉइस बन चुका है। खासतौर से ऐसे युवा जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको एक उच्च कोटि की अध्ययन सामग्री मिलती है जिसको अगर वो पढ़ते हैं तो उनके कंपटीशन में सेलेक्ट होने के संभावनाएं बहुत अच्छी हो जाती हैं। प्लस वो अध्ययन अपने हिसाब से कर रहे हैं, जैसे उन्हें अगर मान लीजिए कोई कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस के लिए कहीं पर कोई काउंसलिंग लेनी है या कॉलेजेस में जाना है या संस्थानों में जाना है, तो वो उसको भी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो अपने समय का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं। प्लस जो दूरस्थ शिक्षा के कोर्स राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने के बाद से जो डिजाइन किए जा रहे हैं, उस पर ट्रेडिशनल कोर्सेज में भी स्किलिंग का कॉम्पोनेंट है।
0: जी,
1: तो अगर आप सामान्य बीए, बीकॉम, बीएससी भी कर रहे हैं, तो उसमें स्किलिंग के ऐसे कंपोनेंट हैं कि अगर आप जो सरकारी सेवा है उसकी ओर जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जाना चाहते तब भी इन कोर्सेज को अगर आप करते हैं तो रोजगार और स्वरोजगार की संभावनाएं बहुत अच्छी रहती है। ऐसे ही जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, वो भी अगर स्किलिंग करना चाहते हैं तो उनके पास भी अवसर है। तो यहाँ पर सरकार ये प्रयास कर रही है कि हमारा जो युवा हो वो स्किल्ड हो और एजुकेटेड हो।
0: जिनकी पढ़ाई में कुछ ब्रेक लग गया किसी भी कारण से, वापस अगर एक ब्रेक के बाद उन्हें पढ़ाई शुरू करनी है, तो किस तरह इस रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं? अगर इग्नू की बात करें तो
1: देखिए, ब्रेक के बाद अगर पढ़ाई करना चाहते हैं तो इग्नू तो इसीलिए बना हुआ है। कोई माइग्रेशन, कोई टीसी की आवश्यकता नहीं है। आपके मन में इच्छा जागी कि हमारी पढ़ाई छूट चुकी है या हमें अपने नॉलेज को इन्हांस करना है, आप विश्वविद्यालय के किसी पर्टिकुलर पाठ्यक्रम में एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। कोई मैक्सिमम एज लिमिट नहीं, मिनिमम एज लिमिट है 10+2 आपने किया हो, ज्यादातर कोर्सेज में एलिजिबिलिटी है। तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग को इग्नू सपोर्ट करता है। एडमिशन की जो मेथोडोलॉजी है वो ऑनलाइन है। सिंपल इग्नू की वेबसाइट पे जाएंगे, एडमिशन का जो लिंक है उस पे क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट करेंगे, फीस पे करेंगे और अगर वो सारी चीजें सही हैं तो उनको एडमिशन ग्रांट कर दिया जाएगा। देखिए, हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि वी डू नॉट हैव इक्वल टैलेंट्स बट वी गेट अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप आवर टैलेंट। यानी हम सभी के टैलेंट बराबर नहीं होते, मगर हमें अवसर मिलता है अपने टैलेंट को बढ़ाने का, अपने स्किल्स को अपग्रेड करने का, अपने नॉलेज को अपडेट करने का। तो ये सारे ऑप्शंस इग्नू जनमानस के द्वार पर उनको उपलब्ध कराता है। अब लोगों को करना क्या है कि एक कदम आगे बढ़ाना है, इन अपॉर्चुनिटीज को ग्रहण करना है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, आज की इस पत्रिका में हमने की बेहद खास बातें। हरेंद्र प्रताप सिंह से हमने जाना कि पत्रकारिता की जिम्मेदारी कभी पुरानी नहीं पड़ती और युवाओं को तो इसमें एक खास भूमिका निभानी है। विशाल पांडे ने बताया कि आकाशवाणी की आवाज और 9 दशकों के इतिहास में युवाओं की भी एक बेहद महत्वपूर्ण भागीदारी रही है। हमने सुना श्वेता और सौरभ से कि हिम्मत हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं।

डॉक्टर कीर्ति विक्रम सिंह से हमने जाना कि शिक्षा के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, आपको तय करना है कि किस शिक्षा के जरिए आपको कौन सा रोजगार चुनना है। तो फिर मिलेंगे युवा भारती के अगले अंक में। पत्रिका में हमारे सहयोगी रहे नेत्रा और प्रांजल के साथ। नवोदिता को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।
1: नमस्कार, संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं विदुषी स्मिता मोकाशी का शास्त्रीय गायन।
2: नमस्कार, इन टुडेज ऑल इंडिया प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग टू यू अ क्लासिकल वोकल परफॉर्मेंस बाय विदुषी स्मिता मोकाशी।
1: सुरों की साधना और शास्त्रीय गायन की समृद्ध परंपरा को आत्मसात करने वाली आकाशवाणी और दूरदर्शन की टॉप ग्रेड कलाकार विदुषी स्मिता मोकाशी पंडित अजय पोहनकर जैसे दिग्गज गुरुओं के सानिध्य में तराशा गया स्वर है।
2: अ टॉप ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी एंड दूरदर्शन विदुषी स्मिता मोकाशी हैज डेडिकेटेड हरसेल्फ टू द परस्यूट ऑफ नोट्स एंड थरोली एब्जॉर्ब द रिच ट्रेडिशन ऑफ क्लासिकल सिंगिंग। हर वॉइस हैज बीन ब्यूटिफुली नर्चर्ड अंडर द गाइडेंस ऑफ लेजेंडरी गुरुज इंक्लूडिंग पंडित अजय पोहनकर।
1: तानसेन और अमीर खान जैसे प्रतिष्ठित समारोह की आप शोभा बढ़ा चुकी हैं। प्रयाग महाकुंभ से लेकर लंदन की नेहरू सेंटर तक आपने अपनी गायकी की छाप छोड़ी है।
2: शी हैज ग्रेस्ड प्रेस्टिजियस म्यूजिक फेस्टिवल्स लाइक द तानसेन समारोह एंड उस्ताद आमिर खान समारोह, लिविंग एन इंडेलिबल मार्क विद हर सिंगिंग फ्रॉम द प्रयाग महाकुंभ टू द नेहरू सेंटर इन लंदन।
1: आपको कलाश्री और मोहम्मद रफी जैसे कई सम्मानों से नवाजा गया है। आपकी प्रस्तुतियां न केवल तकनीकी रूप से सुदृढ़ है बल्कि उनमें भारतीय संगीत की गहरी रूहानियत भी झलकती है।
2: ऑनर्ड विद सेवरल एकोलेट्स इंक्लूडिंग द कलाश्री एंड मोहम्मद रफी अवार्ड्स, हर परफॉर्मेंसेस आर नॉट ओनली टेक्निकली फ्लॉलेस बट ऑल्सो डीपली रिफ्लेक्ट द सोल ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक।
1: आज आप सर्वप्रथम प्रस्तुत कर रही हैं राग मारू बिहाग। विलंबित रचना एक ताल में निबद्ध है जिसके बोल हैं मान तज देहो प्यारे। मध्य लय तीन ताल में निबद्ध रचना के बोल हैं मानो न जियरा मोरा, और एक ताल में निबद्ध द्रुत रचना के बोल हैं मानो ना ही तुमरी बात। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं गांधार राजहंस और हारमोनियम पर प्रमोद बोरगांवकर।
2: टू बिगिन हर रेसाइटल टुडे शी प्रेजेंट्स राग मारू बिहाग। द फर्स्ट इज विलंबित कंपोजिशन सेट टू एक ताल विद द लिरिक्स मान तज देहो प्यारे। दिस इज फॉलोड बाय अ मध्य लय कंपोजिशन सेट टू तीन ताल विद द लिरिक्स मानो ना जियरा मोरा। शी कंक्लूड्स दिस राग विद अ द्रुत कंपोजिशन सेट टू एक ताल विद द लिरिक्स मानो ना ही तुमरी बात। अकंपनिंग हर ऑन द तबला इज गांधार राजहंस एंड ऑन द हारमोनियम इज प्रमोद बोरगांवकर।

0: ये था विदुषी स्मिता मोकाशी का गायन राग मारू बिहाग। स्मिता जी अब प्रस्तुत करने जा रही हैं राग रागेश्री। त्रिताल मध्यलय में निबद्ध रचना के बोल हैं साजन बिन सुनी एरी आली, और द्रुत एक ताल में निबद्ध बंदिश के बोल हैं राग संग रागिनी मिल मंगल गाई।
1: ट्रांजिशन एंड राग रागेश्री, दैट वॉज विदुषी स्मिता मोकाशी रेंडरिंग राग मारू बिहाग। स्मिता जी विल नाउ प्रेजेंट राग रागेश्री। द फर्स्ट इज मध्य लय कंपोजिशन सेट टू त्रिताल विद द लिरिक्स साजन बिन सुनी एरी आली। दिस विल बी फॉलोड बाय अ द्रुत बंदिश सेट टू एकताल विद द लिरिक्स राग संग रागिनी मिल मंगल गाई।

0: विदुषी स्मिता मुकाशी द्वारा प्रस्तुत ये था राग रागेश्री। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे गांधार राज हंस और हारमोनियम पर प्रमोद बोरगांवकर।
1: यू आर लिस्निंग टू राग रागेश्री प्रेजेंटेड बाय विदुषी स्मिता मुकाशी। अकंपनिंग हर ऑन द तबला वॉज गांधार राज हंस एंड ऑन हारमोनियम वॉज प्रमोद बोरगांवकर।
0: ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति थी। इसके साथ ही आज की अखिल भारतीय संगीत सभा संपन्न होती है।
1: दिस प्रोग्राम वॉज अ प्रेजेंटेशन ऑफ आकाशवाणी इंदौर। विद दिस टूडेज ऑल इंडिया नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक कम्स टू एन एंड।
2: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धारमैया और डॉ जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: किसानों की खेती और मिट्टी को सुरक्षित रखने के लिए खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा और यह 30 जून तक पूरे देश में चलाया जाएगा। इस अभियान में कृषि विज्ञान केंद्र सभी भाग लेने वाली संस्थाओं के मुख्य समन्वय की भूमिका निभाएंगे। इस अभियान के लिए 1600 से अधिक टीमें बनाई गई हैं। इसके अलावा जिन 100 जिलों में रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग होता है वहां विशेष रूप से 500 टीमें गठित की गई हैं। इस अभियान के दौरान खेतों को बचाने और किसानों को समय पर सही सलाह देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के लगातार हो रहे उपयोग को कम करना है। किसानों को मिट्टी की जांच के आधार पर उर्वरकों और अन्य कृषि संसाधनों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक किया जाएगा। साथ ही उन्हें जैविक खाद और जैव उत्पादों के अधिक उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवाददात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि समाधान दीदी वर्तमान में सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में काम करने में सक्षम है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि एआई और तकनीक के उपयोग के कारण लोक शिकायतों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित करेगा। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के सम्मान में एक स्मारक टिकट और प्रथम दिन का कवर जारी किया। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम आईटीआई क्लस्टर के लिए एक निजी कंपनी ऑर्सिलर मित्तल निपॉन स्टील इंडिया की रणनीतिक निवेश योजना एसआईपी को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली एसआईपी है। ब्रिस्टल में दूसरे महिला T20 क्रिकेट मैच में मेजबान इंग्लैंड ने भारत को 26 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में भारतीय टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 142 रन ही बना सकी। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। मौसम विभाग

ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में ओलावृष्टि के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: 42 runs for 9 in 20 overs. And in badminton, Indian men's doubles pair of Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty advanced to the finals of the Singapore Open. The Indian pair defeated world number 1 South Korea's duo Seo Sang-jae and Kim Won-ho in the semi-finals today. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडिया वेब पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। रात के 11:10 हुए हैं। अब हमारी इस सभा के कार्यक्रम संपन्न होते हैं। अपनी प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ कल प्रातः 5:50 पर हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।